0: आखिरकार हमने उसे और उसके घर को जमीन में धसा दिया, फिर कोई उसके हामियों का ग्रोह न था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आता, और न वो खुद अपनी मदद आप कर सका। अब वही लोग जो कल उसकी मंजिलत की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे, अफसोस, हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिज्क चाहता है कुशादा करता है और जिसे चाहता है नपातुला देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान न किया होता तो हमें भी जमीन में धसा देता। अफसोस, हमको याद न रहा कि काफिर फलाह नहीं पाया करते। वो आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो जमीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और न फसाद करना चाहते हैं, और अंजाम की भलाई मुत्तकीन ही के लिए है। जो कोई भलाई लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर भलाई है, और जो बुराई लेकर आए तो बुराइयां करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा जैसे अमल वो करते थे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानो कि जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया है वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुंचाने वाला है। इन लोगों से कह दो कि मेरा रब खूब जानता है कि हिदायत लेकर कौन आया है और खुली गुमराही में कौन मुब्तला है। तुम इस बात के हरगिज उम्मीदवार न थे कि तुम पर किताब नाजिल की जाएगी, ये तो महज तुम्हारे रब की मेहरबानी से तुम पर नाजिल हुई है। बस तुम काफिरों के मददगार न बनो, और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयात जब तुम पर नाजिल हो तो कुफार तुम्हें उनसे बाज रखे। अपने रब की तरफ दावत दो और हरगिज मुशरिकों में शामिल न हो, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय उसकी जात के, फरमानरवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

समीन, माँ बेटी का रिश्ता दुनिया में एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते को कोई भी नहीं समझ सकता। जब बेटी पैदा होती है तो माँ को एक सहेली मिल जाती है। माँ बेटियों को अपने राजों का अमीन भी बनाती है।

0: जब जवान होती है तो माँ ही उसकी सबसे पहली राजदान बनती है। इसी वजह से बेटी की तरबियत और शख्सियत साजी में माँ का बड़ा किरदार है। कहा जाता है ना कि लड़की की शादी करते वक्त ये देखें लड़की की माँ कैसी है। इसी मौजू पर अरबी जबान में कहावत है, इदा बगै तदुमहा अनशुद अन उम्हा। इदा बगै तदुमहा, यानी अगर तुम किसी लड़की से शादी का इरादा करो, अनशुद अन उम्हा, तो उसकी माँ के बारे में पूछो। क्योंकि बेटी की तरबियत और अखलाक का बड़ा हिस्सा उसकी वालिदा से आता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: क्रिकेट हो,
3: and he's hooked that away. That's four runs.
2: फुटबॉल हो, या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आजकल जो मोटापा है वो बिल्कुल एक इशू बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, और खौफनाक सूरत हाल भी है। कुछ अफराद इसे सेहतमंदी की अलामत भी समझते हैं, मगर वो गलती पर हैं। ये बहुत सी जो मसाइल हैं सेहत के, उनके हवाले से भी जाना जाता है, इसलिए बेशतर अफराद परहेजी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये भी नहीं सोचते कि वो अहमियत क्या है, किस तरह से हमें अपनी खुराक को एडजस्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी मर्जी से कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, इसलिए समझते ये हैं कि अगर हम ग़िज़ा में कमी करेंगे तो तभी हमारा वज़न कम हो सकेगा। इसी तरह से ये भी है ज़रूरी कि हमें देखना ये है कि हम कैलोरीज कितनी ले रहे हैं, कौन से खाने हमारे लिए अहम हैं। बहुत से खाने ऐसे भी हैं जो ज़ायद वज़न से हमें महफूज रख सकते हैं और जिन्हें खाकर आप जो तबीयत है वो भी सैर हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई ज्यादा मकदार में इस्तेमाल करने से बेहतर है कि प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाए। जो डाइटिशियन है उनका कहना है कि जब भी वजन कम करने का तस्वुर अपनाना हो तो बेहतर है कि आप फाइबर्स की मकदार में इजाफा कर दीजिए, ये आपको देर तक भूख नहीं लगाते, आपका पेट भरा हुआ रहता है और तबीयत भी बहुत ज्यादा खाने को नहीं मचलती। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम खाएं, अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, मगर उससे हमारा जो वज़न है वो भी ज़्यादा नहीं होगा। जैसे अंडे हैं, ये मुकम्मल प्रोटीन है, इसमें अमीनो एसिड भी शामिल हैं, इसमें विटामिन ए है, बी, डी और बहुत सारे और मादनी ज़रात पाए जाते हैं। ओट है और इसमें भी मुख्तलिफ़ ज़ायकों में मिलता है, और इसमें अगर 100 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स आप लेते हैं तो उसमें 7.9 प्रोटीन मौजूद है, जो कि बहुत ही अहम है हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए। इसी तरह से अनाज और दालें भी हैं और वो आप इस्तेमाल कीजिए, उसमें फाइबर है, प्रोटीन है और बहुत सारे जो मादनी ज़रात, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल है, मगर ख़ास बात ये कि ये हमारा वज़न ज़्यादा नहीं करती। और एप्पल की बात करें यानी सेब, ये फल मतवाजन ग़िज़ा का यानी अगर बैलेंस डाइट की बात करें तो अहम तरीन जूस है, इसमें हल शुदा फाइबर मौजूद है और अगर हम वज़न कम करना चाहते हैं या वज़न को बैलेंस रखना चाहते हैं तो आप सेब जो है वो अपने रूटीन में शामिल कर दीजिए, वो हमारी इम्यूनिटी को भी ज़्यादा करता है। सिट्रस

0: फ्रूट जैसे माल्टा है ग्रेपफ्रूट्स हैं संतरे हैं आम हैं इन सब में विटामिन सी जो है वो मौजूद है इसके अलावा विटामिन ई B6 और बहुत सारे मादनी ज़रात मौजूद हैं और ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारी सेहत की बहाली में और अहम बात यही कि इससे वजन भी ज़्यादा नहीं होता फिश की बात कीजिए फिश को ज़रूर अपनी खुराक में शामिल कीजिए इसमें विटामिन ए बी सी आयरन और जिंक के साथ साथ जो 20% फैट भी होता है और पानी की मकदार भी कदरे जायद होती है इसके अलावा जो कि बहुत अहम मादनियात हैं सेलेनियम और आयोडीन इसमें मौजूद होते हैं और इसके अलावा ओमेगा 3 भी कसरत पाया जाता है कॉटेज चीज़ है ये भी बेहतरीन डाइट है अपनी गिज़ा में शामिल कीजिए और सब्जियां उन्हें भी कहीं भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना इसमें फाइबर है विटामिन डी है बीटा कैरोटीन है विटामिन सी आयरन और पोटेशियम पाए जाते हैं तो ये छोटी छोटी बातें अपने सामने रखें और फिर अपना वजन जो है वो आप कम कर सकते हैं उसे मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए सबसे अहम है हेल्थ फॉर ऑल
1: Qatar National Health Strategy Health for All FM 107 Dil se Desi
2: Qatar ka pehla Desi Radio Station FM 107 Dil se Desi

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ ये है सुनो और सीखो जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों एक छोटे से गांव में एक कंजूस शख्स रहता था। उसका नाम रहमत था। उसे दौलत जमा करने का शौक तो था लेकिन उसे दौलत छुपाने का शौक भी था। उसके पास बहुत सारा सोना था लेकिन वो कभी भी उसे खर्च नहीं किया करता था। वो दिन रात अपने सोने के सिक्कों को गिन गिन कर देखता था और जब भी रात को सोने से पहले बिस्तर पर जाता तो हमेशा अपने सिक्कों को सुकून से गिनता और फिर नींद लेता। वो इन सिक्कों को अपने बाग में छुपकर पत्थरों के नीचे दफन करता था। उसका यकीन था कि अगर वो इन सिक्कों को छुपाए रखेगा तो वो बहुत खुश रह सकेगा। लेकिन वो कभी भी इन सिक्कों को इस्तेमाल नहीं करता था। इसकी आदतें कुछ ऐसी थीं कि वो अपना सोना किसी को भी नहीं देता था और ना ही किसी से इसके बारे में कोई बात किया करता था। वो बस अपने सिक्कों को छुपाए रखता था और मुसलसल उनकी गिनती किया करता रहता था। एक दिन गांव में एक चोर आया। उसने इसको अपने बाग में सिक्कों की गिनती करते हुए देखा और उस चोर का ध्यान फौरन इसके सोने को चोरी करने की तरफ गया। चोर ने गौर से देखा और सोचा, अगर मैं ये सोना चुरा लूं तो ये मेरी जिंदगी बदल देगा। चोर ने रात का इंतजार किया। जब रात को रहमत गहरी नींद में था, चोर ने इसके बाग में जाकर पत्थरों को हटाया और सारे सोने के सिक्के चुरा लिए। और अगली सुबह जब वो शख्स बेदार हुआ तो उसने देखा कि उसके सारे सिक्के गायब हैं। वो बहुत परेशान हुआ और जोर जोर से रोने लगा, मेरे सिक्कों का क्या हुआ, हाय मेरे सिक्के कहाँ गए, अब मैं क्या करूँगा, मेरे सोने के सिक्के। गांव के लोग फौरन इसकी मदद के लिए आए और उससे पूछा, अरे भाई क्या हो गया, क्यों रो पीट रहे हो, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। उसने गांव वालों को रोते हुए जवाब दिया, मेरे सारे सिक्के चोरी हो गए, मेरे तमाम सिक्कों को किसी ने चोरी कर लिया।
0: गांव वाले इसकी परेशानी देखकर इसके पास जमा हो गए और एक बार फिर पूछा,
1: तुमने अपने सिक्कों को इतनी देर तक पत्थरों के नीचे क्यों छुपाया था, तुम इन्हें अपने घर में क्यों नहीं रखते थे, इस तरह तो वो महफूज भी रहते और तुम इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते थे।
2: रहमत ने अफसरदगी से जवाब दिया और कहा, मेरे पास बहुत सोना था लेकिन मैं कभी भी उस सोने को खर्च नहीं करता था। मैं बस ये चाहता था कि मेरे पास सोना हो और मैं इसे गिन कर खुश रहूं और मुझे उसे जमा करके गिनने में खुशी मिलती थी।
1: गांव के लोगों ने इसकी बात सुनी और कहा, तुमने इस सोने को कभी इस्तेमाल नहीं किया तो ये सोना तुम्हारे लिए इतना ही बेफायदे था जितना कि ये पत्थर। अगर तुमने उस सोने को कभी काम में लाया होता तो उससे तुम्हें कोई फायदा तो होता, लेकिन अब जो कुछ भी तुमने छुपाया था वो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं रहा।
0: रहमत ने उनकी बातें सुनकर सर झुकाया और सोचने लगा। वो जान गया था कि उसका सोना उसके लिए उतना ही बेमायने था जितना कि वो पत्थर जिनके नीचे उसने वो सोना छुपाया हुआ था। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उसने सोचा कि अगली बार अगर उसे कुछ हासिल करना है तो उसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। उसने ये फैसला किया कि वो अब कभी भी अपनी दौलत को बेकार नहीं रखेगा। वो अपने सोने को किसी अच्छी मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा ताकि उसका फायदा हो और वो सच्ची खुशी हासिल कर सके।
1: तो दोस्तों हमेशा ये बात याद रखें कि दौलत और चीजें तभी अहम होती हैं जब हम इन्हें सही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ जमा करने से कोई चीज फायदा नहीं देती।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाअत कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नाजिया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक नए टर्म को हम आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और इस इकोनॉमिक टर्म का नाम है बुल मार्केट। हाँ, ये ऐसा वैसा मार्केट नहीं है और ना ही ये बुल का मार्केट है। एक्चुअली बुल मार्केट है क्या? बेसिकली बुल मार्केट एक ऐसा वक्त होता है जब फाइनेंशियल मार्केट्स, खास तौर पर स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं और लोगों का भरोसा बढ़ता है। इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को उम्मीद होती है कि प्राइसेस और बढ़ेंगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स खरीदते हैं। तो बेसिकली बुल मार्केट का असल मतलब है कि ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को पैदा करना जहां पर प्राइसेस में इजाफा होता है। यानी प्राइसेस में अगर इजाफा होता है तो उसे कहते हैं बुल मार्केट। वहीं इसका अगर उल्टा हो तो, मतलब अगर प्राइसेस गिरती हैं तो, ऐसे मार्केट को कहते हैं बियर मार्केट। वैसे बियर मार्केट पे कभी फिर डिटेल में बात करूंगी। आज का हमारा जो मुद्दा है, मेरा मतलब आज का जो हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो है बुल मार्केट। दोस्तों, बुल मार्केट अक्सर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ होती है। जब कंपनीज का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। वैसे बुल मार्केट कैसे काम करता है, इसे भी जानना अहम है। तो बुल मार्केट का असर सीधा का सीधा इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस से नजर आता है। बुल मार्केट का सबसे बड़ा एलिमेंट है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। जब लोगों को लगता है कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है और मार्केट में इजाफा होगा तो वो स्टॉक्स खरीदते हैं। इससे डिमांड बढ़ जाती है और प्राइसेस भी। वहीं पर दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है और बिजनेसेस प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स बुल मार्केट को सपोर्ट करते हैं। वहीं बुल मार्केट का असर ऐसे भी माप सकते हैं कि ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी डिफाइन करता है। मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे डिफाइन होते हैं? दोस्तों, लोगों का जो जज्बा भी है इन मार्केट के साथ घटता बढ़ता है, या ये कह सकते हैं कि लोगों का जज्बा भी बुल मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। जब मार्केट में पॉजिटिव न्यूज होती है, जैसे किसी कंपनी का अच्छा क्वार्टरली परफॉर्मेंस हो, या फिर नई टेक्नोलॉजी की कोई नई बात हो, कोई नई अनाउंसमेंट हो, तो लोग महफूज महसूस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये है मार्केट का सेंटिमेंट। वैसे कुछ एग्जांपल्स देकर भी मैं आपको बुल मार्केट समझाना चाहूंगी। 2010 से लेकर 2020 का पीरियड देखा जाए तो ये 10 साल जो थे, ये पीरियड हिस्ट्री का एक लंबा बुल मार्केट था। इस दौरान US स्टॉक मार्केट ने लगातार बढ़त देखी, जहां S&P 500 इंडेक्स ने ज्यादा से ज्यादा 400% तक इजाफा किया। लोगों को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का और भरोसा मिला, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जैसे एप्पल और अमेज़न तेजी से ग्रो कर रही थीं। वहीं पर पोस्ट कोविड रिकवरी यानी 2020 से आगे का सफर, जब COVID-19 पैंडेमिक का असर कम हुआ तो मार्केट में रिकवरी की तरफ तेजी देखी गई, गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा और मार्केट्स ने बुल रन शुरू किया। टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर्स ने इस रिकवरी में खास किरदार अदा किया। वहीं पर एक और टर्म है फ्लैश बुल मार्केट की। कभी कभी कुछ वक्त के लिए मार्केट्स अचानक तेजी से बढ़ते हैं। ये अचानक तेजी फ्लैश बुल मार्केट कहलाती है। मिसाल के तौर पे जब किसी नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया जाता है या अपने आप में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आता है तो इन्वेस्टर्स का फोकस इस तरफ चला जाता है और इससे प्राइसेस बढ़ जाती हैं। वहीं बुल मार्केट का असर इन्वेस्टर्स की मेंटालिटी पर भी पड़ता है। बुल मार्केट के दौरान इन्वेस्टर्स नेगेटिव रिस्क को भूल जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। ये कभी कभी इरेशनल एग्जुबरेंस का सबब बनता है जहां लोग सोच समझकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। फिर एक सिचुएशन आती है जिसे हम आम बोलचाल में कहते हैं आखिरी नशा। वैसे इसका मतलब है कि बुल मार्केट कभी कभी आखिर में बबल की तरफ जाता है या जा सकता है जहां प्राइसेस एक्सेसिवली हाई हो जाते हैं। जब ये बबल टूटता है तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्रैश कहलाता है, जैसे 2000 का .com या फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। बबल टूटना, हाँ जी, आखिरी नशा। वेल, इसी के साथ देखा जाए तो बुल मार्केट का असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी पड़ता है। बुल मार्केट अक्सर इकोनॉमी को रिकवर और ग्रोथ प्रोवाइड करता है। जब इन्वेस्टर्स मार्केट में ट्रस्ट करते हैं तो वो नए बिजनेस वेंचर्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ बढ़ जाते हैं। सो ऑल टुगेदर मैं कह सकती हूँ कि बुल मार्केट एक पॉजिटिव इकोनॉमिक फेज है जहाँ इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बड़ी उम्मीद होती है। इस सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है ताकि इन्वेस्टर्स अच्छे डिसीजंस कर सकें और मार्केट के ट्रेंड्स को समझ सकें। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि बुल मार्केट के साथ रिस्क भी होता है इन्वॉल्व, इसीलिए सही स्ट्रेटजी और मार्केट रिसर्च करना बेहद जरूरी है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस से इस मार्केट के सबसे बड़े एसेट बन जाते हैं और इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। आज मैंने काफी हद तक कोशिश की है कि आपको समझा सकूं टर्म बुल मार्केट। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस टर्म को कुछ हद तक समझा भी होगा। वेल, अभी के लिए इतना ही। नए एपिसोड में एक और नए टर्म के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर वसीयतें समाअत फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतें दरअसल ईमान को मजबूत करने वाले और दिल को अल्लाह से जोड़ने के असबाब हैं। इनमें हमें सिखाया गया कि फर्ज इबादात के साथ साथ नवाफिल और

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Aap sun rahe hain Life Hacks apni A4 Amita ke saath. Only on FM 107. Dil se desi. अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमीता और लाइफ को इजी बनाने के लिए लाइफ हैक्स आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज का नंबर वन लाइफ हैक है, फर्नीचर के स्क्रैचेस मिटाएं एक अखरोट से। हाँ जी, सही सुना आपने। तो आपके पुराने जो वुडन फर्नीचर हैं, अगर उस पर कोई स्क्रैचेस आ गए हैं ना, तो बस एक अखरोट यानी कि वॉलनट ले लो, उसे स्क्रैच वाली जगह पर थोड़ा रगड़ो और फिर अपनी उंगली से उसे रब करो। अखरोट का जो तेल निकलेगा वो लकड़ी एब्जॉर्ब कर लेगी और स्क्रैच गायब हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा मैजिकल लगता है, बट एक्चुअली इट वर्क्स। दूसरा खास हैक है, मकड़ियों को घर से दूर रखें पेपरमेंट ऑयल से। हाँ जी, तो स्पाइडर्स से अगर आपको डर लगता है तो ये सुन के खुशी होगी आपको कि पेपरमेंट की स्मेल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस पानी में थोड़ा सा पेपरमेंट ऑयल मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में भर लो, इसे अपनी खिड़कियों और दरवाजों पर स्प्रे कर दो। जो क्रीपी क्रॉलीज होती हैं वो हमारे घर नहीं आएंगी, ठीक है? तो जरूर ट्राई करना। फॉर मोर लाइफ हैक टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।
2: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
1: अस्सलाम वालेकुम नस्टर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में. हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क. तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड. आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल ईटिंग हैबिट्स के बारे में, जो ना सिर्फ आपको हेल्थ में मदद देते हैं बल्कि प्लैनेट को भी प्रोटेक्ट करते हैं. लोकल और सीजनल प्रोड्यूस खाएं, जो एनवायरनमेंट को कम इम्पैक्ट करता है और फ्रेश होता है. मीट कंजप्शन को रिड्यूस करके प्लांट बेस्ड मील्स खाएं, जो ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं. अपने मील्स का साइज डिसाइड करते वक्त फूड वेस्ट को मिनिमाइज करें और लेफ्ट ओवर को सेव करें. पैकेजिंग का ध्यान रखें और ऐसे फूड आइटम्स को खरीदने की कोशिश करें जो मिनिमल पैकेजिंग में हो. रिस्पॉन्सिबल ईटिंग हैबिट्स आपको हेल्दी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं. तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे. अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें. कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज. खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें. अल्लाह हाफिज़.

और उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। सामिने किराम, कुरान की आयत हमें अंजाम के बारे में याद दिलाता है। ये आयत हमें एक ऐसे दिन की याद दिला रही है जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता। ये कौन सा दिन है? मुफस्सिरीन ने इस बारे में दो आरा जिक्र की हैं। एक राय ये है कि इससे मुराद क़यामत का दिन है और यही जम्हूर मुफस्सिरीन की राय है। दूसरी राय यह है कि इससे मुराद इंसान की मौत का दिन है, क्योंकि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसकी आखिरत का आगाज हो जाता है। सियाक आयत पर गौर करें तो मालूम होता है कि यहाँ असल मुराद यौम क़यामत ही है, क्योंकि आगे फरमाया फिर हर जान को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और मुकम्मल हिसाबों किताब जजा सजा और इंसाफ का दिन तो क़यामत ही का दिन है। समीने किराम, क़यामत पर ईमान ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। जिस तरह अल्लाह पर ईमान ज़रूरी है, रसूलों पर ईमान ज़रूरी है, उसी तरह आखिरत पर ईमान भी ज़रूरी है। और किसी इंसान के दिल में आखिरत का यकीन मजबूत हो जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, उसका किरदार बदल जाता है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि हर लफ्ज़, हर कदम, हर निगाह, हर फैसला और हर अमल एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि इंसान के अक्सर गुनाहों की जड़ आखिरत की कमज़ोर याद है।

उसे हाथ में मसल कर रेजा रेजा कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर तंजिया अंदाज में पूछा, मोहम्मद क्या तुम्हारा रब इन बिखरी हुई हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत एतमाद से फरमाया, जी हाँ अल्लाह इन्हें दोबारा जिंदा करेगा और तुम्हें भी, फिर तुम्हें तुम्हारे इनकार की सजा देगा। उसी मौके पर कुरान की ये आयत नाजिल हुई। وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

मतलब यह है कि वो हमारी मिसाल बयान करता है और अपनी पहली पैदाइश भूल जाता है। कहता है इन बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? कह दीजिए इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा पैदा किया था। यही असल जवाब है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कंपनी ने एक जदीद गाड़ी तैयार की, फिर किसी ने उस गाड़ी को खोलकर उसके तमाम पुर्जे अलग अलग कर दिए। अगर वही कंपनी चाहे तो क्या दोबारा उसे जोड़ नहीं सकती? जरूर कर सकती है। हालांकि ये मिसाल भी अल्लाह की कुदरत के मुकाबले में बहुत महदूद है, क्योंकि इंसान को पहले खाम माल चाहिए, कारखाना चाहिए, मशीनें चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला के लिए सिर्फ हुक्म काफी है, कुन फयकून। इसी तरह क़यामत के अकीदे को साबित करने का एक तीसरा अंदाज है, कुरान मुस्तकबिल के मनाजर बयान करता है। ये कुरान का निहायत मुनफरद उसलूब है। अल्लाह ताला क़यामत के ऐसे मनाजर बयान करते हैं जैसे सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। मसलन सूरह साफात में अहले जन्नत की गुफ्तगू, अल्लाह फरमाता है कि जन्नत वाले आपस में बातें करेंगे। उनमें से एक शख्स कहेगा, दुनिया में मेरा एक दोस्त था जो क़यामत का इनकार करता था। वो मुझे कहा करता था कि तुम वाकई मानते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे? फिर अहले जन्नत से कहा जाएगा, क्या तुम देखना चाहते हो कि वो कहाँ है? वो झांक कर देखेगा तो उसे जहन्नम के दरमियान में पाएगा। फतला फराहु फी सवाइल जहीम قالت الله ان كنت لتردين तब वो कहेगा, अल्लाह की कसम तू तो मुझे भी हलाक कर देता, अगर मेरे रब का फजल न होता तो आज मैं भी तेरे साथ जहन्नम में होता। फिर खुशी से अपने साथियों से कहेगा, अब हमारे लिए कोई मौत नहीं सिवाय पहली मौत के, और अब हमें कभी अजाब नहीं होगा। फिर ऐलान होगा, لمثل هذا فليعمل العاملون, ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। दूसरी तरफ जहन्नम का मंजर भी बयान होता है। जक्कूम का दरख्त, खोलता हुआ पानी, शदीद अजाब और अहले जहन्नम का अफसोस। ये सब क्यों? ताकि इंसान दुनिया में रहते हुए अपने अंजाम को सामने रखे। इसी तरह सूरह आराफ में भी देखिए अहले जन्नत और अहले जहन्नम के दरमियान मुकालमा की बात आई है। अहले जन्नत पूछेंगे, هذا ما وعدنا رب قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا, हमने तो अपने रब का वादा सच्चा पाया, क्या तुमने भी अपने रब का वादा सच्चा पाया है? जहन्नम वाले सिर्फ एक लफ्ज कहेंगे, हाँ। उसके बाद ऐलान होगा, अल्लाह की लानत हो जालिमों पर। सामने किराम, कुरान क़यामत को सिर्फ एक महज एक नजरिया बनाकर पेश नहीं करता, बल्कि उसे एक ऐसा जिंदा मंजर बना देता है कि इंसान महसूस करने लगता है जैसे वो खुद इन मनाजर को देख रहा हो। इसीलिए मक्की कुरान बार बार हमें आखिरत याद दिलाता है, ताकि हमारा ईमान मजबूत हो, हमारे आमाल दुरुस्त हों, और हम उस दिन की तैयारी करें जिस दिन हर इंसान को अपने रब के सामने हाजिर होना है। सभी के नाम एक मरतबा फिर उस आयत को दोहराते हैं जिस पर हमारी गुफ्तगू हो रही प्रोग्राम के शुरू से, वत्तकुयौमन तुरजऊन फीह इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। ये वापसी इख्तियारी नहीं, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह की तरफ वापस नहीं जाना चाहता। मौत आएगी, जिंदगी ख़त्म होगी, कब्र का मरहला आएगा, फिर क़यामत का दिन होगा, और फिर हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। तुम मतवफ़ा कुल्लु नफ्सिम।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح

राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महावश और मैं एक दफा फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ. और ये के अब बताना है आपको वेदर अपडेट कि क्या चल रहा है इस वक्त, मौसम के क्या हाल चाल है. भाई अब आज जो कम से कम रहेगा ना वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और इस वक्त 34 हो रहा है. ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुनासिब ही है आज. खैर जी, इसके साथ ही ह्यूमिडिटी 29% यानी ड्राई एनवायरमेंट ही रहना है और यूवी इंडेक्स भी ज़्यादा रहेगा. तो आपने रोज़ाना की तरह वही बातें मैं दोहराती चलूँ क्योंकि बड़ी ज़रूरी है, हमें रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का कि अभी गर्मी का मौसम है तो सिर्फ ये इससे नहीं इकतफा आप कर सकते कि आप ना एसी में बैठे हुए हैं या फिर मतलब सिर्फ ठंडी ड्रिंक्स पी रहे हैं. उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी ऐसी हैं जिनका आपको ख्याल रखना है. अब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है दोपहर के वक्त में, ठीक है, तो उस वक्त में अगर आपको महसूस हो रहा हो ना कि आपको गर्मी निस्बतन ज़रा ज़्यादा लग रही है तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी गर्दन और अपने हाथों हाथों पर ना गीला टावल जो है वो उससे आप थोड़ा सा मतलब ठंडा पानी लेके गीला टावल थोड़ा सा करके उसको जो ना रखिए. तो आपको एक तरफ तो गर्मी का एहसास भी कम होगा और फिर दूसरा ये कि यहीं से हमारी वेन्स वगैरह भी गुजर रही होती हैं तो खून भी आपका थोड़ा सा मतलब जो है ना ज़रा ठंडा होगा. तो ये कर सकते हैं, सर पे भी रख सकते हैं. अक्सर लोगों को मैंने देखा भी है ना कि गर्मी के वक्त अगर वो काम वाम कर रहे होते हैं तो उन्होंने कुछ टावल वगैरह इस तरह का यूज़ कर रहे होते हैं. तो वो शुरू में मुझे रीज़न नहीं समझ में आता था, लेकिन हाँ बिल्कुल सही करते हैं आप लोग. बिल्कुल आपको यही करना चाहिए कि थोड़ा सा गीला करके टावल ना अपनी गर्दन पे अपने सर पे आप रख सकते हैं. अगर आपको गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा तो इंतज़ार ना करेंगे अभी जाके देखता हूँ थोड़ी देर में ठंडा पानी पीता हूँ. नहीं, आप मतलब ये कोशिश करें कि अपने आप को जिस तरह से भी कूल डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं ना पानी के अलावा भी, वो भी कीजिए. और एकदम से मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि अगर आप गर्म से आए हैं तो बहुत एकदम ठंडा पानी ना पिए क्योंकि वो टेम्परेचर जब एकदम से चेंज होता है तो वो भी नुकसानदेह होता है. तो इसलिए पहले अपने आप को थोड़ा सा किसी और चीज़ से ठंडा टावल या मुँह हाथ धो लिया, जाके वजू कर लिया, तो इन सब चीज़ों से भी ना आपका बॉडी टेम्परेचर ठीक हो जाता है. और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ना करे अगर किसी को हीट स्ट्रोक वगैरह होता है तो वो बहुत जल्दी एकदम से असरअंदाज होता है. इसके साथ ही आपने ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है जिनमें पानी ज़्यादा होता है और वो हम रोज़ तकरीबन बताती रहती हूँ मैं कि आप तरबूज यानी वाटरमेलन, इसके साथ ही खीरा, कोकम्बर, इस तरह जो भी मतलब जिसमें ज़रा ज़्यादा पानी होता हो तो उनका इस्तेमाल आप ज़रा ज़्यादा रखें. चलते फिरते एक ऐसे आप खा सकते हैं, खाना खाएं ना खाएं, लंच करें ना करें, लेकिन आप ये जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते रहें. योगर्ट खाते रहें, अगर आप लबन वगैरह मतलब जो है ना मिल रही है तो वो आप पिए. तो अब अपने आप को कूल डाउन रखने के लिए जो भी चीज़ हो सकती है वो कीजिए, लेकिन अच्छी जिसमें विटामिंस भी हों, मिनरल्स भी हों. मतलब वो नहीं कि जूसेस ले लेके पी रहे हैं तो वो सिर्फ शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल उल्टा नुकसान ही होता है. इसके साथ ही जी आपने हल्के रंगों का और लूज़ फिटिंग क्लोथ्स का भी इस्तेमाल करते रहना है. बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स ना पहने कि आपको ज़्यादा पसीना आए, हवा ना लगे, बल्कि ऐसे आपने फैब्रिक्स का इस्तेमाल करना है जो कि ब्रीथेबल हों और ढीले ढाले से कपड़े हों, लाइट कलर्स के हों ताकि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब ना कर सकें सनलाइट को. तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आपने मद्देनज़र रखनी है. और दोपहर की तेज़ धूप से बचने की कोशिश करें, कोई काम नहीं है तो निकलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आराम से चिल करें घर में, ठीक है, और सोएं. आजकल मतलब जो ना ये वाला सीन अच्छा है कि दोपहर में जो है ना सोया जा सकता है, क्योंकि तमाम लोगों का वही वाला सीन है ना कि सुबह सुबह काम होता है फिर उसके बाद दोपहर

दोपहर में कोई ऐसा काम नहीं होता, फिर मतलब थोड़ी सी धूप ढल जाती है तो उसके बाद होता है, तो अच्छा है मतलब दोपहर की नींद लें, सुकून से सो जाएं, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। आराम करें भाई, आपको छुट्टी दी भी इसलिए जा रही है उस दरमियान कि आप आराम से रेस्ट करें, सुकून से रहें। तो खैर ये कीजिए, और इसके साथ ही पानी की बोतल आपने ज़रूर रखनी है अपने पास लाजमी, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े थोड़े सिप्स, चाहे पानी की प्यास लग रही हो आपको या ना लग रही हो, लेकिन फिर भी आपने पानी का इस्तेमाल करते रहना है। तो ये सब चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। और बाकी बताएं कि गर्मी का क्या हाल चाल है, आपको कितनी लग रही है, लग रही है कि नहीं लग रही है। अच्छा, इससे पहले कि मैं जाऊं उस तरफ कि हम आपको बताएंगे कि आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई को क्या कुछ होता है, मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कुछ और। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज का हमारा सवाल क्या है, तो वो मैं बता दूं आपको पहले। आज जो है ना, बड़े मज़े का सवाल है। आज ये है कि अगर आपको मौका मिले आज का पूरा दिन गुजारने का, या कोई भी चले आज का नहीं, कोई भी पूरा दिन गुजारने का किसी और की रूटीन के हिसाब से, ठीक है, किसी और दूसरे बंदे की रूटीन के हिसाब से, जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ, तो कौन सी मतलब कौन सा ऐसा बंदा होगा, या वो प्रोफेशन भी हो सकता है, जिसको आप चूज़ करेंगे और क्यों, ठीक है। अच्छा, कुछ ऑप्शंस भी दे देती हूँ, जैसे कि आप चूज़ कर सकते हैं कोई डॉक्टर बनना, कि डॉक्टर की लाइफ देखें, कि डॉक्टर के तौर पे मतलब ज़िंदगी गुजारनी हो, इंजीनियर के तौर पे, टीचर के तौर पे, पायलट, एथलीट, कोई बिजनेसमैन, कोई भी मतलब कोई शख्सियत हो सकती है, कोई नाम हो सकता है उसका, ठीक है। तो किसको आप चूज़ करेंगे और क्यों, मतलब क्यों चूज़ करेंगे, और आपका क्या ख्याल है कि आप क्या लर्न कर सकेंगे उसकी, मतलब ये जो डेली रूटीन है ना उसकी, उसके हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस से क्या लर्न कर सकेंगे वो, जब लर्न करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग तो पॉलिटिशियंस भी बोलेंगे कि भाई हम मतलब ना वो वाला जो सीन नहीं होता कि एक दिन की अगर हुकूमत मिल जाती है तो उसके बाद बहुत कुछ हम चेंज कर सकते हैं, तो मे बी ये वाला जवाब भी हो, देखते हैं कि लोग क्या जवाब देते हैं। क्योंकि यूजुअली आजकल होता ये कि मैं सोचती हूँ कि शायद लोग इस तरह के जवाब देंगे, लेकिन लोग जब आते हैं तो वाह भाई, मतलब कुछ बिल्कुल ही मुनफरद सोचें आ रही होती हैं। तो आज भी इंतज़ार करते हैं, मैंने सवाल आपको बता दिया, और अब मैं आ जाती हूँ इस तरफ कि 6 जुलाई को दुनिया भर में होता है क्या क्या। छः जुलाई को हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड जोनोसिस डे मनाया जाता है, और इस दिन का मकसद होता है उन बीमारियों के बारे में अवाम में अवेयरनेस पैदा करना जो कि जानवरों से इंसानों तक मुंतकिल होती हैं, और इन बीमारियों को जोनोटिक डिजीज़ भी कहा जाता है। इस दिन की तारीख का ताल्लुक जो है वो मशहूर फ्रेंच साइंटिस्ट हैं लुइस पैस्टियर, उनसे है, और उन्होंने 6 जुलाई 1885 को पहली मरतबा रेबीज़, यानी जो अगर किसी को डॉग वगैरह काट लेता है ना तो उसे फैलने वाली बीमारी की वैक्सीन कामयाबी से इस्तेमाल उन्होंने की थी उस वक्त में। तो ये मेडिकल साइंस की तारीख का एक बहुत ही अहम मौका था जिसने लाखों जानें बचाने में मदद की थी। तो इसीलिए वर्ल्ड जोनोसिस डे हमें याद दिलाता है कि अपने पैट्स की वैक्सीनेशन, सफाई का ख्याल रखना, फूड सेफ्टी और इन्वायरमेंट की हिफाजत करें, ताकि जानवरों के लिए नहीं बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी बहुत मतलब ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये है भाई, मतलब जो लोग पैट्स रखते हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये वर्ल्ड जोनोसिस डे मनाया जाता है कि आपके घर में पैट्स हैं तो उनसे मुख्तलिफ बीमारियाँ भी हो सकती हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ मतलब ये इस तरह के जो पैट्स रखते हैं ना घर पे, जो बेड पे भी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब काफ़ी हद तक चांस होता होगा बीमारियों का, तो उनसे बचना चाहिए। और ख़ास तौर पर अक्सर लोगों के घर पर मैंने देखा सबसे जो कॉमन है वो बिल्ली है, तो बिल्ली का मैंने वो जो होते हैं बाल वाल जो होते हैं उनके, तो वो भी हर जगह पे जाता है, और मैंने सुना है कि उसकी वजह से भी लोगों को कुछ अस्थमा और इस तरह की सांस की बीमारियां हो सकती हैं। तो ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है, मतलब थोड़ा सा ये तो कोशिश मुझे लगता है कि करनी चाहिए कि कोई अगर पैट आपने पाला हुआ भी है ना तो कम से कम वो आपके बेड वेड पे इस तरह से तो ना आए, थोड़ा सा दूर रहे। खैर जी, तो ये है सिलसिला अवेयरनेस पता की जाती है, वही अवेयरनेस मैं भी पता करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा जी, दूसरा जो दिन है वो है इंटरनेशनल फ्राइड चिकन डे। अब मुझे लग रहा है कि कुछ दिन पहले भी कुछ ऐसा दिन था, हो सकता है मतलब चिकन फ्राइड लवर्स, मतलब ये जो फ्राइड चिकन लवर्स जो हैं वो बार बार मनाना चाहते हों ये दिन, तो आज ये है फ्राइड चिकन के जो शौकीन लोग हैं वो 6 जुलाई के मौके पर वो खा सकते हैं बहुत सारी चिकन, क्योंकि दुनिया भर में इंटरनेशनल फ्राई जो चिकन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और रेस्टोरेंट्स
فوڈ لورز اس دن مختلف قسم کی آفرز رکھتے ہیں فیملی میلز اور اسپیشل ریسیپیز کے ذریعے اس کرسپی اور ڈیلیشیس ڈش کے لطف اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرائیڈ چکن کی مختلف جو اسٹائلز ہیں جیسے ساؤتھرن امیرکن کورین جیپنیز ورژن, اس طرح کے دنیا بھر میں ہر طرح کے نا الگ الگ جگہوں کے اپنے

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें, ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
6: FM 107.
4: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
7: सेहत की बात हो तो आत्मा चाहिए माहिरीन की राय पर।
8: माहिरीन की राय पर
7: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड।
8: हेल्थ गाइड
7: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और

0: याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन सिर्फ एक टेक्निकल मसला है, लेकिन असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है, खासकर जब आप हाईवे या रश वाले एरिया में हों। ऐसे में सिर्फ अपनी गाड़ी को ही ठीक करने पर नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत पर भी तवज्जो देना जरूरी है। अगर आपने पहले से इमरजेंसी आइटम्स जैसे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड किट अपनी गाड़ी में रखी हो, तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं है, हर सूरत हाल में सोच समझ कर अमल करना जरूरी है। गाड़ी खराब हो जाए तो हमेशा अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। आमतौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं जब गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप इजी रहें और कुछ सिंपल कदम उठाएं, तो आप और आपके साथियों की जिंदगी महफूज रह सकती है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्टेप। सबसे पहले कोशिश करें कि गाड़ी को सेफ साइड पर ले जाएं। ऐसा करने से आप कानून की कार्रवाई से भी बचते हैं। गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स को ऑन कर दें ताकि दूसरे लोग आपकी पोजीशन देख सकें। अगर आप सड़क पर हैं और गाड़ी साइड पे ले जाना मुमकिन ना हो, तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल गाड़ी के पीछे 10 से 15 मीटर दूर रख दें और आप खुद सेफ जगह पर खड़े हो जाएं। इमरजेंसी नंबर 999 पर फौरन कॉल करें। ये मत भूलिए, आपकी जिंदगी किसी भी गाड़ी या ट्रैफिक से ज्यादा कीमती है। ड्राइव सेफ, सोचिए, समझिए और महफूज रहिए। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान।

0: Alright, welcome back. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महावेश खान और मैं आ गई हूँ एक दफा फिर से आप लोगों के साथ. 4:41 मैंने आपसे सवाल किया है कि अगर आपको मौका मिलता है किसी और की जिंदगी गुजारने का, तो मतलब एक दिन गुजारने का, तो आप किसकी जिंदगी को चूज करेंगे और क्यों. ठीक है, ये मैंने आपको सवाल का कुछ ऑप्शंस भी दे दिए थे. डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है. तो आप चूज़ कीजिए, मुझे बताइए. और जवाब सुनने के लिए हमें कॉल लेना पड़ेगी, तो कॉल हमारे साथ आ गई है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू.

0: जी
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं जावेद साहब कैसे हैं?
0: अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा अच्छा लगा मुझे आज रेडियो को ट्यून करके कि एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है जिसका नाम है 6:01।
1: बेसिकली मेरे साथ पता है क्या मसला क्या है कि मैं जो सोच रही होती हूँ ना मैं बोल देती हूँ और ये मेरी बहुत बुरी आदत है। अक्सर ये होता है कि मैं कहती होती हूँ ये नहीं बोलना है और वो मैं वही बोल जाती हूँ।
0: नहीं बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो खुशी हुई कि मतलब चले एक और प्रोग्राम शुरू हो रहा है, मतलब एक साथ हम दो प्रोग्राम्स का सुनेंगे
1: समर मॉर्निंग के साथ 6:01। अयो यार क्या करूँ, मसला है ये।
0: नहीं कोई ऐसी बात नहीं, देखें हर चीज को देखें, मतलब अगर मैं आपकी चीज को अब रिवाइज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि बड़ा जबरदस्त वो बड़ा
1: हाजिर होंगे आप।
0: हाँ बहुत हंसा तो मैं इसका जिक्र खैर भी कर रहा हूँ आपके साथ इस वक्त, और माशाल्लाह कल तो मैं बहुत हंसता रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ मैं सलीम भाई का और रईस भाई का। आप यकीन करें कि मैं रात को सोने से पहले बखुदा मैं सलीम भाई की मुस्कुराहट और जिस तरह हम लोग भी हंसे रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट डे इन माय लाइफ। बहुत
1: बड़ा मजा आया, मतलब इतने मजे से गाने गा रहे थे आपकी माशाल्लाह से, आप सुर भी खेल रहे थे वो भी, लेकिन उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है।
0: साथ उनके बगैर तो देखिए मैं कुछ अधूरा हूँ ना, वो ना होते तो मैं अधूरा।
1: हाँ।
0: तो लेकिन ये मजा आया कि हर बाद में अच्छा फिर अलिफ आ गया, अच्छा
1: फिर अलिफ आ गया। शहजादा सलीम हमारे माशाल्लाह बहुत लाइवली, बहुत अच्छे कॉलर हैं, बहुत मतलब ना खुश रहते हैं, मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगती है, हमेशा माशाल्लाह खुश रहते हैं।
0: खुश रहना चाहिए हमेशा, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, लम्हात तो जिंदगी में आते रहते हैं लेकिन खुश रहना चाहिए, लम्हात में खुशी है।
1: हाँ,
0: और इसी को तलाश करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। कल सब लोगों ने मैसेजेस किए हुए थे आपकी आवाज माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे खैर मतलब वो तो अंदाजा है ही, बोलने से भी बहुत सारे लोग। अच्छा पता है मजे की बात है कि आपकी काफी मतलब ना कॉल की, क्योंकि वो होता है ना हम चेंज टाइम हमारा हो रहा होता है तो डिफरेंट कॉलर्स आते हैं और सब कुछ, तो हर दफा एक नया एक वो बन जाता है ना, मतलब लोग कुछ नए जुड़ जाते हैं, तो माशाल्लाह से आपको नफीस साहब को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं।
0: अरे बहुत मेहरबानी, ये लोगों की अगर पसंद कर रहे हैं तो लोगों की मोहब्बत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती हमारी कि पसंद करते हैं, और दिल से सबके लिए दुआ भी है।
1: बिल्कुल, और मैं भी ये चाहूंगी कि भैया मैं यहाँ से कहीं और भी जाती हूँ तो आपको मौका मिले तो जरूर कॉल कीजिएगा, मतलब जो भी शो होगा इंशाल्लाह तो जरूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सब लोगों को वाकई मिस करूंगी जो मुझे सुबह के वक्त में मिले।
0: हाँ जी इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे। तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, पहले तो देखें जो एज ए डॉक्टर जो है अगर कोई माहिर कोई शख्सियत उसके 7 दिन गुजारने का अगर मौका मिले तो एक डॉक्टर, क्योंकि हंगामी हालात में और जो लोगों को तकलीफ और बीमारियां हैं उनके साथ रह के उस मतलब वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनका तर्ज अमल क्या है, सीखने को बहुत मौका मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: नंबर टू, अगर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब पायलट, क्योंकि खैर मेरी कुछ मैं इस हवाले इसके साथ ही मिलता हूँ, मैं मतलब जो पायलट के साथ कुछ मिलता हूँ मैं साथ साथ ही मैं उसके, तो इनके अंदर एक चीज जो हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं कि इल्म, जिम्मेदारी, नज्म व जब्त और कैसे भी हालात हों और सुकून जिस तरीके से वो रहते हैं ना, बहुत सीखने का, बहुत बेतहाशा सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं इनके करीब करीब हूँ, इसलिए जिस तरीके से मतलब हम और सुकून रहते हैं हर हालात को फेस करते हैं, तो सेकंड इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी।
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये तो खैर हवाओं में उड़ने का शौक तो होता है सब लोगों को ना, और मतलब ये एक पायलट जिस तरह से वाकई अपने आप को जैसे आप कह रहे हैं कि पुरसकून रखना, और बाज़ों का भी होता होगा, मैं खुद सोच रही होती हूँ कि रात में अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई इतनी लंबी लंबी कमर्शियल फ्लाइट की अगर हम बात करें तो उसमें इतनी लंबी लंबी फ्लाइट्स होती हैं, मतलब वो सारी चीज़ों को मैनेज करना एक मुश्किल काम है, लेकिन मज़ा तो आएगा।
0: बेसिकली वो जो ये आजकल तो खैर दौर इतना एडवांस हो चुका है, क्योंकि वो पहले जमाने के जो बड़े सिंपल के बाद जो एडवांस होता रहा, तरक्की करते रहे, साइंस से तरक्की की उसके बाद, क्योंकि एक सर्टन स्पीड के ऊपर जाके, हाइट के ऊपर जाके आप वो ऑटो पायलट सारा कंट्रोल करते हैं एंड दे आर वेरी फ्री, मतलब वो अपनी सीट पे तो होते हैं, चलते भी हैं, खड़े भी होते हैं, ब्रेकफास्ट भी करते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन वो ऑटो पे जाता है, इंस्ट्रूमेंट सारा काम इंस्ट्रूमेंट पे करता है, सारी टेक्नोलॉजी के सर पे है।
1: हाँ बिल्कुल

0: सही बात है, बिल्कुल
1: तो
0: सही बात है।
1: ज्यादा मैं क्योंकि ज्यादा बात नहीं मैं करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आज भी मैं शामिल हो सकूं। आप यकीन करें मुझे बहुत मजा आया।
0: हाँ, हमें भी बड़ा मजा आया, हमें भी बहुत मजा आया। तो आप जरूर हो सके जरूर शामिल होइएगा।
1: मैं ये सोच रहा था रात को लेटने से पहले आप जो मतलब अजकार पढ़ते हैं सोने से पहले, उसके बाद मुझे सलीम भाई और रईस भाई अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप यकीन करें कि मैं बहुत मिस कर रहा था कि यार ये काफी अगर लंबा होता ना तो बड़ा अच्छा जाना था। इसमें हारने वाला कोई नहीं होता, जो आ गया सब जीते हुए। मतलब हमने लोगों के दिलों को जीतना है, बात तो ये है, दिलों को जीतना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसे ही चले। जरूर आज भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो जरूर आइएगा, ठीक है?
1: मैं डेफिनेटली आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे फिर इंशाल्लाह।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रोई जी, तो हमारे साथ थे जावेद साहब और वाकई मतलब कल बड़ा मजा आया अंताक्षरी में। मुझे लग रहा था कि ये वाला जो है ना, ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंट मैं मतलब चाह रही होती हूँ कि थोड़ी वो चीज हो जो कि मैं कुछ थोड़ा सा अलग इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मेरी हर दफा कोशिश होती है कि मैं वही जो चल रहा है उसको फॉलो ना करूं, थोड़ी सी कुछ अलग चीज हो। तो मुझे लग रहा था कि ये वाला आइडिया ना लोग पसंद करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा गया और आप लोग भी शामिल होइएगा। जितने लोग आएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। खैर जी, तो सिलसिला ये है, मैंने आपसे सवाल किया है कि अगर आपको किसी और की जिंदगी गुजारने का मौका मिलता है एक दिन के लिए, तो आप किसको चूज करेंगे? अभी जैसे जावेद साहब ने दो ऑप्शंस की तरफ हो गए, उन्होंने कहा जैसे ये हंगामी हालात वगैरह होते हैं तो डॉक्टर भी और फिर पायलट, तो वो भी फैसिनेट करता है। आपको क्या फैसिनेट करता है? और कोई वो शख्स भी हो सकता है, मतलब आप किसी बंदे का नाम भी ले सकते हैं। तो हमारे साथ हैं एक और कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: शहजादा जलीम, क्या बात है, हम हैं आपके साथ एफएमएक्स के साथ।
2: कल मैं भी है ना, पूरा अंताक्षरी है ना, पूरी ऑन ड्यूटी में मेरे दिमाग में ना गुंजा रहा है।
0: अच्छा।
2: लेकिन अप्रिशिएट है जावेद साहब की एक बेहतरीन टैलेंट है, बेहतरीन।
0: लेकिन आपने भी ना मतलब आपने जो वो लगाए ना चांद, इतने मजे से आप गाने गा रहे थे, उसको हम सबने बहुत एंजॉय किया।
2: हाँ, तो वो आपने तो मतलब बॉलीवुड का एक ब्रांड तो देखा है ना, सचिन जावेद ने इतनी स्टोरी लिखी
0: है, वो हमें सुनने को मिला कल।
2: तो वही है, अभी अंताक्षरी में भी अगर सलीम जावेद अगर इंटर हो गए तो फिर वो पीछे वाले को मौका ना, हमारे टाइम में टाइम ही खत्म हो जाएगा, आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है आपको सवा बहन से स्टार्ट लेना पड़ेगा।
0: देखते हैं, अगर अच्छा मतलब इस तरह से जम जाते हैं ना फिर शुरू कर देंगे।
2: मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब पार्टिसिपेट करने वाले और भी बहुत लोग कहीं रह गए शायद, ऐसा तो सबको ना चांस मिलेगा। ठीक है, अभी सब बेहतरीन है, अच्छे अच्छे मतलब एक से एक बढ़कर है, सबके अच्छे अच्छे लिस्नर भी बेहतरीन है। और मैंने एक मतलब एक शौक और एक पार्टिसिपेटिंग का एक मतलब एक जज्बा एक शौक और एक प्रोग्राम में आना, तो ये मतलब बहुत जबरदस्त मतलब एक खूबसूरत प्रोग्राम बन जाता है ना। और फिर आरजे बारिश वैन है तो फिर
0: नहीं भाई, आप लोगों का असल कमाल है। मैं तो सुन ही रही हूँ, असल तो चीज आप लोगों की है, लेकिन लिटरली बहुत मजा आया। इवन जो आखिर में रईस भाई आए थे तो उन्होंने भी अपने तौर पे दो चार गाने गाए, लेकिन मजा आया उनके साथ भी।
2: अरे बाद में मैं ना पूरा होम डिटेल में मेरे तो उसमें यही रहा, तो फिर बाद में मैं आलिफ को ये कर रहा था, कवरेज करने की कोशिश कर रहा था, तो आलिफ को कितने गाने मिल रहे मेरे को बाद में,
0: अब सारे जितने भी लेटर्स है ना उससे गाने याद करना शुरू करना पड़ेंगे।
2: मैंने फिर ना, हाँ मैं फिर इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट डाला अपना एक टैलेंट है ना, हमेशा रखिए, कहीं भी परफॉर्म कर ले, आज रेडियो कहीं स्टेज शो बाद में थिएटर शो ऐसे आगे आगे।
0: हाँ नहीं, जावेद साहब तो यहाँ पे दोहा में बहुत फेमस हैं, बहुत अरसे से बहुत फेमस हैं। उनकी सिंगिंग वगैरह को तो जैसे वो बता भी रहे होते हैं ना, तो उनको तो खास तौर पे बुलाया जाता है और वो माशाल्लाह परफॉर्म करते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं उन्हें, तो वो तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत फेमस है।
2: जी जी जी मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं उनको

0: लाइव देखना पसंद करूंगा परफॉर्म करते हुए इंशाल्लाह कभी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो जरूर। हाँ, बेस्ट बेस्ट बेस्ट ऑफ लक।
1: जी अच्छा, ये बताएं भाई कि अगर आपको मौका मिलता है किसी और की जिंदगी जीने का एक दिन के लिए, तो किसकी जिंदगी का चुनाव करेंगे और क्यों?
0: मैं करूंगा ना, मैं एक दिन के लिए ना, मुझे ना फॉरेस्ट ऑफिसर होते ना जो जंगलों में जानवर रहते हैं ना, तो मेरे बड़े जानवरों से ना लगाव है, खतरनाक हाँ, जितने ना उनसे मतलब करीब जाना, उनसे मिलना वगैरह है ना, तो ऐसा कोई ना फॉरेस्ट ऑफिसर हो ना जो मतलब सकते ना, और वो मतलब उनके साथ मिलता हो रहता हो, और मतलब वो भी जानवर भी उनको पहचानते हो, तो उस तरह का अगर मुझे एक दिन का मिला ना काम फॉरेस्ट ऑफिसर का, तो मैं जरूर जाऊँ।
1: क्या बात है, मैं कह रही थी ना कि बिल्कुल वो वाली लोग बात करते हैं ना, मेरे दिमाग में भी नहीं होती, तो आपने बिल्कुल एक नया प्रोफेशन लेकर आए कि फॉरेस्ट ऑफिसर बनेंगे आप। वाओ,
0: यहाँ मैं बहुत खुश होता हूँ। इवन मैं इसमें मोबाइल में भी देखते रहता ना सारे ये सब चीजें ना, बहुत कोई विलेजेस वगैरह के कोई ऐसे केसेस होते हैं कि यहाँ पे खतरनाक जानवर देखे जाते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे गुजर बसर करते हैं, रोज जाते हैं, लकड़ियाँ तोड़ के लाते हैं, फिर घर में चूल्हा जलाते हैं, तो उनके साथ हादसा होते हैं ना, तो मैं बड़ा उनको संजीदगी से ना देखता हूँ कि यार वो बेचारे उनके रहने की जगह है, अभी यहाँ इंसान बसने लगा तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, ये भी बात है।
1: वेरी नाइस आंसर शहजाद सलीम, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड के बिल्कुल अब यूनिक चीज लेकर आए हैं भाई, फॉरेस्ट ऑफिसर, ग्रेट। अगर आप भाई आपको मौका मिले तो मैं कहूंगी कि जितने भी ये जो फॉरेस्ट है ना उसकी कंजर्वेशन के ऊपर काम करें, लोग वाकई जंगलात बहुत काट रहे हैं और ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए।
0: उनकी एक दुनिया है, उनकी एक अपनी जगह है, उनका एक अपना घर है, वहाँ जाकर मतलब है ना उनसे कोऑर्डिनेट, उनसे कोऑर्डिनेट करें, उनसे कोऑपरेट करें, उनके साथ मिले, उनके साथ दोस्ती बढ़ाएं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे।
1: क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस भाई, क्या बात है, सिलेक्शन जबरदस्त, कमाल, बिल्कुल यूनिक। चलें अब अगले कॉलर का सुनते हो, फिर आपका अंताक्षरी में इंतजार करती हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू भाई, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। रही जी, तो शहजादा सलीम हमारे साथ, और इसके साथ ही एक और हमारे साथ कॉलर आ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: राइट जी, राइट जी, रही सही आ गए। चलो तीसरे उसमें कल भी।
1: अच्छा, मतलब आज जो है वो उस अंताक्षरी की नंबरिंग के हिसाब से कॉल नहीं है सारी सुबह। सबसे पहले जावेद साहब आए, फिर शहजादा सलीम और फिर रईस भाई।
2: मैं यार इतना बेसुरे लोग भाई भी मुझे जंगलात में गाना वाना शुरू कर दिया, तो लोग सोचे
1: नहीं, बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया।
2: लेकिन जावेद भाई के अंदर टैलेंट है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको मतलब है और ये दे काबिलियत दे, इसमें बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और वो पुराने जो गानों के मतलब उनका अंदाज है, मतलब जो ये है ना सिंगिंग, बड़ा अच्छा है मतलब, और बड़ा ठहर के रुक के मतलब उनके अंदर एक, हम लोग तो बस ऐसे भाई क्या नाम बाथरूम सिंगर है बस अपने गाने।
1: लेकिन हमने एंजॉय किया आपकी बाथरूम सिंगिंग को भी।
2: वो तो भाई गले पड़ने वाला ही थोड़ा सा,
1: कुछ गाने बड़े अच्छे लेकर आए थे आप, मुझे भी इस वक्त याद नहीं आ रहे, लेकिन वो बड़े अलग गाने लेकर आए थे आप।
2: गाने यहाँ से भी आए थे लेकिन थोड़ा सा सिरकिया अल्फाज पांचवे सिरे में उसको स्किप कर दिया, क्योंकि बात क्या होता था जो जल्दबाजी में वो जहन में आए हुए भी निकल जाते हैं,
1: होता है गेम के दौरान होता है ये, बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो सहन में जो बातें होती हैं वो भी निकल जाती हैं आदमी, मतलब उस वक्त थोड़ा सा उसमें हो जाता है कि यार अभी मेरे पास इतना कम वक्त बचा हुआ, फिर मैं क्या फैसला लूं, क्या करूं, उसी में घबराहट से वो जो जहन में रहता है वो भी हट जाता है थोड़ी देर के बाद, फौरी तौर पर आ जाता है अरे यार तुमने तुम्हें गाना गा लेना था।
1: ये तो है, लेकिन चले ना ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगी, हम दे दिया ना आपको, अब गवाते हैं, अंताक्षरी करते हैं। अभी ये वाला हफ्ता है, अगला हफ्ता भी मेरा है, अगर अच्छा जाते हैं इंशाल्लाह तो फिर अंताक्षरी को ही कंटिन्यू रखेंगे।
2: हम लोग ये अंताक्षरी अपने स्कूली टाइम में कुछ मतलब किए थे, मतलब उसमें हम लोग का शायरी वाला शेर शायरी वाला थोड़ा होता था, तो थोड़ा मोड़ा है आइडिया इस बार, ये गाने होने वाला नहीं होता था लेकिन उसमें शेर शायरी वाला होता था थोड़ा सा,
1: जिसे कहते हैं ना वो करते थे आप। चले, ये अंताक्षरी भी अच्छा खेलने लगे, अभी कल भी आपने वैसे बहुत अच्छा खेला था। अच्छा

0: बदमाश जितने बड़े बड़े केस फंसे पड़े हैं ना, फौरी तौर पे उन्हें सजा दूं। हाँ, और जितने मतलब लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रहा है, फौरी उनको मतलब उसको अपने केस को अपने फौरन मतलब अपने हाथ में लेके और फटाफट इसके ऊपर सुनवाई करके और उन्हें उस मकाम तक पहुंचा दिया जाए जो जिसके लायक है वो। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिल में कभी कभी कि इतने इतने बदमाश फ्री घूम रहे हैं और जो बेचारे मजलूम है उनके ऊपर मतलब वो बेचारे तारीख पे तारीख वो धोते हुए बेचारे
1: रहते
0: हैं। मेरे ख्याल से मतलब सबसे पहले उनको ऐसा ये दिया जाए, जो बड़े बड़े क्राइम करने वाले हैं उनको समझ लो कि उनके उनके लिए एक सबक, दुनिया के लिए एक सबक कायम हो कि भाई वो उसको करने से उसको बंदे को सोचना पड़े।
1: सही जबरदस्त,
0: बड़ा सख्त मतलब मेरे साथ
1: तो आप वो बन जाएंगे सही जज बन के सबके खिलाफ फैसला दे देंगे सबको। मतलब डायरेक्टली क्या देंगे वैसे, मतलब उम्र कैद देंगे या सजा मौत ही दे देंगे?
0: नहीं, जो जो किस जिस लाएगा मैं तो सीधा सजा मौत।
1: इंसाफ होगा भाई, अच्छा सजा मौत
0: फौरन जो जिस लाएगा फौरन, जो हमारे शरीयत के हिसाब से जो सजा है हम उस हिसाब से मतलब बात करेंगे, हम उससे बाहर नहीं।
1: भाई बनते ही ना सारे फैसले निकलवा के सबको एक दफा में बस ऑर्डर दे दीजिएगा ताकि मामला खत्म हो।
0: बस 24 घंटे का टाइम मिलेगा या एक दिन का टाइम मिलेगा तो जितना कोशिश करेंगे, जितना होने वाला है हम अपने तरफ से कोशिश करके उसका रफा दफा कर देंगे कि भैया चलो तुम अपने उसको जो जिसके लायक हो वहाँ पे तुम उस जगह पे पहुँच जाओ। लोगों को मतलब ये जुल्म का पहाड़ तरह तरह के इधर उधर के वो नहीं, बिल्कुल नहीं, खलास फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ये जो ये होता है वो फाइनल ये सुनाता है, फिर उसके आगे तकरीबन बहुत कम रह जाता है उनको चांस ये करने के लिए, अपील करने के लिए।
1: गुड चॉइस भाई, गुड चॉइस, वेरी नाइस। मतलब दुनिया में क्राइम खत्म करने है, आपका मकसद ये है।
0: क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं खुद, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करप्शन और करप्टेड की वजह से दुनिया में पूरे सिस्टम को दरहम बरहम किया गया है और उसी से लोग परेशान है, वहाँ की पब्लिक को कहीं के भी वो लोग, खासकर हम लारे बर्रे सगीर में तो ये बहुत ज्यादा आम है, बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर ये, तो समझ लो कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब बेचारा पिसते जा रहा है और वो इतने मतलब उनको उनको बेचारों को दो टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है और कहीं पे कोई इतने जमा करते करते करते उनके रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ तक पैसे के नोटों के मतलब उसमें दीमक लग के और वो ये करके खा रहे हैं। सबसे पहले हम वो नाफिज करते कि जो ज़कात का है कि मतलब उनको सबसे पहले फटाफट उनके ऊपर वो आयद किया जाए फौरी तौर पे, और जो सजा के लायक है सबसे पहले उन्हें सजा दे के रफा दफा किया जाए, शांति अमन पैदा बहुत ताकि मतलब उस जगह पे।
1: चलें गुड, जबरदस्त रईस भाई, हमारा हो गया जंगल का टाइम और आपने जबरदस्त जवाब दिया, वही भाई अनएक्सपेक्टेड जो होता है ना वो आप लोगों से सुनने को मिलता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।

0: FM 107. Time check. Time check.
1: राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 107 शो है समर मॉर्निंग और मैं आपके साथ आपकी आरजे महावश खान. मैसेज कर सकते हैं आप हमें 6622107 पे और साथ ही साथ कॉल कर सकते हैं 4434343.

0: 77 पे। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? और आई वांट टू बी आरजे कबीर बिकॉज आई वांट टू सी आरजे लाइफ। ओके, आरजे कबीर बनना चाहते हैं? हैं कौन ये? ये हैं भाई सलमान, सलमान ओके, आरजे कबीर बनना चाहते हैं, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त चॉइस। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, आप बताएं क्या है, क्या हाल चाल है, खैर खैरियत है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआ है।
0: गुड, क्या चल रहा था भाई?
1: बस गर्मी चल रहा है थोड़ी थोड़ी,
0: गर्मी चल रहा है थोड़ी थोड़ी सही, ज्यादा लग रही है कम लग रही गर्मी?
1: अरे ठीक है, चलाओ है, इतना पसीना गिरना चाहिए।
0: सही सही, मतलब गुजारा हो रहा है। हाँ, कब तक अभी काम चलता है आपका? अभी हो जाएगी छुट्टी थोड़ी देर के बाद?
1: 9:30
0: ओके, सही हो गया, सही हो गया। तो बताएं भाई कि अगर आपको मौका मिलता है किसी और की जिंदगी गुजारने का, तो वो कौन सी शख्सियत या फिर कौन सा शोभा होगा?
1: मेरा जवाब तो सबसे पहले आपका पहला कलर जज का है, डॉक्टर का, और लास्ट कलर है वो जज का। मेरा भी यही ओपिनियन था, तो मैं इसमें थोड़ा सा मिलावट करूंगा, मैं जज की आंखों से पट्टी हटाना चाहूंगा।
0: अच्छा,
1: सच को पहचाने और झूठ को पहचाने, क्योंकि सच के पास सबूत नहीं होता है, झूठों के पास बिल्कुल सबूत होता है, क्योंकि वो फूक फूक के कदम रखते हैं। जैसे मुझे किसी को कत्ल करना है, किसी को बहना है कि इसको कत्ल करो, पहले मैं उसके साथ सबूत करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, जाओ तुम कत्ल करो, मेरे को पता रहेगा, मैं सीधा बोलेगा उसने मारा है।
0: ओए होए होए, खतरनाक इरादे हैं आपके। सही सही,
1: मैं कहता हूँ अंधुन कानून अंधा होता है, सच्ची हटाना है। आप अगर नहीं देख सकते तो कम से कम आवाज से तो सुन सकते हैं ना, कि आवाज में भी बहुत ही फर्क होता है सच के साथ और झूठ के साथ। जो गलत करता है उसका आवाज लड़खड़ाता है, सच होता है वो खुलेआम बोलता है, और जो भागता है ना वो बिल्कुल बेकसूर होता है अपने साबुत इकट्ठा करने के लिए।
0: सही,
1: और डॉक्टर इसलिए मैं डॉक्टर इसलिए मैं बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपनी ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी, जैसे कसम खाते है ना कोई चीज का, जब इंसान कामयाब होता है तो शपथ लेता है, तो कामयाबी के जैसे सबसे पहले आप मरीज को देखें किस हालात में। हमारे गांव में मैं देखा, अगर बोलते आपका इतना पैसा लगेगा, पहले पैसा उठाए करो, अरे भाई पैसा उठाए बाद में, उसकी जिंदगी देखो, मर जाएगा तो पैसा उठा करके फायदा क्या है? इसका मतलब है कि डॉक्टर खड़े नहीं उतर रहे, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे।
0: सही बात है,
1: जब किसी आम इंसान ने सॉरी बोलता है तो खुशी आता है, जब वही डॉक्टर ने सॉरी बोलता है तो आंसर उसे आता है।
0: सही सही सही, चलें जी, गुड, जबरदस्त, क्या बात है भाई, मतलब दोनों ही चीजें अंडर कवर बनना चाहेंगे, एजेंट बनना चाहेंगे, उसके तहत जाएंगे, चोरों के साथ ही रह के फिर उनके सबूत पकड़ के और फिर बताएंगे, क्या बात है भाई, बड़ा जबरदस्त सोचा भाई, जबरदस्त। क्या बात है नूर मोहम्मद मंसूर साहब, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भाई, चलें जी, थैंक यू। और कुछ कहना है या इतना ही? छोटी सी कॉल होती है।
1: नहीं, मैं तो बस मैं चाहता हूँ कि सभी को मौका मिले।
0: नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सही हो गया, बिल्कुल ठीक है, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना भाई। राइट, तो हमारे साथ थे नूर मोहम्मद मंसूर, और क्या जवाब दे रहे हैं लोग, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल जो वही मैं कह रही थी शुरू में कि मेरे दिमाग में कुछ और होता है, मैं तो आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, लेकिन फिर जो लोग लेकर आते हैं ना वो बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। तो नूर मोहम्मद मंसूर साहब जो है ना, वो अंडर कवर एजेंट कहते हैं ना इनको, जो इस तरह से अपनी शनाख्त बदल के कुछ और काम कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद मतलब कह रहे हैं कि कानून की आंखों से पत्ती हटानी है। चले जी, है इसके साथ हम मूव करें क्या, मतलब ब्रेक ले लें, या फिर हमारे साथ कोई और कॉलर आने वाले हैं? अगर कॉल आने वाली है तो जल्दी से आ जाए, एक मैसेज है मेरे पास। अच्छा, मैं पहले तो परेशान हुई थी, मैंने कहा आज पता नहीं वाईफाई नहीं चल रहा है, क्या चक्कर है, क्योंकि सिर्फ कोई मैसेज नहीं आया हुआ था काफ़ी देर तक, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये खैर आ गया है, सलाम भाई मैम, हैप्पी मंडे मॉर्निंग, वेरी नाइस योर शो एंड नाइस टॉपिक। मैम, मैं तो किसी आरजे के साथ दिन बिताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जो है ना आरजे बहुत अच्छे लगते हैं, और जैसे कि कबीर भाई, FM 107 के सभी आरजे सुरजीत, ओके भाई, कबीर भाई की बड़ी डिमांड चल रही है, सब लोग कबीर भाई बनना चाहते हैं. ओके चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का भी. आप लोग भी सोचिए आप लोग क्या बनना चाहते हैं, और इसी के साथ हम मूव करते हैं एक म्यूजिकल

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश खान और मैं आ गई हूँ एक अपडेट लेके आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ थोड़ा सा कतर म्यूजियम के हवाले से और कतर की हिस्ट्री से। बचपन का लगाव किस तरह एक शख्स को दुनिया भर में पॉजिटिव चेंज लाने वाला लीडर बना सकता है, तो इसकी बेहतरीन जो मिसाल है वो है जनाब अल नासिर अल खोरी। और ये एवोल्यूशन नेशनल कैंपेन के नए एपिसोड में उनका जो सफ़र है कतर की कल्चरल और सोशल लिगेसी को मजबूत बनाने में उनके किरदार को उजागर किया गया। ये कैंपेन कतर म्यूजियम्स की तरफ से लॉन्च की गई है और कतर क्रिएट्स के जरिए क्यूरेट की जा रही है। और इसका मकसद है उन अफराद, इदारों और आइडियाज़ को सेलिब्रेट करना जिन्होंने कतर की कल्चरल डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप की लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए ये सीरीज़ उन लोगों की कहानियाँ पेश करती है जिन्होंने मुल्क की क्रिएटिव और कल्चरल पहचान को दुनिया भर में मजबूत बनाया। और जनरेशन अमेजिंग फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नासिर अल खोरी ने बताया कि स्कूल के दौरान नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर के रेगुलर विजिट्स ने उनमें अपने मुल्क की हिस्ट्री और हेरिटेज के लिए गहरी दिलचस्पी पैदा की। और उन्होंने कहा कि जिस तरह कतर ने तरक्की की है उनका अपना सफ़र भी उसी तरह से इवॉल्व होता गया और कल्चर और स्पोर्ट्स की ने दुनिया के जो मुख्तलिफ लोगों को जोड़ने में अहम किरदार अदा किया। और उनकी लीडरशिप में जनरेशन अमेजिंग फाउंडेशन ने फुटबॉल को सिर्फ एक गेम तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसे लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और कंपैशन जैसी स्किल सिखाने के जरिए जरिया भी बनाया। 2010 में फाउंडेशन के क़याम से लेकर अब तक इस प्रोग्राम में तकरीबन 75 मुल्कों में कोई 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक पहुंच गया है ये प्रोग्राम। और ये इनिशिएटिव्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और कतर नेशनल विजन 2030 के मुताबिक चलाए जा रहे हैं। और इनका कहना था कि कल्चर, स्पोर्ट्स ऐसी यूनिवर्सल ज़बानें हैं जो मुख्तलिफ कौमों को एक दूसरे के करीब लाती हैं। और उन्होंने कहा कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप में अपनी शिरकत को इस बात का मौका करार दिया कि दुनिया को दिखाया जा सके कि कतर साइज में छोटा ज़रूर है लेकिन विजन में बहुत बड़ा है। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कतर की अगली नस्ल जो है वो मेहमान नवाजी जैसी कदरों को हमेशा ज़िंदा रखेगी क्योंकि यही कतरी आइडेंटिटी की असल पहचान है। तो ज़बरदस्त भाई, मतलब ज़बरदस्त न्यूज़। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि आप लोग कॉल करें 4377 पे, आप हमें कर सकते हैं कॉल और उसके साथ ही मैसेज भी आप भेज सकते हैं। और आज का सवाल ये है कि अगर आपको किसी और की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले एक दिन तो क्या इंतखाब होगा आपका और क्यों? बड़े ज़बरदस्त अभी तक जवाब आ रहे हैं, अब देखते हैं कि कौन है हमारे साथ और क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? अंशु बात कर रहे हैं क्या?
2: जी
1: अंशु, कैसे हैं?
2: अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा था भाई? ड्यूटी व्यूटी चल रही है। सही है सही है। और बताएं भाई अंशु कि अगर आपको मिला ये मौका किसी और की जिंदगी बसर करने का एक दिन के लिए तो क्या होगा आपका इंतखाब? मतलब डॉक्टर की, फुटबॉलर की, वकील की। अभी तक बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने जवाब दिया अलग अलग।
2: मतलब हमें तो अपनी जिंदगी जीना है।
1: अपनी जिंदगी जीना है, किसी और में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
2: नहीं, उनकी जिंदगी में ज्यादा तनाव, हमारी जिंदगी अच्छी है ना।
1: हाँ, फिर भी मतलब एक गुजार नहीं तो भाई अपनी है, हमें कौन सी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मतलब सोच के देखने में क्या हर्ज है? अगर कोई मौका मिल ही जाए एक दिन के लिए किसी और की ज़िंदगी जीने का, तो एक होता है ना बंदे के अंदर तजस्सुस होता है कि यार ये काम कैसे होता होगा, वो कैसे होता होगा। तो कभी हुआ मतलब कुछ ऐसा?
2: तो
1: अच्छा, क्यों दोस्त की जिंदगी क्यों
2: है?
1: क्या
2: बहुत मस्त मौला बंदा है।

0: अरे बस वाला बंदा है तो वो जिंदगी जी के देखना चाहेंगे कि इतना चिल कैसे रह लेता है, राइट? सही है, सही है, गुड, अच्छा है।
1: नहीं, बहुत अच्छा बंदा ना।
0: हाँ हाँ, नहीं नहीं वो तो अच्छा है, लेकिन आप ये देखना चाह रहे हैं मस्त मौला है तो ये ऐसा इतना मस्त मौला कैसे है, राइट?
1: जी जी जी,
0: हाँ हाँ, सही सही। और बताएं अंशु, और क्या बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
1: बस अल्लाह का शुक्र है, कहना है अल्लाह का लगता है मेरी।
0: सही है, सही
1: वाला फर्स्ट।
0: हाँ हाँ, चले जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फिर आपकी कॉल का, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत। क्या कह रहे
1: हैं?
0: 24 को क्या हो रहा है?
1: मेरा बेबी आने वाला हम लोगों का।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मुबारक हो भाई, इंशाल्लाह ताला सब सही होगा, सब सही होगा, ठीक
1: है,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल खैरियत का रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, सही है, फिर आप हमें बताइएगा। चले ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी मतलब जो है ना बेस्ट विशेस, नेक तमन्नाएं और दुआएं, इंशाल्लाह ताला सब कुछ सही रहेगा, इंशाल्लाह। चले जी अंशु, ख्याल रखिए अपना, ठीक है, थैंक यू आपकी कॉल के लिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो हमारे साथ हैं अंशु, और अंशु का कहना है कि उन्होंने तो अपने दोस्त की ज़िंदगी जीनी है या फिर अपनी ही जीनी है, किसी और में इंटरेस्ट नहीं है, और दोस्त की इसलिए जीनी है क्योंकि वो बड़ा ही मस्त मौला टाइप का बंदा है तो उसकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी नसीम भाई, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप?
2: अच्छी
0: हुई
2: ड्यूटी
0: की शुरुआत हुई है, ठीक है। अच्छा तो भाई नसीम भाई, ये बताएं कि किसी और की ज़िंदगी गुजारने का एक दिन के लिए मौका मिले तो किसकी ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे और क्यों?
2: बात तो ये है।
0: क्या बात है,
2: मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ
0: रहा। बात तो सही है लेकिन क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
2: हम अपने से बेजार हैं, दूसरे कैसे
0: जिएंगे? हाय हाय हाय, क्या फलसफा हयात आपने बयान किया इस जुमले में। एक जिंदगी से बेजार है, दूसरी कैसे जिएंगे? वैसे लिटरली लिटरली मतलब जो है ना, ये जब कोई बात करता है ना तो मुझे भी ऐसे ही वाली फील आती है कि नहीं भाई, एक ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। सही, तो एक ही जिंदगी से बेजार, फिर भी भाई कोई तो हो, हाँ कोई तो आपको लग रहा है बड़ा ऐश में जिंदगी गुजार रहा है, उसकी जिंदगी इतना रियलिस्टिक भी नहीं होना ना, सोचने में क्या हर्ज है, सोचने में क्या हर्ज है, मतलब इतना इतना हकीकत पसंद किसने बोला होने को, हम तो ऐसे ड्रीमर्स हैं, हम तो सोच रहे हैं। सोच लें ऐसे ऐसे, कोई तो बताए ना, कोई एक बंदा
2: बनता।
0: कौन जज बन जाते? अच्छा जज बन जाते, ओके। सही है, सही है, जज बन जाते, ठीक हो गए नसीम, मतलब ये है भाई सिलसिला, एक ही जिंदगी गुजारी नहीं जा रही, अब मैं दूसरी कैसे गुजारूं, ये अच्छा था। थैंक यू नसीम आपकी कॉल के लिए, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो नसीम भाई हमारे साथ थे और उन्होंने बड़े मज़े से कहा, भाई मैं एक ही ज़िंदगी से तंग हूँ, मुझे दूसरी नहीं गुजारनी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं भी साजू हुई थी।
0: अज्जू, अज्जू, यस अज्जू, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन, मैं भी, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह।
3: मोर देन 20 मिनट मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: हाँ,
3: तो मेरा माइंड में अभी बहुत सारा आदमी आके जा रहा है, किसका माइंड में मैं जाने का?
0: कौन हो सकता है?
3: अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज में, किसका माइंड के अंदर जाने का, अभी मेरा माइंड भी कंफ्यूज हो रहा है, मेरा माइंड के अंदर कोई जाओ इसको निकालने के लिए।
0: हाँ, लेकिन फिर भी कोई एक बंदा जो इतने लोग आके गए ना, उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें, कौन होगा?
3: इतना एडवोकेट जज तो दिस इज बोरिंग, दिस इज जस्ट लाइक अ कॉमन लाइफ, यू नो यू कैनॉट चेंज एनीथिंग The system they did on one way, so you cannot choose advocate whatever.
0: Mm-hmm.
3: So better I will go to Elon Musk mind.
0: Okay, Elon Musk बनना चाहेंगे एक दिन के लिए, right?
3: बनना, I'm not going to make Elon Musk. Yes, center uh-huh. the mind and उसका पैसा पूरा काली करेगा.
0: ये ज़्यादा. एक दिन के लिए वाली जिंदगी चाहिए, सब ट्रांसफर किया और वापस अज्जू बन गए.
3: ओनली वन डे है ना,
0: ओनली वन डे है. सही है, सही है, ये अच्छा.
3: जो जज बना के आपका माइंड का,
0: हेलो,
3: तो बेटर एंटर एलन मस माइंड, पैसा काली करो, एक दिन जितना काली कर सकते हैं काली करो.
0: सही है, तो ये खतरनाक इरादे हैं. बहुत
3: आपको चाहे तो आपको भी 1 million दे देगा, नो इशू, ओनली वन डे.
0: बन जाओ भाई. जल्दी बन जाओ. सही हो गया.
3: एलन मस्क नहीं बनाएगा, लेकिन एवरीवन ट्राई टू बिकम वेल्थी लाइक एलन मस्क.
0: हाँ, सही हो गया, सही हो गया.
3: सही तरीके जाने का, गलत तरीके जाने का नहीं. Do your work properly, be like a honest man, you will become a Elon Musk one day.
0: Hi, बिल्कुल. सही है जू, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट. और आज मैंने पहली दफा सुना कि आप हिंदी बोल लेते हैं, अच्छी बोल लेते हैं, अच्छी बोलते हैं. मुझे जब भी कोई, आप साउथ से है ना?
3: No, actually the हिंदी मेरे को some meanings मेरे को मालूम नहीं, and the verb also अभी भी मेरा,
0: लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है. मैंने वो फिल्म देखी थी, एक है इंडियन मूवी, आई थिंक हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, इस तरह से कमल हसन ने उसमें रोल किया था. तो मुझे वो वाली जो उर्दू है ना, जैसे अभी आप बोल रहे हो हिंदी बोल रहे हो, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगता है.
3: Oh, actually, I'm from Tamil, you know.
0: Tamil, right.
3: I'm from South India, so in my school and college, even we cannot speak Hindi in our state also. There is, my first language is Tamil and
0: Tamil.
3: Second language is English. So there is no chance to get study in Hindi. When I came to Qatar, so I was in Saudi, Qatar. That time I learned Hindi from my college only.
0: लेकिन बहुत अच्छा, बहुत स्वीट है, अच्छा लग रहा है. अच्छा लगा आपको आज सुनते, मतलब ये जिस तरह से आप बोल रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो ऐसे ही बात करो, अच्छा लग रहा है. चलिए जी अज्जू, थैंक यू आपकी कॉल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, ठीक है? टेक केयर. टेक केयर, बाय बाय जी. तो अज्जू थे हमारे साथ, थोड़ी कॉल आ रही है और जा रही है, आ रही है जा रही है, तो हम ले लेते हैं फोन से इनको. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. रेडियो,
4: वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैडम?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं, रेडियो तो ऑफ कर दें
4: जी.
0: अच्छा, आप बोलिए,
4: कैसे हो? ठीक हो, खैरियत है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसे हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है. क्या हिसाब किताब है, मौसम कैसे है?
0: अच्छा, मौसम आप बताएं कैसे है, बाहर होंगे ना भी आप?
4: नहीं, बस बाहर है, गाड़ी में एसी लगाया है, बाहर का मौसम तो मुझे भी नहीं पता.
0: अच्छा, ये सीन है, बाहर का मौसम तो पता ही नहीं है, गाड़ी में बिल्कुल चिल माहौल चल रहा है.
4: ठीक है यार, क्या करें.
0: नाम तो बताएं भाई अपना.
4: खैरियत है, बस जिंदगी गुजर रही है. हमारा नाम है मोहम्मद जुनैद.
0: मोहम्मद जुनैद नाम है, ओके मोहम्मद जुनैद. तो भाई क्या हाल चाल है, कब से हैं यहाँ पे? पहली दफा बात हो रही है आपसे?
4: नहीं, मैं तकरीबन, मेरे ख्याल में एक बार बात की है, लेकिन
0: बहुत पहले की बात हो रही है. दूसरे आदमी से बात की थी ना, मुझे कैसे पता होगा, मुझसे तो पहली दफा ही बात हो रही है ना.
4: आपके साथ तो
0: पहली दफा ही हो रही है. सही है, सही है जुनैद. तो क्या कहना चाहेंगे भाई, किसी और की जिंदगी मिल गई आपको एक दिन के लिए, तो किसकी जिंदगी?
4: जिंदगी गुजारने का दिल कर रहे हैं.
0: अच्छा, ओके, सही है.
4: क्योंकि उसी की तरह क्रिकेटर बन के बहुत अच्छा प्लेयर भी है, इंसान भी अच्छा है.
0: ओके,
4: उसी की तरह बस एक बार चांस मिले ना.
0: हाँ, तो बनना चाहेंगे. चलिए सही है। और बताएं भाई, और क्या कहना चाहेंगे जुनैद, क्या करते हैं आप?
5: पेंटिंग ना,
4: बस हमें

0: इधर जॉब वगैरह करते हैं इधर उधर, फिर ड्राइविंग वगैरह, मजदूरी कभी इधर कभी उधर.
1: अच्छा अच्छा, चले गुड, अच्छी गुजर रही है.
0: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जो भी है जैसे भी.
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल शुक्र करना चाहिए.
0: आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है मैडम?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक गुजर रही है.
0: चलो अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी को चाहिए कि हर वक्त बस अच्छी जिंदगी गुजारे, सबको खुश रखे, किसी का दिल ना दुखाए.
1: और भाई कहाँ से हैं आप, कहाँ कौन सा शहर?
0: इधर या पाकिस्तान?
1: पाकिस्तान.

0: क्या देने बात, चल कॉल करते FM 107 पे।
1: सही है, ठीक है, तो फिर चलें, आपको हमारी याद आती रहे और आप कॉल करते रहे, हम ये चाहेंगे। जुनेद अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होती है आपसे, ठीक है?
0: ओके जी मैडम,
1: ओके भाई, थैंक यू, आपका आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। राइट जी, तो हमने आपसे सवाल किया किसी और की जिंदगी अगर गुजारने का मौका मिले तो किसकी जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मावश मैम कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, और अगर मुझे एक दिन के लिए पाकिस्तानी वजीर आजम बना दिया जाए तो मैं इस्लामी कानून नाफिज कर दूंगा, बाकी बस एक गाने की फरमाइश है। ओके ठीक है, मुझे कुछ हंसी आई है, एक ही जुमले में दो बातें अलग अलग है। राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना है तेरे इश्क में नाचेंगे। अच्छा जी, चलें चला देंगे थोड़ी देर में। और इसके अलावा जो है मेरे पास मैसेज है किसका, पहले मैं ज़रा निकाल लूँ, उसके बाद फिर ना चलाती हूँ। और नाम इनका सरदार था ना, आई थिंक, हाँ। और इसके साथ जसविंदर सिंह कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, और आपका गाना, आप यकीन करें जसविंदर सिंह, आप यकीन करें कि आपने, आपका मैसेज मैंने देखा, बाद में निकाला हुआ पहले था, जैसे ही मैंने देखा जसविंदर सिंह काला लिखा हुआ ऊपर से, तो उसी वक्त मैंने गाना निकाल के रख लिया था, और अब चलेगा थोड़ी देर के बाद, बस आप का चलना है, पहले एक चलेगा फिर उसके बाद दूसरा वाला जो गाना होगा इस ब्रेक में वो आप ही का चलेगा, पानी दा बुलबुला, ठीक है, पक्का। तो ये तो चलने वाला है, और इसके साथ ही हमारे पास मैसेजेस और भी हैं, लेकिन पहले ऐसा करते हैं कि सॉन्ग की तरफ चलते हैं। सॉन्ग सुने आपके लिए बैक टू बैक दो सॉन्ग हैं, एक तो है दिल है तुम्हारा, दूसरा चलेगा पानी दा बुलबुला, खास तौर पर जसविंदर सिंह काला के लिए। इंजॉय कीजिए, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: Number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें. हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
5: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट.
4: गेम ऑन,
5: वॉल्यूम अप.
4: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
5: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन.
4: सुनिए समर स्पोर्ट्स Only on FM 107, Dil Se Desi. दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है. अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है. हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए. अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें. स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस

वायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है। आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

0: राइट राइट पानी दा बुलबुला ये ट्रैक आपने सुना समर मॉर्निंग आप सुन रहे हैं जबरदस्त ट्रैक और मेरा पर्सनली फेवरेट है ये वाला गाना काफी अरसे से मैंने अभी देखा पिछले कुछ अरसे पहले कि बेसिकली पानी दा बुलबुला जो है ना ये तो अभी अबरार ने गाया है इससे पहले ये एक और सिंगर होते थे उन्होंने गाया था और ये एक तरह से कहा जा सकता है कि पानी दा बुलबुला पाकिस्तान का पहला ऑफिशियली रैप सॉन्ग था तो ये बड़ा जबरदस्त गाना है बहुत ही मजेदार सा गाना है फिर जी आ जाते हैं एक अपडेट की तरफ और उसके बाद आपके मैसेजेस हैं काफी सारे वो शामिल करती हूं तो आपको बताते चलें कि पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी इजराइल ने कतर साइंटिफिक क्लब के ताउन से फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का पांचवा एडिशन शुरू कर दिया है और यह प्रोग्राम 4 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगा जिसमें सेकेंडरी स्कूल के 40 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं और प्रोग्राम का जो मकसद है वो स्टूडेंट्स में इंजीनियरिंग के शोबे के लिए दिलचस्पी पैदा करना है और उसके साथ ही उन्हें फ्यूचर वर्कफोर्स की जरूरियात के मुताबिक प्रैक्टिकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स देना है आजकल के मुताबिक प्रोग्राम में क्लासरूम लर्निंग के साथ फील्ड विजिट्स भी शामिल हैं जहां स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को करीब से देखेंगे और इस दौरान उनकी लॉजिकल थिंकिंग इनोवेशन टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी डेवलप किया जाएगा और प्रोग्राम की कामयाबी की मिसाल पिछले साल की जो पार्टिसिपेंट हैं शाहद अहमद अल सुलेदी जिन्होंने स्मार्ट कंस्ट्रक्शन सेफ्टी हेलमेट तैयार करके कुवैत इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ इन्वेंशंस में गोल्ड मेडल जीता था जबरदस्त और पहले हफ्ते में स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट GIS टेक्नोलॉजी सर्विंग और इसके साथ ही ड्रोन एप्लीकेशन क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एसेट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल वर्कशॉप अटेंड करेंगे और दूसरे हफ्ते में कतर साइंटिफिक क्लब में टीम्स की सूरत में स्टूडेंट्स जो है इनोवेटिव प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जो कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी एनर्जी एफिशिएंसी रोड डिफेक्ट्स की पहचान सीवरेज सिस्टम के बेहतर इस्तेमाल स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसे जो मसाइल हैं उनको उनका हल पेश करेंगे और प्रोग्राम 16 जुलाई को क्लोजिंग सेरेमनी के साथ इख्तिताम पजीर होगा जहां स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट जजेस के सामने पेश करेंगे और बेहतरीन टीम्स को अवार्ड दिए जाएंगे तो ये है जबरदस्त और इसके साथ ही हमारे साथ कॉलर हैं पहले कॉलर लेते हैं फिर मैसेजेस पढ़ते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: जी खादिम भाई क्या हाल है
1: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉल की वजह से आपने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया
0: हाँ कैसे अंदाजा हुआ
1: मैं समझ गया माशाल्लाह बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही थी माशाल्लाह
0: जी
1: और सब खैरियत
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और खादिम भाई आपको मौका मिले एक दिन किसी और की जिंदगी जीने का तो वो कौन होगा
1: एक दिन किसी और की जिंदगी जीने का
0: कोई प्रोफेशन वाइज या कोई शख्सियत भी अगर आपके जहन में है कि जैसे कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर भाई ने कहा फॉरेस्ट ऑफिसर किसी ने कहा जज तो आप क्या बनना चाहेंगे
1: वैसे बचपन से मुझे जर्नलिस्ट बनने का बहुत शौक था जर्नलिज्म में जाने का बहुत शौक था और वो पूरी नहीं हुई वो शौक और एक रेडियो में जाने का बहुत ज्यादा शौक था मैं बहुत कोशिश किया था पेशावर रेडियो स्टेशन पे जाने के लिए लेकिन वो शौक अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक ख्वाहिश थी वो इधर FM 107 ने पूरी की हुई है 3-4 बार ये अल्हम्दुलिल्लाह
0: तो
1: एक मतलब ये कि जर्नलिज्म में मैंने जाना बहुत ऐसे बहुत कोशिश की हद तक और वो पूरी नहीं हुई लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा इंशाल्लाह वो पूरा करने वाला है
0: इंशाल्लाह जबरदस्त ये तो बड़ी अच्छी बात है बहुत ही आला
1: इसलिए कि ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि उनके बच्चे जो है वो जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो वो उनके बच्चे

0: भी, यानी बहुत कम होता है कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं और या इंजीनियर है तो इनके बच्चे इंजीनियर बनते हैं. लेकिन वो वजह क्या है, या अगर बाप वालिद साहब चाहे कि मैं अपने बेटे को ये खुद डॉक्टर बनना चाहता था, मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, तो ऐसे बहुत कम मौके होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं. लेकिन मेरे बेटे ने एक बात कही थी कि मैंने ना डॉक्टर बनना है ना कुछ और, मैंने सिर्फ एक ये है कि जर्नलिज्म में मैंने जाना है अपनी बाबा की ख्वाहिश पूरी.
1: हाय हाय जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह. तो अब ये ख्वाहिश पूरी कर रहा है
0: और ये दो चार मिनट होते हैं, वैसे भी कॉल जो है वो लंबी नहीं करनी चाहिए.
1: बहुत शुक्रिया खादिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी. तो हमारे साथ खादिम भाई और बेटे को जर्नलिस्ट बना रहे, खुद जर्नलिस्ट बनने का शौक था, तो ये हो गया भाई सिलसिला. चले जी, इसके साथ ही आपके मैसेज की तरफ आ जाती हूँ. शहजादा सलीम मैम कॉल करना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर. और इसके साथ ही कॉल एक और आ गई. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो
2: हेलो
1: जी, कौन?
2: आवाज आ रही मैडम जी मेरी?
1: जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज.
2: हाँ
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैडम आपका, मैडम आपका आज का किस टॉपिक पर बात हो रही है?
1: बेसिकली आज हम पूछा है मैंने कि अगर किसी और की जिंदगी गुजारने का मौका मिले एक दिन के लिए, तो क्या किसकी जिंदगी गुजारना चाहेंगे और क्यों?
2: मेरा नाम है जसविंदर सिंह काला. मैं अपना नाम बता रहा
1: हूं. जसविंदर सिंह काला बात कर रहे हैं. गाना सुन लिया?
2: हाँ जी हाँ जी, गाना सुन लिया जी. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी.
1: जी जी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा सुनते रहते हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
2: नहीं आपका प्रोग्राम सुनते हैं, लेकिन जब 4 बजे का टाइम होता ना शाम का, उस टाइम हम नहीं सुन पाते थे. सुबह तो सुनते सुनते आपका, तो सुनते सुनते प्रोग्राम कभी भी नहीं छोड़ा हमने. और मैसेज भी हमारा आता ही आता है.
1: जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही. जी जी
2: बस वो जो 4 बजे का टाइम होता, थोड़ा सोने का टाइम होता था, उस टाइम नहीं सुन पाते थे.
1: अच्छा,
2: लेकिन सुबह का तो हम सुनते सुनते, सुबह का 2 बजे तक सब प्रोग्राम सुनते है.
1: सही सही,
2: 2 बजे तक.
1: सही सही, चले अब देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा, ये कुछ पता नहीं है.
2: अच्छा जी, अभी अपने में आपको, आपका जो सवाल था एक दिन की जिंदगी है जी.
1: हाँ.
2: अच्छा मैडम जी, मैं शेख तमीम बनना चाहूंगा जी.
1: हाय अच्छा, ओके सही है. अब मैं ये नहीं पूछूंगी क्यों, क्योंकि सबको पता है.
2: नहीं नहीं, बताना चाहूंगा दुनिया को भी, बादशाह हो तो ऐसा हो.
1: हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जबरदस्त जबरदस्त.
2: अगर मौका मिले तो मैं एक दिन के लिए शेख तमीम वाली जिंदगी जीना चाहूंगा.
1: हाँ सही हो गया. अच्छा एक मिनट जसविंदर सिंह काला, आप हमारे साथ होल्ड पे रहें, क्योंकि हमारा हो गया जिंगल का टाइम.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: राइट, 8:02 तकरीबन 2 मिनट, और हमारे साथ जसविंदर सिंह काला जी। जसविंदर सिंह काला,
3: हाँ जी, जस्ट मिनट, हाँ
2: जी जी जी जी, सॉरी आपको इंतजार करवाया जी। और क्या कहना चाहेंगे?
3: नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मैंने जो आपका जिंगल है बहुत बहुत खूबसूरत है, सुनने वाला
2: तो वो भी आपने इंजॉय किया?
3: हाँ जी भाई, किया।

0: पहली बार मैं रेडियो में सुना है, आपने लाइव सुना जो फोन के अंदर सुना है।
1: अच्छा अच्छा सही है सही है। अभी अच्छा मैंने कुछ दिन पहले हाँ हाँ क्या कहेंगे
0: करो आप अपनी बात मुकम्मल करो।
1: हाँ मैं कह रही थी कि कुछ दिन पहले मैंने सरवर भाई के शो में पहली दफा कॉल की थी ना रेडियो पे, तो मुझे पहली दफा एक्सपीरियंस हुआ कि ओके मतलब ऐसे आवाज आ रही होती है, ये हो रहा होता है, तो अब मैं रिलेट कर सकती हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे आप लोग सुन रहे होते हो।
0: उस दिन मैंने आपकी कॉल सुनी थी।
1: अच्छा अच्छा।
0: लेकिन वो जो आंसर मैंने सही दिया था, लेकिन उसने ना मेरा मस्जिद पूरा नहीं बढ़ा जाने।
1: आए हाय अच्छा क्या आंसर था वैसे? आंसर क्या था मुझे नहीं पता चल सका फिर उसके बाद।
0: वो तो गधों के बारे में पूछ रहे थे ना।
1: उन्होंने कहा था वो क्या था कि मतलब एक नाबीना है, एक की टांग नहीं है, एक का कुछ और है, तो ऐसे कुछ सवाल था। तो
0: एक एक की उम्र 7 साल है, एक की 10 साल है, एक की 11 साल उम्र है।
1: अच्छा अच्छा।
0: इसमें इसमें जो पागल गधा कौन सा है, ऐसा कोई सवाल था जाने।
1: हाँ नहीं उसमें कुछ आंखों का और उसका भी जिक्र था, कुछ ऐसा वाला जिक्र भी था।
0: वो दूसरा सवाल था, अभी मैं भी भूल गया जाने वो अभी मैं भी भूल गया
1: क्योंकि मुझे याद पड़ता है मैंने जवाब दिया था। हाँ मैंने जवाब उस पे दिया था, मैंने कहा था कि वो जो जिसको
0: जो मैं उसको जो जवाब दिया ना वो बाद में मेरा मैसेज पढ़ा, लेकिन उसने जहाँ पर मेरा सवाल था वहाँ पर उसने मेरा मैसेज रोक दिया।
1: हाँ सरवर भाई आपने ऐसा क्यों किया पूछेंगे उनसे।
0: फिर बाद में उसने आंसर दे दिया, तो आंसर देखे कैसे वो।
1: अच्छा अच्छा सही सही। नहीं मैंने सुना नहीं था उसके बाद।
0: आपने नंबर 2 बोला था लेकिन वो जवाब था 1 नंबर वाला जाने।
1: आए अच्छा अच्छा अच्छा सही सही ठीक हो गया ठीक हो गया। चलें जी गुड जी चलें जसवंत सिंह का।
0: और प्रोग्राम बने आपका सुनते रहते हैं ऐसे ऐसे बने। अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप लोग, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होता है।
1: चलें भाई बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपकी आपकी बातें भी सुनने वाली होती है।
1: बहुत शुक्रिया आपको अच्छा लगता था।
0: प्रोग्राम अच्छे होते हैं
1: जी जी जी।
0: बस गाने भी आप अच्छे लगा देती है और जो हम बोलते हैं तो हम कभी कभी कोशिश करते हैं। मैंने जो जितने भी पुराने लिख रहे हैं ना वो अगर वो भी आपके प्रोग्राम में कॉल करे तो बहुत बहुत अच्छी बात
1: हाँ,
0: है। सारे पुराने लिखने और भी नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं।
1: बहुत कम आ रहे हैं हाँ सही बात है। बहुत सारे लोग तो शायद इधर उधर चले जा चुके हैं, कुछ ऐसा है सिलसिला।
0: नहीं इधर है बेबी, जैसे अपने गाबा साहब नहीं आ रहे, सुबह के टाइम में बिजी होते हैं तो वो भी नहीं आ रहे, और भी काफी आदमी है जो नहीं आ रहे, इधर ही होते हैं।
1: अच्छा,
0: आपको
1: अच्छा।
0: मोहम्मद फरोज अली वो भी कतर में नहीं आ रहे अभी, लियाकत अली वो भी कतर में नहीं आ रहे अभी। गुलजार भट्ट कभी कभी आ जाते हैं।
1: हाँ, वो आते हैं।
0: और अमजद कबाल तो चलो पाकिस्तान चल गए, वो भी मैसेज कर देते हैं। कल मेरी बात हुई
1: अमजद कबाल से,
0: बात हुई जाने।
1: अच्छा तबीयत ठीक है।
0: हाँ ठीक है ठीक है ठीक
1: है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: बाकी जो आपको प्रॉब्लम होता है बाकी ठीक है, बस ज्यादा हो रहा था ठीक ठाक है, बढ़िया है।
1: चलें जी बहुत
0: शुक्रिया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ मैडम जी ना, ना मेरा इधर फैमिली आया, तीन बार मेरा फैमिली आ चुका है कतर में इधर, और मेरा फादर भी आया था इस बार जाने। तो मेरे फादर है ना तकरीबन कोई 20 कंट्री घूमी मेरे फादर ने, उसमें इंग्लैंड भी आता है, जर्मन भी आता है, बाकी गल्फ पूरा आता है जाने, इराक भी आता है, अपना जो दुबई हो गया, बहरीन हो गया, सब आता है। लेकिन वो कतर पहली बार आए थे जाने, कतर उन्होंने नहीं देखा था जाने। तो वो बोले मैंने जितने भी कंट्रियां देखी ना सबसे खूबसूरत कतर है, वो एक नंबर वोट दे गए कतर को जी।
1: हाँ खूबसूरत भी है और वैसे उससे हटकर भी ना मतलब कतर में बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सी खूबियां
0: जने वो देख के बहुत खुश हुए थे। मैं सबको बोलता हूँ अगर यार आपके माँ बाप अगर सही सलामत तो उनको यार एक बार कतर जरूर दिखाओ जी।
1: जबरदस्त जबरदस्त
0: जने मेरे को सबसे जाने ज्यादा खुशी मेरे को हुई जब अपने मैं फादर को कतर खबर खा रहा तो मेरे दिल को बहुत खुशी मिली जानी भी। सब कुछ काम करना चाहिए यार, आपने जो अपने माँ बाप है उनको एक बार कतर जरूर दिखाओ जी। देखने वाली कंट्री है।
1: सही बात है बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही।
0: बस जी बस मेरी बात मुकम्मल हो गई, आप दूसरी कॉल ले लो।
1: चले जी बहुत शुक्रिया भाई, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा।
0: मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद आपके साथ मेरी बात हुई।
1: बिल्कुल
0: एक साल ही हो गया शायद जी।
1: हाँ मुझे तो लग रहा है इससे भी ज्यादा हो गया।
0: बहुत अच्छा लगा बात करके जी। ओके अल्लाह ताला आपको जी अस्सलाम वालेकुम।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई और अल्लाह ताला आपको भी बहुत बहुत खुश रखे। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। राइट जी, तो हमारे साथ जसविंदर सिंह काला और उसके साथ ही आपके मैसेजेस हैं, तो मैसेजेस शामिल करती हूँ मैं। मुमताज़ अहमद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मामशान मैम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम है और मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहूँगा। वो वाला जज नहीं जो रिश्वत लेके काम करे, वो ये जो अदालत में झूठी गवाही देते हैं, उन्हें पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो जिसके ऊपर क्या चल रहा है केस चल रहा है, अच्छा उसको बाद में देखेंगे झूठी गवाही वाले।

0: पत्नी को लंबी सजा दूंगा ताकि दूसरा आदमी किसी और को झूठी किसी और के लिए झूठी गवाही देने ना जाए। क्योंकि मामूश मैम अभी इतना लोग अदालत में झूठ बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मुमताज अहमद वाकई ऐसे ही। और अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूं, मैं भी अच्छी हूं, आप बताएं। और इसके साथ एक और कॉलर है। अच्छा बस एक दो मैसेज और पढ़ दूं। सैयद भाई का मैसेज और कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैडम, यस्टरडे आई सॉ लाइक इन द मॉल इट्स That you, नहीं मैं तो कल कहीं पर भी नहीं गई, कहीं किसी भी मॉल नहीं गई। और इसके साथ आई सॉ लाइक यू से डूइंग शॉपिंग एंड देन सिटिंग इन लैंड क्रूजर। नहीं नहीं नहीं, मैं कल कहीं पर भी नहीं गई, कल ऐसा कुछ इत्तेफाक नहीं हुआ किसी और को देखा होगा आपने। और इसके साथ ही मैम, अस्सलाम वालेकुम मावश खान मैम, उम्मीद है आप ठीक होंगी। अली हमजा बात कर रहा हूँ, टॉपिक बहुत अच्छा है। मुझे अगर एक दिन के लिए किसी की लाइफ में पास में जाऊँगा तो हज़रत उमर जैसा बनना चाहूँगा। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा अब आप किस जैसी जिंदगी गुजारना चाहेंगे, कोई प्रोफेशन, कोई शख्स हो सकता है तो वैसी, मतलब एक दिन के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ?
1: मैं आतिफ बात कर रहा हूँ।
0: कौन बात कर रहे?
1: आतिफ। आतिफ,
0: आतिफ कैसे हैं आतिफ?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और बताएं आतिफ, क्या चल रहा था अभी, क्या हो रहा था?
1: बस आपकी एफएम रेडियो सुन रहा था।
0: रेडियो सुन रहे थे, सही सही। और पहली दफा बात हो रही है मेरी आपसे?
1: जी मैम, आपसे पहली दफा हो रही है, लेकिन सर्वर पर शो में कभी कभी कॉल करता हूँ।
0: हाँ सही सही, गुड, जबरदस्त। तो चलें वेलकम कहूंगी मैं अपने शो में आपको सबसे पहले तो। और ये बताएं भाई, क्या सवाल सुना हमारा आज का?
1: जी जी मैम, आप सुनाया सवाल, लेकिन मैंने ऐसी ख्वाहिश सुनी नहीं थी, लेकिन हर बंदे का मैम अपना एक वो चलता है, मतलब टॉप लाइफ चलता है। लेकिन आप प्रोफेशन की अगर बात करें, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, अभी भी रिसेंट खेल रहा हूँ।
0: अच्छा।
1: मैं देखना चाहती हूँ कि क्रिकेटर की लाइफ कैसी होती है, लेकिन मुझे बहुत शौक है, ड्रीम है।
0: तो क्रिकेटर की कोई स्पेसिफिक, कोई खास नाम जो, मतलब जो आपको ज्यादा इंस्पायर करता हो तो उसकी तरह की लाइफ है कुछ?
1: विराट कोहली।
0: हाँ विराट कोहली, सही है सही है। तो विराट कोहली जैसी लाइफ एक दिन के लिए गुजारना चाहेंगे, राइट?
1: मैम लाइफ की नहीं, मैम प्रोफेशन, मतलब पसंद है मुझे क्रिकेटर, मैं अपना देखना चाहती हूँ,
0: मतलब उसकी तरह खेलना चाहेंगे एक दिन, राइट?
1: उसके तरह कोई नाम कमाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैम वो बहुत अच्छा प्लेयर है।
0: बिल्कुल सही, विराट कोहली की तरह, सही हो गया। और बताएं भाई, और क्या कहना चाहेंगे आते भाई?
1: हम पूछिए, हम बताएंगे,
0: मतलब मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। तो चले, अच्छा लगा आपसे बात करके आते, और कॉल करते रहा करें, ठीक है? चले बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। रे जी, तो हमारे साथ आतिफ थे, और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं म्यूजिकल ट्रैक की तरफ, वापस आते हैं, सुनते रहे एफएम 107। अच्छा कॉल्स आ रही हैं, चलो भाई ले ही लेते हैं पहले कॉल, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: नहीं नहीं बताऊंगा।
0: नहीं बताएंगे, बिल्कुल ही नहीं बताएंगे। अच्छा डेली मैसेज आ रही पंसारी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं भाई, क्या हाल चाल है? अच्छे हैं, गुड, जबरदस्त। अच्छा आपकी आवाज जो है ना, बहुत सारे लोग हैं आपकी आवाज वाले, इसलिए मैं शायद गेस नहीं कर पाऊंगी, आपकी आवाज मिलती जुलती आवाज है। हाँ ठीक हो गया। अच्छा तो आरिफ ये बताएं भाई कि किस जैसी जिंदगी और क्यों?
2: मैं जैसा वैसे ही अच्छा।
0: वैसे ही किसी किसी की जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको भी नहीं है?
2: अपना जिंदगी में इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है, दूसरा का जिंदगी इंटरेस्ट लेके क्या फायदा।
0: अरे कोई भी, मतलब शो बिज, सिंगर, ये वो, कुछ भी नहीं?
2: नहीं कोई
0: नहीं, आप बहुत अच्छा। जबरदस्त जबरदस्त, कनाद की बेहतरीन मिसाल आरिफ अंसारी। अच्छा जबरदस्त। चले ये भी अच्छा है भाई, गुड है,
2: पहले इनको खुद से प्यार करना चाहिए ना।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और कुछ कहना है आरिफ, ये वरना हमारे साथ एक और कॉलर भी आ गए हैं, तो उनको हम मौका दें, या कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही, चलें चलें ठीक है आरिफ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो एक कॉलर और, फिर फौरन से गाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।

Mirë të rajt, welcome back, up sun rin, his summer morning, vidar që më vëshkan, orik dhe fapin me aga i hon, mire pas mesedis për më gjut, hen, urske sati kuqë sports updates mi hen, të pehle vo, bëtati qëllu me ampo, or FIFA ke vali se pat kërin të World Cup ki round of 16 me tournament ka sëpse bëra upset dekhne ko mila, jo ke Norway ne Brazil ko 2-1 se hara dhe, Norway ki tërf se Erling Haaland ne dono goals score ki, or apni team ko quarter finals me pahuncha dhe, jab ke 5 mertaba ki world champion Brazil टूर्नामेंट से बाहर हो गई है तो ये जो है ना वो खबर थी मेरे पास स्पोर्ट्स के हवाले से और इसके अलावा यहाँ एक और भी खबर थी वो मतलब स्पोर्ट्स की नहीं है लेकिन हाँ मवानी कतर ने 2026 के पहले आधे साल की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की है उसको बताया है उसको जारी करते हुए कि मुल्क के कमर्शियल पोर्ट्स ने तकरीबन को 4,93,696 हाँ स्टैंडर्ड कंटेनर्स हैंडल किए अच्छा खुशी मुझे इस बात पे हो रही है कि मैंने गिनती कितनी प्रॉपरली बिल्कुल सही मैंने बताई है अच्छा जो कतर के मैरीटाइम ट्रेड और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की मुस्तहकम तरक्की को जाहिर करता है और जनवरी से जून 2026 के दरमियान पोर्ट्स ने तकरीबन 6,44,768 टन जनरल और बल्क कार्गो जो है वो यहाँ पे आए तकरीबन व्हीकल्स आए हैं हैवी इक्विपमेंट्स आए हैं और भी बहुत कुछ है तो इन सब चीज़ों को हैंडल किया हमद पोर्ट ने मुल्क के बुनियादी ट्रेड गेटवे के तौर पे अपना अहम किरदार जारी रखा है और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स फूड सिक्योरिटी और रीजनल सप्लाई चेन्स को मजबूत साबित किया है और सपोर्ट किया है चले दी गुड जबरदस्त और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की तरफ और देखते हैं कि किसका है मेरे पास Right, जी सलाम सलाम माही मैम हैप्पी मंडे मॉर्निंग वेरी नाइस योर शो नाइस टॉपिक मैम मैं तो किसी आरजे के साथ दिन बताना चाहूँगा ओके और ये सुरजीत कहते हैं कि मैम मैं अलखोर के पास हूँ और एफ एम 107 की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है अच्छा ऐसा क्यों देखते हैं और इसके साथ ही हैं मैडम कॉल नंबर सलाम महावश मैम योर प्रोग्राम गोइंग गुड प्लीज़ कॉल मी अच्छा जी कॉल मैं आपको कर लेती हूँ जल्दी से फटाफट मिला लेते हैं आपको कॉल फिर उसके बाद बस अब गेम शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में तो फिर हम गेम खेलेंगे अस्सलाम वालेकुम अभी तो जा रही है कॉल जा रही है उठा लें जल्दी से तब तक मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ आपके आगे अच्छा ये थे कौन इन्होंने नाम भी नहीं लिखा था अकलमंद गधा ये यानी नसीम ओके और असमत आफरीदी का कहना है अस्सलाम वालेकुम आपी एंड गुड मॉर्निंग कतर और मुझे अगर मौका मिला ना

0: सिर्फ एक दिन के लिए, तो मैं उन शख्सियतों की लाइफ को चूज करूंगा जो सबसे ज्यादा इग्नोर होते हैं. और आई थिंक हमारी लाइफ में अगर हमारे लिए सबसे ज्यादा कोई सेक्रीफाइसेस करते हैं तो वो शख्सियात हैं, और वो हैं हमारी मदर्स एंड वाइफ्स. अच्छा, और मुझे अगर मौका मिले तो मैं एक दिन के लिए अपनी माँ या बीवी की जिंदगी जीना चाहूंगा. मैं देखना चाहूंगा कि एक औरत स्पेशली वो माँ बन जाए तो एक साथ कितने मुहाजों पर लड़ती है, और हमारे लिए, और हम सबसे ज्यादा टारगेट भी अपनी वाइफ्स को करते हैं. और मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें दूसरों की जिंदगियों में सिर्फ झांकना अच्छा लगता है, उनकी जिंदगी जीने से हम डर रहे होते हैं अंदर से, क्योंकि किसी और की आजमाइश हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. ओए होए होए, क्या बात है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम अस्सलाम.
0: जी खलील भाई, क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
0: जबरदस्त. अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं भाई, कहाँ थे? कुछ दिन से गायब थे.
1: नहीं नहीं, बस आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ. आज दिल का बात करूँ, मैंने कहा चलो कर लेते हैं फोन.
0: चलें जी, गुड हो गया, अच्छा हो गया खलील भाई. और बताएं, अगर किसी और की जिंदगी जीने का मौका मिला तो किसकी जिंदगी जिएंगे और क्यों?
1: ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया. वैसे जो मैं देखता हूँ, मेरी तो फैमिली मेडिकल की लाइन से मुंसलिक है, तो मैं जो एक दिन गुजारना चाहूंगा ना, मेडिकल स्टाफ जो होता है ना, ये नर्सिंग स्टाफ, ये इनकी जिंदगी होती है. इस तरह ये पेशेंट्स के साथ सरवाइव कर रहे होते हैं ना. डॉक्टर तो एक अलग चीज है, पर वो लोग तो बिल्कुल पेशेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं. और जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं उनको डील करना, फिर उनके अटेंडेंट्स को जो लोग डील करते हैं उनको देखना, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल. इवन कराची जैसे शहर में मैंने तो झगड़े लड़ाइयां तक देखी
0: है. यही वाकई हकीकत है.
1: वो कहते हैं ये पेशेंट एक्सपायर क्यों भाई, वो अल्लाह के हाथ में, उनके हाथ में थोड़ी है.
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी काफी ना लोगों के कमेंट्स वगैरह, अभी एक ड्रामा चल रहा है ना डॉक्टर बहू, उसमें थोड़ा दिखाया है कि वो डॉक्टर्स वगैरह का इस तरह का है, उसको लेके काफी लोगों ने, अब देखिए हर जगह पे ना हर तरह के लोग होते हैं, और ये होते होंगे लेकिन बहुत ही कम होते हैं. यूजली जो हमारी यहाँ जो डॉक्टर्स हैं खासतौर पर, उनकी यही कि इतनी इतनी पढ़ाई जब पूरी होती है तो कितने मतलब महंगी पढ़ाई हो गई है MBBS की, और उसके बाद उनको जो सैलरीज मिलती हैं वो वाकई कुछ ना होने के बराबर है, उससे ज़्यादा बहुत सारे लोग कमा रहे होते हैं. लेकिन फिर भी मतलब एक पैशन होता है, एक जज्बा होता है जिसकी वजह से इंसान डॉक्टर बनता है. तो ख्याल करना चाहिए, आप हमले करते हैं ये सब कुछ. एक अभी एक ड्रामा आया था पिछले साल की बात होगी, नदान नाम था उसमें ना, नदान नाम था उसका. तो उसमें दो मौजूद के ऊपर उन्होंने चीज़ें मतलब ने की थी, एक तो ड्रग डीलिंग को कवर किया था, और उसके अलावा ये डॉक्टर के साथ भी क्या कुछ होता है अगर किसी पेशेंट के साथ कुछ हो जाए, कैसे लोग पथराव करते हैं, खासतौर पर लेडी डॉक्टर्स के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है. तो उस पर बड़ी अच्छी उन्होंने वो पूरा मैसेज दिया था. तो हकीकत है ना, ऐसे ही
1: अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं ना.
0: हाँ एग्जैक्टली, लेकिन डॉक्टर्स आपको ज्यादातर अच्छे ही मिलेंगे. वो जज्बा होता है ना, जब भी तो डॉक्टर बनते हैं खिदमत का जज्बा होता है उनके अंदर. ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जी तो आप भाई ये मेडिकल प्रोफेशन,
1: हाँ मतलब बिल्कुल, एक दिन जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टफ लाइफ होती है इन लोगों की, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं पेशेंट्स के साथ, जिस तरह हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा.
0: हाँ,
1: तो बाकी मैं तो चाहूंगा कि इस तरह एक दिन गुजारूं. बहुत अच्छा लगता है बंदे को, किसी के काम आना बड़ी बात होती है.
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात है.
1: इस दौर में मतलब परस्त दौर में, जब कोई किसी का नहीं है, आप किसी के लिए छोटा सा भी काम करते हैं ना, तो इवन आप परिंदों के लिए पानी रख दिया करें इतनी गर्मी में, बड़ी नेकी का काम है ये.
0: सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. चलें जी खलील भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बस हमारा गेम टाइम शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है?
1: इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया.
0: ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा बहुत बहुत.
1: अल्लाह
0: हाफिज़. राइट जी, तो हमारे साथ है खलील भाई, और बस अब हो गया है टाइम हमारा गेम का. तो हम जो है वो अपने कॉलर्स जो हैं जिन्होंने मुझे कहा है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको दोनों को ले लेते हैं, और फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपना सिलसिला. तो जल्दी से हमारे कॉलर्स आ जाएं, उसके बाद हम शुरू करते हैं. तो आज भी अच्छा, आज थोड़ी सी कोशिश ये कीजिएगा कि थोड़ा ये ध्यान देते हुए गाइएगा, क्योंकि कल मोहम्मद यूसुफ खान ने मुझे थोड़ा बताया था कि एक दो गाने रिपीट हुए हैं, तो कोशिश कीजिएगा रिपीट ना हो, ठीक है? तो चलें जी हम शुरुआत करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.

0: जी दोनों ने साथ साथ जवाब दिया जी
1: किया है ना, दोनों ऑन
0: एयर हैं। हाँ दोनों ऑन एयर हैं। तो हमारे साथ आगे भाई जावेद साहब और शहजादा सलीम, कल की तरह यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे दोनों से, और दोनों ने ही मतलब जो है रजामंदी जाहिर की है, तो हम शुरू करते हैं। जी तो दोनों पहले क्या कहना चाहेंगे एक एक करके?
1: जावेद साहब वेलकम टू द शो, आप पहले शुरू करें आज।
2: सलीम भाई आपकी बड़ी मोहब्बत, और आरजे महवेश खान आपका भी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम आपने जो शुरू किया है। और यार जिस भाई ने कहा है कि रिपीट हुए थे, तो यार हम कोई आपको पता है कि ऑन द स्पॉट करना पड़ता है, तो बर्दाश्त कर लें, कोई मसला नहीं, हिस्सा तो दे रहे हैं
0: हम। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात तो ठीक है। चले तो फिर कौन शुरुआत करेगा सबसे पहले?
2: सलीम भाई आप करेंगे? अच्छा ओके ठीक हो,
1: मैंने किया था।
2: अरे चलिए ठीक है मैं शुरू करता हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। थोड़ा थोड़ा
0: अलिफ अलिफ
1: अलिफ आया
0: जी, अलिफ अभी अलिफ
1: आया,
0: हम नवा अलिफ आया ना?
1: नहीं हम नवाज है ना?
0: नहीं नहीं हम नवा है ना जावेद साहब, हम नवा है ना?
2: हम नवा अलिफ आया,
0: अलिफ आया,
1: अलिफ आया, अलिफ अलिफ तो लगता मुझे हराए के छोड़ेगा
0: जी। अलिफ अलिफ अलिफ
1: मुसाफिर आता है जाता है, आते जाते रस्तों में याद छोड़ जाता है।
0: ये
2: अच्छा ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, हो ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: Alif ka alif mere.
1: Shukriya, shukriya. Shukriya, kya aa gaya?
2: Ye.
1: Ye aa gaya?
2: Haan.
1: Ye. Ye jo mohabbat hai. Iska hai naam. Mehboob ka jo lete hue naam. Mar jaye. मिट जाए होके बदनाम छोड़ो भी रहने दो जाने दो यार ना करेंगे प्यार
2: प्यार रे शहनाज़ सलीम को गाने वैसे याद हैं जैसे मुझे याद होते हैं जी रे
0: सलीम भाई रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए टुडुडु म्यूजिक के साथ
2: तो ये मैं टुडुडु टू से लूं ये कहां से लूं हो जाए ये
1: ये
2: जी ये आ गया
1: याहू टन टन टन याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में जुड़े हम क्या करे रे आजा
2: करे करे नून खुन्ना है ना नून
0: करे नहीं ये ये करे नहीं वो करे आता है
2: करे करे
1: ये आया था लो
2: ये है या नून खुन्ना है
1: रे रे
0: रे अच्छा रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन

0: से कर बैठे करना था इकरार मगर इनकार तुमसे कर बैठे
1: उल्टा कर देते हर दफा कर बैठे ये
2: अच्छा सलीम भाई हार जी तो ना हारे ना हम जीते हम तो मजा ले रहे हैं तो ये आपके लिए है
3: ये दोस्ती

0: तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये दोस्ती जी। तो ये अगेन नहीं छोड़ेंगे, ये यही है। हाँ
2: ये आ गया।
1: हाँ
2: अच्छा अच्छा। गुनगुना रहे हैं भौर खिल रही है, गली गली गली गली गली गली गली गली, गुनगुना रहे हैं भौर खिल रही है गली गली। लाम आ गया।
1: अच्छा ये इंडिया में और पाकिस्तान में अलग अलग तरीके से होता है। हम लोग बिल्कुल आखिरी वाला जो है ना अल्फाबेट लेते हैं, आप पूरा वो लेते हो, है ना। तो कली कली ये।
2: अच्छा
1: ठीक है जी। जावेद साहब ये
0: कहाँ से आ गया?
1: ये
0: हाँ ये क्या क्या हो रहा है ये।
1: हाँ
0: अच्छा वो मतलब गाना वो जो कल गाया सारी राज तो गा सकते ना वो।
1: हाँ हाँ वो गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं। जी जी जी
0: ये दुनिया

0: गया गया, फिर अगेन सलीम भाई, ये
1: या
0: जी जी जी जी जी जी
1: यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ
0: कहाँ राइट सो नून
1: हाँ आ गया, तो नून कहाँ से आ जाता
0: है, नून होता है ना आखिर में
2: नहीं वो सलीम भाई क्या कह रहे हैं,
0: सलीम भाई कह रहे हैं हाँ
2: हाँ मतलब क्या इनसे पूछिए क्या मतलब लास्ट में क्या आते हैं,
0: जैसे हम तो कहाँ हम बिल्कुल लास्ट वो देखते हैं ना अल्फाबेट देखते हैं
1: जिंदगी कल हम कहाँ
0: ये कह रहे हाँ हाँ राइट तो जब भाई डिसाइड करे जी
2: नून आ गया ना फिर
0: नून आया ना नून आया ना हाँ वही मैं कह रही नून आ गया
3: नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए,
2: मैं जरा जल्दी जल्दी करूँ क्योंकि ऑफिस में मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ
0: चली जाए जी तो फिर ये वो ये आ गया जी जी जी जी
1: जावेद भाई
2: जी भाई
1: हाँ यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है, अदाएं तू भी कुछ समझता नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है।
0: हाय हाय हाय ये जावेद भाई को आपने डेडिकेट किया था ये
2: आपने भाई आपने आपने मुझे डेडिकेट किया मैं तो शर्मा गई
1: अच्छा मामिश में
0: जी जी
1: मैं थोड़ा ड्यूटी मेरे ऑन हो गई
0: चले जी चले जी बिल्कुल बिल्कुल जो जाना चाहे जा सकते हैं हम बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं
1: स्पेशल फॉर जावेद भाई
0: चले जी थैंक यू जी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया ट्राई तो जावेद साहब आपका भी ये सेम इशू तो नहीं चल रहा
2: नहीं नहीं मतलब देखे मैं नहीं नहीं मेरे कुछ नहीं मैं तो साइड पे जरा ऑफिस में नो प्रॉब्लम इश्यूज लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आज माशाल्लाह मेरे भाई ना पूरा लगता है लिख के लेके आए
0: लिख के लेकर आए अच्छा किया उन्होंने तो चले कोई जावेद साहब को ज्वाइन करना चाहे तो जल्दी से कॉल कर ले आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे गाने का आपको शौक है कॉल कीजिए और जावेद साहब के साथ शामिल हो जाइए हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम हम कम से कम के लिए हाजिर हो गए हैं जावेद भाई कहा गा तो नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे गाने

0: में आते नहीं है, और खासकर दो बोल गाने पड़े तो फिर जान निकल जाती है, एक तो कुछ ना कुछ कैसा करके कहीं ना कहीं
1: चले नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा खत्म कहाँ हुआ था हमारा, आखिरी ये था ना, ये से गाना है आपको रेस भाई?
0: ये काली काली आंखें गोरे गोरे गाल, चलो बस यही पे खत्म।
1: अच्छा गा रहे हैं आप, अच्छा गा रहे हैं आप, शर्मा रहे हैं लेकिन गाल चले जी लाम
0: चलो लाम पे ही शुरू होता है।
1: हाँ,
0: उनकी उर्दू कमजोर है थोड़ा, वो जो आप बता रहे थे ना उनका अल्फाबेट कमजोर है, वो नहीं समझ पाते हैं, वो जो आप बता रही हैं।
1: नहीं नहीं, वो दोनों दोनों तरीके होते हैं, दोनों तरीके होते हैं रईस भाई, कुछ लोग इस तरह से लेते हैं, कुछ वैसे लेते हैं। खैर जी लाम से, जावेद साहब लाम से।
2: लुटा के राह है मोहब्बत में, हर खुशी मैंने लुटा के राह है मोहब्बत में, हर खुशी मैंने लिया है गम का सहारा, अभी अभी मैंने
1: मैंने ने

0: तेरी कहानी है
1: ये अगेन
2: रईस भाई आपके लिए यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है कभी संग चले कभी रंग चले चलती रहे ये सदा
1: सदा अलिफ
0: एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बारह तेरा तेरा करूँ गिन गिन के इंतजार आ जाओ जरे भाई तुम्हारा इंतजार
1: रईस भाई खुल गए जी रे जावेद भाई
2: रुक जा हो दिल दीवाने सोचो तो मैं जरा बस छोड़ो थोड़ा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है
1: हाँ हाँ बिल्कुल जी जरा तो अलिफ
0: अलिफ
1: जी
0: एक लड़की को देखा था शायद गाना हो चुका है
1: जल्दी से गा ले हाँ जल्दी से क्योंकि वक्त अब बिल्कुल आखिर पे है
0: जैसे खिलता गुलाब जैसे बस चलो मतलब बहुत सी इसमें सब तारीफ है अब हमारे भाई को
1: और आप तारीफ करने के मूड में नहीं तो गुलाब बे से ले लेते हैं बे
0: उनकी आवाज सुनने में अच्छा लगता है
1: जी।
2: नहीं अल्लाह माफ करे आपकी आवाज बहुत अच्छी ऐसा नहीं है बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं
1: लाए हैं जी नून गुना
0: फिर भी कर बैठे पर बैठे
1: चले जी रईस भाई थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया
0: करके हमारा टाइम बस समझ लो खत्म हो रहा था बस
1: चलिए जी
0: बहुत मजा आया जावेद भाई बहुत

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे अब्दुल अजीज अल उबैदली। कतर के नुमाया स्विमर्स में शुमार किए जाते हैं अब्दुल अजीज अल उबैदली, और उन्होंने कई बैनुल अक्वामी कॉम्पिटिशंस में मुल्क की नुमाइंदगी की है। उन्होंने कम उम्र से ही स्विमिंग की ट्रेनिंग शुरू की और लगातार प्रैक्टिस के जरिए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया। अब्दुल अजीज खास तौर पर फ्री स्टाइल और डिस्टेंस इवेंट्स में अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर चुके हैं। उनकी मेहनत, फिटनेस और पानी में बेहतरीन कंट्रोल ने उन्हें दूसरे स्विमर से अलग पहचान दी। कतर के स्पोर्ट्स इदारों और कोचेस की रहनुमाई में उन्होंने रीजनल और एशियन सतह के टूर्नामेंट्स में कीमती तजुर्बा हासिल किया। अब्दुल अजीज का मकसद सिर्फ फर्दी रिकॉर्ड्स बनाना नहीं बल्कि मुल्क के लिए मेडल्स हासिल करना और नए स्विमर्स को इंस्पायर करना भी है। वो हर ट्रेनिंग सेशन में टेक्निक, ब्रीदिंग और एंड्योरेंस को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एनी स्विमर। उनकी डेडिकेशन और प्रोफेशनल रवैया दिखाता है कि कामयाबी मुसलसल मेहनत का नतीजा होता है। दोस्तों, कतर में स्विमिंग की मकबूलियत बढ़ाने में भी उनका अहम हिस्सा रहा है, और उनकी मिसाल देखकर कई नौजवान इस खेल को अपना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

भी जाएं कुर्बान हम सौदा फजाना हिसाब तो कभी किया ही नहीं मेरा खुदा गवाह उसने मेरे गुनाहों का अब तक हिसाब लिया ही नहीं तोहफे तहफ दिखे ये बज़ाहिर पर दिल तो किसी ने दिया ही नहीं मेरी तेरे बगैर जो जिंदगी गुजरी वो काटी है उसे जिया तो नहीं।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम मुफीद इंतखाब और स्नैक्स के बारे में चंद अहम आदात के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि सब्जियां हैं वो हल्की भी होती हैं और गजाइत से भरपूर भी। गाजर, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च जैसी ताज़ा सब्जियां बेहतरीन स्नैक्स हैं। ये कम कैलोरीज के साथ विटामिंस और मादनियात फ्राहम करती हैं। बॉयल एग जो हैं वो मायारी प्रोटीन रखते हैं और उनका एक बेहतरीन जरिया हैं। एक या दो उबले हुए अंडे दिन भर की मसरूफियात के लिए अच्छी तवानाई फ्राहम कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड में ताज़ा सब्जियां, कम चिकनाई वाले चीज़ या उबला हुआ चिकन शामिल करके एक मतवाजन और मज़ेदार स्नैक आप तैयार कर सकते हैं। अब ये कि किन चीज़ों से हम दूर रहें, चिप्स, नीमको है या ज़्यादा नमक वाली अशिया हैं, मीठे मशरूबात हैं, चॉकलेट्स और कैंडीज हैं, क्रीम वाले बिस्किट हैं और केक, ये गजाएँ आर्जी तस्कीन तो देती हैं लेकिन उसके साथ साथ वजन ज्यादा करती हैं और सेहत के मसाइल पैदा करने का सबब बन सकती हैं। हेल्दी स्नैक्स के जो सुनहरे उसूल हैं वो ये कि स्नैक्स की मकदार मुनासिब रखिए, कुदरती और गजाई जो चीज़ें हैं उनको तरजीह दीजिए, पैकशुदा और प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए, स्नैक के साथ पानी पीना मामूल बना लीजिए, खाने को आहिस्ता आहिस्ता बड़े ही सुकून और तहम्मुल से खाइए। और अगर आप डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या वजन के मसाइल का शिकार हैं तो अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे के मुताबिक स्नैक्स का इंतखाब कीजिए। सेहतमंद या हेल्दी स्नैक्स का इंतखाब एक छोटी सी आदत है जो आपकी मजमूई सेहत पर बहुत ही पॉजिटिव असर डालती है। आज ही अपनी खुराक में मुस्बत तब्दीलियाँ लाइए और सेहतमंद जिंदगी की जानिब कदम बढ़ा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, मतवाजन गिजा खाइए और सेहतमंद रहिए।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुश आमदीद एंड वेलकम टू आवर शो कॉल्ड कतर बिजनेस 360। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाज़िया। दोस्तों, इस शो में हम बात करते हैं कतर के तेजी से बढ़ते हुए बिजनेस लैंडस्केप की, और आज के इस एपिसोड में खास बात होने वाली है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, जो ओनर हैं पिस्तेशो रेस्टोरेंट की। उनका सफर, उनका विजन और उनकी सक्सेस स्टोरी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कन्वर्सेशन को। तो हम वेलकम कहना चाहेंगे हमारी बहुत ही कमाल की गेस्ट फारिहा का ऑन FM 107। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत से?
5: वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
4: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमें बताइए कि आपने अपने रेस्टोरेंट की एक नई ब्रांच खोलने का जो आइडिया अडॉप्ट किया, ये कहाँ से किया और क्या कोई खास इंस्पिरेशन थी इसके पीछे?
5: तो कोई खास इंस्पिरेशन तो नहीं थी, लेकिन असल में जो अलसद ब्रांच थी हमारी, उसका काफी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस था हम लोगों को।

0: तो उसके बाद कस्टमर्स की डिमांड भी थी हमारे लिए कि क्या नाम है, आप न्यू लोकेशन पे मतलब खोले हमारे लिए. और जो काफी कस्टमर्स थे हमारे, वो कह रहे थे कि हमारे लिए डिफरेंट लोकेशन पे खोलना है. तो हमने वाकरा एरिया का एक चूज किया एरिया, जहाँ पर हमें पता है कि इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी थोड़ी जरा ज्यादा है. तो हम जा रहे थे कि वहाँ पर भी हमें जो हमारी सर्विसेज है वहाँ पर भी लोगों को मिले. तो बस सिर्फ यही चीज हमारी एक थीम है कि हमने दूसरे ब्रांच, हमने ये वाली चीज सोच के खोली है.
1: अच्छा, जो रेस्टोरेंट की जो इंडस्ट्री है वो अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही चैलेंजिंग इंडस्ट्री है. बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डीलिंग करते हैं, और फिर आपको बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स और बहुत सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना ही पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ और फूड दोनों चीज़ें हैं. तो ऐसे में आपको क्या पहले से गुड एक्सपीरियंस था, आई मीन पाकिस्तान में या इंडिया में आपने पहले रन किए हुए थे रेस्टोरेंट्स, या ऑल ऑफ सडन ही आपने डिसाइड किया कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊं? तो अगर मान लीजिए किसी के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है रेस्टोरेंट का, तो क्या वो भी इस इंडस्ट्री में आ सकता है? और कौन कौन से बेसिक्स प्रीरिक्विजिट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे किसी को भी जब इस इंडस्ट्री में वो एंटर करे?
0: देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप स्टार्टिंग से लेकर आ जाएंगी और आपको सारा एक्सपीरियंस मतलब डे वन से आपको मिल जाएगा. थोड़े से रिस्क होते हैं, और यहाँ पर स्पेशली आपको पता है कि यहाँ पर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है. तो सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर यह है, और हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी वो क्वालिटी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. तो वो चीज है. और मैंने खैर ना इंडिया ना पाकिस्तान कहीं पर भी मेरा कोई एक्सपीरियंस था नहीं. अच्छा. लेकिन ये था कि जो हमारी मेरी जो को पार्टनर है रिजवाना, जो असद वाली ब्रांच में थी, वहाँ उनके साथ रह के मैंने काफी कुछ लर्न किया था. तो उसके बाद ही मैं इधर नेक्स्ट ब्रांच का मैंने मतलब स्टेप लिया था कि मैं इस चीज को फिर मैं आगे रन करूंगी और आगे इस चीज को ऑपरेट करना है. तो काफी सारे चैलेंजेस थे जो मुझे काफी सब कुछ मुझे सामना करना पड़ा, और स्टिल कर रही हूँ. ऐसा नहीं है, हर दिन डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, बट स्टिल कोशिश होती है कि रेस्टोरेंट को स्मूथली चले और कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस मिले.
1: चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात. अच्छा, रेस्टोरेंट का अपना एक थीम होता है, एक खास तरीके की ऑडियंस होती है जिन्हें आप टारगेट कर रही होती हैं. तो आपके रेस्टोरेंट का पर्टिकुलरली क्या कॉन्सेप्ट और क्या थीम है, और आपने इसे किस तरह से डिसाइड किया? कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको जहन में रख के आपने डिसाइड किया?
0: देखिए, जो हमारे जो रेस्टोरेंट की जो थीम है वो काफी मतलब मॉडर्न है और काफी वेलकमिंग भी है, आप इसको वेलकमिंग भी कह सकते हैं. लाइक हमें जो, क्योंकि जो हमारी अलमशाब ब्रांच जो है वो उसके अंदर मतलब हम लोगों को ये चीज़ हमारी थी कि उस जगह उस एरिया पे पर्टिकुलर कोई फाइन डाइन हमारे पास रेस्टोरेंट नहीं था. तो हम लोगों ने उस चीज़ पर रखा ज़्यादा फोकस, हमारा ये चीज़ थी कि लोग आए और उनको क्वालिटी ऑफ फूड के साथ उनको एक एक्सपीरियंस, एक फाइन डाइन एक्सपीरियंस भी हो. तो हमारा जो काफ़ी मतलब इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस था, और हमारा जो रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी मतलब फैमिली फ्रेंडली है. और हमारे जो टारगेटेड है, जो आपके कस्टमर्स जो आप कह सकते हैं, वो यही है कि इंडियन पाकिस्तानी वहाँ पर ज़्यादा है. खैर, वहाँ पर अब लोकल्स भी हैं जो काफ़ी मतलब आते हैं और वो उसको पसंद करते हैं काफ़ी. तो
1: इस तरह का कॉन्सेप्ट है. अच्छा, आजकल फारिया देखा जाए तो डिलीवरी और ऑनलाइन ऑर्डर्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. आप जो है पर्टिकुलरली इस चेंज को कैसे देखती हैं, और आप अपने बिजनेस में से किस तरह से अडॉप्ट आपने किया है?
0: जी, ये बात तो खैर है कि मतलब अब लोग जो है वो ऑनलाइन डिलीवरीज की तरफ ज़्यादा गए हैं कंपैरेटिवली, कि लोग ज़्यादा बाहर निकले, उनको ज़्यादा बेटर ये लगता है कि वो घर बैठे ऑर्डर करें. तो अब ये चीज़ है कि हम लोग ऑर्डर जब प्लेस कर रहे होते हैं, लोग आते हैं हमारा मतलब आप जब डाइनिंग के लिए जाते हैं तो एक से दो चीज़ें आप ऑर्डर कर रहे होते हैं, और हम उनको रेकमेंड भी करते हैं कि आप हमारी ये चीज़ भी ट्राई करें. बट ऑर्डर जब प्लेस होता है तब तो वो उस टाइम पे आपके पास से वो पर्टिकुलर ही ऑर्डर प्लेस किया जा रहा होता है. तो हमारी अब इससे बिजनेस पे इफेक्ट होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो ही पर्टिकुलर ही चीज़ आ रही होती है. लेकिन ये कि लोग हमारे क्या कह सकते हैं कि आजकल का भी ट्रेंड ही ऐसा ही है कि अब लोग ज्यादा कोशिश हो रही होती है लोगों की कि भाई घर पे बैठ के बस फूड को एंजॉय किया जाए.
1: सही कहा आपने, बिल्कुल वहाँ पे तो आप कन्विंस कर सकती हैं, एक अच्छी चीज़ है, और टेम्प्टिंग भी लगती है, लेकिन अब ऑर्डर में तो आप बिल्कुल ही पर्टिकुलर हो जाते हैं. अच्छा,
0: बिल्कुल पर्टिकुलर हो जाते हैं.
1: हाँ, अरे एक चीज आपसे और जानूंगी, मैं हमेशा इस चीज को लेके बहुत ज्यादा इंक्यूजिटिव रही हूँ कि मेन्यू डिजाइन करते वक्त एज ए रेस्टोरेंट ओनर आप लोग किन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं? कि आपको लगता है कि टेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, या आपके हिसाब से प्रेजेंटेशन जो है वो

0: प्रायोरिटी होनी चाहिए या फिर प्राइसिंग और बजटिंग, उस हिसाब से मेन्यू डिसाइड करते हैं?
1: मेन्यू तो देखिए हम लोगों का वही वाली बात है, पहले तो हमें प्राइस एंड बजटिंग की तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि वही बात है अगर आप ज्यादा प्राइस इसमें लगाएंगे तो लोग वैसे भी नहीं आएंगे कि भाई बहुत ही है। ये चीज है कि हम जो है हमारा जो मेन्यू होता है वो यही चीज पर डिसाइड किया जाता है कि हमारा जो कॉस्ट कंट्रोल पे हमें बेहतरीन क्वालिटी और प्रेजेंटेशन पर भी हमारी फोकस की जाती है कि भाई प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी हो, क्योंकि आजकल आपको पता है लोग आते हैं वो कहते हैं कि भाई प्रेजेंटेबल हो फूड, पिक्चर्स दी जाती है, वो आगे से आगे लोग रेकमेंड करते हैं, आगे पोस्ट करते हैं, तो इस तरह से हमारी मार्केटिंग भी होती है एक तरह की, तो इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं।
0: नाइस। अच्छा, एक चीज कही जाती है कि रेस्टोरेंट्स जो हैं उनकी लोकेशंस बहुत मैटर करती हैं, तो आपके ख्याल में लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है एक रेस्टोरेंट की कामयाबी के लिए?
1: लोकेशन एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर हम ऐसी लोकेशन पे रखे हैं जहाँ पर, जिस तरह अभी मैंने आपको जो बताया कि स्टार्टिंग में हमने जो अपनी लोकेशन चूज की थी वो यही चूज की थी क्योंकि वहां पर हमें पता था कि भाई वहां पर इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा है, हमारे टारगेटेड कस्टमर्स भी वही है। तो अगर वहां पर दूसरे डिफरेंट कम्युनिटीज होंगी, क्योंकि हमारा जो बेसिक मेन्यू है वो है ही थोड़ा सा इंडो एशियन कुजीन है, तो हम उन्हीं लोगों को मतलब उन्हीं लोगों को ही हम टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी लोकेशन थोड़ी जरा आउट होगी तो लोग जाएंगे तो, बट हमारी कस्टमर जितनी हमारी मतलब इतने ज्यादा लोग मुझे नहीं लगता कि इतने आएंगे, क्योंकि अगर हमारी थोड़ी सी लोकेशन हमारी उन कस्टमर्स की तरफ नहीं होगी, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो कहते हैं नियर बाय जाना या उनके लिए इजीली एक्सेस होगा, तो वो मेरा ख्याल से वो ज्यादा लोकेशन एक बहुत बहुत बड़ी चीज है जो मैटर करती है। सेंट्रली लोकेटेड आप कह सकते हैं ना कि वो एक ऐसी चीज है कि सबसे नियर भी हो वहाँ पर और लोग जाएं और इजीली अपना फैमिली टाइम एंजॉय करें।
0: बिल्कुल सही कहा। अच्छा फारिया, सोशल मीडिया का दौर है और कहा जाता है कि सोशल मीडिया स्पेशली रेस्टोरेंट्स की और होटल्स की मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा टूल बन चुका है, तो आप किस तरह से देखते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल को, एंड एट द सेम टाइम आपकी खुद की प्रमोशन के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या रहती हैं?
1: सोशल मीडिया तो आजकल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब आजकल हर कोई सोशल मीडिया की ही तरफ जा रहा है और उसी के लिए ही है, क्योंकि हम लोग वही है कि हम सोशल मीडिया पे अपने आप को अपडेट रखते हैं और हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वही होती है कि हम सोशल मीडिया पे ही लाएं लोगों को, क्योंकि और हमारी जो होती है डिफरेंट रेसिपीज को भी हम लेकर आ रहे होते हैं और वो हम सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं कि हमारी ये डिफरेंट रेसिपी न्यू रेसिपीज हैं जो हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं, वो हमारे जो फेसबुक पेज है, जो डिफरेंट इंस्टाग्राम पेज है, हम उस पे लेकर आते हैं ताकि लोग उसको देखकर लोग फिर आते हैं।
0: अच्छा,
1: तो हाँ उसको देखकर लोग फिर आते हैं और फिर आके लोग रेकमेंड करते हैं लोग आके डिफरेंट चीजों पे, मतलब इस तरह से लोग आपके जो सोशल मीडिया का जो दौर है उससे हमें काफी मतलब कह सकते हैं कि आपको मदद मिल गई आपके जो बिजनेस है उसको ग्रोथ के लिए।
0: बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अच्छा, फूड कॉस्ट और देखा जाए एक्सपेंसेस, इनको बैलेंस करना कितना चैलेंजिंग होता है और आप इसे पर्टिकुलरली कैसे मैनेज करते हैं?
1: ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि हमारी फूड कॉस्ट को और जो हमारी जो मेन आइटम होता है उस पर हम लोगों को बैलेंस करना होता है, क्योंकि हमें जो एक चीज मिल रही होती है और फिर आगे हमें उसको सेल करना है, अगर हमने उस प्राइस को थोड़ा सा हाई किया तो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट पे आजकल जो कंपटीशन है तो वो चीज होती है कि भाई ये चीज यहाँ तो ये प्लेट हमें इतने की वहां मिल रही है और उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स उठाए या कुछ भी, हमें उस चीज को बड़ा बहुत ही हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम उसी चीज को लेकर चल रहे होते हैं क्योंकि डिफरेंट फूड हमारे पास है। लाइक अगर आप एक एग्जांपल एक बिरयानी की ले लें तो हमारे जो राइस है वो हम अच्छी क्वालिटी के यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी ही प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को, पर वही बात है कि अगर हम अच्छी क्वालिटी की यूज करेंगे तो आपके ये प्राइसेस भी बढ़ रही हैं क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं अच्छी चीज, तो बात वही आ जाती है कि हमें फिर वही मेंटेन करना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, और हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं उनकी ये बात होती है कि आपकी प्राइसेस के अकॉर्डिंग आपका जो आपके क्या कह सकते हैं उसकी क्वांटिटी आपकी वो इतनी ज्यादा मतलब आपकी मैच नहीं कर रही है, पर हमें काफी काफी कुछ करके देख के करना पड़ता है।
0: सही, ये भी अपने आप में चैलेंजिंग की है। अच्छा, ये जो होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है, इसमें देखिए बहुत सारे नए ट्रेंड्स आते ही रहते हैं, तो आप अपने आप को इन चेंजेस के साथ किस तरह से अपडेटेड रख पाती हैं?
1: ये बस वही चीज है मैंने आपको पहले बताया कि वही सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको अपने आप को अपडेट रखते हैं।

0: बिल्कुल, नया चैलेंजेस हमारे होते हैं डिफरेंट, हर दिन एक नया चैलेंज होता है हमारे लिए. और वही सोशल मीडिया के ही थ्रू हम अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो वही बात है कि आप मार्केट से बैक होंगे, और हमारे जो मार्केट में कॉम्पिटिशन है उसके लिए हमें हर वक्त एक सोशल मीडिया के साथ अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, अपने फेसबुक पेज को चलाना पड़ता है, अपने डिफरेंट रेसिपीज को और जो हमारे न्यू रेसिपीज हैं उनको जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है उनको अपने प्लेटफॉर्म में दिखाना पड़ता है, ताकि लोग इसको देखकर फिर आए और आके एंजॉय करें.
1: इन्जॉय करें. अच्छा, ये इंडस्ट्री ऐसी भी है कि जिसमें बहुत सारे आपके टीम मेंबर्स हैं, उन सब के साथ एक अच्छा भरपूर कोऑर्डिनेशन, फिर उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस, फिर उनको एक्सपर्ट करना किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ये सारी चीज़ें क्या आप खुद ही इन्वॉल्व होती हैं, सब कुछ खुद करती हैं, और या कोई और तरीका है जहाँ पर आप यू नो इन्हें कहीं बाहर भेज कर उन्हें ट्रेन करवाना या सिखवाना? बिकॉज खाना भी जैसे आप बता रही हैं, आई एम श्योर शेफ भी उस तरह के कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, तो ये चीज आप कैसे मेंटेन करती हैं कि जो फ्लेवर है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे और उसमें कोई खास वेरिएशन या चेंजेस ना आए?
0: हाँ, ये सब चीजें तो खुद ही मुझे मैनेज करनी होती है, और क्या नाम है, मेरी किचन स्टाफ के साथ मेरी कम्युनिकेशन रहती है बैक टू बैक, लाइक डेज में मेरी किचन स्टाफ के साथ, और जो वहाँ पर मतलब जो आइटम बन रहा होता है, जो फूड हमारा बन रहा होता है, वो मैं खुद जाके टेस्ट कर रही होती हूँ कि हमारे कुछ टेस्ट में कुछ चेंजेस ना आए, क्योंकि आपको पता है कि फूड आप हमारे रेस्टोरेंट है उसके अंदर आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. अगर हम लोगों को वो टेस्ट दोबारा नहीं मिलेगा तो वो लोग दोबारा नहीं आएंगे, कि इनका हर दफ़ा टेस्ट डिफरेंट है. तो हमें ये चीज़ है कि मुझे खुद जाकर ये पर्सनली खुद जाकर चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं और खुद जाकर देखती हूँ. मेरा किचन स्टाफ के साथ काफी कम्युनिकेशन रहता है, खुद किचन में जाकर हर चीज को देखना, फूड टेस्ट को खुद करना, और सब चीजों को मतलब मुझे खुद ही चेक करना पड़ता है. तो ये सब चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर ये सब चीजें नहीं हो तो हमारा जो फूड है वो टेस्ट वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वही बात है कि जब आप किसी पर सुपरविजन पे नहीं रहते हो तो वो अपने आप से कुछ ना कुछ चल रही होती है सिलसिले.
1: बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, हमेशा ऐसा तो होता नहीं है फारिया के लोग आपको जो है ना वो हमेशा अप्रिशिएट करें, खाने को अप्रिशिएट करें. आई एम श्योर कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते होंगे जो आपको यू नो नेगेटिव फीडबैक देते होंगे या वो उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते होंगे, तो उन नेगेटिव कमेंट्स के लिए किस तरह से आप और आपकी टीम तैयार रहती है, और क्या वाकई वो उन चीज़ों पर सजेशंस पर आप काम करते हैं, एंड हाउ डू यू हैंडल दोज कमेंट्स?
0: देखिये, असल में कस्टमर जो है ना वो देखें दो तरह के, एक डाइनिंग है और एक टेक अवे. अगर डिपेंड करता है कि हमारी डाइनिंग कस्टमर्स पे कोई हमारे कोई हमारे पास शिकायत आती है डाइनिंग कस्टमर पे रिलेटेड टू फूड क्वालिटी, या उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है कि आपके वेटर्स हैं उन्होंने हमें टाइमली खाना सर्व नहीं किया, तो वो चीज़ है कि उसी टाइम पे हम लोग उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. और अगर क्योंकि हर जो कस्टमर होता है उसकी जो डिमांड है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है उनकी डिफरेंट होती है. तो वो आके अगर उन्होंने आके हमें ये बोला कि आपकी क्वालिटी या आपका फूड का मतलब अच्छा नहीं है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनको नेक्स्ट मतलब ऑर्डर उसी टाइम पे ही उनकी उनके अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस उनको प्रोवाइड किया जाए और उनको सेटिस्फाई किया जाए. और अगर कोई सर्विस से रिलेटेड होती है तो उस टाइम पे तो खैर उनको हम टैकल करके, लेकिन बाद में फिर मेरी ये कोशिश होती है कि जो मेरा हॉल स्टाफ है उसके साथ मेरी मीटिंग की जाए और फिर मैं उनको इस तरह से हैंडल करती हूँ कि आखिर प्रॉब्लम हुई क्या थी जो हमारी तरफ से ये नेग्लिजेंस हुई है. तो ये इस तरीके से मुझे सॉर्ट आउट करनी पड़ती है चीजें.
1: सही. अच्छा फारिया, कभी ये भी होता है कि सीजनल मेन्यूज हैं या फिर कुछ नई डिशेस हैं जो इंट्रोड्यूस की जाती हैं या करती होंगे आप, तो उस वक्त आपका डिसीजन प्रोसेस क्या होता है?
0: हाँ, सीजनल जिस तरह से हमारी मतलब गर्मियों में हमारी जो डिशेज होती हैं थोड़ी डिफरेंट होती हैं, जिसमें लेमन मतलब जूसेस से देख लें, डिफरेंट हमारी डेजर्ट में देख लें, और सर्दियों में हमारा डिफरेंट होती है, तो वो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू सीजन हम लोगों को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि डिमांड है कि मार्केट की डिमांड है, क्योंकि लोग आके डिमांड कर रहे होते हैं कि भाई अब जिस तरह सर्दियों में लोग मीठे की कुछ और डिमांड कर रहे होते हैं, तो वो हमारी डिमांड होती है, तो हम उस डिमांड के हिसाब से अकॉर्डिंग हम अपने मेन्यू में थोड़ी बहुत चेंजेस लेकर आते हैं. हम एकदम से चेंज नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता मतलब एकदम से नहीं, क्योंकि हमारे लिए चेंजेस करना एकदम से बहुत मुश्किल भी है. तो मेन्यू में हम स्लाइटली चेंज करते हैं, एक या दो डिशेज को एड ऑन करके या एक डिशेज को हटा कर चेंज कर फिर हम लोग मतलब लोगों को इस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि ये डिमांड है हमारी मार्केट की, अब हमें उस चीज़ को तो कवर अप करना ही है.

0: बिल्कुल सही कहा. अच्छा आजकल मुझे क्या लगता है कि आउटिंग या वीकेंड्स का मतलब है रेस्टोरेंट्स या बाहर जाके खाना खाना फॉर फैमिलीज एटलीस्ट. और स्पेशली अगर समर्स में देखिए तो बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो और भी ज़्यादा लोग जो है वो प्रेफर कर रहे हैं कि भाई वीकेंड इन्जॉय करना है, मतलब बाहर कहीं खाने खाना जाना है. तो आजकल मुझे क्या लगता है कि कस्टमर्स जो है वो सिर्फ खाना नहीं खाते बल्कि उनको एक पूरा एक्सपीरियंस चाहिए होता है फैमिली के साथ. तो आप अपने रेस्टोरेंट में इस एक्सपीरियंस को किस तरह से डिज़ाइन करती हैं या प्लान कर रही हैं?
1: हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात सही है कि लोग आजकल जब जाते हैं बाहर तो उनको चाहिए होता है एक फाइन डाइन एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक प्रॉपर उनको सिटिंग चाहिए होती है जहाँ पर वो फैमिली के साथ अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. तो वो हम लोग उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं. और हमारा जो पहले ही मैंने कहा कि हमारी जो थीम है वो इसी तरीके की है कि लोग आएँ और वो यहाँ पर वेलकम हों और यहाँ पर आके अपना बहुत अच्छा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ, जिसपे हम लोगों ने काफी लोगों मतलब हमारा जो फूड है उनकी उसकी प्रेजेंटेशन पर भी हमने ज्यादा अपना जोर दिया हुआ है क्योंकि लोग अब आके पिक्चर्स लेते हैं. तो वही चीज है कि हमारी क्योंकि लोग आके देखते हैं कि आते हैं लोग इंजॉय कर रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं वो इंजॉय कर रहे हैं और उनको अपना एक अच्छा एम्बियंस भी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है तो लोग आके इंजॉय भी कर रहे होते हैं और काफी अच्छा मतलब बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी मिलता है हमें.
0: सही सही बहुत ही अच्छी बात बताई. अच्छा फारिया आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है कि लोग जो है ना वो हेल्दी ईटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या आपने अपने मेन्यू में भी जो है वो इस ट्रेंड को इंक्लूड किया हुआ है?
1: जी जी हमारे पास मेन्यू में कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, जिस तरह से वेज है, नॉन वेज है, हेल्दी भी है, सैलड्स भी है, मतलब काफ़ी हद तक डिफरेंट हमारे पास मेन्यू है. अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स प्रेफरेंस हम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं. तो अगर उनको हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना है तो वो भी हमारे पास होते हैं बट सिलेक्टेड है. हमारे पास ये नहीं है कि बहुत वास्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं लेकिन सिलेक्टेड हैं क्योंकि हमारा जो मेन जो है वो तो आपको पता है कि वो अलग ही कुजीन है. तो हमारे लेकिन ऑप्शंस हमने फिर भी दिए हैं बट बहुत सिलेक्टेड ऑप्शंस हैं बट स्टिल वी हैव एन ऑप्शन तो वी कैन लाइक हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं अगर उनको चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस.
0: सही. अच्छा आपके ख्याल में क्या एक रेस्टोरेंट को सर्वाइव करने के लिए, आज का जमाना टेक्नोलॉजी इनोवेशन का है, तो आप क्या मानती हैं कि इनोवेशन ज्यादा जरूरी है या फिर ट्रेडिशन को मेंटेन रखना, आई मीन ट्रेडिशनल फूड को मेंटेन रखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
1: आई थिंक ट्रेडिशनल फूड को इम्प्रूव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से क्योंकि लोग आजकल क्योंकि रेस्टोरेंट जाने का मतलब लोग एम्बियंस तो देखते हैं बट वो सेकंड पे आता है. अगर आपका फूड अच्छा हो, फूड की क्वालिटी अच्छी होगी तो ही लोग आएंगे, वो दोबारा भी आएंगे और लोग रेकमेंड भी करेंगे. एम्बियंस इट्स अ फैक्टर कि मतलब वो अच्छी चीज है लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड को लोग ज्यादा देखेंगे. तो हमारे जो वही जो ट्रेडिशन फूड है हम उसी चीज को ही और उसकी क्वालिटी को उसके टेस्ट को मेंटेन करना ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज है.
0: बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात की आपने. अच्छा क्योंकि आप खुद जो है अब जाहिर है आप बिजनेस वुमन है प्लस एट द सेम टाइम यू आर मॉम, आप मदर भी हैं, तो मुझे बताइए कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना आपके लिए कितना मुश्किल होता है और आप इसे कैसे हैंडल कर पाती हैं?
1: मुश्किल तो खैर है लेकिन जब आपके पास एक पैशन होता है कुछ करने के लिए, कुछ करने की चाह होती है ना, तो आप अपने लिए खुद ब खुद एक टाइम निकाल लेते हैं. आप अपनी फैमिली को भी इग्नोर नहीं करते, आप फैमिली के लिए भी टाइम निकालते हैं और आप इसके लिए भी आप टाइम निकाल लेते हैं. मतलब आपके लिए मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग है. मैंने जिस तरह से आपको बोला कि डेली लाइफ में मेरे पास डेली चैलेंजेस होते हैं जो मुझे उसको देखने पड़ते हैं. अपनी फैमिली को भी देखना है और रेस्टोरेंट को भी देखना है, बट ये मेरी खुद की पर्सनल डिसीजन थी, पर्सनल मेरा मेरी ख्वाहिश थी, मेरा खुद पैशन था कि मुझे ये करना है. तो वो आप जब आप खुद जो आप एक कहते हैं ना पैशन से कोई चीज़ें कर रहे होते हो तो आपको वो चीज़ मुश्किल नहीं लग रही होती है, वो आप खुद ही अपने चाह पे कर रहे होते हो. तो अभी ये खुद की मेरी ख्वाहिश थी तो आप वो चीज़ मुश्किल भी है लेकिन मैं उसको करके ख़त्म कर रही हूँ. मेरे लिए मेरी फैमिली लाइफ भी मतलब इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं चीज चल रही है और साथ साथ ये भी चल रहा है.
0: Hats off कि आप फैमिली लाइफ इतने अच्छे से जो है वो भी हैंडल कर रही हैं. एंड एट द सेम टाइम लेट मी अप्रिशिएट यू कि आप कितनी अच्छे तरीके से अपना बिजनेस भी हैंडल कर रही हैं. एंड यू आई नो एज अ पर्सन आप बहुत ही डाउन टू अर्थ, यू सच अ हम्बल, ऑलवेज ऑलवेज विद द स्माइल. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपके उस बिजनेस पर भी रिफ्लेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी.
1: थैंक यू सो मच.
0: अच्छा फारिया आज के वक्त में ना सस्टेनेबिलिटी की हर कोई बात कर रहा है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की हर कोई बात कर रहा है, तो ये प्रैक्टिसेस कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में?
1: रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही बात है कि इको फ्रेंडली लोग अब वही बात

0: आप अगर बात करते हैं, लोग आजकल बात कर रहे हैं, अब हम लोग को जो टेक अवे ऑर्डर देने होते हैं उसके अंदर भी लोग काफी बोल रहे होते हैं कि मतलब आपको पता है आजकल पेपर बैग्स और इन सब चीजों की तरफ भी ज्यादा लोग आ गए हैं कि प्लास्टिक फूड जो मतलब जो कंटेनर्स होते हैं उसको भी हमने थोड़ा सा जरा अवॉइड ही करा है. काफी हद तक हम लोगों ने जरा पैकेजिंग पे भी अपना अपने काम करा है क्योंकि लोग उस चीज तरफ भी आते हैं कि भाई प्लास्टिक पे गर्म फूड आप दे रहे हैं, इसके अंदर दे रहे हैं. बेशक हम लोग को होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो हमारा फूड है वो हम दूसरी चीज पर नहीं दे सकते, लेकिन स्टिल हम उस पर वर्किंग हमारी चल रही है कि हम थोड़ा सा जरा इस इको फ्रेंडली की तरफ आए और क्या नाम है, हमारे फूड जो है वो जरा अच्छे तरीके से लोगों पर डिलीवर भी किया जाए.
1: नाइस. अच्छा बिल्कुल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे और आप लगातार बोल रही हैं, सॉरी मैं आपसे पूछती जा रही हूँ, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस इंटरव्यू में. पर्टिकुलरली आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फास्ट ग्रोथ, तेजी से ग्रोथ या फिर स्टेडी ग्रोथ, और क्यों?
0: फास्ट ग्रोथ तो देखें बिल्कुल नहीं हो सकती आपके लिए, स्लो ही हो सकती है क्योंकि हर चीज टाइम टू टाइम चले तो ही सही है. फास्ट ग्रोथ तो जरा वो मैनेज करना भी जरा मुश्किल होगा. वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी टू विन द रेस, वही वाला हिसाब है कि आप आराम से ही चलें, स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी भी आएगी, आपके अंदर आप अपने बिजनेस को प्रॉपर हैंडल भी कर सकेंगे. तो अगर फास्ट करने पे आपके लिए, मुझे अपना पर्सनली बिलीव है, हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट ओपिनियन है, बट मेरे जो अपना ये है कि भाई जो अगर आप थोड़ा सा स्लो करके चलेंगे तो आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी रहेगी और आपका बिजनेस इंशाल्लाह ग्रोथ की तरफ ही जाएगा
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा फ्यूचर के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? क्या आप अपने इस रेस्टोरेंट को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, आई मीन और ब्रांचेस भी इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले टाइम में?
0: ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की डिमांड, जिस तरह मैंने कहा कि हमारी फर्स्ट ब्रांच पे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था तो हम सेकंड ब्रांच की तरफ आए. तो अगर इंशाल्लाह अगर कस्टमर्स की डिमांड और होती है तो मे बी हम थोड़ा सा एक्सपेंड की तरफ सोचें, और अगर कस्टमर की डिमांड होगी देन आई थिंक इसकी तरफ भी वर्किंग की जा सकती है कि हम इसके तरफ आगे जाएं और आगे अपने डिफरेंट ब्रांचेस को डिफरेंट कतर में डिफरेंट जगहों पे अपनी ब्रांचेस को खोलें हम लोग.
1: बिल्कुल इंशाल्लाह. एंड नाउ कमिंग टू द क्लोजिंग क्वेश्चन, बिल्कुल क्लोजिंग क्वेश्चन है, कोई अगर इसी तरह का रेस्टोरेंट यहाँ कतर में स्टार्ट करना चाहता है तो उसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
0: देखिए अगर कोई यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट अपना करना चाहता है तो सबसे पहले तो वही है कि वो मार्केट स्ट्रेटेजी को ही समझे और उसका जो प्लान हो, जो क्लियर बिजनेस प्लान हो वो, और उसको मतलब वही चीज है वो फोकस इस पर करे कि भाई क्वालिटी और हाइजीन और कस्टमर सर्विस पर ही फोकस करे. जिस तरह यहाँ पर जो है मतलब आपको पता है यहाँ पर हाइजीन और इन सब चीजों से काफी ज्यादा मतलब हमारी जो मिनिस्ट्री है वो काफी इन्वॉल्व है इन सब चीजों पर. तो हमारा एक क्लियर बिजनेस प्लान होगा और हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो हम अपना आगे काम करेंगे और पेशेंस से काम करें तो वो मेरा ख्याल से वही है कि कामयाबी इंशाल्लाह होगी. और वो आगे आप अगर आपका पैशन और डेडिकेशन होगी तो आपका बिजनेस भी इंशाल्लाह वेरी स्मूथली रन भी करेगा.
1: और आप खुद देखिए मिसाल है कि आप बीइंग अ मॉम अच्छे से आप बिजनेस भी संभाल रही हैं. आपने ऑन एयर कहा कि मैं बिजनेस भी संभाल रही हूँ, फैमिली भी संभाल रही हूँ, ऐसा कहीं भी नहीं कि फैमिली निगलेक्ट हो रही है ना ही आपका बिजनेस निगलेक्ट हो रहा है. देयर इज अ गुड बैलेंस. वेल थैंक यू सो मच फारिहा फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने बहुत ही कमाल के इनसाइट्स हमारी ऑडियंस के लिए शेयर किए. थैंक यू कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ आप जुड़े इस शो में.
0: थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. अपना ख्याल रखिए. हैव अ ग्रेट डे. अल्लाह हाफिज. Well, दोस्तों आज हमने बात की फारिहा से जो एक होटल की यहाँ ओनर है और आप समझे कि किस तरह से होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ही अमेजिंग इंडस्ट्री है और एक ऐसी इंडस्ट्री है जो तेजी से बढ़ रही है और बढ़ने के इसके आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. ये सिर्फ खाने और रहने की मतलब खाने और खाने का एक्सपीरियंस करने तक महदूद नहीं है. मैं कहूँगी कि ये एक कम्प्लीट पूरी तरह से एक कम्प्लीट एक्सपीरियंस हो गया है फैमिलीज के लिए, जहाँ लोग आते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, अपने कम्फर्ट को इन्जॉय करते हैं, सर्विस को इन्जॉय करते हैं और क्वालिटी का मज़ा लेते हैं. कतर जैसी जगह पर जहाँ हम समझते हैं कि टूरिज्म और लाइफस्टाइल जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ये इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. होटल और रेस्टोरेंट को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहा जाता है, आप जानते हैं, और इसका मकसद ये है कि गेस्ट को बेहतरीन सर्विस दी जाए, अच्छा खाना हो, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाए और इसी बिना पे होटल जो है या होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो बहुत तेजी से कर रही है. जी हाँ, आज के रेस्टोरेंट्स अगर हम देखें तो

0: वो सिर्फ खाने का जरिया नहीं रह गए बल्कि सोशल गैदरिंग्स हैं और एक्सपीरियंस का हिस्सा बन चुके हैं। लोग अपनी फैमिली गैदरिंग्स, अपने बिजनेस मीटिंग्स, अपनी सेलिब्रेशंस, इन सारी चीजों के लिए रेस्टोरेंट्स को जो ऑप्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं बात करूं होटल इंडस्ट्री, तो यहाँ पर आपको हर तरीके के होटल्स मिलेंगे, हाई एंड से लेके लो एंड तक। मतलब हर आदमी की अपनी, जिस तरह की उसकी, उसका बजट उसे अलाउ करता है, उस तरह से वो उसको ऑप्ट कर रहा होता है। वैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत वाइड है, इसके डिफरेंट तरीके भी, बहुत सारे टाइप्स भी हैं। जैसे हमारी गेस्ट ने भी बताया कि कुछ चैलेंजेस तो इनिशियली हैं ही, लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद भी एक सेटिस्फैक्शन होता है जब आप किसी को एक अच्छा खाना खिला देते हैं और वो वापस से आके कहता है कि जी मुझे आपके रेस्टोरेंट की ये डिश बहुत पसंद थी, एंड सो फॉर दैट मैं वापस फिर आया हूँ या फिर आई हूँ। तो ये सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा होता है, ये प्रॉफिट, ये पैसों में आप इसको तोल ही नहीं सकते। मैं कह सकती हूँ कि हर टाइप का, हर रेस्टोरेंट का जो है वो एक अलग चार्म होता है, उनकी अलग तरीके की ऑडियंस होती है, फिर उनकी अलग तरीके की सर्विसेज होती हैं, अलग तरीके का फूड एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज के टाइम में कस्टमर सिर्फ खाना खाने नहीं जाते हैं, वो एक एक्सपीरियंस लेते हैं। इसीलिए रेस्टोरेंट्स और होटल्स दोनों का फोकस जो है वो एम्बियंस पे भी है, म्यूजिक पे भी है, डेकोर पे भी है, एक स्टाफ बिहेवियर को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे हमारी गेस्ट ने भी हमें बताया, वहीं पर सर्विस स्पीड आज के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और हाँ, जैसे हमारी गेस्ट ने कहा, फूड प्रेजेंटेशन, क्योंकि पहले तो आप खाना आंखों से खा रहे होते हैं, देखते हैं, जो दिल आंखों को भा रहा होता है फिर वो आपके दिल को ऑटोमेटिकली छू जाता है। तो अगर कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो वो बार बार दोबारा आना पसंद करते हैं, इसी को कस्टमर लॉयल्टी भी कहा जाता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्टाफ सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट भी है, और अगर स्टाफ के साथ एक अच्छा इंट्रैक्शन होता रहे, जैसे हमारी गेस्ट ने बताया, उन्हें ट्रेन किया जाए, वो पोलाइट हो, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस जो है वो ग्रो करता ही करता है। वहीं अपने चैलेंजेस भी हैं, हमारी गेस्ट ने वो भी मेंशन किया कि देखिए कंपटीशन भी है, कॉस्ट को मैनेज करना, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग तरीके से होती है, फिर स्टाफ को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ आसानी से मैनेज हो सकता है अगर आप जो है वो पैशनेट हैं। आजकल टेक्नोलॉजी ने इंडस्ट्री को तो चेंज कर ही दिया है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट्स की या फिर होटल्स की, तो यहाँ पर भी डिजिटल टूल यूज करके आसानी से जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो एक्सपैंड किया जाता है। जैसे हमारी गेस्ट बता रही थी कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग एप्स हैं, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, POS सिस्टम्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया अपने आप में बहुत ही पावरफुल टूल बन चुका है। यहाँ पर कितने सारे वीडियोस जो हैं वो डाले जाते हैं, बूस्ट किए जाते हैं, और हर साल फूड इंडस्ट्री को मैं देखूं तो नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। कुछ नए ट्रेंड्स जो हैं वो हेल्दी ईटिंग ऑप्शंस, जो हमने अपनी गेस्ट से पूछा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ट्रेडिशन जो है वो ट्रेडिशनल फूड की आज भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। देखा जाए तो फ्यूजन फूड या फिर फ्यूजन कुजीन को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, हेल्दी फूड ऑप्शंस जो हैं उनको अगर हम अपने जहन में लाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सैलड्स ही आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे ग्रिल हो सकते हैं, लो कार्ब मील्स हैं, जूसेस हैं, ऑफ कोर्स सैलड्स तो हैं ही। उतना उन्होंने कहा हमारा फोकस नहीं है हेल्दी ऑप्शंस पे, लेकिन अगर कोई हमसे डिमांड करता है तो हम ऑन स्पॉट जो है वो डिश तैयार कर देते हैं उनके चॉइसेस, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। हर चीज़ जो है इस इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत मैटर करती है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वो बार बार आएगा। इसीलिए इस बिजनेस को हैंडल करना भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1-to-1 कहीं ना कहीं जो है ना ऑडियंस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है बस। लेकिन मैं ये कहूँगी कि सबसे अच्छी बात यह है कि होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक एक्साइटिंग और बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है। इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें हार्डवर्क है, इसमें डेडिकेशन है। जो लोग जो है वो पैशन से काम करते हैं और कस्टमर्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को जो है वो समझते हैं, वो इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं। आज के ज़माने में ये इंडस्ट्री सिर्फ खाना और खाना खाने और खाना खिलाने तक महदूद नहीं है, ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। हर दिन जो है वो नए नए इनोवेशंस और नए नए तरीके और ट्रेंड्स जो है वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। तो अगर आप भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देन आई एम श्योर ये इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मुझे तो बेहतरीन मौका मिला कि मैं बहुत कुछ जानूं अपनी गेस्ट से, सीखूं, समझूं। और आज इस एपिसोड से पर्टिकुलरली मुझे सीखने को जो चीज़ मिली वो ये कि आप पहले तो काम कूल कंपोज्ड हो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक परफेक्ट होमवर्क होना चाहिए। फिर चाहे लोकेशन हो, फिर चाहे आपकी ऑडियंस हो, या फिर आपका स्टाफ हो, या फिर आपके मेन्यू को लेकर है, तो हल्का फुल्का तो देखिए तो हर कोई कर लेता है, हर कोई चाहता भी है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर पैशनेट हैं, मेहनत से आप घबराते नहीं हैं, डेडिकेशन है, तो इस इंडस्ट्री में आप अपनी पहचान बना लेंगे. अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बस इन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, और चाहिए तो वापस से इस इंटरव्यू को रिपीट पे सुनिएगा. फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी हम दोनों को इजाजत दीजिए. आप सुन रहे थे कतर बिजनेस 360. इंशाल्लाह नए एपिसोड में एक और नए बिजनेस पर हम बात करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa. आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Absolute cinema.
5: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं. पर reviews वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.
6: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें. सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों. लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है, बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है. वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है. ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं. अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए, जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं. आपके घर और ऑफिसेस की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
7: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: FM 107.
2: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साथियों, इस वक्त एफएम 107 की घड़ी बज रहे हैं 11:01 और टाइम हो चला है सफा के साथ एंजॉय करने का। द शो इज सन एंड साउंड।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: तो भाई दिल से देसी लोगों हाजिर हो जाओ जरा, क्योंकि सफा आ गई है आपके साथ आपको एंजॉय कराने सन एंड साउंड में। ढेर सारा आपको वेलकम है भाई। आज क्या तारीख हो गई? 6 तारीख हो गई जुलाई की। किसी को पता चला? मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई भाग रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी लग रहा है। अच्छा भाई, अब आते हैं हम वेलकम की तरफ। और वेलकम ऐसे करेंगे कि भाई आपके लिए शो लेकर आई हूँ और इस शो में हम करेंगे ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा मज़ा और गेम्स भी खेलेंगे। लेकिन गेम का जो सेशन है हमारा वो 12 बजे के बाद होगा। जो 12 बजे से पहले होना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूंगी, कुछ वेदर रिपोर्ट शेयर करूंगी और हमारा आज का मुद्दा भी उसी के अंदर होगा। अब कल हमने जो है वो नमक और केचप की जंग की थी, आज कुछ नया लेकर आए हैं हम मार्केट में, ठीक है, उसके लिए रेडी रहें। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि भाई मौसम की तरफ चलें। देखिए वैसे तो मौसम में कुछ तब्दीली आई नहीं है, कोई ख़ास नहीं आई। मौसम अभी ऊपर की तरफ ही जाना है, नीचे की तरफ तो आना नहीं है। लेकिन फिर भी सोच रही हूँ आपको क्यों ना बता ही दूं कि कितना ही ऊपर जाएगा आज। देखिए अभी जो टेम्परेचर चल रहा है ना वो 44 डिग्री सेल्सियस का चल रहा है और ये बता दूँ कि फील्स लाइक भी 44 डिग्री सेल्सियस ही है। कल भी 44 डिग्री ही था। उम्मीद करती हूँ उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि उम्मीद करती हूँ कि भाई ये मौसम का जो हाल अहवाल है ये इतना ही रह से ऊपर ना जाए। और हवा के बारे में अगर बात की जाए तो भाई विंड्स जो हैं वो चल रही हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ और 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये चल रही हैं हवाओं की रफ्तार ऐसी बस लेजी चल रही है। शुक्र करें ज़्यादा तेज़ नहीं है, अगर ज़्यादा तेज़ होती तो गर्मी भी तेज़ है तो वो लू ही ना लग जाती। फिर अपना ख्याल रखें ऐसा। और ह्यूमिडिटी का हाल अहवाल ये है कुछ के ह्यूमिडिटी चल रही है 12% पर, अच्छी खासी है भाई, अच्छी खासी है। और यूवी इंडेक्स 11, तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, जहाँ नेसेसरी ना हो वहाँ जाकर धूप ना खाना शुरू कर दें। अच्छा मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उस रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया था ये जो 11 बजे से लेकर खासतौर पर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, रिसर्च में लिखा होता कि ये जो 11 बजे की धूप है ना, 11 से लेकर 3 बजे तक की धूप, इससे गुरेज करें। अब लोग पूछेंगे गुरेज का मतलब क्या होता है जिनको नहीं पता, तो भाई ये किसी फैंसी या पुरानी सुपर हीरो ओल्ड मूवीज़ के किसी का नाम नहीं है। गुरेज का मतलब होता है इससे बचें। और विजिबिलिटी जो है वो भाई इतनी साफ़ सुथरी है, मतलब सही है कि अगर आप धूप में फ्राई पैन रख के अंडा पकाते हैं तो आपको साफ साफ अंडा तड़कता भड़कता नज़र आएगा, यानी कि विजिबिलिटी 10 पर है, आपको सही सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। सूरज चाचू की रोशनी तो आपको बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई देगी, नहीं अगर नहीं दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि आपको हीट स्ट्रोक हो चुका है। क्योंकि जब लोगों को हीट स्ट्रोक होता है ना तो उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता, ब्लैकआउट्स होते हैं सिर्फ। तो भाई साथियों इस शो में, क्योंकि ये शो एक इंटरैक्टिव शो है, तो मैं आपको याद दिलाती चलूं कि इंटरैक्टिव होने का मतलब ये होता है भाई कि आप मैसेज भी कर सकते हैं। अरे भाई मैसेज के लिए मेरा मोबाइल कहाँ गया? हाँ ये रहा, ओके भाई। अच्छा भाई देखें मैसेज के लिए आप मुझे मोबाइल पर मैसेज कर सकते हैं 6622107 मैसेज के लिए नंबर है। मैसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री मुफ्त। और अगर चाहें तो आप कॉल से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी सुरीली सी अच्छी सी आवाज़ हमें सुनाना चाहते हैं तो ज़रूर सुनाएं भाई। आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर। किस पे कॉल करेंगे? 4434377 पर। फिलहाल एक काम करती हूँ, एक छोटी सी मेरे साथ मसला चल रहा है, कुछ सिचुएशन है, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ और एक छोटे से ब्रेक पर जाती हूँ, ठीक है। ब्रेक के उस पार आपको बता दूँ आज का मुद्दा इंतज़ार कर रहा है और आज का मुद्दा बड़ा अच्छा है। तो मैंने अपनी ऑफिस में हमारी एक हैं माशाल्लाह से प्यारी सी आशी, तो उनसे पूछा जो सवाल मैंने आपसे करना है वो उनसे ऑलरेडी मैं पूछ कर आ रही हूँ। मैंने कहा देखती हूँ भाई ऑडियंस का जवाब क्या आता है। कहती ना ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी। मैं तो सी चूज करूंगी। मैंने कहा ये कौन सी आवाम है भाई जिसके पास ऑप्शन आप दो देते हो लेकिन तीसरा ऑप्शन ही अपने पास से निकाल लेते हैं। इनको करना वो ये जो इन्होंने करना है, इन्होंने इट डज नॉट मैटर कि आप उन्हें क्या ऑप्शन देते हो। ये ऐसी मखलूक भी होती है, ऐसी मखलूक भी होती है। तो खैर एक काम करेंगे, आज का जो हमारा मुद्दा होगा उसके बारे में ब्रेक के उस पार वो जो वो वाला पार है ना, दरिया के उस पार मिलेंगे तो फिर गुफ्तगू करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे और ख्यालात शेयर करेंगे दरिया के उस पार। फिलहाल तो बंधु एंजॉय करने का टाइम है, तुम्ही हो बंधु, सगा तुम्ही। आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: भाई मौजा ही मौजा, क्यों नहीं होंगी मौजा। सफा जो हाजिर है आपके साथ।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: देखो भाई, हमारा मसला सॉल्व होना हो, लेकिन हम मौजा ही मौजा के लिए आ गए हैं, यानी कि हम आपके साथ हाजिर हो गए हैं सन एंड साउंड लेकर। मैं हूँ आरजे सफा और आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड। इस वक्त घड़ी में कितने बज रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं और ये एक इंटरैक्टिव शो है साथियों, जहां पर हम आपसे बात करेंगे, तबसरे करेंगे, आपके ख्याल लेंगे। देखें यहां पर जो है ना, हम लोग बिल्कुल एकदम मजे मजे की बातें करेंगे, सीरियस लेकर किसी चीज को हम नहीं चलते। देखें सीरियस जचता नहीं है अपने ऊपर। तो भाई आज के मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। देखिए भाई, आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर और आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 6622107 पर। अब जिनको लग रहा है मैं नंबर बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ, तो मैं उनको आहिस्ता से बताती हूँ, 4434377 पे आप कॉल कर सकते हैं और चाहें तो 6622107 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो भाई मुद्दे की बात ये है साथियों कि आज हम डिस्कशन इस बात के ऊपर करेंगे। देखिए लाइफ में ना हर किसी को कभी ना कभी लाल बत्ती जरूर नजर आती है। अब वो लाइफ की किसी भी सिचुएशन पर हो, लाजमी नहीं है कि वो ट्रैफिक सिग्नल पर ही हो, लेकिन चलें आज हम ट्रैफिक सिग्नल को लेकर बात कर लेते हैं, बाकी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे फिर कभी। तो भाई आज हम ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक मजेदार सा सवाल आपके लिए हाजिर है, तड़कता भड़कता सवाल, जैसे वो प्लेट में आता है ना यूं तड़कता भड़कता खाना गर्मा गर्म, तो वैसे ही आपके लिए एक गर्मा गर्म सवाल हाजिर है। जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिले पूरी जिंदगी भर के लिए, सिर्फ एक ऑप्शन मिले, तो आप क्या चूज करेंगे? अच्छा आप कहेंगे किस चीज का ऑप्शन, तो भाई बता रही हूँ, रुको जरा सब्र करो, बता रही हूं। तो भाई पहला ऑप्शन ये है कि आप चला रहे हैं गाड़ी, ठीक है, मजा आ रहा है आपको जिंदगी का, क्या मस्त बर्बाद हो रही है जिंदगी, क्या मस्त बर्बाद हो रहा हूं मैं। लेकिन हर ट्रैफिक सिग्नल पर आपको हमेशा ग्रीन लाइट मिले, वाह वाह वाह भाई, जन्नत वाला माहौल हो जाता है एकदम। हर ट्रैफिक सिग्नल पर आपको ग्रीन लाइट मिले, ठीक है, और आपका सफर ना बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा हो। भाई ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन मिलेगा तो यही तो होगा, मक्खन की तरह स्मूथ। लेकिन एक बात है, टू गुड टू बी ट्रू हो जाता है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा अपना ट्विस्ट लेकर आते हैं। अब ग्रीन लाइट तो मिल गई, लेकिन उसके साथ एक शर्त आती है, और वो शर्त ये है कि गाड़ी के रेडियो पर या जो हमारा साउंड सिस्टम होता है उस पर शर्त ये है कि एक ही गाना पूरी जिंदगी रिपीट पर बजा दिया जाए। इतना रिपीट पर सुने आप उस गाने को, इतना रिपीट पर सुने कि भाई सिंगर खुद आके उठकर आपसे हाथ जोड़कर कहे कि भाई बस कर जाओ, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये गाना गा दिया। एक ऑप्शन ये है कि जिंदगी के सिग्नल ट्रैफिक के आपको जो है वो बिल्कुल ग्रीन मिले, लेकिन विद अ थिंग कि आपको गाना पूरी लाइफ टाइम एक ही सुनना पड़े फिर गाड़ी में। और दूसरा ऑप्शन भी है, रुको जरा सबर करो, दूसरा ऑप्शन पता क्या है, आपकी प्लेलिस्ट बिल्कुल जबरदस्त हो, धमाकेदार भाई, आपकी पसंद के गाने मस्त बिल्कुल, लेकिन हर सिग्नल पर आपको लाइट मिले रेड, आपको करना पड़े मजे का इंतजार, यानी गाड़ी कम चले और आप ज्यादा कॉन्सर्ट टाइप ऑफ फील एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई मेरा सवाल आज का मुद्दा छोटा सा है, मिस्किन सा मासूम सा आज का मुद्दा ये है, तो बताएं आप ग्रीन लाइट के बदले एक ही गाना बर्दाश्त कर लेंगे या परफेक्ट प्लेलिस्ट के लिए हर सिग्नल पर रुकना आपको कबूल होगा? बताओ क्या चाहिए लाइफ में, ग्रीन लाइट एक ही गाना या रेड लाइट और मस्त मजेना प्लेलिस्ट? तो फिर भाई गोविंद यहाँ फुल्लो, उठाओ अपने फोन और मैसेज कर डालो 6622107 पर, आप मैसेज कर सकते हैं। चाहते हैं अगर बातचीत करना तो हम बात भी कर सकते हैं 4434377 पर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर किसी की जो है ना वो मसला चल रहा है कि भाई देखो बैलेंस नहीं है, बात करने का दिल तो बहुत कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम आपको कॉल कर लेंगे, मैसेज भेज दो। तो भाई देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है, पहले कॉलर। और अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कल थे बिल्कुल आज वैसे ही हैं, मतलब फिट फाट। आप बताएं आप कैसे हैं भाई
2: जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत है। तो बात करो
0: हमजा, बात करें हमजा भाई, ये बताएं कि जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी
2: उस मालिक का लाख शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इस हाल में रखे, हमेशा खुश रखे।
0: अरे भाई
2: मैं तो बस यही दुआ करता हूँ।
0: आप ही बात सुनकर ना मुझे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला सीन है, लेकिन बातें याद रह जाती हैं। मुझे एक याद है, कॉलर भाई हमें कॉल करते थे, वो कहते थे अल्लाह की रजा में राजी हूँ। ओए होए होए, उनकी बात तो मेरी दिल पे ऐसी लगी। मैं तो अब जब भी कोई मुझसे पूछता है ना कि भाई कैसे हो, मैं कहती हूँ अल्लाह की रजा में राजी हूँ, अल्लाह की रजा में राजी हूँ। ये अच्छी बात लगती है, दिल पे लगती
2: बात है बहन, क्योंकि अगर आप जना उस रजा में राजी नहीं भी हो ना, ठीक है, तो फिर आप डिप्रेशन के अलावा और कुछ नहीं है आपके पास।
0: ये बड़ी हकीकत बात है,
2: आप कुछ नहीं कर सकते,
0: ये सच बात है,
2: सिवाय डिप्रेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके निजाम में राजी रहो, वो इतना के नवाजता है ना कि जिसकी घंटा हारे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, एक रजा तो अल्लाह की रजा होती है, वो तो मैंडेटरी है, फिर एक चीज ऐसी होती है कि अल्लाह ताला आपको चॉइसेस दे देता है। हम चॉइसेस के बारे में बात कर लेते हैं भाई, ठीक है? तो आज हमारा मुद्दा ये चल रहा है जिसके अंदर हम चॉइस कर सकते हैं अपनी खुद, ठीक है? मामला ये है कि आपको दी जाए, ये ऑप्शन दिया जाए, पहला ऑप्शन कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइविंग तो जिसके पास लाइसेंस है वो तो करेगा ही करेगा। तो भाई आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रैफिक भी है, लेकिन
2: थोड़ी सी काटूं माजरत के साथ,
0: जी जी
2: आपकी बात थोड़ी सी काटूंगा माजरत के साथ।
0: हाँ जी,
2: आपके ऑप्शन तो मेरे खैर पहले सुने और मेरा भी दिल पता क्या करता, मैं आपको पहले बोलता हूँ सेकंड सेकंड सेकंड। वो पिछले दिन एक रील देखी थी, उसमें बोलता है कि भाई आप ना बाहर जाना, आप अपने वाइफ के साथ बाहर जाना चाहोगे या फिर सेकंड ऑप्शन? पहले बोलते थे
0: सेकंड सेकंड
2: वाइफ के साथ नहीं जाना, सेकंड
0: सेकंड।
2: तो हमने कंडीशन मेरी यही थी कि सेकंड वाला,
0: क्योंकि
2: सफर अगर आपका जो क्या नाम है रेड लाइट वाला, इंतजार आपको करना मुश्किल नहीं होता अगर आपके साथ हम सफर अच्छा हो,
0: ठीक है?
2: तो उस कंडीशंस में आपको इंतजार करना, आपको इंतजार नहीं लगता, वो आपको कुछ पल ऐसे बन जाते हैं कि जहाँ आपकी यादें ठहर सी जाती हैं।
0: अरे वाह भाई, तो गहरी बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें करने लगा है छोटे।
2: ज्यादा बेहतर लगता है,
0: सही। तो आप चाहेंगे,
2: क्योंकि स्पीड और जल्दी गुजर जाने में आपकी ना यादें आपके साथ रहती हैं और ना आप उस पल को एंजॉय कर सकते हो जिधर आप, अब मिसाल के तौर पर आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं,
0: हाँ जी,
2: ठीक है, और आपके पास खुला टाइम है, मिसाल के तौर पर आप पूरा दिन फ्री है,
0: हाँ,
2: आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और रस्ते में आप मिसाल के तौर पर आपको पड़ते हैं 50 सिग्नल्स, अराउंड 50 सिग्नल्स आपको पड़ते हैं जिस वे पे आप निकले,
0: सही,
2: और आपके साथ एक अच्छा सा हमसफर आपका बैठा है, चाहे वो आपका दोस्त है, वाइफ है, अदरवाइज कोई भी है,
0: ना फिकर ना फाका इश्कर काका वो वाला सीन है।
2: हाँ, और आपको सिग्नल अगर बंद भी मिल रहे ना और आपकी प्लेलिस्ट अच्छी चलती जा रही है, ठीक है, आपकी बातें अच्छी चल रही है, तो वो हर सिग्नल आपके लिए एक अलग गना क्रिएट कर देता है और आपकी यादगार रह जाती
0: है।
2: और वही अगर खुले मिल रहे हैं तो आपका सफर इतनी जल्दी गुजर जाता है कि आप बोलते यार अभी तो बैठा था बस,
0: ये
2: क्यों गुजर गया।
0: कंपनी मैटर्स, मतलब आप उन लोगों में से जो कहते हैं कि भाई सफर ज्यादा जरूरी है ना कि मंजिल,
2: हकीकत बात है,
0: ये अच्छी बात है भाई, बहुत
2: सफर अच्छा हो तो मंजिल ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, चाहे वो जैसी भी हो।
0: देखें ये रुलाने वाली बातें कर दी आपने, ये बहुत इमोशनल वाली बातें हो गई, बहुत गहरी बातें कर दी।
2: अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को।
0: नहीं नहीं, वो हम कहते हैं
2: हम लोगों के लिए स्पेशल,
0: वो हम कहते हैं क्या कहते हैं कि वो खुशी के आंसू, खुशी के आंसू, ज्ञानी बातें हो गई। अच्छा ये तो एक हकीकत बात है, ये तो एक हकीकत बात है कि द जर्नी मैटर्स एंड योर कंपेनियंस मैटर, जो आपके साथ।
2: अब सैंपल से आप लोगों की मिसाल है, मैं इधर डिलीवरी बॉय काम करता हूँ इधर कतर में,
0: सही।
2: तो अब हमारा सफर शुरू होता है सुबह 8 बजे,
0: सही,
2: ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूँ मेरा सफर शुरू होता है सुबह 8 बजे और रात तकरीबन 8-9-10 बजे तक मैं स्टिल रोड के ऊपर होता हूँ,
0: सही,
2: ठीक है। और हमारा क्या होता है, अब मैंने आते ही FM 107 शुरू कर दिया, ठीक है, इससे पहले मेरा क्या था, मैं अपने बस लगा हूँ, ठीक है, दोस्तों वगैरह को कॉल कर ली तो कर ली, अदरवाइज मैं अपना काम पे लगा हूँ, मुंह बंद कर,
0: सही।
2: अब आप लोगों का स्टार्ट होता है, पहले आता मैं अपनी जना जो कुरानी आयत वगैरह वो पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, उसके
0: सही।
2: बाद आप लोगों का चैनल स्टार्ट होता है, आपसे मुलाकात होती है, ठीक है, आपसे बातचीत की, थोड़ा टाइम गुजर गया, ठीक है, सफर का पता नहीं चलता। मेरे 8 से 10 घंटे या 12 घंटे जो रोड के ऊपर होते हैं, आप यकीन करें लिटरली मुझे जरा अंदाजा नहीं होता वो कब वक्त गुजर जाता, ठीक है। आपके बाद फिर वो जना अमीन भाई आते हैं जिनकी न्यूज जरा सुनते हैं, उसके बाद फिर जना थोड़ा बहुत सिलसिला चलता है, फिर आ जाते हैं हमारे फजील भाई, ठीक है, उनका जो हंसने का अंदाज है वो एक अलग ही मजा देता है। फिर उसके बाद आता है हमारा अपना भाई कबीर भाई,
0: कबीर भाई, कबीर भाई तो लाखों दिलों की जान।
2: उसका इंतजार, उस भाई का इंतजार पूरे दिन होता है, ठीक है। फिर वो वक्त जिस वक्त उनका शो खत्म होता है ना, उसके बाद लगता है बस ठीक है यार, दिल मुकम्मल हो गया, सही है घर जाते हो।
0: हाँ जी,
2: उस वक्त ये कंडीशन होती है हमारी।
0: अच्छा वैसे तो
2: लेकिन ये है कि मजा आता।
0: वैसे एक बात है, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, ये जो ड्राइविंग का और डिलीवरी का काम होता है ना पूरे दिन का, ये भाई बहुत सख्त काम है। लोगों को आसान लगता है ये सुनने में, लेकिन बहुत सख्त काम है। और इसके अंदर
2: मैं ही समझता हूँ कि हौसला आप में होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
0: बस ये ये आज की जनरेशन को बात समझ में आया तो क्या तो बात होगी। ये क्या तो बात होगी।
2: अल्लाह सबको हिदायत दे,
0: आमीन, हम सबको दे, हम सब इंक्लूडेड है इसके अंदर, आज की नहीं पुरानी वाली भी जनरेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा भाई देखें, आपके लिए तो प्लेलिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपका जिस तरह का काम है ना उसके अंदर तो प्लेलिस्ट ही इंपॉर्टेंट होगी।
2: मैं इतना शौक नहीं रखता, बट जो आप लोगों के चल रहे होते हैं उसमें कुछ गाने ऐसे आते हैं जिसमें दिल नहीं करता, और कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ ये ठीक है यार, ये चल रहा है, अब रिदम बनी हुई है,
0: सही
2: चले रहते हैं, तो ये काम होता
0: है, मूड मूड के ऊपर डिपेंड करता है। उस वक्त कैसा मूड है,
2: क्लासिक सुनता हूँ,
0: सही।
2: अभी जो आपके शुरू के 2 गाने चले जो आपने स्टार्टिंग में लगाए,
0: जी जी,
2: तो वो एक मजा आ रहा था, मैं बिल्कुल स्लो आवाज करके ना और फील लेता था।
0: वेरी गुड, वेरी गुड।
2: तकरीबन 16 किलोमीटर का सफर था और मेरा गुजर गया, मैं अभी अपनी लोकेशन पर खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, आपके बाद मैं अभी कस्टमर को कॉल करूंगा और वो आगे अपना सामान लेके जाएंगे।
0: चले भाई, आपको आपकी प्लेलिस्ट मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको सफर में आसानी करे और आपकी जॉब भी अच्छी रखे और अपना ढेर सारा ख्याल रखे, अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट आपकी बनी रहे,
2: याद रखे।
0: अल्लाह हाफिज,
2: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
0: तो भाई ये थे हमारे साथ हमजा भाई, और हमजा भाई की भाई मैं हैट्स ऑफ है, हैट्स ऑफ है, ऑनेस्टली हैट्स ऑफ है, क्योंकि चाहे बाइक में डिलीवरी देते हैं डिलीवरी वाले, या चाहे गाड़ी में बैठकर देते हैं, इट इज़ अ टफ जॉब, इट इज़ नॉट समथिंग के भाई उसके बारे में कोई रैंडमली कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं हो जाता है कर लेते हैं। भाई अगर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़े भारी वर्ड होते हैं, अगर कोई शौक में कोई काम करता है ना तो वो और चीज़ होती है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी सर पर आती है ना, तो जो काम आपको अच्छा भी लगता होता है, ड्राइविंग करना, कुछ लोगों को लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो ड्यूटी बन के सर पर आ जाए ना, तो अच्छे अच्छे जो है ना फिर रो पड़ते हैं, और उसके अंदर भाई प्लेलिस्ट तो बनती है। तो भाई आज का मुद्दा हमारा ये है साथियों कि अगर आपको दिया जाए ये ऑप्शन कि आपने क्या करना है, आपने रोड पे जाना है, मतलब रोड पे जाना नहीं, गाड़ी है आपकी, आप चला रहे हैं गाड़ी, और लेकिन आपको सारे के सारे सिग्नल ग्रीन मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आपको प्लेलिस्ट में अपनी जो आप गाने सुनते हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही गाना, सारा टाइम एक ही गाना सुनने को मिले, इतना सुने उस गाने को, इतना सुने जैसे कि मैं सुनती हूँ, इतना सुने कि आपको ऐसा लगे कि भाई सिंगर अभी उठ कर आएगा और कहेगा बस कर जाओ ना करो मेरे साथ और नहीं करो। या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको सारे सिग्नल्स रेड मिले जितने भी आपके रास्ते में आते हैं, लेकिन आपकी प्लेलिस्ट बड़ी धमाकेदार सी हो। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है दूसरा और कोई। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
3: आबिद बात कर रहा हूँ।
0: आबिद भाई खैर खैरियत से हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप कहाँ से टपक पड़ी?
0: मैं कहाँ से देखिए, हम आसमान से यूं करके टपके हैं और खजूर में अटके हैं।
3: आपने इतनी ज्यादा लोगों को पहले डांटा हुआ है ना, कोई फोन कर रहा होगा तो उससे पहले
0: मेरी आवाज सुन के सारे बड़े डर जाते हैं। देखिए ये खौफ है, ये खौफ है, हमने मार्केट में खौफ रखा हुआ है अपना, रोब दबदबा देख रहे हैं आप।
3: वही तो हम सोच रहे हैं ना कि हम इस वक्त कभी कही गए किसका शो तो नहीं है।
0: अच्छा आप ना, करे
3: के ना
0: आप ना कंफ्यूज हो गए होंगे, आपने कहा भाई मैं अगर कॉल घुमा दूं और ऑन एयर ये मुझे डांट दे या मेरी कॉल काट दे तो क्या होगा? फिर आपने कहा अच्छा चलो 5 मिनट सुन लेता हूँ क्या हो रहा है मार्केट में।
3: नहीं मैंने कल भी ट्राई की थी लेकिन कल नहीं मिली थी, सोचा क्या आज कॉल करूं।
0: चलें जी
3: तो
0: वेरी गुड हो गया आज कॉल मिल गई। तो बताएं भाई हमारा मुद्दा सुना आपने आज का, बड़ा संगीन मुद्दा चल रहा है हमारा।
3: अभी सुना ब्यूटी ने उनके।
0: तो भाई आप क्या चूज करेंगे जिंदगी में?
3: कान तो बहुत ज्यादा है लेकिन ज्यादातर वो नहीं जो आपके कान पर कान के पर्दे पाड़े इस तरह होते हैं, रिलैक्स माइंडेड होते हैं क्योंकि हमारा काम सब ड्राइविंग का ही है ना।
0: अच्छा चले ज्यादातर गाने वो वाले कर लें जो आपकी पसंद की हो। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है ठीक है, एक ये कि आपको सारी हरी बत्तियां मिले लेकिन
3: अच्छा
0: सिर्फ एक ही गाना सुनने को मिले। अब चाहे आप 5 साल सफर करें चाहे रेस्ट ऑफ द जिंदगी करें, पूरी जिंदगी आप एक ही गाना सुन लेंगे।
3: हाँ सुन लेंगे, मसला नहीं है। वही गाना जो मतलब ये कि हम वो जो ज्यादा दड़प दड़प करते हैं उसको नहीं, बस रिलैक्स
0: किसी भी किस्म का आपकी पसंद का हो कोई एक गाना हो।
3: हाँ,
0: बस एक गाना।
3: हाँ, सुन लेते हैं,
0: वो लूप में लगा लेंगे मतलब चलता रहे रिपीट।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: दिल्ली भरेगा आपका?
3: नहीं।
0: अरे भाई मैं तो पागल हो जाऊं 3 दफा एक गाना सुनकर।
3: नहीं तो तवज्जो मत देना, वो बस लगा रहे आप अपने ड्राइविंग में लगे रहे, ज्यादातर काम तो ड्राइविंग का होता है, सुनने का तो नहीं होता
0: भाई। और दूसरा ऑप्शन तो इन्होंने सुना ही नहीं, इन्होंने पहले भी हामी भर ली।
3: दूसरा ऑप्शन हम सुनते हैं बहुत बहुत बार सुना है और सुनते भी है, एक एक गाना तकरीबन 2-3 घंटे तो बजता है जो पसंद आ जाए
0: 2-3 घंटे। हाँ ये मेरे साथ भी होता है कि कुछ गाने तो मेरे महीनों से प्लेलिस्ट में पड़े हुए। दूसरा ऑप्शन हाँ। ये है कि अगर आपको सारे के सारे सिग्नल लाल मिले, लाल बत्ती ठीक है
3: हाँ,
0: लेकिन हाँ। गाने आप रिपीट पे नहीं सुने, आपकी मर्जी के जैसे भी हो, आपकी अपनी प्लेलिस्ट हो, रैंडम गाने चलते रहे, तो आपको कौन सा बेहतर लगता है अपने लिए?
3: सिग्नल रेड हो।
0: अरे भाई ये भी सफर को एंजॉय करने वाला बंदा, सारे सिग्नल रेड हो। अच्छा पार्टी पलट दी इन्होंने, अरे देखो ये देखो ये देखो ये इन्होंने पार्टी बदल ली फौरन। पहले कह रहे थे कि नहीं हरे मिले एक ही गाना सुन लूंगा, अब कहते हैं जब दूसरा ऑप्शन सुना करें लाल बत्ती वाले।
3: हम इस तरह है ना कि हम तकरीबन कितना टाइम हो गया, तकरीबन 4-5 साल से तो ड्राइविंग करते हैं, तो हमारा सिचुएशन एक तरह नहीं होती, कभी कभी सिग्नल रेड मिल जाते हैं कभी कभी ग्रीन मिल जाते हैं, तो हम दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं।
0: तो भाई हम एडजस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई सीधा साधा एक ऑप्शन पकड़ो, एक ऑप्शन एक साइड पर हो जाओ, ग्रीन बत्ती एक ही गाना, लाल बत्ती आपकी मर्जी की प्लेलिस्ट, आप जितने गाने बजाओ।
3: वैसे तो कतर इतना सा है, इतना ज्यादा तो बड़ा ही नहीं कि आपको कहीं दूसरे से दूसरी जगह जाना पड़े और आपको सिग्नल भी ग्रीन मिले तो आप तकरीबन पहुंचते हैं, तो मसला नहीं है उसमें एक गाना सुनने का। अगर सिग्नल रेड मिलते हैं आपको तो फिर तो जो भी हो चलेगा।
0: हम तो एक दिन की बात ना कर रहे ना, हम तो लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं ना। देखिए हम बड़ी पिक्चर देखते हैं, हम बड़ा बड़ा नजरिया है हमारा, बहुत दूर तक देखते हैं।
3: होगा फिर हाँ दूसरा ऑप्शन रेंडम अच्छा होगा,
0: लाल बत्ती और रेंडम गाने अपनी मर्जी के। अच्छा चले भाई दूसरा ऑप्शन अच्छा है, चले भाई ठीक है ओके। और ये बताएं कि मौसम वौसम सही चल रहा है, आप एडजस्ट कर रहे हैं?
3: जबरदस्त गर्मी हो रही है,
0: कोट शर्ट पहना हुआ है, जैकेट शैकेट साथ में पकड़ी हुई है।
3: नहीं भी अभी भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, तो अभी एंजॉय कर रहे हैं इस गर्मी को, तो एक दो महीने के बाद ही नहीं होगी।
0: मैंने कहा गाड़ी का हीटर शीटर ऑन है, गरम शर्म बैठे हैं, जैकेट शैकेट ली हुई है।
3: अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अच्छे हैं, ये बाहर जो लोग वो हाथ के जो मजदूरी कर रहे हैं या जो बाइक वगैरह है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि एसी कहते बैठा हुए हैं।
0: बस इस मामले में ना यही कहा जा सकता है कि जिसकी जितनी इस्तात हो उस इस्तात के मुताबिक दूसरों की मदद कर देनी चाहिए। कभी कोई ठंडे पानी का क्रेट ले लिया बॉटल्स का, कभी कोई लस्सी के जो क्रेट आते हैं वो ले लिए और फिर बांट दिए उनके अंदर, तो ये एक सदका भी होता है और दूसरों का ख्याल भी होता है। तो भाई चले आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन पार्टी चेंज कर लेते हैं, ये बचल गया मुझे। आबिद भाई फौरन पार्टी बदल लेते हैं। आबिद
3: नहीं हम एडजस्ट करते हैं ना, हमें मसला नहीं है क्योंकि हाँ कोई भी हो तो सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट कर लेते
0: हैं। बड़े एडजस्टेबल से चल रहे हैं आबिद भाई, चले आबिद भाई एडजस्टेबल रहे, खुश रहे,
3: फेस किए इसीलिए आपको बताया क्योंकि टाइम ज्यादा हुआ ड्राइविंग का इसीलिए।
0: चले भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अच्छी सी प्लेलिस्ट रखें, अल्लाह हाफिज।
3: ओके अल्लाह हाफिज।
0: तो साथियों आप लोगों को याद दिलाती चलूं कि अभी तो मरहला हमारा आपसे मुद्दे का चल रहा है, टॉपिक का चल रहा है, लेकिन अभी 12 बजे के बाद से ना हम लोग शुरू करेंगे अपना बॉलीवुड का गेम। अच्छा, कुछ लोगों को कल ये मसला हुआ था, मैंने देखा कल, क्योंकि फर्स्ट डे था, हम गेम खेलने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था। कुछ लोगों को ये मसला हुआ था कि सिर्फ हुक में म्यूजिक है, तो चलें कोई नहीं, आज हम एक काम करते हैं, कुछ गानों में म्यूजिक भी रख लेते हैं और कुछ गानों में लिरिक्स भी रख लेते हैं, लेकिन लिरिक्स हम बीच के देंगे, तो आपको वो लिरिक्स सुन के पहचानना होगा कि गाना कौन सा है और उस जिस मूवी का वो गाना है वो भी बताना होगा। देखिए इतना ईजी तो ना रखते हम गेम को। तो भाई देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे इको में आवाज आ रही है, इको इको इको
2: आवाज आ रही है,
0: डबल डबल आवाज आ रही है, डबल डबल। अब सही हो गए, अब सही हो गए। तो भाई मुझे ये बताएं कि कौन बात कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये वाकरा वाले बात कर रहे हैं कोई। अच्छा, मेजर से बात कर रहे हैं। मेजर की कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है,
2: मेजर खत्म हो गई, मेजर में कंस्ट्रक्शन नहीं खत्म हो गया।
0: तो हमारे साथ हैं कौन?
2: फिर बात कर रहा हूँ।
0: कौन कौन कौन कौन?
2: मेजर से।
0: मेरे भाई मुझे ना आपकी आवाज कुछ ऐसी आ रही है कि क्लियर नहीं आ रही और मैं समझ नहीं पा रही कि कौन बात कर रहा है।
4: अभी सही आ रही है?
0: हाँ, ये हुई ना बात।
4: मैं कह रहा हूँ कि मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ।
0: जी मुदस्सिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
4: ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? ठीक है, खैरियत है,
0: अल्लाह का करम है। और ये बताएं कि मौसम एंजॉय कर रहे हैं?
4: मौसम तो बस एंजॉय कर रहा है, आज तो 47 तो हमारे गाड़ी में बता रहे हैं, लेकिन आप बता रहे।
0: अच्छा, मुझे 44 दिखा रहा है भाई।
4: मेरा तो पहले, मेरा भी 44 था पहले, फिर मैंने गाड़ी बंद किया था, चला गया था घर, घर से पहले निकला, गाड़ी स्टार्ट किया तो अभी तो 47 बता रहा है।
0: अरे भाई, मुझे तो अभी 44 ही बता रहा है,
4: पता नहीं है कि फायदा।
0: तो मुदस्सिर भाई, हम कुछ मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मौसम हमें एंजॉय कर रहा है हमारी हालतें देखकर।
4: ये तो है।
0: देखिए, मौसम अगर ऐसा ना होगा तो फिर हमें खजूरें भी ना मिलेंगी ना खाने को।
4: नहीं तो फिर गर्मी का तो मजा भी नहीं आएगा ना। गर्मी का भी एंजॉय करना चाहिए ना।
0: गर्मी को भी एंजॉय करना चाहिए, ये भी हकीकत बात है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड वाले क्या जाने गर्मी की कदर, हमसे पूछे कोई कितना कितना मजे की होती है गर्मी।
4: गर्मी का तो अलग एंजॉय होता है ना, जैसे हम लोग पाकिस्तान में कितना सर्दी होता है ना।
0: हाँ जी।
4: तो यहाँ पे ये सर्दी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्राउजर नहीं लगाता है, कुछ भी नहीं लगाता है, आग नहीं बुझाते है। जब हम लोग अलखोर या मसईद जैसे जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए हम सिर्फ आग बुझाते हैं।
0: सही।
4: जब दोस्तों के साथ चले जाते हैं।
0: सही सही।
4: लेकिन वो सर्दी का भी एंजॉय करना, उसका भी एक अलग मजा होता है।
0: हाँ, सर्दी गर्मी अपने इंसान का मसला बताए क्या है मुदस्सिर भाई। इंसान का मसला ये कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता।
4: नहीं रहता, ये तो है।
0: गर्मी मिले तो रोना है कि सर्दी चाहिए, सर्दी मिले तो कहेगा भाई गर्मी नहीं है। तो इंसान चलता ऐसे घूमता फिरता जिंदगी गुजार लेता है। अच्छा भाई, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर हमारा मुद्दा ये है कि अगर आपको देखा जाए, मुदस्सिर भाई को देखा जाए, तो मुदस्सिर भाई को लाइफ में क्या चीज पसंद आएगी? ये कि सारे सिग्नल रोड पर ग्रीन मिले, लेकिन उसकी शर्त ये हो कि एक ही गाना रिपीट पे चलता रहे। दूसरा ऑप्शन ये है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि जितने भी सिग्नल मिले सब लाल बत्ती वाले, सारे रेड मिले, लेकिन बेशक गाड़ी रुक रुक के चल रही हो, लेकिन प्लेलिस्ट अच्छी हो अपनी, अपने मजे की, और कोई भी गाना रिपीट पे ना हो। तो आपको कौन सा वाला ऑप्शन अच्छा लगेगा?
2: मुझे तो ग्रीन वाला ऑप्शन अच्छा है।
0: ग्रीन वाला,
2: क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया था ना ग्रीन वाला सिग्नल।
0: क्या क्या क्या क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ?
2: मैं अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लुसेल तक जा रहा था, पूरा मुझे ग्रीन रेड पे मैं पूरा निकल रहा था।
0: हाँ जी।
2: हम कॉन्फ्रेंस में काम कर रहे थे ना।
0: सही।
2: प्रोटोकॉल के अंदर जा रहे थे,

0: किया था।
1: अच्छा ये है, ये जो वीआईपी या वीवीआईपी वाली कार्स होती हैं उनका एक अपना प्रोटोकॉल जो होता है, वो सिग्नल वो रोड ब्लॉक किया था उनके लिए, वो सीधी सीधी निकलती हैं। तो ये वाकई में ग्रीन सिग्नल पर, चले हमें तो ग्रीन सिग्नल, हम वीवीआईपी ना हैं अभी तक, इंशाल्लाह होंगे किसी दिन तो, लेकिन ग्रीन सिग्नल वैसे भी नॉर्मली मिल जाए ना, अगर चार पांच सिग्नल्स पर एक सिग्नल आपको खुला मिलता है ना, तो आगे तीन सिग्नल आपको खुले मिलते ही मिलते हैं, तो उसका मजा कुछ और होता है, उसमें प्लेलिस्ट का पता नहीं चलता।
0: ये जो है ना, ये अलवा स्ट्रीट पर जो सिग्नल नहीं है,
1: हाँ जी, पूरा एस्पार वाला पूरा रोड है, पूरा एस्पार वाला पूरा रोड है, ओ भाई,
0: एक अगर एक सिग्नल खुला मिल गया ना, तो
1: सारे सिग्नल खुले मिलते
0: हैं। सिग्नल इसमें तो गाना लगाओगे ना, आपकी जो मनपसंद का गाना होता है, तो अलग मजा होता है
1: उसको ना। उसको फिर होता ये कि सिग्नल जब आपको ग्रीन मिलते हैं ना सारे, तो उसके अंदर फिर परवाह नहीं रहती गानों की, उसके अंदर फिर ड्राइव का मजा आता है आपको। सही,
0: ड्राइविंग के भी तो, लेकिन जो साउंड आप सुनते हैं ना, उसका भी मजा होता है।
1: सही सही सही, चले आप भी मेरी तरह है, मतलब आपको ऑप्शन नहीं चलेगा, हमारे को सिग्नल ग्रीन चाहिए, गाना जो चल रहा है चलते रहने दो, कोई परवाह नहीं,
0: निकलो।
1: हाँ,
0: गाड़ी भगा दो, ब्रेक नहीं लगाना है।
1: ब्रेक नहीं लगाना है, हाँ ये होता है।
0: चले भाई, ये तो प्रोटोकॉल में गाड़ी चलाते हो ना
1: जी,
0: वो बहुत टफ ड्राइविंग होती है। मैंने एक बार किया था, वाला ये मेरा दिल जो था ना, वो बिल्कुल कितना जोर से धड़का था ना,
1: जिम्मेदारी होती है ना।
0: हाँ, वो एक मिनट से कम करते थे तो हमारा गाड़ी पलट जाता है,
1: वो स्पीड में चलाते हैं उनकी, उनका वो आप कह लेंगे वो उनका स्टैंडर्ड यही है ना, उनका वो रोड सारे ब्लॉक करते हैं, तो वो कहते हैं बस प्रोटोकॉल वाली गाड़ी तो आगे निकालो। सही,
0: आगे निकालो बस, जैसा प्रोटोकॉल जाता
1: है। हमारा दिमाग इस बात पर होता है क्योंकि हम जो हैं वो उस ड्राइविंग के आदी नहीं होते, हमारा दिमाग हम बार बार अल्टीमेटम दे रहा होता है कि भाई रुक जाओ, सिग्नल रेड है, रुक जाओ।
0: लेकिन यहाँ पे जो जो लड़के हैं ना, जो हमारे पाकिस्तानी भाई, जो पाकिस्तान जो खासकर बलोच और पठान भाई, जो यहाँ का पैदाइशी लड़के, उन लोगों का ये आदत बन गया है, वो लोग ये काम करते हैं, उन लोगों को बहुत मजा आता है। फिर मैंने तो चेंज किया था, मैंने कहा ये तो हम नहीं कर सकता, ये तो बहुत टफ काम है।
1: चलिए, अल्लाह ताला सबकी रोजी रोटी बरकरार रखे, जो जिस चीज में खुश है, चाहे जो जो हरी बत्ती में खुश है उसको हरी बत्ती मिले, जो लाल बत्ती में खुश है उसको लाल बत्ती मिले।
0: अच्छा एक बात बताओ, भी जो आपके साथ बात कर रहा था उसने बोला कि आपने बहुत लोगों को डांटा है, आप डांटते भी हो, किसको डांटा है हमको तो मालूम नहीं।
1: अच्छा मुदस्सिर भाई, आपको पता ही नहीं इस कहानी का?
0: नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं मालूम। मैं महवेश को जानता हूँ, महवेश को मैं जब भी तुम बच्चों वाला प्रोग्राम करी थी मैंने।
1: मुदस्सिर भाई आपसे मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, अभी फिलहाल अजान का टाइम हो गया है, तो अजान की तरफ चलूंगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।
3: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
0: आप सुन रहे हैं Sun and Sound RJ Safa के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
4: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद आरजे सफ़ा। और भाई इस वक्त हम वापस आ चुके हैं और मैं आपको ये बताती चलूं कि इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बज रहे हैं 11:49 हो रहे हैं भाई। और मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहूँगी जो हमारे पास, हमारे साथ जो हम डेली देख रहे हैं चल रहा है महामुकाबला फुटबॉल का, उसकी थोड़ी बहुत अपडेट देना चाहूँगी। अपडेट से पहले आपको याद दिलाती चलूं कि हमारा

0: मुद्दा ये चल रहा है साथियों कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको जिंदगी भर ग्रीन लाइट मिले सिग्नल्स पर, लेकिन उसके साथ साथ एक ड्रॉबैक ये मिले कि भाई आपका एक ही गाना प्लेलिस्ट पर रिपीट पर चल रहा हो, तो क्या आपको ये ऑफर मंजूर है, या कि सारे सिग्नल आपको रेड मिले लेकिन प्लेलिस्ट आपकी अपनी मर्जी की हो। अब हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, चाहें तो हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 6622107 पर। और इससे पहले कि मैं मैच की तरफ चलूं, जो कि कल धमाकेदार मैच हुआ, देखिए पहले मैच की तरफ चल लेते हैं, फिर आपसे थोड़ी बहुत मैसेजेस की तरफ भी आऊंगी मैं कि जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि वो क्या प्रेफर करेंगे। मैच की तरफ अगर आऊं तो भाई मैं आपको बता दूं कि कल का मैच नहीं था, बल्कि ये यूं लग रहा था कि जैसे फुटबॉल का जो आप कहते हैं ना UPSC एग्जाम होता है, जी हाँ वो वही था, जहां नॉर्वे ने ब्राजील को सरप्राइज पेपर के तौर पर एक पेपर पेश कर दिया। देखिए ब्राजील जो है ना वो आया था बड़े स्टाइल से, स्किल और सांबा फुटबॉल लेकर वो हाजिर होते हैं हमेशा, दे आर नोन फॉर इट। और उसके बरक्स फिर नॉर्वे ने भी क्या ही करना था, नॉर्वे ने उनसे कहा कि भाई देखो ये सब कुछ ठीक है, इतने सालों से तुम लोग हाई टॉप पर हो, लेकिन आज का रिजल्ट ना हम लेकर जाना चाह रहे हैं। तो भाई हुआ ये कि देखिए ब्राजील जो है ना वो बॉल को फील्ड में ऐसे घुमा रहा था जैसे कोई विंडो शॉपिंग करने आता है मॉल में, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही पोजेशन था अच्छा खासा ब्राजील के पास बॉल का, लेकिन नॉर्वे ने उसको अनलॉक कर लिया। 79th मिनट में जो है नॉर्वे ने गोल अच्छा खासा मारा, और अचानक नॉर्वे ने ब्राजील को ये बोल दिया कि देखो एंटरटेनमेंट अपनी जगह और बाजी अपनी जगह, सीधा सीधा ठोक कर गोल उन्होंने कर दिया। और फिर जब तक ब्राजील रिकवर करता उस गोल से 90 मिनट गुजर चुके थे, और नॉर्वे ने फिर से ब्राजील को अचानक से शॉक कर दिया और दूसरा गोल भी गिफ्ट रैप करके ब्राजील को दे दिया। अब देखें हुआ ये कि 90 प्लस मिनट्स में नेमार को अचानक से होश आया, और नेमार ने कहा क्यों ना मैं भी जाते जाते एक गोल कर ही जाऊं, लेकिन नेमार को होश आते आते या कम बैक करते करते देर हो चुकी थी। पेनल्टी गोल तो उन्होंने कर लिया, लेकिन वो पेनल्टी गोल जो है वो उन्हें स्कोर बोर्ड पर रिस्पेक्टेबल तो बना गया, लेकिन मैच नहीं जितवा सका। तो भले हुआ ये कि कल के मैच में जो कि था ब्राजील और नॉर्वे के बीच में, वाइकिंस बाजी ले गए भाई, वाइकिंस बाजी ले गए। जो गोल किए वो हैलैंड ने ही किए, तो बड़े ही अच्छे तरीके से ब्राजील ने ये कहा कि वी कंट्रोल पोजीशन, तो उसका जवाब नॉर्वे ने ये दिया कि वी कंट्रोल द स्कोरबोर्ड। ब्राजील के अटैकर्स ने शूटिंग प्रैक्टिस की, जहां वहां नॉर्वे के गोलकीपर्स ने कहा ब्रो नॉट टुडे नॉट टुडे। तो आप ये बताएं कि आप लोगों की कौन सी फेवरेट टीम चल रही है भाई। चले भाई अगर मैसेजेस की तरफ आया जाए साथियों, तो यूसुफ भाई का मैसेज आया है, मोहम्मद यूसुफ खान, और वो कह रहे हैं कि भाई सफा आई वुड चूज ग्रीन लाइट विद रिपीट सॉन्ग, नो प्रॉब्लम फॉर मी, रुके रहने से रिपीट सॉन्ग सुनते हुए आगे बढ़ना बेहतर है। हाँ रेड सिग्नल पे रेडियो पे आप जैसे इतने प्यारे प्यारे आरजेस को सुनते हुए रुके रहना अच्छा लगता है। इन्होंने दोनों ही चूज़ कर लिए, इन्होंने कहा मैं दो लूँगा भाई, एक ही चूज़ करना था हमें, एक ही चूज़ करना है, ये नहीं कि व्हाट आई कैन डू आई विल, मुझे चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज कि क्या क्या चीज़ आपको एग्जैक्टली पसंद है, कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है आपने। इसी के साथ हमारे साथ फवाद खान भाई हैं, फवाद खान भाई आपने वॉइस मैसेज भेजा है, लेकिन वॉइस मैसेज जो है मैं सुनती हूँ बाद में और फिर इसका रिप्लाई देते हैं। और वॉइस मैसेज और भी आए हुए, अजमल भाई के भी आए हुए वॉइस मैसेजेस, वो भी हम सुनते हैं और फिर उसके रिप्लाई करते हैं। तो साथियों सवाल ये चल रहा है, जरा बताओ ग्रीन लाइट विद रिपीटेड गाना या रेड लाइट विद योर फेवरेट प्लेलिस्ट। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी कौन है हमारे साथ?
1: मैं हुसैन बात कर रहा हूँ।
0: जी हुसैन भाई क्या ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की दुआ है।
0: बुजुर्गों की दुआ, बाल सफेद हो गए तो बुजुर्ग हो गए हम, वाह वाह।
1: जी अब आपके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो गया, आपके बाल सफेद हो गए तो आप बुजुर्ग हो गए, तो आपकी दुआ ही ले।
0: बिल्कुल बिल्कुल मेरी दुआएं सबके साथ हैं, आप मेरे

0: लिए भी दुआ करें
1: अल्लाह बुजुर्ग नहीं
0: है देखें कोई बात नहीं कितने साल के लिए 25 साल उम्र 20 साल आप ही क्या एज रखी जाए
1: मैं आपसे तकरीबन 3 साल छोटा
0: अच्छा मुझसे 3 साल छोटे हैं 3 साल मैं मैथ्स में बहुत बुरी हूँ बता मैं मैथ्स में ना पासिंग मार्क्स 32 नंबर लेकर पास हुआ करती थी मैं
1: सेम पिंच मेरे भी 30 मार्क्स थे
0: मैं 32 लेती थी
1: इसलिए क्योंकि आप बड़ी है ना 3 साल मैं अभी तो बताया
0: अच्छा उम्र का तकाजा था कि 2 मार्क्स मुझे अच्छे मिल जाते ज्यादा आपसे चलें ठीक है
1: क्योंकि तजुर्बा हो गया ना
0: सही देखिए अब मेरा हाल ये हो गया कि मुझे इस वक्त जो है ना आपका नाम फिर भूल गया उम्र हो गई है मेरी मान लिया मैंने
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: आपने नाम क्या बताया था अब आप कहेंगे नाम तो सुना होगा हुसैन भाई देखिए मैं नोन टू बी गजनी हूँ तो मुझे बार बार याद दिलाते रहा करें ठीक है उम्र का अंदाजा यहाँ से ये उम्र का तकाजा क्या करें चले आपकी खुशी के लिए हमने मान लिया कि हम आपसे बड़े हैं आप हमसे 3 साल छोटे हैं मान लिया हमने आपकी खुशी के लिए क्या याद करेंगे
1: अच्छा मैं तो छोटा हुई है तो मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ
0: अच्छा अगर आप मुझसे 3 साल छोटे हैं तो आप वाकई तो आप 20 साल के हुए फिर तो आप वाकई में 20 साल के हो गए
1: जी
0: इतना बुरा मत भी नहीं है मेरा गुड गुड गुड गुड क्योंकि मुझे पता है मेरा मैंने 23 से ऊपर तो जाना नहीं है मैंने फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ अगले 10 साल बाद भी कोई मुझसे पूछेगा तो मैं 23 की ही होंगी चले उम्र को छोड़ते हैं और सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं
1: सिग्नल का तो ऐसा मतलब है अभी कि सिग्नल ग्रीन हो गाने रिपीट चलती रहे वो वीआईपी वाली फीलिंग आ जाती है
0: सिग्नल ग्रीन मिलना चाहिए जिंदगी में बाकी सब खैर
1: सिग्नल ग्रीन होना चाहिए बाकी तो रेड लाइट पे है तो फिर क्या ही कर सकते हैं लेकिन सिग्नल ग्रीन है तो बहुत मजा आ जाता है जैसे मैं कभी वाकिफ से अलवकरा की इधर जाता हूँ ना तो उधर बहुत सारे सिग्नल है उधर भी मुझे ज्यादातर सिग्नल ओपन ही मिलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और गाना गाते हुए मैं चला जाता हूँ
0: वाह सिग्नल ग्रीन और एक ही गाना सुन रहे होते हैं रिपीट पर
1: एक ही गाना वो गाना बज रहा है बस उसी को गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं लेकिन गाना बजता कहाँ है हम तो भाई फैन 1007 के हैं जो उस पे बजता है बस उसी को बड़बड़ाते हुए चलते रहते हैं
0: देखें ये आपने जो है ना बड़ी क्रिटिकल बात कर दी हम रिपीट पे ना चलाते गाने
1: नहीं हाँ रिपीट पे नहीं है मैं ये कह रहा हूँ 107 पे जो बजता रहता है हम उसको गुनगुनाते हुए चलते रहते हैं लेकिन सही बात है कि उस पे रिपीट नहीं चलता
0: लेकिन आपको तो ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि जरा ये बताएं कि आपको ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि ग्रीन बत्ती के साथ एक ही गाना रिपीट पर बर्दाश्त कर लेंगे
1: हाँ बर्दाश्त कर लेंगे
0: वाह
1: क्योंकि जो गाने मैं चूज करके रखता हूँ अपने प्लेलिस्ट में मेरे पास पेन ड्राइव होती है
0: एक ही गाना
1: अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको एक गाने को मैं 10 बार 12 बार इजिली सुन सकता हूँ इजिली
0: आप तो भाई सच में मेरे भाई है मैं बता रही हूँ
1: जी बिल्कुल इसलिए तो मैं आपको फॉलो करता हूँ
0: ये सही हो गया अच्छा हम दोनों एक जैसे एक ही गाना सुनेंगे हमें बस सिग्नल ग्रीन चाहिए बाकी हम एक ही गाना सुन लेंगे रिपीट पर
1: हम एक ही गाना सुन लेंगे वो बज रहा है तो वो बजने दीजिए वो कोई दिक्कत नहीं है उसको डिस्टर्ब ना भी हो तो चलेगा
0: ग्रीन चले ये सही हो गया ये अच्छा हो गया
1: सही है
0: चले भाई अच्छा लगा आपसे बात करके जी
1: आपकी तो कमाल कर दिया आपकी फेवरेट नॉर्वे है ना
0: ओ भाई मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फेवरेट टीम पोर्चुगल के अलावा कोई और हो ही नहीं सकेगी कभी जब तक CR7 है तब तक तो नहीं हो सकेगी
1: उस बंदे की वजह से उसने
0: और वो जो जिसका आप नाम ले रहे हैं ना उसने तो सबका दिमाग घुमा के रख दिया हेलन ने तो वो इतनी
1: बोल सकता हूँ कि उस बंदे ने कमाल कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा नाम
0: हेलन नाम है भाई हमें जिसके जो हमें पसंद आता है ना हम उसकी पूरी पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं तो हेलन नाम है उसका और वो जो गेम खेलता है ना खूबसूरत तरीन गेम तो CR7 के बाद अपनी लिस्ट में किसी का नाम आ रहा है ना तो वो हेलन का है
1: सही बात है सर वो मैंने देखी मैचेस मुझे बहुत मतलब पसंद आया वो भी वाकई में काफी अच्छा फेवरेट है आपका
0: तो भाई आपकी फेवरेट टीम आजकल कौन सी चल रही है
1: मेरी तो भाई अब जीते चाहे हारे हम तो भाई एम्बाप्पे के साथ जाते हैं
0: ओ फ्रांस की टीम ओ माय गॉड डाई हार्ड फैन
1: फ्रांसिया मैम
0: फ्रांसिया डाई हार्ड फैन चल रहे हैं भाई चलें देखते हैं इस दफा का वर्ल्ड कप

0: निकल मैं तो कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ या पोर्टुगल लेकर जाएगा या नॉर्वे लेकर जाएगा।
1: चलिए देखते हैं, फ्रांसिया के साथ ही जाऊंगा, लेकिन मतलब प्लेयर वाइज देखा जाए तो मुझे मतलब प्लेयर मिक्सिंग बहुत पसंद है, ऐसा ही।
0: वैसे एक बात है, फ्रांस के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, नो डाउट। फ्रांस के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, नो डाउट। तो उसका भी हम ये कह सकते, चलो अच्छे प्लेयर हैं, चलो देखेंगे, चलो होता है, अब ज्यादा तारीफ ना करवाए ना। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। तो साथियों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे आपके साथ गेम भी खेलनी है और आपसे ढेर सारी बातें भी करनी है। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी। कहाँ गया भाई, ये रहा

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। वेलकम बैक साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है 12:02 और सवाल वहीं पे बरकरार है कि आपने क्या चूज करना है, ग्रीन बत्ती विद वन सॉन्ग ऑन रिपीट फॉर लाइफ टाइम या रेड बत्ती सिग्नल जो है वो रेड हो और आपकी पसंद के नॉन स्टॉप गाने लगे हुए हो नॉट ऑन रिपीट। तो भाई आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर और चाहें तो 6622107 पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज वालों की शिकायत आ रही है, देखें आप मैसेज लेट पड़ती हैं तो भाई मैसेज भी साथ साथ में कोशिश करती हूँ कि पूरे पूरे मैसेजेस भी शामिल कर लूँ। हमारे साथ कौन है, मोहम्मद भाई हैं, मोहम्मद बशारत भाई। इन्होंने मैसेज कुछ ऐसा किया है कि बंदा क्या ही पढ़े ऑन एयर। इन्होंने लिखा है कि भाई ग्रीन सिग्नल हो। अच्छा मामला पता है क्या है, मामला ये है कि आप लोग मुझे सिनेरियोस दे रहे हैं, मैं आपसे सिनेरियो नहीं मांग रही, सिनेरियो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आपको ये कह रही हूँ कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अब आपके साथ कौन है कौन नहीं है उसके हिसाब से आप चूज करेंगे, ये मामला नहीं है। आपने इसके अंदर से चाहे सिनेरियो कुछ भी हो लाइफ में, चाहे बेगम साथ बैठी हो ना बैठी हो, लेकिन आपने कोई एक चीज चूज करनी है, ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल। तो भाई आप की कॉल्स जा रही हैं और देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मेरी आवाज रिपीट होते हुए, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ?
2: जी मेरा नाम अहमद है।
1: अहमद भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, आप कौन की दुआ?
1: तो शुक्र है, आपने भी जो है ना वो हुसैन भाई की तरह नहीं कहा बुजुर्गों की दुआ, मैं तो अपने सफेद बाल गिनना शुरू हो जाती हूँ फिर। जी
2: बुजुर्ग तो नहीं बोलूंगा, फिर भी आप मेरे अंदाज़े तो कह सकते हैं मेरे से छोटे ही होंगे आप।
1: मैंने कहा जब मुझे कोई बुजुर्ग बोलता है तो मैं अपने सफेद बाल गिनना शुरू हो जाती हूँ मैं। अच्छा ये बताएं अहमद भाई, हाल चाल कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह
2: तो ठीक।
1: अच्छा अहमद भाई ये बताइएगा कि मैं ऑप्शन दे रही हूँ, अच्छा

0: थोड़ा सवाल को समझ लें, मैं ऑप्शन दे रही हूँ लेकिन लोग मुझे सिनेरियो दे रहे हैं, मुझे सिनेरियो नहीं चाहिए, मुझे ऑप्शन का एक जवाब चाहिए। जैसे एग्जाम में सवाल आता है ना और उसके अंदर ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी, वैसे मैं एक सवाल कर रही हूँ और मुझे उसका सिर्फ एक ही जवाब चाहिए। अगर आप रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको लाइफ टाइम के लिए कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए? ये कि आपको जाते हुए सारे के सारे सिग्नल ग्रीन मिले, लेकिन उसके साथ साथ आप जो आपका रेडियो चल रहा है उसके ऊपर आप सिर्फ एक ही गाना रिपीट पे सुनेंगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करने के दौरान आपको लाइफ टाइम हर जगह रेड सिग्नल मिले, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये फैसिलिटी हो कि आपकी प्लेलिस्ट रिपीट पे नहीं हो, आपके पसंदीदा गाने रैंडमली चल रहे हों।
1: जी मेरा यही है, सेकंड वाला ही ऑप्शन मेरा।
0: सेकंड
1: वाला सुना यार, सलवार के नाम सुन के ये सो रेड सिग्नल का ही मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा।
0: तो सिग्नल
1: मेरे सेलेक्टेड गाने रिपीट होना चाहिए, बजते रहना चाहिए अलग से अलग से।
0: अच्छा, आपको अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट चाहिए, गाना रिपीट पे नहीं हो, मुख्तलिफ गाने चलते रहे, सिग्नल बेशक रेड हो।
1: हाँ,
0: अरे वाह, मतलब आप सफर एंजॉय करने वाले लोगों में से।
1: जी जी, और ये थे, अब मैं ऑन द वे हूँ, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ड्राइविंग करते हुए बात कर रहा
0: हूँ। चले भाई, थोड़ा ध्यान से चलाएं गाड़ी, क्यों मुझे फंसवाएंगे, खुद को फंसवाएंगे।
1: एकदम स्लो 70 की स्पीड से जा रहा हूँ, आपसे बात कर लेता हूँ, एकदम स्लो।
0: अच्छा, ये 70 की जो स्पीड होती है, वैसे बताइएगा ये स्लो होती है? मैंने तो सोचा था 10 या 5 की स्पीड स्लो होती होगी। अहमद भाई,
1: आपको एफएम सुन दूं बोल के, मैं एफएम नहीं सुनता, मेरे साथ में रहता कोई लड़का वगैरह कपिल का,
0: तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 70-80 स्पीड खासी होती है।
1: मैडम, ये स्पीड तो मैं पता है, आपसे बात करने के लिए स्लो लो ट्रैक पकड़ लेते आ रहा हूँ मैं,
0: मतलब अगर ये 70-80 की इनको स्लो लग रही है तो ये तो जहाज उड़ाते होंगे फिर। हमने रोड पे ही रहना है, हमने हवाओं में नहीं उड़ना। चले भाई, अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखिए, ध्यान से ड्राइविंग करें। और भाई ये बताएं, हमारे साथ गेम खेलेंगे, क्योंकि हमारे गेम का भी टाइम हो चुका है।
1: कौन सी गेम है
0: भाई? गेम ये है कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स को आपने पहचानना है कि किस मूवी का गाना है और कौन सा गाना है।
1: मैडम, अरे ये तो मैं कल से इंतजार कर रहा हूँ मैडम, कल आपका फोन लग रहा ही नहीं था, वो अरे कोई खास है भाई साहब से कॉन्फ्रेंस में, डीडीएल की, डीडीएलजे की इतनी जबरदस्त म्यूजिक उन्होंने तो,
0: अरे भाई वो तो मेरा दिल टूट गया था, मेरा दिल टूट गया था उसके ऊपर, मैंने कहा भाई ये वाली नहीं आ रही।
1: आप लगाइए मैडम, कितनी देर में लगाते बोलो मेरे को।
0: चले देखिए, 40 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है, 40 सेकंड के अंदर देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं।
1: चलो इंशाल्लाह
0: देखने, चलो कहाँ गया मेरा टाइमर, ये रहा मेरा टाइमर, और 1 2 3 कहाँ गया भाई, कहाँ गया, पहला गाना ये रहा, ठीक है, अब सुनिएगा गौर से, ठीक है,
1: ओके।
0: आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
1: कमाल का गाना,
0: कौन सा है?
1: धमाल का गाना है?
0: नहीं, धमाल का नहीं है।
1: एक दफा फिर से गोलमाल।
0: हाँ चलें भाई, एक और सुन लें, ठीक है, गाने का नाम भी गोलमाल है और मूवी का नाम भी गोलमाल है, एक और सुन लें भाई, ठीक है।
1: ये जब भी मिटका है,
0: ये जब भी मिटका, कौन सा गाना है, कौन सा गाना, गाना भी है
1: तुमसे दिल
0: होता है। मेरे भाई, गाना गाने को नहीं कहा मैंने, आपको नाम नाम बताने को कहा है, आप तो सुरताल में फौरन शुरू हो गए।
1: अरे मैडम, फेवरेट गाने बता रहे हैं आप,
0: टाइटल बताएं गाने का, वैसे आपका टाइम अप हो गया
1: है, ये
0: टाइम अप हो गया भाई। देखें, जब भी मेटका तो गाना है, तो आपको मिले हमारे पास से टोटल 3 पॉइंट्स, क्योंकि एक गाने को सही बताने में 1 पॉइंट आपको मिला, मूवी का नाम और जो है गाने का नाम टाइटल सॉन्ग बताने के लिए 2 पॉइंट मिल गए आपको, और दूसरा वाला गाने का आपने सिर्फ और सिर्फ मूवी का नाम

0: बताया, गाने का टाइटल सॉन्ग नहीं बता पाए हमें, टाइटल जो है ना गाने का वो नहीं बता पाए. तो चले नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम. फेवरेट सॉन्ग का टाइटल भूल गए. स्कोर आपका 3 का है, टोटल आपका स्कोर है 3. जी
1: गेम खलास,
0: गेम 40 सेकंड थे हमारे पास. कितने उदास हो गए. चले आप अहमद भाई उदास नहीं हुए, आप इंशाल्लाह कल फिर से कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज.
1: अच्छा गाना लगा देना सब कुछ ऐसा ही.
0: अच्छा चलें ठीक है, आपके लिए गाना भी लगा देंगे.
1: कौन सा वाला?
0: यही वाला जो आपने नहीं पहचाना कि किस कौन सा गाना था.
1: अच्छा वो ना,
0: आपको कौन सा वाला, आपको कौन सा वाला सुनना है? चले आपके दुख को गम गलत कर लेते हैं आपका.
1: गाना बहुत अच्छा है वो,
0: कौन सा वाला?
1: अरमान मलिक का.
0: अरे भाई इतने सारे गाने अरमान मलिक के. अच्छा एक काम करें, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा जो अगर आपको याद आ जाए तो, ठीक है? आप मुझे आप एक काम करें, अगर आपको मूवी का नाम और टाइटल याद आ जाता है तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं वो लगा देती हूँ गाना, ठीक है?
1: ठीक है चलो जो है वो लगा दो मैडम.
0: चले जी अपना ढेर सारा ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज. होता ये कि अक्सर अवकात जब हम ऑन एयर होते हैं ना, ऑन एयर आते हैं, वैसे हमें गानों की बड़ी पहचान होती है, लेकिन जब हम ऑन एयर आते हैं तो सिट्टी पिट्टी गुल जाती है हमारी. तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, गानों की तरफ चलते हैं. लेकिन कॉल ले लें या गाना ले लें? गाना ले लें, कॉल ले लें. एक काम करते हैं, एक कॉल ले लेती हूँ, फिर उसके बाद गाने की तरफ चलते हैं, ठीक है? देखते हैं हमारे पास साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
2: फिर से आ गए हुसैन भाई.
0: हुसैन भाई, हुसैन भाई डबल हाजिरी लगाते हैं. मैंने कहा हुसैन भाई डबल हाजिरी लगाते हैं, ये क्लास के उन बच्चों में से हैं जिसको टीचर के हर सवाल का जवाब देना होता है, ये अच्छा बच्चा है.
2: जी बिल्कुल, चाहे आए ना आए, कोशिश करते रहना चाहिए.
0: कोशिश करते रहना चाहिए. चले भाई,
2: या तो सीख मिलेगी या जीत जाओगे.
0: ये बड़ी आपने पते की बात कर दी, देखें ये अच्छी बात कर दी आपने. अच्छा जी चले, हाँ सर गेम खेलने के रेडी है?
2: मैं तो ऐसी बातें करता हूँ, अच्छी अपने आप लग जाती है.
0: अरे भाई मुझे मूवी का नाम क्यों नहीं याद आ रहा, ये किसने बोला था?
2: मुझे भी
0: बातें मैंने भी सुना था,
2: शायद अक्षय कुमार है.
0: अक्षय कुमार, हाँ हाँ हाँ, ये मेरे ख्याल से मुझसे शादी करोगी, क्योंकि मैं उसको कहता है बातें तो मैं सच्ची करता हूँ, अच्छी वैसी लग जाती है. पता नहीं कौन सी मूवी थी अक्षय कुमार की, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, अब मेरे दिमाग फंस गया. डायलॉग, हाँ ये मुझे पता है कि अक्षय कुमार का डायलॉग है, मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ.
2: अरे ये उसमें सरदार रहता है, ये सिंह मूवी,
0: सिंह इज किंग,
2: जिसमें ये भी है, मतलब कैटरीना कैफ.
0: हाँ सिंह इज किंग,
2: हाँ सिंह इज किंग जी जी, बहुत अच्छी मूवी है.
0: मैंने आपके साथ गेम खेलनी थी, आप मेरे साथ गेम खेल रहे हैं. क्या हो रहा है,
2: तैयार हूँ.
0: ये क्या हो रहा है, हमने कब ये स्विच किया? चले गेम की तरफ चलते हैं, ठीक है? चले और गेम जो है हमारा शुरू होता है कहाँ से, यहाँ से शुरू करें? ठीक है यहाँ से शुरू कर लेते हैं. और एक काम करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है कब? आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ.
2: ओ ओ जाने जाना,
0: ठीक है ओके. और मूवी का नाम?
2: मूवी का नाम, मूवी का नाम
0: ठीक है.
2: मूवी का नाम भूल गया.
0: मूवी का नाम
2: भूल गया.
0: अरे कैसे भूल गए भाई,
2: मैंने प्यार नहीं किया.
0: अच्छा चले एक ये हो गया, दूसरा सुना दूं आपको गाना, या इसको याद करना चाहेंगे अभी?
2: जी
0: दूसरा सुना दूं?
2: दूसरा सुना दीजिए. दूसरा
0: चले ठीक है भाई, ये वाला सुने जरा, ये वाला आपको याद आ रहा है तो.
2: आवाज नहीं आ रही है. ये सुनते ही टाइटल ट्रैक है.
0: ओके और ये कौन सी
2: मूवी का?
0: चले जी तालियां हो जाएं आपके लिए, वैसे तो आपने देर कर दी लेकिन तालियां हो जाएं. ये तालियां कहाँ रह गई हमारी भाई, रुके तालियां.
2: 40 सेकंड का टाइम कम है बाबा, 300-400 सेकंड का टाइम दे दे रहे बाबा.
0: अच्छा अच्छा इनको देखो, तीन चार सेकंड का, 50 कितने 56 सेकंड हो गए आपको, 56 सेकंड, लेकिन चले ताली।

0: कहानियाँ।
1: 40 सेकंड कम है अभी, क्या पाँच।
0: चले एक काम करेंगे, हम कल से 1 मिनट का टाइम रख लेंगे। फिर भी चले, बनता है। 3 पॉइंट हुए हैं आपके, ठीक है, कम से कम 3 पॉइंट तो आपने कर ही लिए। सर में कल आपने गेम खेली थी?
1: हाँ कल मैंने गेम खेली थी, लेकिन वो जो फरहान अख्तर वाला मैं नहीं बता पाया।
0: तो फिर उसके हिसाब से तो नॉट बैड, 3 का स्कोर तो कर ही लिया आपने।
1: जी अब धीरे-धीरे शार्प होगा।
0: हाँ बस अब कल फिर से कॉल कीजिएगा, फिर और हाई स्कोर कीजिएगा, ठीक है?
1: जी
0: चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। तो भाई अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के ऊपर, और ब्रेक पे चलते हैं और वापस आके आपके साथ खेलेंगे और मज़े का गेम, यही जो गेम हमारा चल रहा है बॉलीवुड ट्रिविया का। सुनते रहे FM 107 पर सफ़ा के साथ सन एंड साउंड, दिल से देसी।

0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 पर, शो का नाम है, अरे भाई ये क्या चल गया, नहीं नहीं ये वाला
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: तो भाई आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन FM 107 और इस वक्त हमारी FM 107 की घड़ी बज रहे हैं 12:24 यानी कि 12:24 ऑन द क्लॉक। और भाई मैं आपके साथ खेल रही हूँ बॉलीवुड ट्रिविया का गेम। वैसे हमें सजेशन ये आ रहे हैं कि एक मिनट का टाइम कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए टाइम, लेकिन एक मिनट का टाइम इंशाल्लाह फिर कल से रखेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारे पास 40 सेकंड

0: टाइम है और 40 सेकंड के अंदर आप जितने गाने, मैं आपको हुक सुनाऊंगी गाने का और आपने मुझे बताना है कि इसका टाइटल क्या है गाने का और किस मूवी से ये बिलोंग करता है. मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर और गेम खेल सकते हैं हमारे साथ. देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अरे भाई कॉल तो आई थी, यूं आई और यूं चली गई. जो भी था कॉल पे भाई माजरत, जरा फिर से एक दफा कॉल कर लेना. हाँ भाई फिर से कर ली रिक्वेस्ट सुन ली मेरी. तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ.
1: वालेकुम सलाम, जी मेरा नाम अहमद है.
0: जी अहमद भाई, अहमद कहीं ये वही वाले अहमद भाई तो नहीं जिन्होंने हमें पहले भी कॉल की थी. नहीं वही है अहमद भाई, अभी जो थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी.
1: जी
0: तो आपने तो 3 का स्कोर किया था अहमद भाई. नहीं
1: जी,
0: तो फिर से खेलेंगे क्या.
1: चलिए
0: हैं अहमद भाई, ये क्या हो रहा. ये तो वो बच्चों की राइड वाली जो सीन होता है ना, एक बच्चा फौरन जो है ना वो जैसे रिपीट प्लेलिस्ट पर आ जाता है गोल घूम घूम कर फिर से. अहमद भाई मतलब स्किल विस्किल पॉलिश वॉलिश कर आए क्या वापस से. हमने तो सोचा था कि आप जो हैं वो वापस से कल कॉल करेंगे. कहाँ गए अहमद भाई, हैं कि चले गए. अहमद भाई आपकी आवाज ऐसा लग रहा है जैसे आप चांद पे पहुंच गए इतनी दूर.
1: नहीं,
0: तो फिर से खेलेंगे अहमद भाई.
1: जी
0: हैं चलें भाई फिर से खेल लेते हैं. अब क्या कर सकते हैं, आपकी कॉल काटते हुए भी हमें दुख होगा. अब फिर कमर कस कर आए, लेकिन एक दिन में एक ही कॉल होती है अहमद भाई.
1: अच्छा.
0: एक दिन में एक ही कॉल होती है. अच्छा चले आपसे शुरू कर लेते हैं फिर से. ठीक है
1: चलिए.
0: अब आप बताएं हमें ये वाला गाना जो है क्या किया जाए. अहमद भाई से पूछा जाए कौन सा वाला गाना, कौन सा वाला गाना. अहमद भाई वैसे ये नॉट फेयर हो जाएगा कुछ. क्या कहते हैं, खेला जाए या नहीं खेला जाए या कल कॉल की जाए.
1: नहीं कल पॉइंट नहीं चाहिए, कुछ ऐसे ही खेल लेंगे.
0: ऐसे ही खेल लो जी. अहमद भाई बाकी कॉलर भी इंतजार में हैं, सोच लें.
1: मैडम सही बात, कई मन्नतों के बाद तो आज फोन लगा मेरा आपसे बात करने का.
0: चलें चलें ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं गेम. ठीक है
1: तो भी इंतजार करने तो जैसा मैं कर रहा हूं था इंतजार.
0: ये बिल्कुल ही अलग डायमेंशन में चल रहे हैं. चलें ये वाला गाना बताएं. ये वाला 1 2 3 आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ. और ये रहा गाना हाँ जी, गाना कौन सा है. गाने का नाम बताना पड़ेगा क्या.
1: जय हो.
0: चलें ठीक है. और दूसरा गाना आपके लिए वो ये रहा.
1: आए, मेरे कहो ना प्यार है का.
0: अच्छा ठीक है. नहीं
1: एक पल का जीना.
0: अच्छा जी चलें भाई, आपका टाइम 2 गानों में पूरा हो चुका है और आपको 4 पॉइंट मिल गए हैं. चलें भाई तालियां हो जाए अहमद भाई के लिए एक दफा फिर से. अहमद भाई वैसे एक दिन में एक कॉल ठीक है.
1: ओके
0: चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज.
1: अच्छा मैडम सुनिए एक जी जी गाना प्लीज.
0: कौन सा गाना
1: पॉसिबल है तो ओके, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है.
0: अच्छा बता दें बता दें, जल्दी जल्दी बता दें भाई.
1: ये इसका एक गर्म चाय की प्याली हो.
0: चलें ठीक है. ओके भाई ओके. चलिए जी अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज, जज़ाकअल्लाह खैर.
0: तो भाई एक दिन में एक ही दफा का हो सकता है बंदा. ठीक है तो भाई चलें एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: जी हमारे साथ कौन है.
2: यूसुफ अटकाना, कैसे हैं आप.
0: मैं ठीक ठाक हूँ यूसुफ भाई, देर लगा दी मेहरबान आते आते. कहाँ रह गए थे आप यूसुफ भाई.
2: नहीं नहीं कॉल नहीं लग रही है, लंबी लंबी कॉल हो रही है तो दूसरों को मौका नहीं मिल रहा.
0: हाँ अब हम कल से ना वो अब फिर सब कहते हैं कि देखो फिर सब कहते हैं कि सफा डांटती है. फिर सबका ये प्रॉब्लम होता है सफा डांटती है, तो सफा क्या करे फिर डांटेगी ना सफा. दो दफा कॉल कर रहे हैं. चलिए भाई अब कल से जो है
2: दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए.
0: हाँ, बस सही है.
2: एक बार एक हाँ दूसरे सेक्शन में करें या फिर और एक सेक्शन में करें तो इट्स ओके. इन द सेम सेगमेंट इट्स इक्वल टू टाइम्स.
0: चलिए भाई अब कल से हम डंडा उठा के बैठेंगे क्लास में, वही बेहतर है. ऐसे ना सुनेंगे सब. ठीक है यूसुफ भाई, आपकी बात को हमने बांध लिया है गिरा. और आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं.
2: जी जी अल्लाह का शुक्र है आपकी.
0: तो ये बताएं कि जो है वो

0: अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर आफियत से। ये बताएं गेम खेलेंगे
1: जी?
0: चलें जी, 40 सेकंड मिलेंगे और 40 सेकंड के अंदर अंदर हमने गाना पहचानना है, ठीक है?
1: अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह।
0: चलें भाई, वन टू कहाँ गया भाई, ये रहा, वन टू थ्री एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं ये वाला, हाँ ये वाला।
2: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते।
0: हाँ ये कौन सा वाला, इसका नाम बताएं, टाइटल और मूवी का नाम।
1: हो आशिकी टू।
0: अरे भाई वाह वाह वाह वाह। अच्छा भाई ये वाला बताइएगा।
2: गुलपोश कभी तेरा कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं।
1: चल चाहिए चाहिए फिल्म दिल से।
0: हाँ चलें भाई, और एक और जो है वो ये वाला।

0: नगाड़ा नगाड़ा जब भी मेट
1: नहीं नगाड़ा नगाड़ा नहीं है, टाइम अप हो गया है, लेकिन मजे का कॉम्पिटिशन
0: फिल्म जब भी मेट है, बस गाना भी कंफ्यूज हो गया मैं।
1: फिल्म जो है वो एक दफा फिर से
0: जब भी मेट का है।
1: कौन सा वाला गाना बोल
0: नाचे वही हो रो जो लास्ट में जो प्ले हुआ है ना, वो फिल्म जब भी मेट का है।
1: नहीं ना नहीं ना, चलें फिर अब नेक्स्ट कॉलर से आपको पता चलेगा कौन सी मूवी का गाना है।
0: अच्छा ठीक है,
1: चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।
1: और यूसुफ भाई ने क्या स्कोर किया? यूसुफ भाई ने 4 का स्कोर किया। यूसुफ भाई बॉलीवुड में अच्छे हैं। नाइस। अब एक काम करते हैं मेरे साथियों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपकी कॉल्स चल रही हैं और हाजिर नाजिर डोंट वरी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे मजीद जो है वो गेम का सेशन चलाएंगे आपके साथ। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आकर आपके साथ हाजिर होंगे। चलो भाई ब्रेक पे चलो, सफा मस्ट है ब्रेक। कहाँ गया भाई, ये तो रहा, हाँ जी ये रहा, चुरा लिया भाई। क्या चुराया, किसने? चल इनकी सुन लेते हैं बात। आप सुन रहे हैं सफा के साथ Sun and Sound on FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. टॉप 10 काउंटडाउन. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: तो भाई वेलकम बैक, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद आरजे सफा ऑन एफएम 107।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: तो साथियों, इस वक्त हमारी एफएम 107 की घड़ी बज रहे हैं 12:43 और जल्दी से हमें काम करते हैं, जल्दी कॉल्स की तरफ चलते हैं। भाई हम खेल रहे हैं बॉलीवुड ट्रिविया का गेम और कॉल्स आती चली जा रही हैं। अगर आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं बॉलीवुड ट्रिविया में, तो ज़रूर आपने करना ये है कि हमें कॉल करें 4434377 पर, और गेम खेलना चाह रहे हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं 4434377 पर, और नहीं नहीं नहीं मैसेज कर सकते हैं 6662107 पर, कॉल कर सकते हैं 4434377 पर और खेल सकते हैं हमारे साथ गेम। अभी तक के टॉप स्कोरर हमारे पास कौन रहे हैं? 4 किया है उन्होंने, लेकिन वो दूसरी दफ़ा में किया। अगर ऑन एवरेज देखा जाए, अगर हम कहें कि फेयर इनफ देखा जाए, तो 3 का स्कोर किया है हमारे पास। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है और कौन खेलना चाह रहा है गेम। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है?
2: जी मेरा नाम जवाद है।
0: जवाद भाई, आपको पहली बात तो ये सलाम कि आप इतनी देर से कॉल कर रहे हैं।
2: जी बहुत देर से ट्राई कर रहा हूं।
0: बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, तो हम ब्रेक पर थे, तो मैंने सोचा पहली चीज यही की जाए ब्रेक से आने के बाद कि आपकी कॉल उठाई जाए। ये बताए हाल चाल कैसे है आपके?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सब ठीक,
0: अल्लाह का करम है। जवाद भाई ये बता दें के अल्लाह भला करे। हाँ जी, गेम के लिए रेडी हैं?

0: रूल बड़े सिंपल से, ठीक है, मासूमाना से रूल है हमारे, और वो मासूमाना से रूल ये कहते हैं कि 40 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आप जितने गानों के टाइटल बता सके विद देयर मूवी नेम्स, ठीक है?
1: ओके
0: चलें जी, आपको दिए जाएंगे 40 सेकंड और आपके 40 सेकंड स्टार्ट होते हैं नाउ। ये सुनिएगा,
1: गलियां फ्रॉम एक विलन।
0: ओके वेरी गुड हो गया भाई। दूसरे नंबर पर है हमारे पास ये सॉन्ग, जरा सुनिए।
1: ब्रेकअप सॉन्ग, ये रणबीर कपूर की मैं दिल है मुश्किल।
0: ठीक है, ओके गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। और ये बताइएगा ये वाला, ये वाला, ये वाला,
1: कल हो ना हो, वेयर इज द पार्टी टुनाइट।
0: अरे भाई अच्छा, ये बताइएगा ये वाला सॉन्ग, ये वाला, ये वाला, ये वाला।

0: टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया।
1: नहीं पता, ये पता नहीं
0: क्या टाइम। अरे भाई आज के तो टॉप स्कोरर हो गए आप, 6 पॉइंट आपने ले लिए। अरे भाई वाह, नाइस, आई लाइक इट। 6 टॉप स्कोरर हो गए आज के, वेरी वेरी गुड हो गया भाई, वेरी वेरी गुड। और आपके लिए ताली, ओह सॉरी सॉरी, आपके लिए तालियां तो बनती हैं भाई। हमारी तालियां बजाने वाले जो लोग हैं ना, उनको 5 टाल देना भूल गई हूँ मैं आज, तो वो देर से आ रहे हैं। लेकिन कैश नहीं था, मैंने कहा भी कार्ड पे पेमेंट ले लो, कहते नहीं हमें कैश ही चाहिए, भरोसा नहीं उन्हें मेरे ऊपर। चले भाई, आज के आप अभी तक के टॉप स्कोरर हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन है कॉल पर, तो फिर उनसे पूछेंगे भाई कि कौन कौन से सॉन्ग उनको याद आ रहे हैं। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो भाई ये थे हमारे टॉप स्कोरर आज के, अभी तक के। कौन है हमारे पास टॉप स्कोरर में, कौन थे कौन थे कौन थे कौन थे? हाँ जी, जवाद भाई। सही, मैं गजनी की बहन चल रही हूँ, मैं सच सच बता रही हूँ, मेरा तो यही हाल है, आप लोगों का क्या हाल है? अच्छा भाई चले, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है और कहाँ गए हमारे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे पहले सलाम किया तो उसका जवाब वालेकुम अस्सलाम, फिर मैंने आपको सलाम किया तो आपने वालेकुम सलाम किया, तो भाई सलाम की पार्टी हो गई हमारी। अब बताएं हमारे साथ कॉल पे कौन है?
2: जी मैं रईस अहमद बोल रहा हूँ।
0: रईस भाई, ये वही वाले रईस भाई हैं
2: जी,
0: वसूली वाले रईस भाई। इनको मैंने ऐसे याद किया कि ये वसूली वाले रईस भाई, ये देखें। ठीक है रईस भाई, ये बताएं आपकी आज जो है ना वो प्रैक्टिस कर आए हैं कि नहीं?
2: देखते हैं इंशाल्लाह, कोशिश रहेगी।
0: चलें जी, कोशिश पे दुनिया कायम है। वाह क्या तो बात कर दी, वाह क्या तो बात कर दी। चले भाई, आपको दिए जाएंगे 40 सेकेंड और उन 40 सेकेंड के अंदर आपने हमें बताना है कि ये कौन कौन से सॉन्ग्स हैं। ठीक है, ओके चलें जी आपका 40 सेकंड स्टार्ट होता है नाउ, और ये बताइएगा ये कौन सा वाला सॉन्ग है।
2: कौन सा हो?
0: ओके,
2: बिखरा बिखरा रहता हूँ।
0: सुने सुने सुने सुने सुने, फिर से एक और दफा सुन लें। नाम, गाने का नाम, गाने का टाइटल।

0: करती हूँ।
1: मैंने तो इतना लंबा चौड़ा गाना सुना दिया आपको पूरा पूरा।
2: ये पूरा मुखड़ा वही है ना मैम की चीजें मैं रख के भूल जाती हूँ, बिखरा बिखरा।
1: गाने का टाइटल क्या है आपको कुछ याद आ रहा है? अब अकेले में मुस्कुराती हूँ, फिर आगे क्या था? कुछ तो था आगे, वैसे आपका टाइम अप हो गया लेकिन कुछ तो था। अब मैं आपको इसी कशमकश के साथ छोड़ जाऊं कि क्या था। नेक्स्ट कॉलर को देखेंगे हम कि क्या था, या आप सॉर्ट आउट करना चाहेंगे अभी? कल होना हो रईस भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि कल होना हो मूवी है, इसका एक पॉइंट आपको मिल गया। अब गाने का टाइटल में आप रह गए। चलें कोई नहीं रईस भाई, अब आप सोचते रहें। अब आप पता है एक काम करें, कल होना हो के सारे गाने निकालें और फिर वो सुने इसके अंदर से ये वाला गाना कौन सा था।
2: नहीं, ये लाइन में बोलते हैं ना कुछ तो हुआ है।
1: हाँ, गाना भी तो यही है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। बिल्कुल सही, लेकिन आपने थोड़ा देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन जब देर से आए हैं तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, सिर्फ एक ही मार्क्स। लेकिन कल से अच्छी प्रोग्रेस है।
2: क्या हम फिर से एक बार मुझे रीट्रायल दे सकते हैं?
1: देखिए कल आइएगा, कल और हम अच्छे अच्छे वाले गाने आपके लिए और टफ वाले करके रखेंगे, क्योंकि आज आपने एक माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। कल आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था, आज आपने फिर भी एक स्कोर कर लिया। गुड जॉब।
2: चलिए एक गलती तो माफ होती है ना, दूसरी बार आया हूँ तो कम से कम एक मौका तो दे दीजिए।
1: नहीं नहीं भाई, कल एक और मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। साथियों, गेम हमारी जोशो खरोश से चल रही है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर एक और कॉलर लूंगी मैं, सिर्फ एक और कॉलर। ठीक है, तो भाई क्या करें, ब्रेक के बाद वापस आएं कि ना आएं? कॉल ले लूं, ब्रेक ले लूं, कॉल ले लूं, ब्रेक ले लूं? चलें एक काम करती हूं, कॉल ले लेती हूं क्योंकि ब्रेक लेने का टाइम नहीं रह गया है हमारे पास। और देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कौन है हमारे साथ?
3: आरिफ अंसारी।
1: आरिफ अंसारी हैं। आरिफ भाई, आरिफ भाई आपसे बात हुई थी मेरी आज, क्या नहीं हुई थी? कल हुई थी। देखें ऐसा लग रहा है जैसे आज ही आपसे बात हुई थी। वाह आरिफ भाई वाह। देखें इसे कहते हैं, ये हमारे कॉलर के साथ कनेक्शन होता है हमारा,
3: फैमिली की तरह है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि गेम खेलने के लिए रेडी हैं या नहीं है?
3: वैसे तो ऐसे गाने में सुनने का टाइम तो मेरे को सब याद आ जाते हैं, ऐसे आप पूछेंगे तो शायद मैं ना बता पाऊँ, पर कोशिश करूंगा।
1: चले भाई, कोशिश पे उम्मीद पे दुनिया का है मैं। ठीक है ठीक है, चले।
3: डर के आगे जीत है।
1: ये बात। चले भाई, अगर आपने ये पार कर लिया तो आप जो है ना किसी भी डेर वाले शो में हिस्सा ले सकते हैं फिर। चले शुरू करते हैं भाई, 40 सेकंड मिलेंगे आपको। ठीक है, 40 सेकंड के अंदर अंदर आपने बताना है, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। 1 2 3 गो। ये बताइएगा,
3: पास
1: जी?
3: पास पास
1: नहीं ना, पास नहीं होता ना इस गेम में।
3: Okay.
1: इस गेम का रूल ये है कि आपने इस गाने का बताना है तभी नेक्स्ट गाना आएगा। अच्छा एक और दफा सुनने।
3: Okay.
1: अरे भाई, अरे भाई सोचे सोचे, बहुत मशहूर गाना है। गिनती एक से लेकर 10 तक गिनती है इसके अंदर। अब तो मैंने सब कुछ ही बता डाला, अब तो मैंने जवाब ही दे दिया।
3: कल ट्राई करूंगा। कल
1: होमवर्क करके भाई, ये 10 बहाने दिल था, मूवी 10 थी। बता जाओ, आप भी दे दिया मैंने जाते जाते। लो जी ये हुई ना, ये देखिए इतना। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, कल फिर से कॉल कीजिएगा।
3: ओके
1: अल्लाह हाफिज।
3: गाने का फरमाइश था।
1: जी जी जी जी बोले
2: दिल दिया गल्ला
1: दिल दिया गल्ला हा हा हा दिल दिया गल्ला चले मैं गा लेती हूँ ओके अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा
2: ओके
1: अल्लाह हाफिज
2: अल्लाह हाफिज
1: तो भाई हमें फरमाइश आई है दिल दिया गल्ला दी अब दिल दिया गल्ला ते मैं की करा मैनू की सब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ अगर मुझे मिल गया तो बड़ी बात है अगर नहीं मिला तो माजरत दिल दिया गल्ला केड़िया गल्ला सी दिल दिया गल्ला दिल दी या दी दी भाई ये गाना तो मुझे अभी फिलहाल प्ले लिस्ट में नजर नहीं आ रहा लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है मैं इस वाले गाने पे आपको छोड़े चले जा रही हूँ तो भाई दिल दिया गल्ला गल्ला मेरे दिमाग में फंस गया गाना ये भाई हमारी प्ले लिस्ट में अभी है कि नहीं है अभी की प्ले लिस्ट में तो नहीं नजर आ रहा तो भाई आपको किसी और गाने के साथ छोड़ जा रही हूँ साथियों अपना ढेर सारा ख्याल रखें इंशाल्लाह कल सन एंड साउंड में आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी वक्त मतलब 11 बजे से हमारा शो शुरू होता है 1 बजे तक आपका साथ रहेगा हमारे साथ और अपना ढेर सारा ख्याल रखें स्टे सेफ और वर्ल्ड कप एंजॉय करते रहें और फिलहाल के लिए सफ़ा को स्टूडियो से दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय कल फिर मुलाकात होती है ठीक है टाटा बाय बाय

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Women in Sports, RJ Safa के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, FM 107 कतर के लिसनर्स को ढेर सारी खुशामदीद. मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं हमारा खास शो जिसका नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स, जहां हम सिर्फ मेडल्स और मैचेस के बारे में बात नहीं करते बल्कि उन कहानियों को भी समझने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी और जेंडर नॉर्म्स को रीडिफाइन करती हैं. आज का मौजू भाई बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के उस पावरफुल रोल की जो लड़कियों की जिंदगी बदल रही हैं. भाई देखें, पहले जहां स्पोर्ट्स को बॉयज डोमेन समझा जाता था, अब वही फील्ड्स लड़कियों के लिए भी एम्पावरमेंट का जरिया बन रही हैं. साथियों, टूर्नामेंट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं रहे बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जहां टैलेंट को पहचान मिलती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और सोसाइटी की सोच आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगती है. जब कोई लड़की एथलीट किसी टूर्नामेंट में जीतती है ना, तो वो अपने इलाके, अपने मुल्क, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है. तो वो सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं होती बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए प्राइड का मोमेंट होता है. देखिए, फैमिलीज जो पहले हेजिटेट होती थी ना, अब प्राउडली अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स फील्ड तक ले जा रही हैं. ये चेंज सिर्फ वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ग्राउंड लेवल पर नजर आ रहा है. आज हम एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया, यानी कि हम बात करेंगे इब्तिहाज मोहम्मद के बारे में. फेंसिंग जैसे इलीट और टेक्निकल स्पोर्ट्स में उनका नाम सिर्फ मेडल्स की वजह से नहीं बल्कि उनकी आइडेंटिटी और करेज की वजह से भी जाना जाता है. इब्तिहाज मोहम्मद ने दुनिया को ये दिखाया कि एक औरत अपनी पहचान के साथ भी टॉप लेवल स्पोर्ट्स में कम्पीट कर सकती है. उनकी ओलंपिक जर्नी इस बात की मिसाल है कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो बैरियर्स सिर्फ सोच में होते हैं, हकीकत में नहीं. उन्होंने जब हिजाब पहनकर इंटरनेशनल अरीना में पार्टिसिपेट किया तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रही थी बल्कि उन हजारों लड़कियों के लिए एक मैसेज था जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर अनसर्टन होती थी. साथियों, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये विजिबिलिटी देते हैं. जब कोई लड़की टेलीविजन पर या स्टेडियम में परफॉर्म करती है ना, तो वो सिर्फ एक एथलीट नहीं रहती बल्कि एक रोल मॉडल बन जाती है. छोटी छोटी लड़कियां उन्हें देख कर ये सोचती हैं कि भाई मैं भी कर सकती हूँ, और यही इंस्पायरेशन डायरेक्टली ड्रीम्स को डायरेक्शन देती है. स्कूल्स और कम्युनिटीज में अब गर्ल्स स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन बढ़ रही है और ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि डिसिप्लिन, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर भी मबनी है और उन्हें भी एनहेंस कर रहा है. हर जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं होती बल्कि माइंडसेट पर भी होती है. अच्छा, अगर हम सोसाइटी के लेंस से देखें ना, तो टूर्नामेंट्स एक ब्रिज का काम करते हैं जो ट्रेडिशनल थिंकिंग और एम्पावरमेंट के दरमियान जो गैप है ना, उसको कम करते हैं. जब पेरेंट्स ये देखते हैं कि उनकी बेटी किसी कंपटीशन में जीत कर घर का नाम रोशन कर रही है, तो उनका पर्सपेक्टिव नेचुरली इवॉल्व होता है. ये प्राइड एक पावरफुल, आप कह लें कि कैटलिस्ट है जो लॉन्ग टर्म कल्चरल चेंज ला रही है. आज जो लड़कियां कोर्ट्स, ट्रैक्स और फील्ड्स में नजर आ रही हैं ना, कल वही लीडरशिप पोजीशंस और डिसीजन मेकिंग रोल्स में भी नजर आएंगी. तो साथियों, जरा सोचिए, गर्ल एथलीट अपनी आइडेंटिटी, अपनी मेहनत और अपने मुल्क को एक ही प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करती है, तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं खेल रही होती, वो हिस्ट्री लिख रही होती है. आज का एपिसोड हमें ये याद दिलाता है कि स्पोर्ट्स सिर्फ गेम नहीं बल्कि एक एम्पावरमेंट है, एक मूवमेंट है जो जेंडर नॉर्म्स को रीशेप कर रही है और नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोल रही है. आप हमें चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर जिसका हैंडल है FM107 कतर, और आप अपनी राय भी हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर. मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स, जहां हर कहानी एक नई जीत की शुरुआत है. तो चलिए साथियों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज की स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में। मतलब ये कि शुरू करते हैं ग्राउंड लेवल से। देखिए आज का फोकस है एक बहुत ही टेक्निकल, फास्ट और मेंटली डिमांडिंग डिसिप्लिन पर, यानी कि सेबर फेंसिंग पर। और इसके साथ हम कतर में वुमेन के लिए इस स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट, ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए सेबर फेंसिंग सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और मेंटल शार्पनेस का कॉम्बिनेशन है, जहां हर सेकंड डिसीजन मेकिंग होती है और हर मूवमेंट विक्ट्री या डिफीट का फैसला कर सकता है। देखिए कतर जैसे मुल्क में जहां स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली डेवलप हो रहा है, वहां सेबर फेंसिंग ग्रेजुअली एक इमर्जिंग डिसिप्लिन बन रहा है, खास तौर पर यंग फीमेल एथलीट्स के लिए, जो अब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स बाउंड्रीज से बाहर निकलकर कॉम्बैट स्पोर्ट्स और प्रिसीजन बेस्ड डिसिप्लिन में इंटरेस्ट शो कर रही हैं। अगर हम कतर के वुमेन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को देखें ना, तो लास्ट डेकेड्स में पार्टिसिपेशन रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। कतर स्पोर्ट्स फेडरेशन और मुख्तलिफ स्कूल लेवल प्रोग्राम्स के थ्रू लड़कियों को अब स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मिल रही है, जहां फेंसिंग इंस्पायर्ड एगिलिटी ड्रिल्स और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल लेवल गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम तकरीबन 40% से ज्यादा इंक्रीज हुई है, और इसमें सेबर फेंसिंग जैसे डिसिप्लिन को भी अवेयरनेस लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि एक माइंडसेट ट्रेनिंग है, जहां लड़कियों को क्विक डिसीजन मेकिंग, बैलेंस और फोकस सिखाया जाता है। साथियों दोहा और उसके सराउंडिंग एरियाज में कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, जहां फेंसिंग इंस्पायर्ड ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये सेशंस सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाते बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और सेल्फ डिसिप्लिन पर भी फोकस करते हैं। यंग गर्ल्स जो पहले कॉम्बैट स्पोर्ट्स को इनएक्सेसिबल समझती थी, अब वो बेसिक सेबर फेंसिंग, फुटवर्क और रिएक्शन ड्रिल्स सीख रही हैं। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो ग्रेजुअली स्पोर्ट्स कल्चर को रीशेप कर रहा है। कतर के यूथ डिपार्टमेंट विजन के अंडर इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया जा रहा है, जहां गर्ल्स के लिए सेफ, स्ट्रक्चर्ड और एनकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। अगर हम ग्लोबल प्रस्पेक्टिव देखें ना, तो वुमेन की पार्टिसिपेशन फेंसिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में पास्ट अगर 10 साल में देखी जाए तो 60% यानी कि 60% तक इंक्रीज हुई है। इस ट्रेंड का असर कतर पर भी नजर आ रहा है साथियों, जहां स्कूल्स और एकेडमीज ओलंपिक स्पोर्ट्स अवेयरनेस प्रोग्राम इंक्लूड कर रही हैं। अच्छा, इन प्रोग्राम्स का एम सिर्फ कंपटीशन नहीं है बल्कि एक्सपोजर देना है कि लड़कियां मुख्तलिफ ओलंपिक डिसिप्लिनस को एक्सप्लोर कर सकें। सेबर फेंसिंग इस लिस्ट में एक यूनिक पोजीशन रखता है क्योंकि ये सेबर फास्ट फेंसिंग कैटेगरी है, जहां एग्रेशन और कंट्रोल दोनों एक साथ रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, कतर में फीमेल एथलीट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि ये नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में अब वुमेन कैटेगरीज को ज़्यादा विजिबल हो रही हैं। पहले जहां पार्टिसिपेशन लिमिटेड होती थी ना, अब स्ट्रक्चर्ड कोचिंग और फेडरेशन लेवल सपोर्ट की वजह से लड़कियों को ट्रेनिंग पाथवे मिल रहे हैं। ये डेवलपमेंट सिर्फ परफॉर्मेंस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट सिस्टम का हिस्सा है, जहां टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर सेबर फेंसिंग को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भाई फ्यूचर में कतर में विमेन सेबर फेंसर्स का एक कॉम्पिटिटिव पूल डेवलप होने का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। अक्सर औकात आपने देखा होगा हमारा ये जो स्पोर्ट्स डे का इवेंट होता है, उसमें भी जगह जगह इस वाले स्पोर्ट को इंक्लूड किया जाता है। जो एक्टिविटीज लगाई जाती हैं उसमें भी सेबर फेंसिंग इंक्लूडेड होती है, तो इससे पता चलता है कि कतर इज वर्किंग ऑन इट। अच्छा, सेबर फेंसिंग की ट्रेनिंग में जो स्किल्स डेवलप होती हैं ना, वो सिर्फ स्पोर्ट तक लिमिटेड नहीं रहती, ये रिफ्लेक्सेस, डिसिप्लिन और मेंटल रिजिलियंस को इनहेंस करती है। कतर की यंग गर्ल्स जब इस डायरेक्शन में मूव जो अभी कर रही हैं ना, उनके लिए एक एम्पावरमेंट टूल बनकर सामने आ रहा है। जब एक गर्ल एथलीट फेंसिंग स्ट्रिप पर अपनी स्ट्रेटजी प्लान करती है, ओपोनेंट को रीड करती है और स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेती है, तो वो सिर्फ स्पोर्ट नहीं खेल रही होती बल्कि लीडरशिप और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही होती है। साथियों, आज कतर में जो स्पोर्ट इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें सेबर फेंसिंग एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है। स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ग्रेजुअली फेंसिंग अवेयरनेस सेशंस इंक्लूड कर रहे हैं और कोचेस को इंटरनेशनल ट्रेनिंग एक्सपोजर दिया जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म विजन का पार्ट है जहां कतर अपनी विमेन एथलीट्स को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाने की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, अगर हम चैलेंजेस के बारे में बात करें ना, तो भाई चैलेंजेस के बारे में बात की जाए तो अभी भी अवेयरनेस और एक्सेस एक बैरियर है। साइबर फेंसिंग एक स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट है जिसमें इक्विपमेंट, कोचिंग और फैसिलिटीज की जरूरत होती है, लेकिन कतर की स्पोर्ट्स अथॉरिटीज इस गैप को फिल करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट कर रही हैं। कम्युनिटी अरेंजमेंट प्रोग्राम्स और स्कूल पार्टनरशिप्स इस गैप को ब्रिज करने में मदद कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पेरेंट्स का माइंडसेट भी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, जो किसी भी स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन का स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर होता है। अच्छा, आने वाले वक्त में अगर ये ट्रेंड इसी तरह कंटिन्यू रहा ना, तो कतर में विमेन सेबर फेंसिंग एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बनकर सामने आ सकता है, जहां नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन तक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट नहीं है बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट है जहां लड़कियां अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड और इंटेलिजेंस को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस कर सकती हैं। तो साथियों, ये थी एक डिटेल इनसाइट ऑन सेबर फेंसिंग और कतर में विमेन्स स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पर। ये सिर्फ एक स्पोर्ट की स्टोरी नहीं है साथियों, बल्कि एम्पावरमेंट, डिसिप्लिन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की कहानी है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर पर। शो का नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अपने इंस्पायरिंग सफर को शुरू करते हैं, यानी कि अपनी स्टोरी ऑफ द वीक में लेकर चलते हैं आपको एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी की तरफ जिन्होंने सिर्फ फेंसिंग स्ट्रिप पर नहीं बल्कि दुनिया के माइंडसेट पर भी अपनी एक गहरी निशानी छोड़ दी। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और शो का नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स, जहां हम हर कहानी को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि फील करते हैं।

0: आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: देखिए आज की कहानी है इब्तिहाज मोहम्मद की, एक ऐसी खातून एथलीट की जो सिर्फ एक ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, करेज एंड रिप्रेजेंटेशन बन चुकी हैं। उनकी स्टोरी को समझने के लिए हमें उनके बचपन से शुरू करना होगा, जहां से उनका सफर एक आम सी जिंदगी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओलंपिक स्टेज तक जाता है। देखें इब्तिहाज मोहम्मद का ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से है, जहां वो एक डाइवर्स और कल्चरली रिच फैमिली में पैदा हुई। उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी जहां आइडेंटिटी, फेथ और एम्बिशन तीनों चीजें साथ साथ ग्रो कर रही थी। उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा ये सिखाया कि अपनी पहचान को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बल्कि उसे स्ट्रेंथ बनाना। बचपन से ही उन्हें डिसिप्लिन और फोकस का एलिमेंट नजर आने लगा था अपने अंदर, और ये क्वालिटी ही उन्हें स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ ले गई। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन इब्तिहाज के लिए स्पोर्ट्स एक लैंग्वेज थी जिसमें वो अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस करती थी। अच्छा, जब उन्होंने फेंसिंग चूज किया ना, तो ये डिसीजन कोई कॉमन चॉइस नहीं था। फेंसिंग जैसे स्पोर्ट्स में एंटर करना आसान नहीं होता साथियों, क्योंकि ये एक हाईली टेक्निकल और एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, जहां ट्रेनिंग, फैसिलिटीज, कोचिंग और इक्विपमेंट्स का एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन इब्तिहाज ने इस स्पोर्ट में अपना फ्यूचर देखा, उन्होंने सोचा, समझा। उनके लिए फेंसिंग सिर्फ सॉर्ड फाइट नहीं थी बल्कि एक मेंटल गेम था, जहां हर मूवमेंट, हर सेकंड और हर रिएक्शन एक स्टोरी लिखता था। उन्होंने अपनी अर्ली ट्रेनिंग के दौरान ये समझ लिया था कि भाई इस स्पोर्ट में सक्सेसफुल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं होना बल्कि मेंटल शार्पनेस और डिसिप्लिन से ही मिलता है सक्सेस इस स्पोर्ट में। उनके अर्ली कॉम्पिटिटिव डेज ईजी नहीं थे। अच्छा, उन्होंने मल्टीपल चैलेंजेस का सामना भी किया जैसे कि हर स्पोर्ट्समैन करता है। सबसे पहला चैलेंज रिप्रेजेंटेशन का था। देखिए यूएस फेंसिंग सर्किट में मुस्लिम विमेन या हिजाब पहनने वाली एथलीट का कोई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं था। दूसरा चैलेंज क्या था भाई? दूसरा चैलेंज कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो थी ना, जहां उनकी आइडेंटिटी को कभी कभी क्वेश्चन किया जाता था। और तीसरा चैलेंज विजिबिलिटी का था, क्योंकि विमेन फेंसिंग इटसेल्फ मीडिया स्पॉटलाइट में इतना हाईलाइट नहीं होता था जितना मेंस स्पोर्ट्स होते हैं। अच्छा, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज पता है क्या था? इलीट लेवल कंपटीशन का प्रेशर था, जहां हर मैच एक टेस्ट होता है एंड्योरेंस का, स्ट्रेटजी का और मेंटल कंट्रोल का। लेकिन यहां पर इब्तिहाज मोहम्मद की रियल स्ट्रेंथ सामने आती है भाई। उन्होंने हर बैरियर को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। जब दुनिया उन्हें डिफरेंट कहती थी, उन्होंने उस डिफरेंस को अपनी आइडेंटिटी बना दिया। उनका सबसे पावरफुल डिसीजन ये था कि वो इंटरनेशनल लेवल पर हिजाब में कम्पीट करेंगी। ये सिर्फ एक क्लॉथिंग चॉइस नहीं थी बल्कि एक स्टेटमेंट थी, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कह रहा था कि भाई आइडेंटिटी और एलीट स्पोर्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि साथ चल सकते हैं। अच्छा, ये मूवमेंट ग्लोबल स्पोर्ट्स कल्चर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया भाई। देखें 2016 रियो ओलंपिक्स उनके करियर का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट था, जहां 2016 रियो ओलंपिक्स के स्टेज पर इब्तिहाज मोहम्मद ने हिस्ट्री लिखी। वो पहली अमेरिकन मुस्लिम खातून बनी जो ओलंपिक्स में हिजाब के साथ कंपीट कर रही थी, और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी बल्कि उन्होंने अपनी यूएस फेंसिंग टीम के साथ ब्राउन्स मेडल भी जीता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अचीवमेंट सिर्फ मेडल तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि एक ग्लोबल मैसेज था कि डिटर्मिनेशन, आइडेंटिटी और एक्सीलेंस एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनकी ओलंपिक सक्सेस ने दुनिया भर में डिस्कशंस चेंज कर दी। स्पोर्ट्स अपीरल इंडस्ट्री से लेकर ओलंपिक कमेटीज तक भाई रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूसिविटी का टॉपिक सीरियसली लिया जाने लगा। मुस्लिम विमेन की पार्टिसिपेशन इन एलीट स्पोर्ट्स को एक नई विजिबिलिटी मिली। ये सिर्फ एक एथलीट की जीत नहीं थी बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट था जो चीख चीख कर दुनिया को ये बता रहा था कि स्पोर्ट्स दुनिया की हर आइडेंटिटी के लिए ओपन होने चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक साथियों, रियो ओलंपिक्स के बाद विमेन पार्टिसिपेशन अवेयरनेस कैंपेन्स में सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ था, इंक्रीज हुआ था, खास तौर पर फेंसिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। इब्तिहाज मोहम्मद की जर्नी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उनकी पर्सनल स्ट्रेंथ थी। उनके पास फैमिली सपोर्ट था, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी रेजिलियंस थी। उन्होंने उन स्पेसेस में सर्वाइव किया जहां वो अक्सर डिफरेंट फील करती थी, लेकिन उन्होंने डिफरेंस को वीकनेस नहीं बना दिया, उन्होंने उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। हर ट्रेनिंग सेशन, हर डिफीट और हर चैलेंज उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनाता गया। ये मेंटल टफनेस ही उन्हें

0: साबित हुई। साथियों, ओलंपिक के बाद उनका रोल सिर्फ एथलीट तक लिमिटेड नहीं रहा, उन्होंने अपनी वॉइस को एक प्लेटफॉर्म बनाया। वो स्पीकर बनी, ऑथर बनी और एडवोकेट बनी। उन्होंने आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन और स्पोर्ट्स एक्सेस पर ओपनली बात की। उनकी बुक और पब्लिक टॉक्स ने हजारों यंग गर्ल्स को इंस्पायर किया कि वो अपनी आइडेंटिटी को कभी हाइड ना करें। उनकी स्टोरी ने ये प्रूव किया कि एक एथलीट का इम्पैक्ट फील्ड से बाहर भी उतना ही पावरफुल हो सकता है जितना फील्ड के अंदर होता है। अगर हम उनके इम्पैक्ट को नंबर्स और इन्फ्लुएंस के प्रस्पेक्टिव से देखें ना, तो उनकी ओलंपिक अचीवमेंट ने ग्लोबल मीडिया कवरेज को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किया। मुस्लिम विमेन एथलीट की विजिबिलिटी में मेजरेबल इंक्रीज देखा गया पास्ट 2016 एरा में। अच्छा, फेंसिंग पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स में डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स को बूस्ट मिला और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इंक्लूसिव पॉलिसी पर ज्यादा फोकस स्टार्ट कर दिया। ये सब इनडायरेक्टली इब्तिहाज मोहम्मद की लेगेसी का पार्ट है। अच्छा, आज उनकी स्टोरी कतर जैसे मुल्क के लिए बहुत बहुत रेलिवेंट है, जहां वुमेन स्पोर्ट्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं ना। FM 107 कतर और हमारा शो विमेन इन स्पोर्ट्स इसलिए इन स्टोरीज को हाईलाइट करता है क्योंकि ये सिर्फ पास्ट की कहानियां नहीं है बल्कि फ्यूचर का रोड मैप है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। साथियों, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107 कतर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 666-22107। इब्तिहाज मोहम्मद की कहानी हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत मेडल नहीं होती बल्कि अपनी पहचान के साथ दुनिया को जीतना होता है। और यही वो सोच है जो हर यंग एथलीट, खासतौर पे गर्ल एथलीट को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी के साथ खड़ी हो सकती है ना, तो वो दुनिया की किसी भी स्टेज पर आराम से खड़ी हो सकती है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अपनी स्पेशल सी बात पर आते हैं। विमेन स्पोर्ट्स में एंटर करते हैं एक ऐसे फेज में जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाते बल्कि उस स्टोरी के डीप मीनिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और शो का नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स। साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन है, जो अभी हम करने लगे हैं, बियॉन्ड द गेम के बारे में बात करने लगे हैं, जहां हम ये समझेंगे कि इब्तिहाज मोहम्मद की जर्नी हमें फेंसिंग स्ट्रिप से बाहर क्या सिखाती है, क्योंकि हर एथलीट की कहानी सिर्फ मेडल्स और मैचेस तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि उनकी डिसीजंस, स्ट्रगल्स और माइंडसेट से एक पूरी की पूरी फिलॉसफी जन्म लेती है जो सोसाइटी को रीशेप करती है। देखिए, सबसे पहले और सबसे पावरफुल लर्निंग जो हमें इब्तिहाज मोहम्मद की स्टोरी से मिलती है वो ये है कि कॉन्फिडेंस कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं होती। नो, ये एक बिल्ट इन प्रोसेस होता है जो टाइम, फेलियर और रेपिटेशन से डेवलप होता है। इब्तिहाज ने दुनिया को ये दिखाया कि कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ होना नहीं होता बल्कि अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करके हर स्पेस में कॉन्फिडेंटली एंटर करना होता है। जब वो अपनी गेम में उतरती थी ना, तो वो सिर्फ एक एथलीट नहीं होती थी बल्कि एक मैसेज होती थी कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ। ये माइंडसेट यंग गर्ल्स के लिए बहुत पावरफुल है, खासतौर पर उन सोसाइटीज में जहाँ आइडेंटिटी को कभी कभी लिमिटेशन समझा जाता है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन डिसिप्लिन है। फेंसिंग जैसे फास्ट पेस स्पोर्ट्स में जहाँ मिली सेकेंड्स में डिसीजंस चेंज होते हैं, वहाँ डिसिप्लिन लाइफ लाइन होती है। फेंसिंग में एथलीट्स को सिर्फ फिजिकल फिट नहीं होना पड़ता बल्कि मेंटली अल्ट्रा फोकस्ड रहना पड़ता है। स्टडीज के मुताबिक एलीट फेंसर्स एक मैच में एवरेज 300 से ज्यादा माइक्रो डिसीजंस लेते हैं। इब्तिहाज मोहम्मद ने इस लेवल की डिसिप्लिन को अपनी ट्रेनिंग का डेली रूटीन का हिस्सा बनाया। ये डिसिप्लिन सिर्फ स्पोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, ना ना ना ना, बल्कि उनकी लाइफ फिलॉसफी बन गया है। हर ट्रेनिंग सेशन, हर रेपिटेशन और हर डिफीट उनके लिए एक लर्निंग स्टेप था। अच्छा, तीसरा मैं कहूंगी सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पब्लिक विजिबिलिटी का है। देखिए, इब्तिहाज मोहम्मद ने मुस्लिम वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टेज पर रीडिफाइन किया। 2016 रियो ओलंपिक्स में उनकी पार्टिसिपेशन एक हिस्टोरिक मोमेंट था, जहां वो पहली अमेरिकन मुस्लिम वुमेन बनी जो हिजाब के साथ ओलंपिक्स में कम्पीट कर रही थी। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मोमेंट नहीं है बल्कि एक ग्लोबल विजिबिलिटी शिफ्ट था, रिपोर्ट्स के मुताबिक रियो ओलंपिक्स के बाद ग्लोबल मीडिया कवरेज को मुस्लिम वुमेन एथलीट्स में नोटिसेबल इंक्रीज देखा गया और फेंसिंग फेडरेशंस ने डाइवर्सिटी कैंपेन्स को एक्सपेंड किया। अच्छा, चौथा लेसन हमें ये मिलता है लीडरशिप का। लीडरशिप सिर्फ कैप्टन बनना या मेडल्स जीतना नहीं होती, बल्कि इंस्पिरेशन देना होती है। इब्तिहाज मोहम्मद ने अपनी प्रेजेंस से एक नई लीडरशिप डेफिनेशन दी। वो सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं खेल रही थी, बल्कि उन हजारों लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन रही थी जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर अनसिक्योर होती हैं। उनकी लीडरशिप का इम्पैक्ट ये था कि आज कई कंट्रीज में विमेन स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में रिप्रेजेंटेशन अवेयरनेस मॉड्यूल्स इंक्लूड किए जा रहे हैं। ये एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन है जो स्लोली बट पावरफुली स्पोर्ट्स कल्चर को चेंज कर रही है। अच्छा, पांचवा लेसन हेल्थ और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है। अक्सर लोग समझते हैं कि स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल होती है, लेकिन इब्तिहाज मोहम्मद ने ये प्रूव किया कि स्ट्रेंथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी होती है। इलीट फेंसिंग में रिएक्शन टाइम एवरेज 300 मिलीसेकंड से कम होता है, जो एक ब्लिंक से भी तेज होता है। साथियों, इस लेवल पर कम्पीट करने के लिए सिर्फ फिटनेस नहीं चाहिए होती ना बाबा, मेंटल हेल्थ चाहिए होती है, मेंटल क्लैरिटी भी रिक्वायर्ड होती है। इब्तिहाज ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये बैलेंस अचीव किया जहां उनके बॉडी और माइंड दोनों सिंक्रनाइज थे। अच्छा, छठा और सबसे डीप लेसन जो है ना, वो रिस्पेक्ट का है भाई। देखें, रिस्पेक्ट कभी डिमांड नहीं की जाती बल्कि अर्न की जाती है। इब्तिहाज मोहम्मद ने अपनी परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी के थ्रू ग्लोबल स्पोर्ट्स कम्युनिटी का रिस्पेक्ट जीता। उनका हिजाब में कम्पीट करना इनिशियली डिस्कशन का टॉपिक बना था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने सब डाउट्स खत्म कर दिए भाई। ये रिस्पेक्ट सिर्फ स्पोर्ट्स अरीना तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि सोसाइटी लेवल पर उन्हें एक रिस्पेक्टेड वॉइस बना दिया। अच्छा, और गहराई में बात करें तो इब्तिहाज मोहम्मद की स्टोरी हमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछती है। क्या हम अपनी आइडेंटिटी को दूसरों से छुपाते फिरे या उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाए? ये सिर्फ स्पोर्ट्स का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि जिंदगी का क्वेश्चन है। हर यंग गर्ल जो किसी फील्ड में एंटर करती है, उसके सामने ये डिसीजन होता है ना कि वो अपनी यूनिकनेस को कॉम्प्रोमाइज करे या उसे सेलिब्रेट करे। इन दो चीजों में से उसे चूज करना होता है। इब्तिहाज मोहम्मद ने दुनिया को ये सिखाया कि ट्रू सक्सेस तब होती है, असली सक्सेस तब होती है जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ सक्सेस अचीव करते हैं। अच्छा, कतर जैसे मुल्क के लिए ये स्टोरी बहुत रेलिवेंट है, जहां वुमेन स्पोर्ट्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। स्कूल्स, अकेडमीज और नेशनल प्रोग्राम्स में गर्ल्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वुमेन पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक स्पोर्ट्स लास्ट डेकेड में, यानी कि 2016 रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतना सिर्फ स्पोर्टिंग अचीवमेंट नहीं था, बल्कि एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन था जहां डाइवर्सिटी और एक्सीलेंस के साथ स्टेज पर नजर आई वो। ये मोमेंट दुनिया के लिए एक रिमाइंडर था कि भाई, टैलेंट किसी कल्चर, रिलीजन या अपीयरेंस तक लिमिटेड नहीं होता। अगर हम और ज्यादा गहरी एनालिसिस करें तो उनकी जर्नी हमें ये समझाती है कि रेजिलियंस एक एथलीट का सबसे पावरफुल वेपन होता है। वो उस स्पेस में बिलोंग नहीं करते। इब्तिहाज मोहम्मद ने ये गैप फिल किया। उनकी प्रेजेंस ने फेंसिंग और ओलंपिक स्पोर्ट्स में मुस्लिम वुमेन के लिए एक विजिबल पाथवे क्रिएट किया। ग्लोबल स्पोर्ट्स डाटा के मुताबिक ये शो होता है कि 2010 के बाद वुमेन पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक स्पोर्ट्स नियरली 40-50% तक इंक्रीज हुई है, और इस ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिप्रेजेंटेशन है और विजिबिलिटी कैंपेन्स हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बल्कि रियल लाइव्स का चेंज है भाई। साथियों, मैं हूं सफा और उम्मीद करती हूं कि आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा। आज का मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। स्पोर्ट्स सिर्फ बॉडी का गेम नहीं है, बल्कि ये माइंड, आइडेंटिटी और सोल का गेम है। और जो लोग अपनी पहचान के साथ इस गेम में एंटर करते हैं ना, वो सिर्फ विनर्स नहीं होते, वो हिस्ट्री लिखते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट सफा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: यस जनाब, चेक चेक चेक, टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के डेढ़, यानी इट्स टाइम फॉर,
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: तो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? I'm very certain आप बहुत मज़े में होंगे और जाहिर सी बात है आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मतलब जैसे ही मैं स्टूडियो में एंटर हो रही थी तो मैंने कार में देखा टेम्परेचर, यू नो इट्स 49 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन? आई नो अलग अलग जगह पे थोड़ा सा वेरिएट कर सकता है, बट ये कि 45 पार तो चला ही गया है एंड इट वॉज रियली रियली हॉट। तो भाई देखो, हम सबको पता है गर्मियों में अपना ख्याल रखना है, कुछ पीते रहना है, मतलब अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है ताकि हम डिहाइड्रेट ना हो जाए। बट आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, भूलना नहीं है, पानी टाइम पे पीना है। ऑलराइट, वेल आप सभी का इस्तकबाल है एस्केप रूम की सिचुएशन में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर तो चैलेंज पे चैलेंज आपको मिलते रहता है, इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस गर्मी के टाइम पर आप हाइड्रेटेड रहे। तो आज की सिचुएशन क्या हो सकती है भाई? आज की सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पर वो कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती की नहीं, दिमाग के बैलेंस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये बैलेंस हमारा ना बिगड़े उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा खाते पीते रहें और अपने माइंड को बिल्कुल यू नो एक सही बैलेंस में ला कर रखें। तो सिचुएशन क्या हो सकती है? आपने कभी इमेजिन किया है कि आप जिस ज़मीन पर चल रहे हैं, अगर वो ज़मीन आपके सर के ऊपर हो और आसमान नीचे हो और आप चल रहे हैं आसमान के ऊपर, एंड देन चैलेंज पे चैलेंज पे चैलेंज आपको मिलता जाए? हाँ, आज की सिचुएशन कुछ ऐसी ही उल्टी पुल्टी होने वाली है जहाँ पर आपकी जो कहते हैं ना फिजिक्स को आपको सही तरीके से सेट करना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आज की सिचुएशन आपके सामने आने वाली है। सो ऑल द बेस्ट। और अभी क्या करना है भाई, नंबर नोट कर लीजिए 666-22-107, 666-22-107, बिकॉज इस नंबर के जरिए आप हमसे राबता कायम कर पाएंगे। वाह वाह वाह, क्या शानदार गाना है द अम्ब्रेला सॉन्ग। भाई अम्ब्रेला की भी बहुत जरूरत है, गर्मी बड़ी आ गई धूप से बचने के लिए। सो लेट्स एंजॉय द म्यूजिक, स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: साथ सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी दिल से देसी
1: क्रिकेट हो एंड ही इज हुक्ड दैट अवे दैट्स फोर रन फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन हम लाते हैं आप तक हर एंगल हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की
3: स्पोर्ट्स की आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी
4: यस जनाब वेलकम वेलकम वेलकम FM 107 सुन रहे हैं आप मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता एंड इट्स टाइम कि आज के एस्केप रूम की सिचुएशन आपके सामने लाई जाए वेल सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों ने पूल गेम्स खेले स्विमिंग पूल वाला नहीं पूल मतलब जैसे स्नूकर होता है उस तरह के गेम्स खेले हैं आपने कभी अगर खेले हैं तो आज जो भी कुछ सिचुएशन में होने वाला है आप डेफिनेटली उसे जीत सकते हैं और नहीं खेला है तो आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से बैलेंस करके सही जवाब देने होंगे अच्छा ये बताओ कि आपको उल्टा होने से डर तो नहीं लगता चलिए आज की सिचुएशन आपके सामने लेकर आती हूँ तो आपने एक दरवाज़ा खोला ठीक है एक दरवाज़ा एक रैंडम दरवाज़ा खोला और पूरी दुनिया घूम गई यानी आप गिर नहीं रहे हैं लेकिन पेट में एक अजीब सी हलचल हो रही है ना अब क्यों हो रही है क्योंकि आप एक लग्जरी पूल हॉल की सीलिंग यानी छत पर खड़े हैं भाई मतलब जमीन में आपको खड़े होना था लेकिन आप छत पर खड़े हैं सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है अब आप नीचे देख रहे हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ तो ऊपर होनी चाहिए थी मतलब आप समझ रहे हैं ना आप उल्टे हो गए महंगी टेबल्स लेदर चेयर्स और फूड कोर्ट्स सब के सब उस जगह पर जुड़े हुए हैं जिस जगह पर जमीन होनी चाहिए थी वेल पूल बॉल्स हवा में ऊपर की तरफ गिर रही हैं और टाइल से टकरा रही हैं देखिए एग्जिट वेंट यहाँ से 20 फीट दूर है लेकिन इस कमरे में चलना किसी ख्वाब जैसा ही है अगर बाहर निकलना है तो इस उल्टे पुल्टे फिजिक्स को समझना होगा यस और आपको हर एक सवाल का सही जवाब सोच समझ कर देना होगा मतलब ध्यान से देखिए एक पूल क्यू आपके सर के पास से तैरती हुई निकल रही है उस पर लगे चौक पर एक छोटी सी इंस्क्रिप्शन है अब उस चीज पर आपका क्लू नंबर 1 लिखा है ठीक है जो भी आपको क्लू मिलते जाएंगे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पूल गेम के बारे में सोचें पूल गेम कैसे खेला जाता है उसमें क्या होता है एंड डेफिनेटली आप आज हर एक सवाल का सही जवाब दे पाएंगे सो क्लू नंबर 1 इज फॉर यू मैं वो फोर्स हूँ जो आपके कदमों को जमीन से जोड़ कर रखती है मगर इस कमरे में मैं ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ वो कौन सा इनविजिबल खिंचाव है जो आपको फर्श की तरफ ढकेल रहा है सोचिए और बताइए क्या सही जवाब हो सकता है 6622107 पर 6622107 पर अपने नाम के साथ आपको सही जवाब देना है क्लू नंबर 1 एक बार मैं फिर से दोहराऊंगी क्योंकि इसी के चलते हम इस उल्टी पुल्टी दुनिया से एस्केप कर पाने हैं कर पाएंगे ठीक है सो मैं वो फोर्स हूँ जो आपके कदमों को जमीन से जोड़ कर रखती है मगर इस कमरे में मैं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ वो कौन सा इनविजिबल खिंचाव है जो आपको फर्श की तरफ ढकेल रहा है सोचिए एंड गिव मी द आंसर विद योर नेम 6622107 पर एंड लेट्स सी कि आज इस उल्टी पुल्टी सिचुएशन से आप बाहर निकल पाते हैं या नहीं एंड राइट नाउ म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट तो थोड़ा सा गाने सुनते हैं एंड एंजॉय करते हैं स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दीप।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। भाई एस्केप रूम की आज की सिचुएशन बड़ी ही उल्टी पुल्टी है जनाब। आपने एक दरवाजा खोला और अचानक से पूरी दुनिया घूम जाती है। आप गिर नहीं रहे हैं लेकिन अंदर कुछ अजीब सी हलचल हो रही है क्योंकि आप एक लग्जरी पूल हॉल की सीलिंग यानी छत पर खड़े हैं। भाई जो चीज़ें नीचे होनी चाहिए थी वो ऊपर चली गई हैं, ऊपर होनी चाहिए थी वो नीचे चली गई हैं। थोड़ा सा आप परेशान हो गए लेकिन आपने अपने आप को संभाल लिया है। जो बाहर का जहाँ पर आप हैं वहाँ का माहौल जो है, वहाँ पर महंगी टेबल्स हैं, लेदर चेयर्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, लेकिन सब उल्टा पुल्टा है। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे पूल गेम पर। तो पूल बॉल्स हवा में ऊपर की तरफ गिर रही हैं, टाइल से टकरा रही हैं और पहला क्लू हमको मिला, ठीक है, थोड़ी सी सिचुएशन को संभालने के लिए, दैट वॉज कि मैं वो फोर्स हूँ जो आपके कदमों को ज़मीन से जोड़कर रखती है, मगर इस कमरे में मैं ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। वो कौन सा इनविजिबल खिंचाव है जो आपको फर्श की तरफ ढकेल रहा है? अब इसका सही जवाब क्या हो सकता है? हमें जवाब में किसी ने स्टिक लिखा है, किसी ने ग्रेविटी लिखा है, किसी ने एंटी जी फोर्स लिखा है। जिन्होंने ग्रेविटी लिखा है या ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा है वो एग्जैक्टली सही जवाब है। भाई जोरदार तालियां उनके लिए, क्या बात है, क्या बात है, पीठ थपथपा लो भाई अपनी, सही जवाब दे दिया है। क्लू नंबर वन सॉल्व कर लिया आपने, लेवल वन पार कर लिया है, वाह क्या बात है। आइए जरा नाम बता दें आपको सबसे पहले जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। उनके नाम हैं अली, जुनैरा, फातिमा यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। और ये नंबर कुछ डिफरेंट है, ये यूनाइटेड किंगडम का नंबर है भाई। ओके, जैव या जाव, क्या नाम है आपका भाई? इन्होंने भी हमें मैसेज किया है, सही जवाब दिया है। हुसैन ने बिल्कुल हमको सही जवाब दिया है। और कुछ हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने सिर्फ हाय हेलो भेजा। देखिए जवाब तो दे दीजिए, सिर्फ हाय हेलो से काम नहीं चलने वाला है। मोहम्मद आरिफ ने भी सही जवाब दिया है, विच इज़ रियली ग्रेट। ओके, जावेद है यूनाइटेड किंगडम से, वाह क्या बात है, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मोहम्मद बशारत, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। सो गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, आप सबने लेवल वन पार कर लिया है। जैसे आपने ग्रेविटी कहा, कमरा जो है 45 डिग्रीज पर झुक गया है, आप फिसल रहे हैं। खुद को संभालने के लिए आपको मास्टर बॉल ढूंढनी होगी और यहीं पर क्लू नंबर टू आपके सामने आ गया है। टेबल पर मौजूद बाकी सब बॉल्स रंग बिरंगी हैं, मगर मेरा रंग है बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद। मैं ही वो हूँ जिसे स्टिक से मार खानी पड़ती है ताकि बाकी बॉल्स पॉकेट में जा सकें। बताइए मेरा नाम क्या है? What's the name of that ball? आप पूल गेम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, अब जरा गौर फरमाइए। एक बार फिर से क्लू नंबर टू आपके लिए दोहराऊंगी। टेबल पर मौजूद बाकी सब बॉल्स रंग बिरंगी हैं, मगर मेरा रंग है बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद। मैं ही वो हूँ जिसे स्टिक से मार खानी पड़ती है ताकि सारी जो बॉल्स हैं वो पॉकेट में जा सके। बताइए मेरा नाम क्या है? अब देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब आपके पास है नंबर 666-22-107, 666-22-107, जल्दी से इस पर सही जवाब दीजिए अपने नाम के साथ और क्लू नंबर टू को सॉल्व कर लीजिए। और एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर मिलने वाली हूँ एस्केप रूम में, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: यस जनाब, एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं 2:01। अब देखते हैं कि आज की एस्केप रूम की सिचुएशन से आप बाहर निकल पाते हैं या नहीं।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: सो यस माय देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन। तो जनाब, आज के एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। मतलब एकदम से हमारी जो ग्रेविटी है ना, वो गायब हो गई। मतलब एक सिचुएशन ऐसी कि हमने दरवाज़ा खोला और ऐसी जगह पर हम चले गए जहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। पूल हॉल की सीलिंग में खड़े हैं भाई हम। वेल, अब ऐसी सिचुएशन से एस्केप करने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे हमें क्लूज मिलते जाए, हम उन्हें सॉल्व करें, अपने दिमाग को दौड़ाएं और बैलेंस करते हुए यहाँ से बाहर निकल आए और सीधे खड़े हो जाए। मतलब जैसे हम जमीन से जुड़ जाते हैं, है कि नहीं। चले, क्लू नंबर 1 का सही जवाब था ग्रेविटी, जो कि आपने बिल्कुल सही दिया, पहले लेवल को पार किया। क्लू नंबर 2, मैंने आपसे पूछा टेबल पर मौजूद बाकी सब बॉल्स रंग बिरंगी हैं, मगर मेरा रंग है बिल्कुल दूध जैसा सफेद। मैं ही वो हूँ जिसे स्टिक से मार खानी पड़ती है ताकि बाकी बॉल्स पॉकेट में जा सकें। तो मेरा नाम क्या है? आपको इस बॉल का नाम बताना था। तो कुछ लिसनर्स हैं हमारे लिख रहे हैं पॉट बॉल, किसी ने लिखा है सफेद बॉल। ओ भाई, इस नाम क्या है इस बॉल का? चलिए आपको बता देते हैं कि सही जवाब किस किस ने दिया है। सही जवाब दिया है मोहम्मद ने, साहिब ने, अली ने, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जाकी, जाकी ने सही जवाब दिया है, हुसैन ने भी सही जवाब दिया है, मोहम्मद मुशीर आलम ने भी सही जवाब दे दिया है, फातिमा यूसुफ ने भी सही जवाब दे दिया है, और कौन है, मोहम्मद यूसुफ खान ने भी सही जवाब दिया है, आरिफ ने भी सही जवाब दिया है। और सही जवाब बता दूं मैं, क्या है सही जवाब? सही जवाब इज क्यू बॉल। भाई जोरदार तालियां आप सबके लिए जिन्होंने कमाल कर दिया, क्लू नंबर 2 सॉल्व कर लिया और सही जवाब देकर लेवल 2 भी पार कर लिया। वेल, जैसे ही आपने ये जवाब दिया, ये बॉल आपके हाथ में, आपने उसे पकड़ लिया है और उसका जो वजन है एक काउंटर बैलेंस की तरह अब काम कर रहा है। अब सामने उस वेंट को देखिए, ठीक है, जिस हॉल में आप हैं सामने एक वेंट है, उसे देखिए, वो एक 3-डिजिट कोड से लॉक्ड है। अब हमें उसे खोलना है, पर वो 3-डिजिट कोड क्या होगा? चलिए क्लू नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त अब निकलते जा रहा है और हमें जल्दी से सिचुएशन से बाहर निकलना है। वेंट का कोड 3-डिजिट का है, ठीक है, और क्लू ये है कि मैं टेबल पर मौजूद वो पीली बॉल हूँ जिसका नंबर सबसे बड़ा है, मेरे बाद गिनती खत्म हो जाती है, बताइए मैं कौन सा नंबर हूँ। वेंट खोलने के लिए कोड यही होने वाला है, सो थिंक अबाउट दैट 3-डिजिट कोड और मुझे मैसेज करें 666-221-07 पर 666-221-07।

2107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब मुझसे शेयर कीजिए। एक बार और क्लू नंबर 3 आपके लिए मैं रिपीट करना चाहूंगी कि भाई ये 3 डिजिट का कोड है, ठीक है। मैं टेबल पर मौजूद वो पीली बॉल हूं जिसका नंबर सबसे बड़ा है। एक पीली बॉल है जिसका नंबर सबसे बड़ा है। मेरी बात गिनती खत्म हो जाती है, बताइए मैं कौन सा नंबर हूँ। कम ऑन, थिंक अबाउट इट। कुछ और याद ना हो तो पूल बॉल का जो गेम है, पूल गेम है, उसके बारे में सोचें एंड देन यू विल गेट द आंसर। सही जवाब दें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। एंड लेट मी सी, ये आखिरी पड़ाव आप पार कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल टाइम टू रिलैक्स और सोच समझ के सही जवाब देने का। तो एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी। कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: यह जनाब बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी फरमीता एंड हम खेल रहे हैं एस्केप रूम की इस खतरनाक सिचुएशन के चैलेंजेस से। उफ क्या बात है जनाब, मतलब कभी हम सोच नहीं सकते हैं कि जमीन पे चलते चलते एकदम से जमीन हमारे सर के ऊपर आ जाए और आसमान नीचे। कभी इमेजिन किया ऐसा कि हम उल्टे पुलटे हो जाए तो क्या होगा। भाई यही हुआ है आज हमारे साथ। एक दरवाज़ा खोला था हमने और पहुंचे हम एक पूल हॉल में जहाँ पर सब कुछ उल्टा पुलटा है। सीलिंग्स हमारे हमारे पैरों के नीचे है और ज़मीन हमारे सर के ऊपर है। वेल पूल हॉल है तो क्लूज भी कुछ उसी तरह से हमको मिले। ठीक है, पहला क्लू हमने सॉल्व किया, सही जवाब था ग्रेविटी। दूसरा क्लू हमने जब सॉल्व किया तो सही जवाब था क्यू बॉल। और तीसरे क्लू पर आकर थोड़ी सी हमारी जो नाव है वो अटक गई है। अब क्या किया जाए, अब फोकस किया जाए और क्लू नंबर 3 को ध्यान से सुना जाए और सही जवाब देने की कोशिश की जाए। यस, मैं टेबल पर मौजूद वो पीली बॉल हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट पूल गेम, ओके। मैं टेबल पर मौजूद वो पीली बॉल हूँ जिसका नंबर सबसे बड़ा है। मेरे बाद गिनती खत्म हो जाती है। बताइए मैं कौन सा नंबर हूँ, क्योंकि हमारे सामने जो वेंट है ना उसे हमें खोलना होगा, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली खोल नहीं पा रहे हैं। सो थिंक, सोचिए सोचिए सोचिए सोचिए, बिकॉज इसका जवाब बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने जो चैलेंज के लास्ट मुकाम पर हैं और हम यहाँ से तभी निकल पाएंगे जब हम इस क्लू नंबर 3 को सॉल्व कर पाएंगे। आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस बज कर रहे हैं लेकिन नंबर कुछ अलग ही आ रहे हैं। भाई फोकस कीजिए, पूल गेम की बात कर रही हूँ मैं, कि मैं टेबल पर मौजूद वो पीली बॉल हूँ जिसका नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, मेरे बाद गिनती खत्म हो जाती है। बताइए मैं कौन सा नंबर हूँ। वेंट खोलने के लिए ये कोड हमें चाहिए, 3-digit कोड। सोचिए, 666-22107 इज आर नंबर, 666-22107 इस पर अपने नाम के साथ सही जवाब भेज दीजिए। देखते हैं कि आज किसकी किस्मत चमकती है और कितने लोग आज इस तीसरे लेवल को पार कर पाते हैं। और अभी क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, जूस पियो, करक एंजॉय करो और इस ब्रेक के बाद मिलो, बताओ सही जवाब क्या है। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी, दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: एब्सोल्यूट सिनेमा,
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से दी।
1: Yes, welcome once again, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। भाई जनाब, बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम एस्केप रूम के, और अब यहाँ से एस्केप करना बहुत जरूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप क्लू नंबर 3 का सही जवाब दें और इस तीसरे लेवल को पार करके निकल जाएं। भाई आज की सिचुएशन, हमने एक दरवाज़ा खोला, एक पूल हॉल में गए, और पूल हॉल में जब हमारी एंट्री हुई ना, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मतलब सीलिंग जो थी वो हमारे कदमों तले आ गई और हमारे सिर पर कुछ और ही चल रहा था। यस, ज़मीन हमारे सर पर आ गई, तो वैसे ही चीज़ें हो गई। उसके बाद क्लू नंबर 1 आपने सॉल्व किया, सही जवाब था ग्रेविटी। दूसरा क्लू आपने सॉल्व किया जिसका सही जवाब था क्यू बॉल, और तीसरा क्लू, आए हाय हमारे लिसनर्स इतना भटक क्यों गए, चले आए क्लू नंबर 3 की तरफ, गौर फरमाएं। मैं टेबल पर मौजूद वो पीली बॉल हूँ, येलो बॉल हूँ, जिसका नंबर सबसे बड़ा है। मेरे बाद गिनती खत्म हो जाती है, बताइए मैं कौन सा नंबर हूँ, क्योंकि आपके सामने जो वेंट है वो तभी खुलेगा जब आप 3-डिजिट कोड बताओगे। तो हमारे लिसनर्स ने अलग अलग तरह के जवाब दिए हैं, किसी ने 8 लिखा है, किसी ने 9 लिखा है, किसी ने 999 लिखा है, अब किसी ने 101 भी लिख दिया है, एंड आई कैन सी दैट। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे लिसनर है जिन्होंने 100 भी लिखा है। ओके, ये सारे जवाब आपने देने की कोशिश की, लेकिन जो लोग पूल का गेम जानते हैं उन्हें पता है कि नंबर क्या है। जिन्होंने भी 9 लिखा है वो भी सही है, जिन्होंने 009 लिखा है वो भी बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। एग्जैक्ट सही जवाब है 9, लेकिन सही तरीका 3-डिजिट कोड के लिए 009। क्या बात है जनाब, खूब दिमाग लगाया आप सभी ने। चलिए जल्दी जल्दी बता दें जिनके सही जवाब हैं, उनके नाम हैं अली, उमर, मोहम्मद, फातिमा, यूसुफ ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, इनका नाम क्या है आइए ज़रा देखें। मोहम्मद मुशीर आलम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, और जावेद ने भी सही जवाब, क्या बात है क्या बात है, हुसैन साहब ने भी सही जवाब, मदीहा ने भी सही जवाब दिया है, और कौन है भाई हमारे साथ, हमारे लिसनर्स जुड़ते जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये आज थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया भाई, देखो कुछ लिसनर्स हमारे जवाब डिलीट कर रहे हैं, ऐसा ना करें। यहाँ पर संधू साहब हैं, चलिए इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। भला आप सबने कोशिशें अच्छी की, लेकिन लकी विनर कोई एक ही होगा जिसने आज के इस डिजी माहौल को जीता है। सो आज के हमारे विक्टोरियस विनर का नाम है मिस्टर हुसैन। भाई मुबारका मुबारका, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया, क्या बात है। बड़ी मुश्किल रही होगी, है कि नहीं? चले, जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जा रहा है और बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारा प्यार कि आपने लगातार सही जवाब दिए। वैसे जैसे ही आपने सही जवाब दिया, वेंट खुला, सब कुछ एकदम से सीधा हुआ कुछ पल के लिए और आप बाहर आ गए ज़मीन पर। भाई देखो, ताज़ी हवा में सांस लेना ज़मीन पर खड़े होकर बात ही कुछ और है, है कि नहीं? सी फीलिंग वेल नाउ, राइट? वेल, आज तो आपने कमाल कर दिया, लेकिन कल आपको एक ऐसी बारिश से बचना है जो कि आपको जला सकती है। तो अपने अम्ब्रेलाज वगैरह बिल्कुल रेडी कर लो, क्योंकि कल का माहौल बहुत डिफरेंट होने वाला है, ठीक है? अभी आप मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि वक्त है मेरे जाने का, मुझे जाना होगा। अभी जाते जाते हमारे एक और लिसनर है जिन्होंने मैसेज किया कि मीता, मैंने आपको वीकेंड में शॉपिंग करते हुए देखा। फयाज सैयद, थैंक यू सो मच, एंड डेफिनेटली वीकेंड में मैं अक्सर अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करते हुए नजर आऊँगी। तो अगर आप कभी मुझे बाहर देखें तो मिल लिया करें, ठीक है? फिलहाल आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, हमारे एफ एम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और अपनी आरजे मीता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढिए। और जाते जाते हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू एफ एम 107, दिल से देसी।

Assalamualaikum साथियों, welcome back to Eco Switch with Safa, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल के उन choices की जो environment को affect भी करती हैं और आपको भी affect करती हैं। तो भाई आज का topic है sustainable fashion, यानी ऐसा fashion या ऐसी fashion choices जो environment को नुकसान कम और फायदा ज्यादा देती हैं। साथियों fashion सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं होता, बल्कि एक industry है जो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में से एक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ग्लोबल कार्बन इमिशंस का ऑलमोस्ट 10% फैशन इंडस्ट्री से आता है। भाई देखिए, ये एविएशन और शिपिंग कंबाइंड से भी ज्यादा बनता है। साथियों जरा सोचिए, आप अपनी वार्डरोब खोलते हैं और क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास कपड़े तो बहुत हैं लेकिन पहनने को कुछ नहीं है। ये मेरे साथ भी होता है, अक्सर औकात होता है। ये मॉडर्न फैशन का कॉमन सिनेरियो है। हम अक्सर नए क्लोथ्स यानी कि नए कपड़े खरीद लेते हैं, और क्यों खरीदते हैं? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ट्रेंड के लिए थे, और पुराने कपड़े या तो यूज ही नहीं होते या डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब इको स्विच पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक सिंपल टी शर्ट बनने में लगभग 2700 लीटर पानी लगता है। भाई इतना पानी एक इंसान आप कह लें कि अराउंड 2.5 साल में इतना पानी इंसान पीता है। सिर्फ एक टी शर्ट के लिए इतना पानी, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। अब जरा सोचिए, जब आप 10 से 15 फास्ट फैशन आइटम्स खरीदते हैं तो हम कितने रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं, कभी सोचा है आपने? अच्छा अब कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स बताती हूँ आपको। देखिये, हर साल दुनिया में लगभग 92 मिलियन टन टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट होता है। एक एवरेज गारमेंट सिर्फ 7 से 10 दफा पहनने के बाद डिस्कार्ड कर दी जाती है। आपको पता है, फास्ट फैशन की वजह से ही हर लिटरल सेकंड एक ट्रक भर के कपड़े या तो फिर लैंडफिल में जा रहे होते हैं या बर्न हो रहे होते हैं ग्लोबली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉलिस्टर, जो सबसे कॉमन फैब्रिक है, वो प्लास्टिक से बनता है भाई, और उसे डिग्रेड होने में कितने साल लगते हैं? 200 साल से भी ज्यादा लगते हैं भाई। देखें, अब मामला ये है कि हाउ इको स्विच हेल्प्स, यानी कि बात कर लेते हैं स्मार्ट फैशन चॉइसेस की। देखिए भाई, इको स्विच का आइडिया यहाँ बड़ा सिंपल सा है। फैशन को बंद मत करें, नहीं नहीं, आपने ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपने कोई फैशन करना बंद कर देना है, बल्कि उसे रिस्पॉन्सिबल बनाए ना। देखिए, सस्टेनेबल फैशन का मतलब ये है कि कम लेकिन क्वालिटी क्लोथ्स लें, रीयूज करना सीखें चीजों को और रीसाइकल करें। अगर हम फास्ट फैशन कंजम्पशन 30% तक कम कर देना तो ग्लोबल टेक्सटाइल वेस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। इसी तरह आप कह लें कि थ्रिफ्ट शॉपिंग या सेकेंड हैंड क्लोथ्स यूज करना रिसोर्सेज को सेव करता है और वेस्ट को रिड्यूस करता है। साथ ही जरा सोचिए कि एक ह्यूज सेल चल रही है, ठीक है, और आप इंपल्स में आकर, आप जज्बात में आकर 5 से 6 शर्ट तो खरीद ही लेते हैं, सिर्फ क्या देखकर कि डिस्काउंट है, सेल है, सेल है। घर आकर आप रियलाइज करते हैं कि भाई इसमें से तो 2 सेम आपके पास ऐसे ही पड़ी हुई है, तकरीबन सेम है, और एक शर्ट शायद कभी आप ऐसी ले लेते हैं जज्बात में आकर, जो आपने कभी पहनी नहीं जानी। अब इको स्विच माइंडसेट कहता है कि भाई डू आई नीड इट और डू आई जस्ट वॉन्ट इट बिकॉज इट्स चीप। देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन आपको अननेसेसरी वेस्ट और ओवर कंजम्पशन से बचाता है। इसी से रिलेटेड ना मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। अब कुछ इजी इको टिप्स पे बात कर लेते हैं, फैशन टिप्स। देखिए, पहला तो ये कि बाय लेस चूज वेल, रूल फॉलो करें ये वाला, और क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर तरजीह दें। दूसरी चीज ये कि कपड़ों को रिपेयर करें इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली रिप्लेसिंग देम। तीसरी चीज ये, थ्रिफ्ट स्टोर्स या सेकंड हैंड मार्केट्स एक्सप्लोर करें, वहां पे भी कभी कभी अच्छा माल मिल जाता है भाई। चौथी चीज ये है कि जो हमारे कपड़े हैं उनको रिसाइकल या डोनेट करें इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग देम अवे। और पांचवा, सिंथेटिक फैब्रिक्स के बजाय कॉटन, लिनन या नेचुरल फाइबर्स चूज करें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। साथियों, सस्टेनेबल फैशन का सबसे बड़ा माइंड शिफ्ट ये है कि कपड़े सिर्फ ट्रेंड के लिए नहीं होते बल्कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी होते हैं। जब हम एक आइटम को ज्यादा दफा यूज कर लेते हैं ना, तो उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट पर वेयर ड्रामेटिकली कम हो जाता है।
एक स्टडी के मुताबिक अगर हम अपने क्लोथ्स को, अपने कपड़ों को डबल दफा ज्यादा पहनते ना, मतलब ज्यादा पहन लें, तो भाई फैशन रिलेटेड कार्बन फुटप्रिंट को 40% तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो आखिर में भाई इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है कि फैशन और सस्टेन

0: फैशनेबिलिटी साथ चल सकते हैं। स्टाइलिश रहना जरूरी है इस मार्केट में भाई, लेकिन रिस्पॉन्सिबल रहना भी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हर बार जब आप कोई कपड़ा खरीदते हैं तो एक से दो दफा उसे खरीदने से पहले सोच लिया करें, एक छोटा सा इको स्विच ऑन कर लिया करें अपने दिमाग में, विल आई वेयर इट 10 times और नॉट। अगर जवाब है यस तो हाँ भाई वो सस्टेनेबल चॉइस है। तो भाई याद रखिए, फैशन का असली स्टाइल वही है जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। इसी के साथ मैं हूँ सफा आपके साथ इको स्विच पर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है इको स्विच के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, जहां हर आउटफिट सिर्फ फैशन नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट होता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात

0: करेंगे ईमानदारी से काम करने की अहमियत के बारे में। ईमानदारी एक ऐसी खूबी है जो इंसान की शख्सियत को मजबूत बनाती है और सोसाइटी में उसकी पहचान बन जाती है। जब कोई शख्स अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी इख्तियार करता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर जिम्मेदारी को पूरी सच्चाई के साथ अदा किया जाए, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या घर की जिम्मेदारियां। ईमानदारी हर जगह जरूरी है। अक्सर आसान रास्ता लेने के लिए लोग ईमानदारी छोड़ देते हैं, लेकिन असल कामयाबी वही होती है जो हलाल और सच्चाई के रास्ते से मिले। आज का अमल ये है कि अपने काम का जायजा लें और कोशिश करें कि हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से अदा करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नासिया।
2: One step to 2030.
3: और दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ उसे सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ, ये काफी फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है और आज बात होगी लाइफ विदाउट फोन्स की। आप सोच रहे होंगे ये फ्यूचरिस्टिक है या काफी और ज्यादा हमको पास्ट में लेके जाने वाली बात है। देखिए, आने वाले दिनों में जिस तरह से इनविजिबल टेक्नोलॉजी जो है ना वो बढ़ेगी, तेजी से इवॉल्व हो रही है और ग्रो करेगी, ऐसे में एक और तरीके का डिवाइस आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। देखिए, आज के जमाने में स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में होता है फोन, उठाते ही अपना मोबाइल चेक करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर 2030 तक फोन जो है वो खत्म हो जाएं, तो क्या उठाएंगे हाथ में चेक करने के लिए। लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ट्रेंड ये कह रहा है कि मोबाइल फोन धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे, उनकी जगह आएंगे स्मार्ट ग्लासेस, वेयरेबल डिवाइसेस और इनविजिबल टेक्नोलॉजीज जो हमारे आसपास होंगी लेकिन शायद नजर नहीं आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इमेजिन करें कि आप एक चश्मा पहनते हैं जिसमें स्क्रीन नजर आती है, आप व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहे हैं उसे पहनकर, कॉल्स आप रिसीव कर रहे हैं और शायद नेविगेशन भी बिना फोन निकाले यूज कर रहे हैं। ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए या उसके जरिए होगा। AR ये भी आ रहा है तेजी से। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप हैंड फ्री लाइफ जिएंगे, मतलब हाथ आपके यूं खाली घूम रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है। जी हाँ, ड्राइविंग के दौरान या फिर जब आप वॉक कर रहे हैं उस वक्त आपको फोन यूज करने की जरूरत ही नहीं होगी। सेफ्टी और ज्यादा इम्प्रूव होगी जैसे कि कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। प्राइवेसी, जी हाँ, प्राइवेसी एक बड़ा मसला बन सकती है। अगर हर वक्त डिवाइसेस आपका डेटा कलेक्ट करे तो सिक्योरिटी का क्या होगा, ये सोच के तो मैं घबरा ही गई। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो मुझे लगता है हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि आने वाला दौर जो है वो फोन का दौर नहीं है, AR का दौर है। एक दिन भी हम आज अगर सोचें कि एक दिन बिना फोन के स्मार्ट ग्लासेस के साथ हमें रहना है, तो हमें लगेगा कि नहीं, स्मार्ट ग्लासेस क्या, स्मार्ट ग्लासेस बहुत ही ज्यादा आने वाले टाइम में ना बहुत ही मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी भी होंगे और बड़े इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे। देखिए, फ्यूचर जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, वो लाइफस्टाइल चेंज का भी है। अब जरूरत ये है कि हम खुद को किस तरह से जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या इन सारे चेंजेस को हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं,

0: ये है हमारी और आपकी तैयारी. ये तैयारी आज से शुरू हमें करनी है, जो कहीं ना कहीं हमारा और आपका मतलब हमें और आपको अपनी सोच को थोड़ा सा ओपन रखना है. इस तरह से रखना है कि जो नए चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम सीखें, उन्हें हम अडॉप्ट करें और कोशिश करें कि आसपास वो लोग जो जिनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है उनके लिए भी हम आसानी पैदा करें. शायद तभी हम मिल के इन सारी चीज़ों का सामना भी कर पाएंगे और शायद बेहतर तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई रियली होप दैट हैपेंस
0: एक्सप्लोरिंग
1: क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं कि डॉक्टर्स इतने सब कुछ याद कैसे रखते हैं नो देयर टन्स ऑफ थिंग्स
0: मैं भी ये सोचती हूं
1: अभी भी सोचती हूं अरे अब तो मत सोचो अब टाइम नहीं सोचने का पर मुझे अब तुम बताओ अम्मी भी बताएंगी पर सबसे पहले तुमसे पूछ लेता हूं डॉक्टर्स की राइटिंग ऐसी क्यों कहते हैं लोग
0: It's just
1: कैसे समझ लेता है कोई मतलब कमाल की बात है ये
0: मतलब we have like short forms and everything
1: अच्छा वो short forms बोलते
0: हैं and बहुत fast fast लिखने की आदत हो जाती है because you have to like write and memorize
1: बस वो pharmacist को समझ में आता है वो letter
0: जी
2: I think क्योंकि curriculum इतना vast हो जाता है इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि you need to study this that सब कुछ पढ़ना है सब कुछ लिखना है exam में सब कुछ जल्दी जल्दी लिखना है तो I think वो
1: और दवाइयों के नाम में भी तीन चार सिलेबल्स होते हैं मतलब वो अपने आप में ही डिफिकल्ट काम है
2: फार्मेसिस्ट समझ जाते हैं
1: हाँ उनको भी बेचारे को उल्टी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना बड़े बड़े भी एक आम इंसान का नजरिया है क्योंकि हम तो यही मान के चलते हैं ना एक और नजरिया मैं रखना चाहूंगा तुम्हारे भी सामने और मैम के सामने भी अक्सर लोग कहते हैं कि जब डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा ने गाड़ी चलाई है तो वो सेकंड हैंड बहुत बढ़िया बिकती है सुना है तुमने आपने सुना
2: होगा मैंने सुना है मैंने सुना है क्योंकि आई थिंक डॉक्टर्स ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इसीलिए
1: डिसिप्लिन होता है केयरफुल होता है मैं ये गाड़ी जो है डॉक्टर साहब चलाते हैं डॉक्टर साहिबा चलाती है फट से बिकती है वो लोग सोचते भी नहीं है
2: बिल्कुल सही सुना
1: है ना आई थिंक उसमें किलोमीटर शायद कम चले हुए होते हैं इसलिए भी क्योंकि
2: हाँ ये भी है क्योंकि डॉक्टर्स इतना बिजी होते हैं क्योंकि घर से क्लिनिक या हॉस्पिटल हॉस्पिटल से घर तो इतना टाइम नहीं होता है कि कहीं और जाए और इतनी ड्राइविंग नहीं होती मुझे लगता
1: है अब ये जो जनरेशन गैप है आपने ये जनरेशन गैप देखा ही है आपका टाइम अलग रहा है इनका बहुत ही अलग रहा है How difficult it is, it was initially, इनको हैंडल करना क्या नए जमाने की सबसे दिक्कत आई आपको
2: आई थिंक हाँ जनरेशन गैप तो है कुछ चीज़ें हैं लेकिन मतलब मुझे लगता है कि मेरी और आफिया की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इतना नहीं है क्योंकि एक तो शी चोज सेम प्रोफेशन तो वो डिस्कशन ज़्यादा वैसा होता है और मुझे नहीं लगता कि शी गेव मी सो मच ट्रबल जो मैं सुनती हूँ कि दूसरे टीनेज बच्चे देते हैं तो आई थिंक इट वॉज नॉट दैट चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि I'm a kind of the person जो मैं बच्चों के से बहुत सारा discussion करती हूँ I mean, I take their opinion, उनका opinion, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि I didn't wanted her to become a doctor, क्योंकि बहुत stressful life होती है, based from my experience.
1: ये पहली बार सुन रहा हूँ, I never heard a mom saying this, but ये बहुत commendable चीज़ है, very nice.
2: तो मैं नहीं चाहती थी कि वो इतने stressful environment में जाए, but then she was very much focused
1: और ढीठ भी है
2: कि नहीं मुझे इन फ्यूचर मुझे सर्जन ही बनना है सर सर ठीक है गो फॉर इट
1: ओह वेरी नाइस तो आप तो अपनी जनरेशन तो देख रही हो ऑफ कोर्स जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूँ आई एम अ 90s बॉर्न आपके टाइम की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी डिडंट एग्जिस्ट राइट पर तुम्हारे टाइम पे हाउ प्रेशराइजिंग इट इज आर यू ऑन सोशल मीडिया बाय द वे
0: या आई एम बट आई एम नॉट दैट एक्टिव
1: यू आर नॉट दैट एक्टिव बट आसपास दिखते हो कि लोग काफी एकदम एक्टिव रहते हैं
0: जी जी
1: कभी उठा के अपनी फीलिंग पोस्ट करी तुमने सोशल मीडिया पर
0: नहीं बहुत रेयरली I feel like social media is somewhere, you know, कि आप अपना आपको express तो कर सकते हो. Like you do get judged a lot by, you know, friends.
1: तो तुम judgment चाहती नहीं हो कोई?
0: नहीं, मैं नहीं चाहती.
1: तो मम्मी को किसी चीज़ के लिए तुमने pressures की मम्मी सीखी है आजकल ये चल रहा है ऐसा कुछ सिखाया जो मम्मी was not aware about it?
0: नहीं, it's not like that. उल्टा मम्मा मुझे pressurize करती है ना कि तुम्हें ये सीखना चाहिए वो. मम्मा is like very technology
1: very advanced. क्या बात है?
0: वो मुझसे ज़्यादा you know AI use करती
1: हर बॉल स्टेडियम के बाहर जा रही है आप ट्रेन करके ले
2: जाएगा यहां आई थिंक
0: वो मुझे सिखाती है कि मैं कैसे एआई यूज करूं फॉर स्टडीज एंड एवरीथिंग या
1: ये बड़ा ही रिवर्स उनो घाट चल रहा है कमाल है अच्छा तो अभी मम्मी से क्या क्वालिटी आपने सीख ली और क्या सीखनी बाकी है क्या क्वालिटी पसंद है मम्मी की जो
0: मामा एंड आई हैव एज गैप ऑफ 26 इयर्स आई थिंक ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है लाइक पेरेंट और बच्चे के बीच में
1: 20 साल दुनिया इधर की उधर हो गई है वैसे तो
0: या बट आई थिंक के यू नो हम दोनों में देयर इज लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स बट इट्स
1: क्या क्वालिटीज मम्मी की तुम्हें पसंद है बहुत की? क्योंकि देखती हो अपने
0: दोस्तों मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे दोस्तों के पेरेंट्स दे आर वेरी मतलब वो लोग बैठ के बात नहीं करते हैं. आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चे से बात करो, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड.

0: मम्मा के साथ मेरा ये होता था यू नो कॉन्फ्लिक्ट कि मैं बोलती थी उन्हें यू नो कि यू हैव टू लाइक टॉक टू मी एंड ऑल और तब वो इतना नहीं बात करते थे हम लोग बट देन व्हेन आई एक्सप्रेस्ड कि यू नो मुझे ये चाहिए
1: और तुम बाहर भी चली गई
0: मुझे ये चाहिए मेरे से बात करो एंड ऑल दैट सो शी लाइक understood that and okay. after that you know we spoke about our feelings humne boundaries set ki and we respected those boundaries and it's good now
1: jab kamaal ka combination hai dono ka aap beti lag rahi hai maa lag rahi hai bahut hi lazab ka combination hai ye but mashallah kudos to you guys jis hisab se apne maturity di hai wo kamaal ki hai bahut kam bahut hi rare aisa hota hai kaisa ho jaye but are you active on social media ab aapki interview lena padega
2: not that much I mean I am there on social media but not very active
1: acha
2: I'm there on Facebook, Instagram, but then Instagram मुझे use करना नहीं आता था तो आफिया ने मुझे सिखाया एक वो चीज जो मुझे नहीं आई and I didn't feel the interest in that initially तो वो मैंने आफिया से सीखा
1: देखिए आजकल ना एक चीज है कि बच्चे अक्सर माँबाप को social media पे add नहीं करना चाहते because of a fear of like CCTV बन जाएंगे पूछ तरह की क्या वो क्या क्या तो अगर ऐसा होता if she would have been active on social media ऐड करती हैं आप इसको प्रोफाइल पे
2: हाँ बिल्कुल ऐड करती और अभी भी हम लोग it's a very much transparent thing बहुत transparency
1: नहीं आप दोनों का transparent है but usually क्या होता है ना कि बच्चे भी डरते हैं ये नहीं मम्मी मेरे को ऐड नहीं कर सकते
0: भाई कर देता है पहले हाँ
1: मम्मी प्रोफाइल पर है भाई मत बोला करो ये सब समझ रहे हैं आप
2: but मैं वॉच रखती जरूर
1: देखा अब बात निकल गई माँ तो माँ होती है
2: उतना तो आई थिंक पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए एक एक एज तक बच्चों की एक्टिविटीज वो तो जरूरी है बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ how you have brought up your kids and how is the relation between you and the child
1: and when she was growing up shuruaat mein jaise aajkal bhi hum dekhte hain technology se jude hote hain bacche khana nahi khate tak unke samne tab na rakha jaye was it the case kya kaise manage kiya aapne wo period when she was
2: afia ke saath to nahi but jo mera chhota beta hai he's 10 years old uske liye bahut challenging hai
1: okay
2: lekin ab pehle tha lekin now I feel that as he's growing wo thoda kam hota ja raha hai kyunki मैं उसे मतलब बार बार रिमाइंड करती हूँ कि नहीं इतना स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए बट देन आई डोंट प्रेशराइज हिम कि नहीं तुम्हें लेना नहीं है तुम्हें टैब नहीं देखना है तुम्हें फोन आई गिव हिम सम टाइम आई गिव हिम टाइम टू प्ले आल्सो वो बाहर आउटडोर भी खेलने जाता है फुटबॉल खेलता है एंड ही स्पेंड्स टाइम ऑन प्लेइंग गेम्स अच्छा बहुत से पेरेंट्स को ये होता है ना कि बच्चे टैब पे या फोन पे गेम्स खेल रहे हैं तो दे डोंट फील गुड अबाउट इट बट माई परस्पेक्टिव is different I feel ki agar bachcha game khelta hai matlab ye to aapko monitor karna hai ki wo kis tarah ke games khelte hain bachche lekin usse mujhe lagta hai ki focus aur concentration bachche ka badhta hai and I encourage sometimes I encourage
1: very
2: I encourage
1: nice.
2: him also my husband mere husband like tum kyun deti ho phone kyun khelne deti ho game unka nahi kuch cheezon ke liye it's good
1: frankly speaking you are absolutely right main koi nahi hota aapko right karne wala mashallah bahut zehin hai मगर मुझे भी फील होता है कि बच्चों में कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होती हैं वो बहुत डेवलप
2: exactly.
1: फोकस आता है पजल सॉल्विंग होती है बहुत अच्छे गेम्स होते हैं और प्रॉब्लम क्या है ना वो एक पर्सपेक्टिव बन गया है कि इसमें मार धाड़ी होती है दैट इज द प्रॉब्लम
2: यू नीड टू मॉनिटर कि वो किस तरह किस कौन से गेम्स खेल रहे हैं क्या एक्टिविटीज हैं कि तो इफ यू मॉनिटर दैट आई थिंक इट्स ओके
1: ओके
3: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहावाला कबीर ओनली ऑन एफएम 107
1: मम्मी से कभी नाराज होती हो तो मम्मी से नाराजगी के टाइम पे क्या करती हो लाइक वो बातचीत बंद हो जाती है बहसबाजी होती है हाउ हैव यू मैनेज्ड ऑल दीस थिंग्स क्या करती हो तुम ताने मारती हो
0: बंद कर देती हूँ बात करना मैं ही खुद जाती हूँ सॉरी मम्मा
1: एटीट्यूड है पूरा बरकरार है माशाल्लाह
2: बट
1: वेरी नाइस अगर ऐसा हो जाए
2: आई थिंक इस जनरेशन

0: पेरेंट्स जो है बच्चों को एज अ फ्रेंड एक एक एज के बाद दे शुड ट्रीट देम लाइक फ्रेंड्स और वो एक डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आपका बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज़ है, पढ़ाई का क्या टाइम है, वो फ्रेंड्स कौन है आपके बच्चे के, वो किस माहौल में, क्योंकि घर में तो यू हैव अ कंट्रोल एनवायरनमेंट कि आप जो है जैसा चाहते हैं वैसा आप अपब्रिंगिंग करते हैं, बाहर दोस्तों में वो किससे मिल रहे हैं, कैसे दोस्त हैं उनके, कैसा सर्कल है, हाउ आर दे गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, तो ये बहुत ज़रूरी आई थिंक. और ये जब होगा, जब कम्युनिकेशन आपका और आपके बच्चे का जो है बहुत ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो एक रिस्पेक्ट भी होता है बच्चे रिस्पेक्ट करना, और बच्चे चीज़ें छुपाते नहीं हैं. फॉर मी आई हैव लाइक टू टीनेज किड्स, आफिया इज देयर एंड आई हैव अ यंग एल्डर सन आल्सो जो आफिया से एक साल बड़ा है, बट देन आई नो एवरीथिंग अबाउट हु देयर फ्रेंड्स आर, वो कब बाहर जाते हैं. इवन आफिया शी डजंट स्टे हियर, शी इज़ नॉट इन कतर, वो अलेक्जेंड्रिया में, लेकिन अगर वो कहीं जाती है तो वो मुझे टेक्स्ट करती है कि माँ आई एम गोइंग हियर, आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड्स. सो दैट ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर, और वो तभी आएगा जब आप अपने बच्चे से एक ओपन कम्युनिकेशन
1: रखोगे.
0: दैट ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर.
1: इनके बारे में क्या चीज़ लगती है आपको, जो आप आगे जगह ये थोड़ा सा मतलब देख लो
0: किस बारे में,
1: कोई भी इनसे कुछ हल्की पुल्की चीज है जो उनके बारे में आपको लगता है चेंज हो जानी चाहिए, टिल द टाइम शी इज ग्रोइंग अप, अभी तो इनका सफर जारी है, कुछ ऐसा जो आप इन्हें हिदायत के तौर पे ऐड करना देना चाहें?
0: थिंक डिसिप्लिन थोड़ा और.
1: अरे ओके, डिसिप्लिन होगी बेचारी, ताजे तारीफ कर रही है बेटी. क्या डिसिप्लिन वाइज क्या
0: थोड़ा सा मुझे लगता है कि शी इज अ बिट, क्योंकि एज वैसी है तो थोड़ा केयरलेसनेस तो होता ही है. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो एकदम लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो जाए अभी से.
1: वो टाइम मैनेजमेंट है
0: किसी. हां, टाइम मैनेजमेंट एब्सोल्युटली.
2: दैट्स ट्रू.
1: ओके,
2: वर्किंग ऑन इट.
1: आई डोंट सी दैट हैपनिंग बिकॉज़ ये रहता है, इस एज में तो रहता ही है, बड़ा मुश्किल है.
0: मैं उसको फोर्स नहीं करती इस बारे में. आई काउंसिल हर फॉर दैट, लेकिन
1: क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ पर भी आ रहा है.
0: क्योंकि मुझे पता है कि एक ये एज ही ऐसी है, मतलब इतना यू कैन नॉट एक्सपेक्ट किड्स टू बी मैच्योर एट दिस एज.
1: और ये इस बात से एग्री करेंगे आपकी, कई मर्तबा वो पकड़ के रखने के चक्कर में ना वो बिल्कुल ही एकदम सीधा बच्चा भी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है.
0: एग्जैक्टली. और आई डोंट बिलीव, क्योंकि बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, हमारे भी फ्रेंड्स थे जिनके बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे एंड फिर वो चीजें छुपाने लगते थे पेरेंट्स. और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि दे प्रेशराइज किड्स टू सिलेक्ट प्रोफेशन विच दे वांट, पेरेंट्स वांट, और बच्चे नहीं कोप अप कर पाते हैं. कितने देखते हैं सुसाइड और डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे. तो आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन. एक और अभी तो ऐसी एज है कि आई मीन द जनरेशन दैट वी आर सीइंग एंड द टाइम वी आर सीइंग, कि इट्स नॉट लाइक आपका बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या लॉयर बने तो ही सक्सेसफुल है. ये हमारे वक्त हुआ करता था.
1: बट
0: नाउ देयर आर सो मेनी फील्ड्स ओपन.
1: फिर भी सब इंजीनियर डॉक्टर ही आए मेरे पास. फिर भी. बट डू यू सी एनी अदर प्रोफेशन, जैसे मम्मी ने बात करी तुमसे, इतनी सारी बातें करी जर्नलिज्म भी, उन्होंने तुम्हें रास्ता दिखाने की कोशिश करी, बात हो रहा है तुम हमेशा ठीक ट्राई उनके आगे. मगर मम्मी के साथ क्योंकि डिस्कशन तुम्हारा सेम टॉपिक है ना, यू शेयर द सेम फील्ड सॉर्ट ऑफ, सो उसमें मम्मी की कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी, ये मदद मिली तुम्हें स्पेसिफिकली, समझाने का तरीका या कुछ नया बताने का तरीका या जो होता है ना एक ऑर्थोडॉक्स तरीका पढ़ाने का, व्हाट वाज हेल्पफुल फ्रॉम हर?
2: बाद
1: में हॉस्पिटल खोल लेना अपना, उसमें क्या दिक्कत है. अच्छा, पुरानी चीजें तुम्हें कितनी सारी मम्मी ने बताई होगी, टर्मिनोलॉजी जैसे की VCR से लेकर केबल कनेक्शन, ये सब के बारे में सुना,
2: दूरदर्शन के बारे में.
1: क्या बात है, दिखाया ना कुछ कुछ
0: पुरानी, हां DD1 एंड DD2
1: कुछ दिखाया वैसे, पुरानी चीज देखी तुमने कभी कोई रेट्रो शोज और नहीं थे?
2: नहीं
1: देखी. अरे दूरदर्शन तक पहुंचा दे मम्मी ने, बहुत अच्छी चीज बताई
0: है. रिसेंटली आई शोड हर दिस क्लिप, मिले सुर मेरा.
1: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह.
2: पुराने गाने गाड़ी में तो पुराने गाने ही चलते हैं.
1: अच्छा
2: जी.
1: और कुछ मूवीज वगैरह देखी तुमने रेट्रो मूवीज उस दौर की?
2: नहीं, आई ट्राइड बट आई एम नॉट इनटू.
1: मम्मी को कुछ दिखाया तुमने? कुछ
2: मम्मा को तो मैं दिखाया.

0: अल्टरनेटिव
1: सीरीज
0: नॉर्मल, मैं इतना
2: इंटरेस्ट
1: नहीं लेती है। ये गलत है,
2: टाइम
1: आप दूरदर्शन दे रही है और उसको देख रही है तो गलत है
0: जी। उधर
2: आई थिंक टाइम नहीं है सब चीजों के लिए मेरे पास। आई थिंक
1: नहीं, आपने आपने जिस हिसाब से अपना बिजी शेड्यूल रख के भी इन चीज़ों का ख्याल रखा है वो समझ में आता है। आई एम रियली रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस इंटरव्यू बिकॉज आपका जो पर्सपेक्टिव, मैं चाह रहा था कि कोई पेरेंट आके रखे, द वे यू हैव थॉटफुली पुट एवरीथिंग इन प्लेस ना, वो बड़े कमाल की चीज़ है। तो आपके पास टाइम नहीं भी है तो आपके लिए माफ है तो बहुत कमाल की चीज़ है। तुम्हारा अपनी जनरेशन को क्या मैसेज है जो तुम देखती हो अपने आसपास, डू यू हैव एनीथिंग टेल देम?
0: Yeah, I think my generation, मतलब
1: आसपास देखती हूँ कि थोड़ा सा overly emotional okay they do stuff.
0: To be honest, I think के नो बच्चों को कहते हैं you know कि तुम बहुत emotional, ये generation बहुत emotional है, ये generation ऐसी, ये generation वैसी. Most of the cases जो मैंने देखे हैं जो you know the term के you know rebel kid, एक बच्चा you know why is he behaving the way he is,
1: right.
0: It's mostly because of parents, to be honest.
1: Oh, absolutely.
0: Communicate nahi karna, unnecessary strictness rakhna, unnecessary boundaries create karna. I think ye sab cheeze bahut affect karti hai,
1: no doubt,
0: in
1: yes.
0: every sense. A profession kisi pe you know force karna, matlab apne bachcho pe force karna, that's like the last straw na, uske baad to ekdam hi
1: khatam
0: hai kahani. It yeah, I think it's really hard, matlab even mere aur mama ke beech mein starting it was very hard to communicate, kyunki pehle itna wo nahi tha, itna awareness nahi tha, but then we did try, we did talk about it, humne hum dono ne koshish ki. To meri generation ko I think that's the advice kid, you know, try, matlab tumhare parents starting mein nahi manenge but bolte jao, try karte jao, unhe apna perspective you know samjhate jao. You know, listen to me, I'm going to this, ye interest hai, yeah, have conversation, try to understand their perspective. Kuch cheeze aisi hoti hai jo hame karni hoti hai, you know, but sometimes it's not safe, sometimes that feel is not safe. Wo mana kyun, like I think you should try, matlab bachcho ko ye bhi no understand karna chahiye ki parents kyun nahi bol rahe, like what's their reason, is it like is it a valid reason, is it not a valid reason, iska koi solution hai?
1: Kyunki jaldbazi mein wo samajh nahi paate कि उसके बैकग्राउंड क्या है।
0: मतलब पहले मुझे भी ऐसा लगता था, बट देन जब मैंने सोचा मम्मा के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, शी हैज सीन अ लॉट मोर एंड वो ट्राई करती है कि वो मुझे बताए ना कि उन्होंने अपनी लाइफ से ये सिखाया था कि मैं वो गलतियां ना कर सकूं। एंड मुझे पहले बहुत वियर्ड लगता था, यू नो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव लगता था, बट देन आई वाज लाइक यू नो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू नो व्हाट्स द सिनेरियो एंड व्हाट्स गोइंग ऑन,
1: बट डेफिनेटली
0: या आई थिंक कम्युनिकेशन, सेटिंग बाउंड्रीज एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, इट्स दीस थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
1: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, नहीं ये तो बात है। और आप जैसे सबसे पहले तो मैं तालियां बजाता हूं, मेरे हाथ में पेन है और यहां पे माइक पे ज्यादा आवाज आ रही है, बट वेल डन टू योर पेरेंटिंग। आई मीन दिस जस्ट शोज कि आपने जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी को सही जगह पे रखा, ना बेंड करना सही टाइम पे। आई एम प्राउड ऑफ हर, आई मीन यू आर 10 टाइम्स मोर प्राउड ऑफ हर एट दिस पॉइंट टाइम।
2: थैंक यू सो मच,
1: मुझे बहुत मजा आया बात करके, क्योंकि जो मैं पर्सपेक्टिव रखना चाह रहा था इतने टाइम से आपने सब बोले, विच इज जस्ट अमेजिंग। क्योंकि बच्चों को एक तो बच्चे रहने देना चाहिए और साथ में उनके साथ साथ उस एज को समझना इज अगेन वो पेरेंटिंग स्किल है। बाकी जो तुम्हारी शिकायत है सोशलाइज करिए, लेकिन करने दीजिए जज, लेट इट हैपन, नो प्रॉब्लम।
2: आई थिंक आई आल्सो लर्न फ्रॉम हर, क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे हैं बड़े बच्चे, इट्स लाइक ज्यादा गैप नहीं है दोनों में, दे आर लाइक 1 ईयर, बेटा जो है 1 ईयर एल्डर टू हाफ ईयर, 1.5 आई मीन less than 1.5 years. But then maine bhi I think I this was a process of learning for me also, kyunki jab bacche chote hote hain to aapko lagta hai ki bacche hain, inko nahi samajh mein aa raha hai, so as a parent you need to guide them, you need to be strict with them. To aisa hota tha jaisa dusre maa baap bhi karte, but then over a period of time jaise jaise maine inme changes dekhe na, when they pass through the, you know they went into teenage group aur wo sab, to I started realizing ki nahi, I need to change myself, ki nahi ab they are into different age now, I have to understand them, क्योंकि वो बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो रहे हैं, तो और इफ आई इम्पोज समथिंग ऑन देम इट विल नॉट बी गुड।
1: ऑफ कोर्स वो एक टाइम के बाद फिर रोकना ही पड़ जाता है,
2: तो यू नीड टू आई थिंक यू नीड टू लर्न
1: and earn learn also a lot of stuff magar ek to yahan pe aane ke liye bahut bahut shukriya aap dono se baat karke mujhe bahut acha laga it's quite refreshing kyunki jab shift sham ke to lagta hai abhi pata nahi kaisa jayega sab kuch but it is so refreshing to have this conversation with both of you mujhe bahut bahut maza aaya tumhare bare mein batane ka mujhe bahut acha laga dil se and whenever you get a chance and jab bhi aapko is perspective mile and I think aapko to khud ka podcast karna chahiye sabse aap printing ke bare mein baat kariye baaki help inse le lijiye koi tension nahi hai but I wish you all the best
0: thank you
1: jab surgeon ban jao to thoda ye nahi kahunga ki bilkul charity karna shuru kar dena par डिस्काउंट रखना थोड़ा सा और आई होप आपको मजा आया यहाँ पे स्टूडियो में आके एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस स्टूडियो देख के आई थिंक पहली मरतबा तुमने स्टूडियो देखा
0: जी इट वाज फर्स्ट टाइम आई वाज बिट नर्वस स्टार्टिंग
1: अभी ठीक है चल
0: हां अभी बहुत चल है
1: वेरी नाइस
2: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी
1: क्वालिटी का आपको शुरू देना है क्या कहना चाहेंगे आप
2: It's good. It's very it looks a very close and tidy space.
0: It's very cozy.
2: It's a cozy space. I mean my perspective was different. जब मैं Facebook पे अपना studio देखा है, लेकिन हाँ इतना ही part देखा, but I thought कि बहुत बहुत बड़ा होगा. But it's a good cozy space.
1: हाँ, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो आप नर्वस होते हैं. जितनी बिछी दीवारें हैं, उतना ही मजा आता है. But thank you so much.
2: बहुत मजा आया मुझे.
1: जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया. And I hope आप जो भी चाहती हैं वो जिंदगियां पूरा हो
2: इंशाल्लाह
1: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अपना ख्याल रखिए बेहद बेहद जरूरी है मास्सलाम
3: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी

0: FM 107, Time Check.
1: दोस्तों एक कहानी तो ये भी थी कि कयामत जब आएगी तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा, बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है। आप लोगों को पता नहीं, मेरा वाला लग रहा है कि आ गई है भाई साहब, अभी भी ये आज 6 तारीख कैसे हो गई, ये जून का महीना तो ऐसा लग रहा था यार।

0: कटनीरा, और जुलाई तो अभी कल ही आया था ना, कल एक तारीख थी, आज छह कैसे हो गई है? टाइम टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा, 4:02 भी हो गए, बताओ। ऐसा लग रहा सुबह तो अभी उठे थे, अभी एक घंटे पहले 8 तो बज रही थी, ये 4 कैसे बज रहा है यार? बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है, 4:02 भी होगा। देखो
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: दिल से देसी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे इस्तकबाल ये शो द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपकी अपनी मर्जी के गाने होंगे। और मेरे साथ तो ये हो रहा भाई, जून का महीना, मैं सोचता रह गया कि आज जो है क्या तारीख है, हैं आज अभी सिर्फ 6 तारीख हुई है, जून में तो यही सोच रहा था, और जुलाई में कि आज तो 2 तारीख है, और पता चल रहा है कि 6 हो गए। तो अपने अपने समय से चीजें गुजर जाती, मेरा तो लग रहा है कयामत आ गया भाई मेरे लिए। ओके, मैंने अपने एक दोस्त से ये बात कही थी, तो उसने कहा कि भाई तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई। तो मैं कहा ओए धीरे धीरे बात करो, स्पीकर पे है फोन। फिर उसके बाद दो लोगों को बहुत ज्यादा सुनाया गया, एक मेरे दोस्त को और एक मुझको, और मुझको इसलिए सुना, स्पीकर पे था फोन, मेरी तो गलती थी भी नहीं भाई, मैं तो बोला भी नहीं कुछ, मेरे को सिर्फ इसलिए सुना कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। अरे ये कोई बात, मुझे क्या पता था कि वो ऐसा बोल देगा। पहले तो उसकी कभी कभी तारीफ, जब वो अपने हमारा जब हुआ था हिसाब किताब है ना, तो वो दोस्त इनके लिए गिफ्ट भी लाया था, मतलब होता है ना फैमिली फैमिली जब मिलती है आपस में तो गिफ्ट लेगा, तब बहुत कुछ, तुम्हारा दोस्त बड़ा अच्छा, माशाल्लाह अच्छी बात है, है? दोस्तों को समझ होना कि गिफ्ट लेकर आना है, दो शादी लोग अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, है जी। और जब इनको गिफ्ट मिल गया तो बड़ी तारीफ करी, अब वो सच बोल रहा है तो भी मतलब गुस्सा कर रहा है। खैर छोड़ो ये सब बातों में क्या रखा, मैंने फिर ना क्या किया कि वो रणवीर की फैन है, तो मैं कहा ये सब बातें चलो आओ तुम्हारे रणवीर की मूवी दिखाते हैं बड़े वाली, क्योंकि आज 6 जुलाई है। और घूम फिर के जब मैंने ये बात उसको कही तो उसने कहा अरे 6 जुलाई को स्पेशल क्या? मैंने कहा बर्थडे है भाई, हमारे रणवीर सिंह का बर्थडे है, तो आज 6 जुलाई को रणवीर सिंह का हैप्पी बर्थडे है, और अपन यहाँ FM 107 पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारा ये जो नए जमाने का नया फोन है कहाँ है, कहाँ है?
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: अब भैया 93% में चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है कि अरे भैया कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, तुम बताओ। फोन 93% है, बाकी मैसेज है सलाम का, वालेकुम सलाम खादिम भाई की तरफ से, गुड इवनिंग फजील भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? यूसुफ भाई ने कहा हैप्पी मंडे इवनिंग, आपको भी मंडे इवनिंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिशाम साहब ने सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, फजील भाई ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी हो गई, ओ नो हाउ कम इट्स टू अर्ली भाई फॉर यू हैं? आपने मेरी शक्ल देखी है? मतलब नहीं ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं कि शक्ल पे ऐसा लिखा हो कि शादी का उम्र हो गई है भाई फजील शादी कर लो, नहीं मेरी शक्ल पे दाढ़ी में सफेद बालों का जो आवागमन हुआ है उसके हिसाब से लगता है कि फजील भाई कर लो, इससे ज्यादा सफेद हुए तो कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। मतलब ये सफेद दाढ़ी मैं कहना चाहता कि ये सफेद दाढ़ी ज्यादा सफेद हो गई तो दहेज कम मिलेगा। तो मैं कहा नहीं ये कम नहीं होना चाहिए। वेल इट्स अ जोक, आई एम अगेंस्ट इट, डाउरी नो, एकदम खिलाफ। बाकी मेरी हो गई भाई 2-3 साल हो गया मतलब हुए, और अर्ली तो नहीं है, बाकी ठीक है, जन्म जन्म की बात है, कौन सा बहुत ज्यादा जन्म बहुत ज्यादा वक्त गुजार। मैं तो कभी कभी यही सोचता हूँ कि यार बहुत ज्यादा लेट तो नहीं कर दिया मैंने। सीरियसली मुझे लगता कि और जल्दी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि क्या होता है जितना ज्यादा आप वक्त गुजारते चले जाते, ये सब ज्ञान की बातें हैं वैसे तो, लेकिन जितना लंबा आप वक्त गुजारते चले जाते ना उतना एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। 32 साल का आदमी है, 28-29 की महिला, अब आप एडजस्ट हो चुके हैं ना अपनी लाइफ में, आपको थोड़ी वो चकल्लस चाहिए कि अरे वो भिंडी जो है तुम्हारी अम्मी ने साथ में बैठ के नहीं कटवाया और प्याज हमने अकेले भूना है और बिरयानी में लगता है बहुत टाइम और तुम्हारी अम्मी ने ये नहीं कि घी डाल दी बिरयानी में, कसम से अम्मी ने छाना तक नहीं है, ये सब जो है ये 22-23 में हो जाए तो हो जाए, अब ये वाली उम्र नहीं है भाई। तो वही वाला है कि मतलब 32-35 की तो शादी करना भी नहीं भाई, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, मैंने उससे पहले ही कर लिया था। बाकी इन सबसे आगे

करते हुए, कैसे हो भैया फजील? मैं बहुत अच्छा हूँ फैसल साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। फिर एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, रिक्वेस्ट है बाजीराव मस्तानी का सॉन्ग मल्हारी। बाजीराव मस्तानी का ये सॉन्ग एक तो बहुत अच्छा है, लेकिन मल्हारी आई डोंट नो के हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। मल्हारी धड़क धड़क व्हाट लवली वो है दी, नहीं यार काहे नाम नहीं याद आ रही है मेरे को, मल्हारी आई चेक। वैसे ये होना तो चाहिए लेकिन ये मुझे अभी दिखाई नहीं रहा अब उसी तरह, मैं थोड़ा सा वक्त लेने के बाद ये काम करूंगा। अच्छा आपकी उम्र 32? नहीं यार अब 32 भी नहीं, मैं मतलब बता रहा हूँ, ये हमारे एक बॉस ने कहा था कि अरे 32 तो बहुत लेट हो जाता, 35 की उम्र में बच्चे, फिर आप 35 और बच्चा जो है एक साल का भी होगा तो आपके में 33 साल और 31 साल का डिफरेंस होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। ये सब मेरे पास उधर से ज्ञान आया छोड़ो ये सब में क्या रखा मकसूद भाई। मेरे महबूब कयामत होगी, अरे मेरे महबूब कयामत होगी। आज रणवीर सिंह का बर्थडे और आज की थीम है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह के जो गाने कहेंगे वो अपन प्ले कर देंगे, और जो भी आप गाने सोच कर रख रहे हैं वो हमें बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22107 666-22107। और बाकी मल्हारी सॉन्ग तो मैं ढूंढूंगा, और रईस खान साहब ये गाना नहीं है जो आप मुझसे चाह रहे हैं, मल्हारी भी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, हो सकता है किसी और नाम से हो, मैं सर्च करता हूँ भाई। हुसैन ने कहा मैंने 24 में की थी, एडजस्ट करते करते अभी मैं 50 हो गया एडजस्ट हुआ क्या खादिम साहब? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि ये होता है नहीं होता है, कि ये एक अफवाह है कि अरे एडजस्ट हो जाएगा और होता नहीं है एडजस्ट, तो ये भी बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 666-22107। ये भी ज्ञान की दुनिया है, इसमें जितना ज्यादा ज्ञान आ जाए अच्छी बात है, और जितने पहले जितना वक्त के साथ आ जाए उतना अच्छा। बाकी यूसुफ भाई ने एक रिक्वेस्ट करी है, और धुरंधर मूवी का ट्रैक है, अरिजीत सिंह अरमान खान ने इसे गाया है, एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड गहरा हुआ। आहा क्या बात है, लेटेस्ट ये सॉन्ग है, धुरंधर 2025 मूवी का ट्रैक गहरा हुआ, इसे एंजॉय करें एफएम 107 पे। और ये है यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट, और इसके पीछे मैं बाकी सॉन्ग ढूंढने की कोशिश करता हूँ रणवीर सिंह के, जो गाने आप कहेंगे वो यहाँ पर हम प्ले करेंगे दिल से।

0: अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज में ट्रैक सुना आपने एफएम 107 पे, और जब जेसीबी गड्ढा खोदे और एक एक इंसान उस गड्ढे में देखे और कहे कि
1: गहरा हुआ।
0: हमारे पास बहुत टाइम है, जेसीबी जहां पर दिख जाए खड़े होकर बस वही देखना शुरू कर दो कि कितना गड्ढा। रंग लगाने वाले जो होते हैं, जो कपड़ों में रंग लगाते हैं, एक एक घंटे में कोशिश करते हैं और वो रंग गहरा होता है, वो भी गा सकते हैं गाना। रंग दुपट्टे का गहरा हुआ। अभी भी अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल 4:14 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और ये गाने लाजवाब आप लोगों ने रिक्वेस्ट तो कर लिए हैं। सो ये हमारे पास दो गाने हैं, इनमें से एक रिक्वेस्ट किया है शोएब ने और ये कहे राम जाहे लीला जाहे लीला जाहे राम ने, भूमि त्रिवेदी की आवाज में ये है ट्रैक लाजवाब। तो सबसे पहले शोएब भाई की रिक्वेस्ट पे भूमि त्रिवेदी का ये गाना, और फिर लहू मुँह लग गया है ये गाना भी मैं प्ले कर देता, लेकिन इस गाने को मुझे आदत से है मजबूर इस गाने के बाद प्ले करना होगा, क्योंकि इसके दो रीजन है, क्योंकि आदत से है मजबूर जिस भाई ने रिक्वेस्ट की है वो पहले भी कर ली है, और ये दो गाने एक ही मूवी के हैं ना, राम चाहे लीला को लीला चाहे राम। सो ये और लहू मुँह लग गया ये भी इसी मूवी का ट्रैक है। So, ये है भी गाना लाजवाब, मुझे लगता है कि इस गाने को प्ले कर देना चाहिए, लेकिन लेकिन लेकिन किसने रिक्वेस्ट करे, नाम नहीं आ रहा मेरा भाई। ये रहे ओके, फैजान भाई ने कहा है लहू मुँह लग गया, और कहते हैं कि मैंने 2024 में शादी की थी, अब 30 साल का हूँ, यानी कि 28 की उम्र में गया। सही है, परफेक्ट एज है। इसमें और क्या ही बताए, कभी जो बादल बरसे मैं देखूँ तुझे आंखें भर के, इसमें रणवीर सिंह थे क्या मियाँ भाई? रणवीर सिंह के गाने प्ले कर रहे ले अपन, तो ये वाली बात है। बाकी एक और गाना है आदत से मजबूर, जिसके सिंगर है बेनी दयाल, रैप बाय रणवीर सिंह, म्यूजिक सलीम सुलेमान का, इसे कहा है प्ले करने को अबू सिद्रा ने। ओके, सो सबसे पहले गाना जो आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है ऑब्वियसली भूमि त्रिवेदी का गाया हुआ गाना। फिर उसके बाद जो

0: रिक्वेस्ट की है फैजान ने, वो तीसरे नंबर पे है और दूसरे नंबर पे अबू सिद्रा की रिक्वेस्ट। इन तीन गानों को रिक्वेस्ट किया गया है, तो फिर ये तीन गाने सुनिए, बाकी आपके जो रिक्वेस्ट हैं वो भी एक एक करके हम प्ले करेंगे। देख लेते हैं और कौन है जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है। अपना टाइम आएगा ये किया है फैजल भाई ने। ओके फैजल भाई, बस अब आपका भी टाइम आएगा, इस गाने को प्ले करेंगे अपन कुछ ही देर में। फिर ये है कल भी ये कैस वाला पद्मावत का गाना है। ओके कल भी या गैस वाला वालेकुम अस्सलाम, आपका भी ये गाना प्ले किया जाएगा क्योंकि ये भी बहुत ही आला दर्जे का गाना है, अच्छा म्यूजिक है इसका। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे फिल्म लुटेरा रणवीर सिंह स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम अनीस। लुटेरा मूवी का ये ट्रैक है, मूवी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी लेकिन ये ट्रैक भी इतना फेमस नहीं हुआ था। खादिम साहब ने कहा अभी तक खुद भी यकीन नहीं आ रहा है, माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए हैं लेकिन नहीं आ रहा है कि अभी एडजस्ट होगा भी कि नहीं। अरे अब क्या, आप तो अब बच्चों के साथ है भाई, आप जिस एज में पहुंच गए खादिम साहब, अब ये देखिए बच्चों के साथ एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। वो वाला दौर गया कि जब आपको बेगम के साथ करना था, अब बच्चों के साथ वाला मामला चल रहा है। जैसे मेरे अब्बा की और मेरी एडजस्ट मुझे लगता है नहीं होगी अब, क्योंकि वो भी हूँ तो उन्हीं की औलाद ना, तो वो भी उतनी ही ज़िद्दी है जितने मैं या ये कह सकते हैं मैं उतना ही ज़िद्दी हूँ जितना मेरे अब्बा है, तो नहीं हो रही है एडजस्ट भाई। तो अपना तो वो वाला हो गया है कि पहले तो मैं सुन भी लेता था कि अरे नहीं ये आदमी कमा के खिला रहा है तो इसकी सुननी पड़ेगी। अब ये वाला हो गया, नहीं कमा तो रहा हूँ, अगर इन्होंने बेल्ट उठाई तो दोस्त के घर जाकर सो जाऊँगा। तो ये वाला मामला चल लिया। बाकी एक और ये मैसेज है, नशे से चढ़ गए खली बली जी, हाँ ये प्ले कर सकता हूँ पद्मावत का, बशारत इनका नाम है, तो बशारत भाई का भी गाना अपन प्ले करेंगे FM 107 पे। ये गाने आप लोगों के लिए लिस्ट में लगा दिए गए हैं, लेकिन ये तीन गाने जो हैं, अपना टाइम आएगा, कल भी अकेले और मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, ये फिल्म लुटेरा का है। लेट्स सी अगर ये लुटेरा कौन सी मूवी का कह रहे हैं, कि ये लुटेरा वो वाली है जिसमें रणवीर हैं, तो लेट मी चेक। यहाँ तो मुझे नहीं लगता, 2013 में एक मूवी आई थी लुटेरा, और बहुत ज़्यादा पुराना गाना अगर होगा या बहुत सैड वाला होगा तो भाई मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे फिर।
1: राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में
0: दुनिया का क्या काम। भूमि त्रिवेदी की आवाज में म्यूजिक थोड़ा तेज कर लो, वॉल्यूम तेज हो जाना चाहिए FM 107 पे। गाना दिल से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: हबीबी दिल से ही FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 4:32 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और बाकी के सॉन्ग भी अपने यहाँ पर तैयार करके बैठे ले हैं। फिलहाल जो अगला गाना है वो अमित त्रिवेदी की आवाज में है, वो गाना मिल गया है जो भाई ने रिक्वेस्ट की थी, एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड कार्ड मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, फिल्म लुटेरा, रणवीर सिंह स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम अनीस। तो अनीस भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना आ रहा है, लेकिन इस गाने का असल नाम है जिंदा, अमित त्रिवेदी की आवाज में, ठीक है। बाकी फिर एक और सॉन्ग है, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, कल भी या कैस वाला, ये वाला गाना यार मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, पद्मावत का ये ट्रैक है और ये गाना असल में है खली बली हो गया है दिल। ये गाना हमारे पास रखा है बट इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है यार। वैसे इसमें और भी गाने हैं, एक दिल एक जान, बिंत दिल, घूमर और नैनो नैनो वाले ने नीति मोहन की आवाज़ में, ये गाने भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। खली बली आई हैव टू चेक के इसमें कोई ऐसे लफ्ज़ ना हो जो प्ले होने पर रिस्की है। बाकी जिंदा एवी ये गाना मैंने लगा दिया है, तो ये वाला गाना मैं अभी ढूंढता हूँ। जो भी आपका नाम है डी ट्रैक लिखा हुआ वैसे तो प्रोफाइल पे, फैसल भाई ने कहा था अपना टाइम आएगा, ये गाना भी देखना पड़ेगा अपना टाइम आएगा। ये गाना बहुत ज़्यादा चला था और ये तो मेरे पास रखा है यार, अपना टाइम आएगा तो रखा है। हाँ ये रहा, तो सबसे पहले जिंदा, ठीक है, फिर अपना टाइम आएगा और फिर एक एवी एवी भाई ने रिक्वेस्ट करी थी, ये गाना किसने रिक्वेस्ट किया है, ये गाना है मोहम्मद बिलाल की रिक्वेस्ट पे, और फिर एक और बैंड बाजा बारात की रिक्वेस्ट किया था, वो गाना किधर गया आपने, अभी निकाल के रखा था उसे, बैंड बाजा बारात, चलो आ जाओ। अच्छा बैंड बाजा बारात कई अलग अलग तरह से लोगों ने गाया, तो बैंड बाजा बारात भाई मुझे दिख नहीं रहे, बैंड बाजा बारात ये था ना तो बैंड बाजा आ जाओ भाई, क्यों नहीं आ रहे हो यार, क्यों तड़ाम लगाना है। थीम सॉन्ग बैंड बाजा बारात 2010 मूवी का ट्रैक है जिसमें रणवीर सिंह है। सो सबसे पहले जिंदा, फिर अपना टाइम आएगा, फिर एवी एवी और उसके बाद बैंड बाजा बारात, ये चार गाने हैं। वेल हो सकता है कि तीन गानों के बाद मैं वापस आ जाऊँ, बैंड बाजा बारात थोड़ा लेट मैं प्ले करूँगा, उसके बाद यानी कि जिंदा अपना अपना अपना टाइम आएगा और फिर एवी एवी के बाद जब मैं आऊँगा तो उस वक्त अपन खेलेंगे पहचान कौन, और जो थोड़ा सा वक्त बचेगा तब 2 मिनट का ये गाना बैंड बाजा बारात थीम सॉन्ग ये प्ले करेंगे जिसे गाया सलीम मर्चेंट और श्रद्धा पंडित है। फिलहाल जिंदा अमित त्रिवेदी की आवाज में, बाकी मैसेज भाई को सलाम, भाई प्लीज प्ले कभी जो बादल बरसे, आई एम सॉरी हुसैन भाई थोड़ा लेट हो गए आप। और हुसैन एक और मैसेज है दूसरे हुसैन का, कहते हैं सलाम वालेकुम भाई मल्हारी लगा दो, आई एम रियली सॉरी भाई मल्हारी हमने ढूंढा, किसी और ने भी रिक्वेस्ट किया था वो मिला नहीं। फिर ये है नीम के मैं तो एवी एवी लुट गया वाला गाना, हाँ भाई ये तो आपकी रिक्वेस्ट पे ये वाला भी आ रहा है, दो लोगों ने एवी एवी रिक्वेस्ट कर लिया है, रईस खान ने और बिलाल ने, ठीक है दो लोग हो गए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सही है, मेरा अब्बा मेरा फ्रेंड ही बन पा रहा ना मैं अपने अब्बा का। एंजॉय करें इस गाने को FM 107 दिल से।

हैप्पी बर्थडे भाई सलीम मर्चेंट और श्रद्धा पंडित की आवाज में गाना सुना आपने एफएम 107 पे। फिलहाल 4:45 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे यार, आपने ऐसे हमें गाने दिए आपकी अपनी मूवीज है कि दिल खुश हो जाता है। दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब रणवीर सिंह और रणवीर कपूर की मूवी आती है, मूवी कैसी भी हो, गाने तो उनके लाजवाब रहते ही रहते हैं। आप गुंडे मूवी देख लीजिए, बहुत कोई अच्छी नहीं है, मतलब देखेगा नहीं क्योंकि अच्छी नहीं है, लेकिन गुंडे मूवी में भी गाने तूने मारी एंट्री, अच्छा गाना है यार वो भी। उसके अलावा भी और उसमें गाने हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि यार ये मूवी कैसे भी रहे, लेकिन गाने भाई है, गाने में दम तो है। सो ऐसे बड़े गाने हैं, एक तो है गुंडे मूवी का ट्रैक जिसमें जश्न इश्क का, हाँ जश्न इश्क का, तो वो भी गाना भाई लाजवाब है। खैर अब वक्त आ गया है कि अपन पहचान कौन गेम खेले, लेकिन दानिश भाई ने आज चैलेंज दिया है। दानिश आज़ाद कहते हैं पहचान गेम में आज वो जीतेंगे और 3 सॉन्ग बताएंगे कोई भी प्ले करे। वेल, मैं वैसे तो चैलेंज कभी करता रहता नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करता हूँ लेकिन एक गाना है जो मुझे लगता है, और क्योंकि रणवीर सिंह की थीम है और रणवीर सिंह के ही गाने यहाँ पर होने चाहिए, तो ऐसे ही पहचान कौन गेम में मैंने रणवीर सिंह के गाने निकाल के रखे हैं। ठीक है, एक गाना ऐसा है जो मुझे लगता है कि शायद पहचानने में लोगों को बहुत मुश्किल होगी, थोड़ा सा टफ वो ज़रूर है, ऑल दो वो काफ़ी ज़्यादा चला हुआ सॉन्ग नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा चला हुआ है, बट मूवी उनकी बहुत ज्यादा फेमस है। जिस गाने को मैं प्ले करूंगा वो जिस मूवी में था वो गाना एक्चुअली में फेमस था। सो बाकी लोगों के मैसेज ले लेते हैं, और ये मैसेज किन किन लोगों के हैं। सबसे पहले तो असी फेयर ना इस समझ है, असी फेयर ना इस

जिए, ये मैं समझ नहीं पाया। मैं आपके मैसेज को अभी समझने में थोड़ा डिकोड करने में टाइम लगेगा हुसैन साहब, कुछ ज़्यादा ही पंजाबी हो गई, इतनी वाली पंजाबी में मेरा निकल जाता है कि बस हो गया मेरा। बाकी नसीम साहब ने कहा है कि कल हालचाल का हालचाल बाबू बंजू भैया, ठीक है बनिए, तुम बताओ भैया कैसा हो। मेरा तो वाला है यार के मतलब अगर मुझे अवधि बोलनी हुई तो कायदे से बोल लूँगा मैं, अभी क्योंकि मैंने ताज़ी ताज़ी पंजाबी बोली ना, असी फेयर नहीं समझिए, पता नहीं क्या क्या लिखा है, अब उसमें मुझको कहेंगे अवधि बोलने को तो मेरा अवधि और पंजाबी ऐसा मिक्स होगा कि बोलूँगा अवधि लेकिन पंजाबी टोन। सो आगे एक और ये मैसेज है, किस भाई का है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मेरा भाई एक मैसेज डिलीट ही कर दिया किसी ने, अशफाक मियां ने, अशफाक भाई गुस्सा हो गया क्या लग रहा है। बाकी अब ये तीन गाने मैं प्ले करने जा रहा हूँ एक एक करके और आपको गाना पहचानना है। रणवीर सिंह का गाना ही है, बीच से इन गानों के लिरिक्स मैं प्ले करूंगा, आपको जवाब देना है, गाने का नाम लिखना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107। सो पहला गाना ये रहा।

0: बस बस पाजी और नहीं गाना है।
1: बेनी दयाल है, हिमानी कपूर है, मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। इसके आगे की मदद मुझसे मत पूछिएगा, ना ही सोचिएगा कि फजील मदद करेंगे। आई एम सॉरी बाबू, इससे ज़्यादा मदद नहीं हो पाएगी। बताइए गाने का नाम क्या है। वेल, सबसे पहले जो जवाब आया है दानिश आज़ाद, जिन्होंने चैलेंज किया, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है दानिश भाई, रणवीर सिंह के अगर कोई सबसे बड़े फ़ैन है तो मुझे लग रहा है आज दानिश आज़ाद है। उसके बाद किसने जवाब दिया है, यूसुफ भाई ने जवाब दिया है, और इन्होंने जो जवाब दिया है बिल्कुल गलत है। यूसुफ भाई चेंज किया, अभी चेंज किया इन्होंने, नहीं एडिटेड लिखा हुआ है यूसुफ भाई, ला मैं नहीं मानता। महफूज रॉबिन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मकसूद ने कहा है दिल हारा, नहीं गलत जवाब है। फिर कैसर भाई ने बिल्कुल मूवी भी सही बताई है, गाना भी सही बताया है। हिशाम ने बिल्कुल सही जवाब बताया है। एंड देन रणवीर के एक और फैन है असरा, इनका नाम है, इन्होंने भी सही बताया, क्या बात है। फिर आमिर जफर का ही वॉन्ट टू से इन पंजाबी, हम अब फिर इंकार ही समझें, अच्छा बंजारा, नहीं ये गाना नहीं है। फजील भाई दिस बिल्कुल सही है, सूरज भाई आपने सही जवाब दिया है। फिर यूसुफ भाई ने कहा है धुन पूरी सुन के याद आया, अच्छा ठीक है। फिर ये मैसेज है तूबा का, और इन्होंने भी सही जवाब दिया है, और मूवी भी बिल्कुल सही लिखी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक दो जवाब है जो गलत है, बाकी सही है जवाब मोस्टली। सो द करेक्ट आंसर इज

अच्छा ये बन जा रहा लिखने की कोशिश कर रहे थे जफर भाई, ओ इसमें एक लाइन है बन जा रहा या लफ्ज है, उस लफ्ज का इस्तेमाल किया। अरे भाई साहब बहुत दूर निकल गए। बनी दयाल और हिमानी कपूर की आवाज में गाना था, बिल्कुल सही, लोगों ने पहचाना। और अब

0: देना है।
1: दानिश भाई वड़कम, आइए आइए भाई, ये वाला गाना पहचानी। ओ अरे वाह, पहचान भी लिया, क्या बात है रफ्तार। ये गाना बिल्कुल सही बताया, फ्रॉम द मूवी गुंडे। इन्होंने का हाँ, आपने सही बताया है और एक और ने सही बताया है। दानिश ने भी, क्या बात है दानिश भाई, बिल्कुल सही। असरा ने बिल्कुल सही जवाब बताया है। यूसुफ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, अब जाके ये वाला सही है। दानिश बिल्कुल सही, और फिर ये हैं तूबा, गुंडे मूवी का ट्रैक बताया लेकिन गाने का नाम अभी लिख रही है, आई गेस टाइप कर रही है। कैसर साहब बहुत उम्दा, बहुत सही। हैशाम भाई बहुत सही, सही जवाब है। फिर यहाँ लिखा है मकसूद भाई, देखिए आपने वही वाली गलती करी है जो जफर भाई ने करी थी, आपने टशन लिख दिया। इसमें एक लफ्ज है टशन, वो गाने का नाम तो नहीं है। तुबा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सो मोस्टली सही जवाब है। बट प्रॉपर अगर हम प्ले करें तो इस गाने का नाम है इश्का जश्न है, इश्का जश्न है, इश्का आय हाय। मेरा भी अपना ये फेवरेट गाना है, अगर प्लेलिस्ट बनानी हुई तो सबसे अंडर 10 ये गाना जरूर हो सकता है, टॉप 10 में ये गाना मेरे प्लेलिस्ट में जरूर होगा। और अब आखिरी गाना आप लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमें लगता है आज दानिश भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने चैलेंज ले लिया कि कोई भी गाना प्ले कर दो अपन पहचानेंगे। तो ये जो गाना आ रहा है मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, रणवीर सिंह की मूवी का है, ठीक है। एंड द थर्ड सॉन्ग इज

हाँ जी बताइए, ये वाला थोड़ा मुझे क्या है कि जब अभी तक दो गाने मैंने प्ले किए थे ना, बहुत तेजी से लोगों के मैसेज आ गए थे। टाइपिंग होती हुई कम दिख रही, लेकिन एक शख्स है जिसको तालियों की जरूरत है भाई। बिल्कुल सही पहचाना है यार, दानिश भाई यार, आग लगा दी, क्या बात है। बिल्कुल सही पहचाना है और सबसे पहले भी पहचाना है। उसके अलावा धुरंधर मूवी का ट्रैक ये बताया है असरा ने, बिल्कुल सही जवाब आपका भी। अरे यार मेरे को ये तो आइडिया नहीं था कि ये वाला गाना लोग पहचान लेंगे। बहुत सही, दानिश ने, असरा ने, फिर कैसर भाई ने, यार ये वाला गाना तो इतना मैंने सुना भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा चला भी है। हिशाम भाई ने बिल्कुल सही पहचाना। क्या ये मतलब आप लोगों के दरमियान फेमस है, मेरे तक नहीं पहुँचा क्या? तूबा ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, धुरंधर मूवी का ट्रैक, और बताया है गहरा हुआ। नहीं, ये गहरा हुआ गाना तो बिल्कुल नहीं है। फिर महफूज रॉबिन ने बिल्कुल सही पहचाना है। एंड देन सॉन्ग याद नहीं, अरिजीत सिंह ने गाया है, लेकिन ये अरिजीत नहीं, जुबिन नौटियाल ने गाया है। आलिमा कुसुद भाई, नाम समझ नहीं आ रहा, कहाँ पर गैप रखना है मुझे। फिलहाल मकसूद भाई ने चांद सितारा भेज दिया है, यूसुफ भाई ने कहा है यस धुरंधर का है, लेकिन सॉन्ग के बोल नहीं याद आ रहे। हाँ ये बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन यार दानिश यार पास हो गए यार, आज तुम तालियां होनी चाहिए भाई दानिश के लिए, अलग से तालियां यार। अच्छा दानिश के लिए आप, कई लोगों ने यार तीन जवाब बिल्कुल सही दिए, उनके लिए तालियां क्यों नहीं? मतलब उनके लिए भी तालियां हैं ऑब्वियसली, लेकिन चैलेंज लेने के बाद है ना कॉन्फिडेंटली कि अरे मैं बताऊंगा, उसके बाद अगर आप सही जवाब बता पा रहे हैं तो क्वालिटी है भाई, क्वालिटी है। मैं तो कहूंगा इस गाने का नाम है

बिल्कुल सही पहचाना सभी लोगों ने, और दानिश भाई कह रहे हैं 3 किलो मेरे लिए बादाम। एक बार मैंने कह दिया था, जो नए लोग हैं उनके लिए तो बताना ही पड़ेगा ना कि एक बार मैंने कहा था अगर आपने तीनों गाने पहचान लिए तो आपकी याददाश्त अच्छी है तो फिर क्या बात है, लेकिन अगर एक गाना नहीं पहचान पाए तो मैं आपको बादाम दूंगा। तो अब लोगों ने पहचाना है, जब भी बादाम मांग ही रहे तो आप लोगों को मेरी तरफ से जिन्होंने पहचान लिया।

भजा और कच्चा दोनों बादाम है। फिलहाल 4:56 स्टूडियो की घड़ी में। देखो यार, कब शुरू होता है कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। अली मकसूद इनका नाम है, जो मैं बहुत देर से आलिमा पढ़ रहा था। इतना शॉर्टकट नाम लिखने की क्या जरूरत है। तूबा ने कहा आखिरी इश्क बहुत देर हो गई, और यूसुफ भाई ने कहा यस फजील दानिश इज चैंपियन टुडे, ही इज द डाई हार्ट फैन ऑफ रणवीर सिंह, ही प्रूव्ड इट। क्या बात है दानिश भाई, आपके लिए तो सच में मैं अगर मिलोगे तो बादाम दे भी दूंगा यार, असली वाला बादाम तुम्हें दूंगा। ये कच्चा बादाम है, आप तो पक्का बादाम चाहिए अपने को। कच्चा और भजा मतलब दोनों है, मतलब भुना हुआ बादाम भी है और वो वाला भी है। बाकी कुछ लोग बादाम को मूंगफली भी कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल दोपहर 1 बजे और शाम 4 बजे। दोपहर स्पोर्ट्स की दुनिया से पूरी खबर लेकर आऊंगा यार। ब्राजील और नेमार ने तो यार एक दुख भरी बात कर दी है, और ब्राजील जो है वो फीफा से बाहर हो गई है टीम। लेकिन कौन सी टीम अंदर हुई है, किसकी वजह से अंदर हुई, ये सारी जानकारी आपको कल मिलेगी FM 107 पे। लेकिन फिलहाल एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी बैंड बाजा बारात, उस गाने के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। ये है गाना रिक्वेस्ट किया हुआ साजिद का, और इसे गाया है सलीम मर्चेंट और श्रद्धा पंडित ने। अगेन आई विल नॉट से कि ये वन ऑफ माई फेवरेट है, लेकिन मज़ेदार तो है। इस गाने पर आपको स्टेप भी याद होंगे, ये मूवी भी बहुत अच्छी तरह से याद होगी, और क्योंकि ये पहली मूवी थी रणवीर सिंह की जो बहुत ज़्यादा हिट हुई थी अनुष्का के साथ, और यशराज ने एक तरह से लॉन्च किया था। और जब से ये गाना आया है, या कहें जब से ये मूवी आई है, उसके बाद से रणवीर सिंह का जो ऑरा है ना वो बढ़ता ही रहा है, कम कभी नहीं हुआ। तो इस गाने को एंजॉय करिए, वॉल्यूम थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए, स्टेप याद करके रखिएगा कि कैसे स्टेप है, और फिर इस गाने को ड्राइव करते हुए एंजॉय करिए। बैंड बाजा बारात थीम सॉन्ग आपके लिए। फिलहाल अपना खूब सारा ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अरे बस आ गया। 5 बजे ना बेटे, देखो 5 बजे 2 मिनट। ओ जी बस अभी शुरू करेंगे। अभी कभी रंगल आ रहे, चलो चलो चलो। अरे म्यूजिक चला दो, बच्चा रो रहा है भाई।

0: क्यों भाई साहब क्यों क्यों
1: क्या बात हो गई? हाँ भाई याद बात किया नहीं किया।
0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है भाई साहब। लट गाड देंगे ठीक है, बढ़िया करके मैसेज कर दो हमारे व्हाट्सएप के दोरे, बहुत सारे मैसेज आने चाहिए। कुछ मैसेज तो आ चुके हैं, 666221107 नंबर है, कुछ मैसेज पढ़ देता हूँ मैं। एक आया है, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, कह रहा मैं जा रहा हूँ सी लाइन बीच पे, बढ़िया महज ख्वाजा भाई मौज करके आओ मेरे भाई। और यूसुफ भाई कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा फादर बनेंगे कबीर आप इंशाल्लाह, अभी तो कोई खबर नहीं है इंशाल्लाह। कह रहे बच्चे इतना प्यार से समझा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको एक प्यारा छोटा सा कबीर नसीब करे। मुझे डाटर चाहिए, डाटर नॉट सन, सन आई नीड डाटर। एक मैसेज कामरान भाई वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, यार लव योर इंट्रो प्लीज, वेयर कैन आई हेयर इट? केड़ा इंट्रो? मेरा रैप वजाद सभी शमीम भाई ऐसी बात कर दी आपने, मैं भेज दंगा भाजी कोई गाल नहीं, मैं भेजना ठीक है। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई कैसे हैं? मैं बढ़िया भाई क्या हाल है? इकबाल भाई के मैसेज क्या है इनके बाद? आमिर जफर साहब आजी चको भाजी क्या हाल है? एक और मैसेज है सैयद खादिम हुसैन साहब का, वालेकुम अस्सलाम कल वाली स्टोरी नहीं मिली, ओहो भेज दूंगा मैं। वालेकुम अस्सलाम शाहिद साहब, वालेकुम अस्सलाम हिशाम साहब और वालेकुम अस्सलाम, ये कौन भाई साहब? ये है अब्दुल भाई, अब्दुल भाई बढ़िया भाई वालेकुम अस्सलाम क्या मैं एकदम चंगा। एक मैसेज क्या है, कह रहे हैं 5 रुपये के ढोल बजा दो, एक सेकेंड लोगो, 5 रुपये के ढोल कह रहे हैं आप, याद रखना बहुत कम है। अरे नए ग्राहक आए हैं, 5 रुपये के बजा दोगे क्या? बस इतना ही, 5 रुपये में इतना ही हो पाएगा भाई। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, ये क्या नाम है आपका, पर आपने साहब कह दिया है तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मैसेज मेरे भाई को सलाम, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद हुसैन भाई क्या? हमारी बहन तबस्सुम ने मैसेज क्या लिखती है, कल की स्टोरी सुनी मैंने, वालेकुम सलाम बहन, और लिखती है वेट थी लेकिन मालूम पड़ा कि ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बीमारियों से बचाए, आमीन आमीन आमीन। एक मैसेज है सैयद हमजा साहब का, लिखते हैं अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करे, आमीन। एंड भाई नाइस स्टोरीज, थैंक्स फॉर सेंडिंग देम भाई। हमजा भाई ऐसी क्या बात कर दिया, फॉर्मेलिटी नहीं भाई, भेजेगा ना भाई आपका, क्या टेंशन है। अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे? मैं बढ़िया भाई रहमत भाई। और एक मैसेज है कबीर भाई, वालेकुम अस्सलाम, मैं बढ़िया भाई अशफाक साहब। एक और भाई कह रहे हैं कि अगर क्या है, अल्लाह ताला आपको एक प्यारी सी बिटिया दे, आमीन आमीन आलमीन, बहुत बहुत ये बड़ी ख़ास दुआ है। और कह रहे हैं क्या आप चाहेंगे कि आपकी औलाद भी कहानियाँ सुनाए? नहीं इंशाल्लाह जब औलाद होगी तो हम उससे कहानियाँ सुनाएंगे, उसकी जो मर्जी बन जाए, तो कोई रोक टोक नहीं है भाई, लेकिन कहानी सुनाऊंगा भाई, ऐसा बढ़िया कहानी सुनाए, मैं बहुत बढ़िया कहानी सुनाने वाला बनूंगा बच्चों के लिए। तो वैसे अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है? जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है सलाम कबीर भाई, तैमूर की तरफ से भी सलाम, वालेकुम अस्सलाम आप दोनों को, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ भाई कहते हैं अच्छा बेटी माशाल्लाह, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे, अल्लाह प्यारी सी एंजल बेटी थे, बिल्कुल मेरा भाई, बहुत दुआ करते रहिए, अल्लाह की रहमत अता करे, आमीन रब्बुल आलमीन। क्या बात है, आज मुझे लग रहा है सबके सब ये मेरे साथ दुआ मांगे, लेकिन कमाल ही हो जाएगा। कबीर भाई 10 रुपये का ढोल बजा दो, ये लो ऐसी बात में मकसूद भाई के लिए बढ़िया दुआएं चल रही है। अब तबस्सुम लिखती है अभी गर्मी का सीजन है, मोहल्ले वाले आइसक्रीम वाले की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ वही ना, वो जो आवाज़ निकलती है वो आइसक्रीम। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, स्टोरी भेजिए, भेजूंगा भाई। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई, कोई कहता है कतर का नंबर वन रेडियो है फलां फलां, कोई कहता है कतर का नंबर वन आरजे फलां फलां, उनको क्या पता हमारा आरजे कबीर भाई इस बला का नाम है माशाल्लाह। अरे भाई साहब मैं हैरानी का आपको मैं इमोजी लगा के भेज रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? मोहम्मद भाई भाई ये इस कमेंट का ज़रा फ़ोटो खींचो। भाई ने ऐसी बढ़िया तारीफ़ कर दी ना, शो का समा ही बांध दिया। कह रहे हैं कोई कहता है कतर का फला फला नंबर वन, फला फला आरजे नंबर वन, कबीर भाई किस बला का नाम है? अरे मेरा भाई भाई क्या वैसे। कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टुडे, आई हैव सेंट खलील भाई, थैंक यू सो मच। और वाह, तो एक मैसेज है कबीर भाई आपको पता नहीं है कि आप ही नंबर वन आरजे हैं, बाकी को कहने दो। नहीं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एवरीबॉडी कैन कॉल देम सेल्व्स नंबर वन, इट डजेंट मैटर भाई, क्या फ़र्क पड़ना है। कल को मैं भी अपने नाम से पहले लगा दूँ कतर का नंबर वन आरजे, पर कोई उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, अल्टीमेटली तो आप ही डिसाइड करेंगे, इट डजेंट मैटर कि वो रैंकिंग में लगाऊँ कि ना लगाऊँ, इट डज नॉट मैटर, सो इट्स ओके। बाकी मिलेंगे भाई 11 मिनट 2 सेकंड के बाद शाम के अधिकार इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी जाना अपने नहीं एंड उसके स्पार फिर हम बात करेंगे कहानी बहुत चंगिया थानू बस क्या बताऊं मजा आ जाएंगे 666-22-107 प्लीज मैसेज करते रहेगा एंड मिलते हैं कुछ ही देर में दुआ मांगते रहिए उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए स्टे ट्यून्ड
2: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अज़कार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर

क्यों क्यों? अरे कितना इनाम रखी है रे सरकार हम पे. अच्छा मैसेज पढ़ दूं मैं. अमर यासिर भाई वालेकुम अस्सलाम. जकी भाई लिखते हैं, क्या लिखा जकी भाई ने? अस्सलाम वालेकुम ब्रो. वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई. लिखते हैं द स्टोरी और सर्वाइवल. सी स्टोरी वाज ऑसम. आई हैव डन सी सर्वाइवल कोर्स एंड ट्रेन मेनी एज वेल. जकी भाई वेल डन. मुझे बताइए क्या क्या है पॉइंटर्स, कभी कार फंस गए समुद्र में तो. नाजी बहन वालेकुम सलाम, भेज दिया वो कहानी. सैयद फरोज भाई बहुत बहुत शुक्रिया. अदवसम बहन लिखती हैं, कबीर भाई आपको बेटी की दुआएं दे रहे हैं. मेरी भी दुआ है, अल्लाह ताला आपको प्यारी सी बेटी दे, ढेर सारी खुशियां उससे नवाजे. आमीन. वालेकुम सलाम एंड आमीन रब्बिल आलमीन. बहन बहुत बहुत शुक्रिया. हमजा भाई भी यही दुआएं दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, हमारा एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड ही सीईओ है. आगे लिखते हैं, और मेरे भाई मेरी बेटी वाली दुआ कबूल हो सबकी. अल्लाह पाक ने एक बार तो ये ख्वाहिश पूरी की. अल्हम्दुलिल्लाह 4 जुलाई को 4 साल की हुई है. माशाल्लाह. मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं और बधाइयां. और हम तारीफ करते हुए मोहम्मद भाई लिखा है, तारीफ वो जो दूसरे करें खुद खुद नहीं. ये बात हुई भाई, तभी तो अपन नाम से पहले नहीं चलाते. कतर का नंबर वन और जो ऐसे थोड़ी होता है. वैसे अस्सलाम वालेकुम, आपको मालूम है आपकी कहानी का वेट कतर के भाई, आपको मालूम है आपकी कहानी का वेट कतर के आरजे करते हैं? अरे नहीं यार अशफाक भाई, ये क्या कह रहे हो? कह रहे हैं आपकी कहानी का इंतजार कतर के आरजे करते हैं. ये आप आई डोंट नो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम हीरो भाई. आई वाज सिक यस्टरडे, प्लीज सेंड मी यस्टरडे स्टोरी. ओके आई विल सेंड हीरो भाई. बट हाउ आर यू टुडे, आर यू फीलिंग गुड? और एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम कमालुद्दीन शेख साहब, क्या हाल है मेरे भाई के? बढ़िया. अच्छा मैं एक बिफोर द स्टोरी कम्स, क्योंकि कुछ देर में कहानी शुरू हो जाएगी, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. देखो हम ना अक्सर ये डिस्कशन करते हैं घर में बैठे हुए, क्योंकि हम अपने मुल्कों से बहुत हज़ारों हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, और किसी किसी का शहर है, किसी किसी का गांव भी है. कोई सीधा गांव से आया है, कोई कोई ऐसा है जो शहर में रहता है लेकिन उसका कहीं ना कहीं गाँव भी है. आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, उनको गाँव का सिस्टम पता है. बहुत लोग यहाँ पे बॉर्न ब्रॉट अप होंगे, सो वो कभी गए नहीं होंगे, तो उनकी बात ही कुछ और है. उनको मैं क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता, इट वॉज इन देयर चॉइस, सो इट्स ओके. आप लोग जरा जाइए लाइन लगाइए, साइड में जाइए प्लीज, बैठ जाइए. हाँ मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनका गाँव है. अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूँ, मैं आपको बोलूँ हाइपोथेटिकली, फर्ज कीजिए कि आपको मौका मिले कि आप एक गाँव में रह सकें, है ना. लोग कहते रहते हैं ना हमें तो बड़ी सादी लाइफ पसंद है, चलो आज इसी बारे में बात कर लेते हैं. तो अगर आपको गांव में रहने को मिले तो क्या पहली बात आप रहना चाहेंगे, दूसरी बात क्या फैसिलिटीज चाहिए आपको गांव में रहने के लिए, हाँ ये बताइएगा मुझे ज़रा. 666-22-107 पर, 666-22-107 पर बताइए, मैं जानना चाहता हूँ सच में. आई रियली वॉन्ट टू नो. जो लोग बहुत

0: चौड़े में कहते हैं कि हमें तो भाई गांव में रहना बड़ा पसंद है, सादगी जिंदगी। तो बताइए, सादी जिंदगी जीने का इतना शौक है तो मुझे बताइए आपको फैसिलिटीज क्या चाहिए गांव में। अगर आपको प्रॉपर सैलरी मिलने लग जाए जितनी यहाँ मिल रही है प्रॉबेबली, तो आप गांव में सेटल हो जाएंगे? वुड यू बी ओके सेटलिंग डाउन? ऑनेस्टी के साथ जवाब दीजिएगा, बिकॉज आज वंस एंड फॉर ऑल मैं ये बात खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं सच में जानना चाहता हूँ लोग कितना जेन्युइनली फील करते हैं, क्योंकि बातों में तो बहुत गाँव गाँव की खुशबू, मेरे पिंड द पेड़, बहुत सारी बातें होती हैं, बट हाउ रियलिस्टिक इट इज फॉर यू टू लिव इन अ विलेज? वुड यू बी ओके या नहीं, बताना मुझे। अरबाज़ वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज है, बिल्कुल सेटल हो जाएंगे भाई। भाई क्या फैसिलिटीज़ आपको सेटल करवा देंगे मुझे ज़रा ये बताइए। वालेकुम अस्सलाम, खादिम साहब ने मैसेज किया है, खादिम साहब को माए भेजता हूँ। खादिम भाई ये लो भाई, कल की कहानी भेज दी या। एंड एक जो मैसेज है, इन्होंने क्या किया है, भाई सच कह रहे हैं वो, भाई आपको आरजेज भी सुनना चाहते हैं। कौन से आरजे मुझे सुनना चाह रहे हैं? एक भाई ने मुझे वॉइस नोट भेजा प्रॉपर, तो वॉइस नोट तो अभी मैं सुनूंगा थोड़ी सी देर में, बट एक कॉल आ रही, कॉल उठा लेते हैं पहले रुको। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए भाई, क्या हाल है भाई के?
1: यार जबरदस्त, जिस दिन आपका प्रोग्राम नहीं सुना ना मजा ही नहीं आता यार
0: भाई, आज
1: खाली खाली से लगता है यार
0: भाई। मौज करा देंगे आपको, आप बताइए।
1: बहुत जबरदस्त आरजे हैं आप माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं।
0: जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और अगर निकल जाए ना तो फिर मैं मैसेज करता हूँ यार, कम से कम स्टोरी तो भेजें।
0: मैं आपको कहानी जरूर मिलेगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच जी। बताइए आप, आपके
1: गाँव का बड़ी अच्छी लाइफ होती है, पुरसकून। और आप शायद पता ही रहे नहीं,
0: मैं रहा हूँ, मैं रहा हूँ, अच्छे से रहा हूँ, मैं गाँव का
1: पंजाब में।
0: जी जी जी जी,
1: तो वहाँ इतनी ज्यादा फैसिलिटीज की जरूरत भी नहीं होती यार।
0: तो आपको आपको अगर तो आप क्यों रहना चाहेंगे, आपको क्या एक चीज है जो, जैसे आप यहाँ पे रहे ना ऑब्वियसली, तो अगर आपको वापस कोई कहा जाए गांव में रहना पड़ेगा तो आपको क्या फैसिलिटी चाहिए? एक दो चीजें हैं जो आप कहेंगे हाँ यार अब मुझे ये दे दो मैं गांव में रह लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। व्हाट विल मेक यू?
1: नहीं नहीं, गांव में अब तो हर चीज आ गई है, अब तो हर चीज आ गई है। ये तो जॉब की वजह से इधर शहर में जा रहे हैं, तो
0: सिर्फ एक जॉब रीजन है, तो सिर्फ एक जॉब रीजन है, एक जॉब ही एक वजह है बस। अच्छा, तो इफ यू गो बैक, मैं चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूँ, अगर आप वापस जाते तो कहाँ पे जाते, कहाँ रहते, कहाँ आप एक्चुअली में कहाँ से?
1: मैं असल में पाकिस्तान में रहता हूँ,
0: पाकिस्तान में
1: रहा हूँ, गाँव में, पंजाब में रहा हूँ।
0: पंजाब में रहे हैं
1: दो तीन महीने रहा हूँ अपने रिश्तेदारों में। तो बड़ी पुरसकून लाइफ, बड़ा अच्छा माहौल।
0: और क्या आपको लगता है कि क्या कमी रह जाती है, क्या कमी रह जाती है कि लोग शहरों की तरफ भागते हैं? क्योंकि लोग जाते तो हैं, ये तो रोजगार की, दैट इज द ओनली थिंग, बस एक ही चीज है।
1: जी हाँ, और एजुकेशन,
0: एजुकेशन ओके
1: जी हाँ, एजुकेशन जो है ना वहाँ सेकेंडरी लेवल तक तो होती है, पर आगे की एजुकेशन इतनी ज्यादा गाँव में नहीं होती।
0: राइट,
1: और प्रोफेशनल एजुकेशन तो है ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में।
0: हाँ,
1: तो वो शहरों की तरफ, वजह रीजन यही होता है,
0: तो
1: इसी वजह से फिर वो माइग्रेट होके शहरों में आ जाते हैं।
0: हाँ राइट, मेन वजह मतलब सिर्फ रोजगार ही है, अगर बंदे को रोजगार वहाँ पे मिल जाए और उस लेवल का जिस लेवल पे शहरों में मिलता है, तो आई थिंक कोई भी गाँव नहीं छोड़ेगा।
1: जी हाँ जी हाँ, रोजगार भी और एजुकेशन भी, दोनों चीजें।
0: ओके ओके, बात तो सही है,
1: वरना तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जी
0: कोई
1: हाँ,
0: और
1: तो
0: मसला
1: तो बहुत अच्छे। हाँ, गांव की तो लाइफ बड़ी ठंडी।
0: अरे बहुत सेट है, बहुत सेट लाइफ है, बात ही कुछ और है।
1: पैदल जाओ पैदल आओ, कहीं भी करीब करीब जगहें होती
0: है,
1: गाड़ियों वाड़ियों का मसला ही नहीं है।
0: ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड मिलोर्ड। और बताइए आप, क्या चल रहा है जिंदगी में? वैसे सब सेट है
1: बस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
0: आपकी मेहरबानी, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मैसेज ड्रॉप कर सके तो कर दीजिएगा, मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी।
1: कर दिया
0: बस, ठीक है, बस बस अभी पहुंच रही है। और इतनी मोहब्बत के बाद में कुछ और मैसेज पढ़ दूंगा, लेकिन एक कॉल जरा और आ रही है, उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: कमाल भाई, बहुत बारिश हो रही है भाई मुंबई में, बहुत ज्यादा घर है।
2: मुंबई में तो दबा के बारिश हो रही है भाई।
0: भाई
2: भाई तो मैंने गांव जाने की बात किया जो है, आपने जो है गांव का ही सब्जेक्ट छेड़ दिया भाई।
0: हाँ भाई, आज आज मैंने इस बारे में जरा बात की जाए तो क्या क्या आप कहना चाहेंगे, आप आपको क्या चीज़ रोकती है, क्या चीज़ आपको लगता है गांव में सुधार हो सकता है? अभी पाकिस्तान की तो बात हो गई, इंडिया की तरफ आ जाते हैं, इंडिया में गांव के हालात को क्या बोलेंगे?
2: भाई मुझे तो गांव पहले पसंद था, अब तो इसलिए नहीं पसंद है कि भाई वहां की लाइफ जो है ना बहुत स्लो है,
0: बहुत स्लो है,
2: क्वारंटाइन वाला सिस्टम है।
0: अच्छा,
2: बहुत स्लो है।
0: तो आपको स्लो लाइफ नहीं पसंद है बिल्कुल भी, आपको फास्ट पेस लाइफ?
2: नहीं नहीं, फास्ट लाइफ चाहिए।
0: स्लो एज इन क्या मतलब, थोड़ा समझाएंगे स्लो कैसे मतलब?
2: भाई वहाँ पे 4:30-5 बजे सुबह हो जाती है
0: तो अच्छी बात है ना,
2: कटता ही नहीं है भाई। मैं तो वहाँ पे रहता हूँ बॉम्बे में समझ लो कि दो महीना और गांव का जो है ना 10 दिन बराबर है, 10 से 15 दिन।
0: तो ये तो अच्छी बात है ना, 5 बजे सुबह हो जाती है, 5 बजे सुबह नहीं चाहिए आपको?
2: 5 बजे सुबह हो जाती है भाई, दिन ही नहीं कटता है। 10 बजे जो है दोपहर में 10-11 बजे 12 बजे खाना खा लो, उसके बाद शाम होते बाजार चलो फिर थोड़ा सा घूम फिर के आओ, फिर जो है घर पे बैठे रहो।
0: एक और चीज है ना, क्योंकि आप मुंबई में भी रहते हैं ना, तो वहाँ की जिंदगी इतनी तेज है कि उससे नीचे आपको कोई शहर समझ में नहीं आएगा, कोई शहर समझ में नहीं आएगा।
2: नहीं इसीलिए, और दूसरी बात है ना भाई, सबसे बड़ा मेरे को टेंशन गाँव में क्या लगता मालूम है?
0: क्या?
2: कुछ भी ना हो, लाइट ना हो, कुछ ना हो, मच्छर।
0: अच्छा, मच्छर एक परेशानी है। ओके,
2: बहुत ज्यादा भाई, आप अगर मच्छरदानी भी डाल के सोओगे तो भी घुस जाते हैं।
0: अच्छा,
2: पूछिए गांव वालों से, पूछो भाई जो गांव में हमारे इधर के उनसे पूछो।
0: मैं तो चाह रहा हूँ, मैं तो
2: इतने बारीक बारीक मच्छर हैं,
0: मैं तो चाह रहा हूँ कि कोई गांव का भी बात करे, क्योंकि अगर कोई डायरेक्टली यहाँ पे आए गांव से तो मैं चाहता हूँ उनका पर्सपेक्टिव पता लगे। क्योंकि मैंने नोटिस किया है, अगर मैं मुंबई वालों की बात करूँ, मुंबई वालों की लाइफ इतनी तेज है कि वो दिल्ली भी नहीं आना चाहते, उन्हें लगता है दिल्ली की लाइफ
2: नहीं भाई दिल्ली की लाइफ भी स्लो है।
0: हाँ, हमारी लाइफ स्लो है।
2: मैं गया हूँ दिल्ली भाई।
0: हाँ नहीं, हमारी लाइफ स्लो है, हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। मुंबई वाले के पास कोई टाइम नहीं है। मैं
2: इतना टाइम लेके क्या करेंगे कबीर भाई, इतना टाइम किसके पास होना चाहिए?
0: मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग अभी मुंबई नहीं गए हैं, आप तो जानते हैं, सुबह सुबह में भी रिसेंटली पिछली वाली छुट्टियों में गया था, सुबह उठते के साथ ही भाई 8 बजे लोग ऐसे सरपट काम पे जा रहे थे कि मैं लगा भाई इनके पास टाइम ही नहीं है, कोई बैठ के खड़े होकर चाय तक नहीं पी रहा है, भाग रहे सबके सब। तो वो देख के बड़ा हैरान था।
2: बहुत अच्छी लाइफ थी भाई, जैसे सुबह उठे निकल गए रास्ते में चाय पिए, आगे गए रास्ते में वड़ा पाव लिए या कुछ भी लिए खाए, आगे बढ़ गए काम पे, काम से निकले कुछ ना कुछ खाते पीते, फिर अपने रूम पे पहुंच जाओ, रात हो गई खाना खाओ सो जाओ, काम खत्म।
0: अच्छा, तो ऐसा वाला चाहिए होगा, समझ गया भाई, ठीक है, ये भी एक नाइस पर्सपेक्टिव है। ठीक है कमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शेयर किया, ये वह कहानी कुछ देर में आ रही है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद कोई मैसेज पढ़ता हूँ, जकी भाई कह रहे हैं कि ओनली फॉर जॉब आई एम हेयर, अदरवाइज आई वुड लव टू लिव इन पिंड, माय ग्रैंडफादर वाज नंबरदार, और क्या बात है, नंबरदार ऑफ पिंड फॉर एंड सो हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। भाई किसी बहुत बैकग्राउंड पिंड के आगे लिखते हैं, विजिट माई पिंड ब्रो, यू विल सी वॉट पिंड एक्सपीरियंस इज। और लिखा है मच्छरदानी कौन लगाता है अब। भाई लगाते अभी जकी भाई, आई हैव सीन पीपल यूजिंग मच्छरदानी आज भी। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, टेलिंग स्टोरी अभी शुरू होगी भाई, बस कुछ देर में। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम गुलाम रजिक साहब। और एक मैसेज है, भाई नाम भूल गया लेकिन आप बोलते हैं ना लास्ट प्रोग्राम में कि अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत लोग वही कॉपी करके बोलते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या बात कर रहे हो, लास्ट का डायलॉग लोग कॉपी कर रहे हैं? अरे वेरी नाइस, यानी कि लोग सुन रहे हैं। एक मैसेज है, रिकॉर्ड करके भेजो, एक सेकंड भाई, अभी सही हो गया, मुझे भी कॉल करिए। आपको भी कॉल करूँ? ठीक है, मैं बस एक मिनट में कॉल कर रहा हूँ भाई, मैं मैसेजेस ज़रा जल्दी से निपटा दूँ। एक भाई ने अपने गांव की फोटो भेजी, जीशान भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, कहाँ पर है वैसे ये? और एक मैसेज है, सैलरी एजुकेशन और हॉस्पिटल अगर गाँव में मिल जाए तो ये फ़ौरन शिफ्ट हो जाएंगे, अमजद भाई ने मैसेज किया। और एक वॉइस नोट है, बाकी एक कॉल उठा लेता हूँ फिर मैं कॉल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल हैं?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाए भाई के क्या हाल हैं?
3: ठीक ठाक, खैर खरीत अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए?
0: जा भाई बढ़िया चल रही है गाड़ी भाई, आप सुनाइए क्या कहना है?
3: कबीर भाई आप गांव में नहीं रह रहे? गांव में नहीं रहे कभी?
0: नहीं भाई मैं रहूं गांव में भाई, ऐसी बात नहीं है भाई,
3: रहे हैं फिर तो आपको पता है ना सब कुछ
0: भाई। पता तो है, लेकिन क्या है ना, कुछ गाँव में आपको बताऊँ, इंडिया में भी आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, बहुत वैरायटी है। आप हरियाणा से आगे चले जाएंगे गाँव की पूरा शक्ल ही चेंज हो जाती है, कुछ गाँव थोड़े से बैकवर्ड हो जाते हैं, कुछ गाँव में क्या है कि लोग अपने शौक से रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सब यहाँ मिल ही गया है तो रह लेते हैं। तो हमारे यहाँ बड़ी वैरायटी सॉर्ट ऑफ है इसीलिए। तो आपका क्या कहना है?
3: अच्छा अच्छा, हमारा तो कबीर भाई इस तरह कहना है, हम भी गांव में ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुकून है। हाँ मच्छर है ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या ही है मच्छर, पंखा लगाओ तो कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है
0: भाई। वो जो खाना है ना, वो खाना जो है ना गाँव का, वो बीमार को उठा दे भाई साहब खटिया से सीधा, ऐसा खाना है
3: भाई। कबीर भाई अभी मैं गया हुआ था पाकिस्तान, आपको पता ही है, और जो गांव में मजा है ना, बेशक लाइफ अभी तो गांव के भी, अभी तो गांव भी मॉडर्न हो गए, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल सब कुछ है, तो गांव में रहना कोई नॉट अ बिग डील।
0: इतना बड़ा

0: से हैं वैसे आप किस गांव से हैं? पाकिस्तान में कौन से गांव से हैं आप?
1: मैं पाकिस्तान में चकवाल से हूँ और चकवाल में भी आगे मेरा गांव थोड़ा दूर करके, ये जो पाकिस्तान के तो सुन ही रहे होंगे सारे, इनको पता होगा।
0: अच्छा ओके ओके
1: जी जी जी
0: हाँ। वैसे वैसे वैसे गांव की जो परचूनी की दुकानें होती है ना, उनके उनके यहाँ जो चीजें मिलती है वो शहर में भी नहीं मिलती भाई। ये सबसे मजेदार चीज देखी है मैंने, जो वो जो छोटे छोटे पैकेट्स अभी भी गांव के अंदर मिलते हैं, वो आपको शहरों में कहीं पर चले जाइए आप बड़े से बड़े मॉल में, वो नहीं मिलेंगे आपको, वो गांव की एक्सक्लूसिविटी है।
1: अच्छा एक चीज मैंने और भी देखी है, यहाँ पे जो छोटे मोटे बकाले बने हुए हैं यहाँ पे कतर में, जो हमारे गाँव में जो बचपन में कभी वो जो कुछ जैली मिल रही है इस तरह, वो सारा कुछ यहाँ पे मिल है, और मैं इतना हैरान हूँ इस चीज को देख के कि भाई मतलब कि क्या ही सीन है ये
0: भाई। किसी ने वो बिजनेस क्रैक कर लिया, बता रहा हूँ लोगों के समझ में आ गया, खाना सबको यही है, ये लेकर आओ यहाँ पे, ये चटोरी जुबान जो है ना हम लोगों की, ये ऐसी पूरी।
1: उससे मैं घर में मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और मैंने फिर उनको दिखाया, मैंने बोला ये तो हमारे बचपन में मिलता था, अभी तो खत्म हो गया वहाँ पे भी, लेकिन ये यहाँ पे मिल रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, कुछ नहीं समझ आती, और मिलता है वाकई मिलता है।
0: और जो गांव में, क्योंकि मुझे उस तरफ नहीं पता आपके गांव का, लेकिन हरियाणा में स्पेशली, हरियाणा पंजाब के गांव में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मिल बांट के लोग फंक्शन कर लेते हैं, उन फंक्शन में जो मजा है आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा।
1: हमारे पास तो इस तरह भी है कबीर भाई, हमारे जो पूरा का पूरा शादी का फंक्शन है वो दूसरे के घर में उठा के शिफ्ट करेंगे, भाई हम फंक्शन आपके घर में करना है और सब कुछ अरेंज करो, मेहमान वगैरह सब कुछ अरेंज करो, तो बस वो सब कुछ हो रहा होता है, मेहमान रात को भी उधर ही सो रहे हैं, बाहर चैन में चरपाइयां लगी हुई है, इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छी कौन सी
0: गाँव की शादी बेस्ट होती है भाई, ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। उसमें जो मौज काटी जाती है ना, वो आपको शहरों के होटलों में नहीं आएगी। ये
1: मुझे शादी से कबीर भाई एक बात याद आ गई, हमारे हमसाये में शादी थी तो उन्होंने इसी तरह बोला कि हमने ना फंक्शन आपके घर में करना है सारा।
0: अच्छा
1: तो उन्होंने क्या किया कि वो जो कॉपी पे जो नाम लिख रहे होते हैं सबको साथ, वो पैसे पकड़ा रहे होते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: तो वो अभी हमारे पास तो इस तरह है, अभी आपके पास उधर पता नहीं क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता, वो उन्होंने मुझे पकड़ा दी कि भाई ये आप लिखो बैठ के, और वो उर्दू में लिखना था मुझे, तो उर्दू ना उस टाइम पे तो ना लिखना आती थी और ना पढ़ना आती थी। पहले मैंने दो नाम लिखे हैं और वो जो एक भाई वहां पे आए उन्होंने मुझे अपना नाम बताया, वो मेरे से वो लिख ही नहीं जाए कि यार अब इसको किस तरह लिखूं।
0: फिर
1: तो वो फिर क्या, वो उन्होंने मैंने उनको जो लड़का था मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला भाई मुझे शादी एंजॉय करना था, ये पकड़ो अपनी जिम्मेदारी खुद मेरे पास का नहीं है, ये इसको संभालो, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस।
0: और ये और अच्छी बात ये होती है ना, गांव में आप हर चेहरे को पहचानते हैं, आप भले ही उसके साथ बातचीत ना हो, लेकिन वो जो जाने पहचाने चेहरे लगते हैं ना, वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होती है वो आपको नहीं मिलेगी, वो मोहल्ले में भी नहीं
1: है,
0: है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
1: हम तो कहते हैं गाँव तो है अच्छा, शहर है ठीक है, आपकी लाइफ फास्ट है, आप ग्रो कर रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन गाँव बेस्ट है रहने के लिए। तो आपको आपको घर में बैठ के पैसा मिल रहा है, आपको सिर्फ तीन टाइम का खाना मिले, तीन भी नहीं छोड़े, दो टाइम का मिले, एक टाइम पानी से या लस्सी से गुजारा करेंगे, मसला नहीं है
0: भाई, वो लस्सी भी खाने के बराबर है भाई, वो लस्सी भी
1: वही तो कह रहे हैं गुजारा करेंगे, मसला नहीं है, आप तंदूर की रोटी के साथ साथ लस्सी हो आपके दोपहर के टाइम पे, बस क्या मसला है, सुकून से गुजारा,
0: मूड सेट कर दिया भाई ने बता के, थैंक यू मेरा भाई,
1: शुक्रिया कबीर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ख्याल रखिए मेरे,
1: ठीक है कबीर भाई, स्टोरी का वेट कर रहे हैं,
0: बस भाई शुरू कर रहा हूं, बस मैं शुरू कर रहा हूं,
1: ओके ओके
0: अल्लाह हाफिज। और भाई क्या दो तीन मैसेज पढ़ दूं मैं, उस्मा बहन ने लिखा है कि विलेज लाइफ इज बेस्ट, नेचर से करीब, सिटी में बहुत फास्ट है, हर चीज मिलती है लेकिन सुकून नहीं, लोग ना मिलते हैं क्या किसी से, हर वक्त चोरी से डर, विलेज में दरवाजे खुले रखो कोई खौफ नहीं, हम तो फ्रेश सब्जी खाते हैं, फ्रेश मिल्क, ग्रीनरी हर तरफ, सिटीज में फैसिलिटीज हैं लेकिन जिंदगी का मजा नहीं, करेक्ट। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, आपको पता है कि ये साल मुंबई में क्या हालत हो गई है, सबको गांव की याद आ गई है, लिखते हैं बारिश का पहला क्या है, बारिश के पहले खाली एक महीना बारिश नहीं की थी तो गांव को सबकी याद आ गई, गांव की सबको याद आ गई थी, भले ही मुंबई में ज़िंदगी रफ्तार में चलती है, गांव में स्लो ही चलती है, इसे ही कहते हैं गांव वाले, हम तो सुकून में हैं, इसलिए कहते हैं गांव वाले के सुकून में, मुंबई वाले कहाँ सुकून में रहते हैं, अपने क्या अपने आप लोगों को भी पीछे छोड़ जाते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। कहीं तक गुलाम रजा साहब लिखते हैं, सलाम भाई क्या हाल है भाई, स्टोरी की टाइमिंग थोड़ी पहले कर लें, ड्यूटी खत्म हो जाती है जब रूम पर पहुंचते हैं, अधूरी अधूरी से रह जाती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं चकवाल वाले अम्बी, अच्छा। और यूसुफ भाई लिखते हैं, यस कबीर आई एग्री टू द लिसनर्स हु सेड सैलरी एजुकेशन एंड हॉस्पिटल, मिले तो रह सकते हैं, बहुत सुकून होता है गाँव में, और हेल्दी खाना और हेल्दी लाइफ होती है, खाना तो भाई एक नंबर। और दो तीन वॉइस नोट जो मैं सुन लेता हूँ, बट बिकॉज आई नीड टू गो टूवर्ड्स द स्टोरी, एक भाई को मैंने कमिट कर दिया था, आई एम रियली सॉरी, पर मैंने लास्ट कॉल कर लूँ, कल से कहानी हम जल्दी शुरू कर लेंगे, बस शिकायत नहीं, सारी शिकायतें आपकी दूर करने के लिए हम बैठे हैं, टेंशन ना लो आप। एक ज़रा मैं कॉल कर लूँ भाई को, क्योंकि भाई से मैंने प्रोमिस कर दी थी भाई। उमर भाई थैंक यू सो मच जो आपने मुंबई का बताया। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कबीर भाई?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या हाल है भाई के?
2: क्या हाल चाल है? सब बढ़िया।
0: बढ़िया भाई, एकदम चंगा।
2: बस आप ही को सुन रहे थे बैठ के।
0: थैंक यू मेरा भाई,
2: लाइफ तो अच्छी गुजरेगी।
0: हाँ तो बताओ मेरा भाई, क्या क्या सीन है, कहाँ से हैं आप?
2: मैं तो कितनी बार पूछेंगे।
0: नहीं नहीं, मतलब कोई गांव से है, मेरे सवाल ये था, मैं रिफ्रेश कर लेता हूं।
2: मेरे दादाजी का मतलब हम लोग का गांव भी है ना यूपी आजमगढ़ में।
0: अच्छा, यूपी आजमगढ़।
2: वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारा गाँव है दीदारगंज।
0: अच्छा, ओह दीदारगंज, क्या नाम है यार
2: सच में। अच्छा, सर्च करिएगा कभी, आपको दिखेगा डिस्ट्रिक्ट में है।
0: क्या खास बात है दीदारगंज की?
2: बहुत सी चीजें हैं मेरे गांव में। तो मेरी एक घर के बगल में ही नहर बहती है, उसमें नहाने में मजा आता है। दूसरी चीजें, कितनी भी नेचर का आप मजा ले लो, देखिए गांव में ही, देखिए गांव में सब कुछ अपना रहता है। जैसे नेचर भी लगता है हाँ अपना सा, हवा भी अपनी लगती है, मिट्टी भी अपनी लगती है। शहर में क्या है, ऐसा लगता है बस पड़ोसी भी अपना नहीं
0: है भाई लोगों को पता भी नहीं होता पड़ोस में रह कौन रहा है, ये हाल है। मैं यहाँ पे भी हाल है लोगों का।
2: सही बात है, यही बात है। बाकी वहाँ पे खाने पीने को लेके भी अच्छी चीजें।
0: अगर आपको गांव में रहने को मिले, अगर अभी मैं कह दूं भाई आप जो है गांव निकल जाओ भाई, आपको जगह नहीं है शहरों में, तो आपको क्या चाहिए होगा गांव में रहने के लिए? व्हाट विल मेक यू लिव देयर? क्या चाहिए आपको?
2: मुझे बस कुछ नहीं, थोड़ी बहुत अगर देखिए, बस गांव में एक वो रहता है कि इनकम ऑफ सोर्सेस कम रहते हैं।
0: बस आपको मतलब अगर नौकरी वोकरी मिल जाए तो आप रह लेंगे, बाकी कोई टेंशन नहीं।
2: बिल्कुल है, आराम से रह लेंगे। मस्त वही चौड़ में कुर्सियां लगा के, बड़े बड़े वो लगा के। गांव में मैंने एक चीज ये देखा है कि जैसे जो आपने बोला था ना फंक्शन, जैसे शादी को लेके, वहाँ पे सब मिलजुल के करते हैं। गांव की शादी 4 दिन की होती है, शहर की शादी रात भर की होती है बस।
0: हाँ ये बात है, क्या बात है, ये तो डायलॉग बोल दिया आपने, कि पिक्चर का डायलॉग हो सकता है ये। हाँ,
2: गांव में बड़ा अच्छा लगता है, 4-4 दिन में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी शादी का फंक्शन जैसा लगता है कि हाँ अभी कल शादी है, खत्म होने के बाद भी लोग 2-2 दिन रुकते हैं। बड़े अच्छे से आते हैं, मैंने देखा है, रह गए, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। लोग अपने पन जैसे दिल्ली वो होता है, बाकी शहर में तो हाँ भाई ठीक है शादी खत्म, लोग इधर उधर गायब, कोई दिख नहीं रहा है।
0: देखो शहर में जो शो ऑफ हो रहा होता है वो उन लोगों के सामने हो रहा था जिन लोगों से वो कभी जिंदगी में मिलेंगे नहीं, और गांव में जो हो रहा होता है वो शो ऑफ नहीं है, वो क्या है, वो रिश्ते बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं तो वो मजबूरी हो जाती है।
2: सही बात है। बस ये शहर को और गांव में कंपेयर करेंगे यही है कि जैसे कुछ अगर गांव की आपको फैसिलिटी चाहिए तो शहर की कुछ चीज खोनी पड़ती है, शहर की चाहिए तो गांव की खोनी पड़ती है, बस यही मतलब कुछ नहीं।
0: ठीक है भाई, थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत अच्छा लगा।
2: बहुत शुक्रिया आपका।
0: कहानी शुरू करता हूँ मैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल भाई,
0: बहुत दिन हो गए, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, कोई मसला नहीं मेरे भाई, बिजी रहना अच्छी बात है, कहते हैं भाई की बातों से अग्री करता हूँ। और आजमगढ़ के हमारे कमालुद्दीन शेख साहब भी हैं, तबस्सुम मैन लिख रही है, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू हियर बिकॉज ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बहन, आई विल सेंड यू। ओके, तो एक बस एक प्रोमो के बाद सीधा मैं कहानी पे आ जाता हूँ। आज की स्टोरी जो है इट्स अ वेरी सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड वन, एंड आई होप कि आपको अच्छे लगे। तो जाने जाएगा नहीं, बस एक छोटा सा प्रोमो है, हार्डली 1 मिनट का होगा, है हार्डली 1 मिनट। चलो भाई ये लो।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
0: हाँ जी भाई, आली हम भी, और अब जरा कहानी की तरफ सीधा बढ़ जाते हैं। बाकी 666-22107 नंबर है भाई, अगर आप लाइव सुन रहे हैं तो और ही मज़ा आएगा, नहीं सुन पा रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप मैसेज जरूर कर दीजिएगा सो दैट आई कैन सेंड यू। बहुत बहुत शुक्रिया एक दो लोगों को भाई, मैं बस शुक्रिया कह दूँगा, छोड़ना जाए जुल्फ भाई थैंक यू, एंड एक और भाई हैं ये अजमल भाई, थैंक यू भाई। क्या है, खाली सैलरी मिले बाकी सब सेट है भाई, कह रहे गाँव में। ओके, तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, एज यू नो, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भी एकदम

ये एक किस्म की बीमारी थी, लोग इसको अलग अलग तरीके से ले रहे थे। ये जो बीमारी फैली, जिस जगह पे फैली, उस जगह का नाम था पाइकविल, केंटकी, यूएसए। ये छोटा सा टाउन है एक, और यहाँ पर लोग बड़े परेशान थे क्योंकि न जाने कुछ तो हो रहा था और लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़े थे। हर घर में ऐसा था कि अगर आप पूछें साइड में जाके भाई साहब क्या हुआ, तो बोलेंगे अजी हमारे यहाँ भी बीमार है, हमारे यहाँ भी बीमार है। और ये चीज़ फैले जा रही थी, किसी के समझ में नहीं आ रहा था। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये 1891 है, तो किसी को पता नहीं कि हो क्या रहा है। और जो डॉक्टर्स थे ऑब्वियसली उनके पास भी इतनी टेक्नोलॉजी या इतने एडवांस नहीं हुए थे कि फौरन बीमारी को जड़ से पकड़ लिया जाए। इसी जगह पे पाइकविल, केंटकी में एक बंदा था, और ये जो बंदा था ये 31 साल का था, 31 years old, और ये एक बिजनेसमैन था। इसका नाम था जेम्स हैचर। जेम्स हैचर जो था वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, भले उसकी उम्र 31 साल थी, लेकिन इस उम्र में भी जेम्स ने बहुत कुछ पा लिया था। जेम्स हैचर जो था वो काफी चार्मिंग था, एकदम परफेक्ट लाइफ जी रहा था, और काफी कम उम्र में ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट, एंड नॉट किडिंग, वन ऑफ द रिचेस्ट। कितना पैसा था उसके पास, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कोल और रियल स्टेट में उसका सबसे ज्यादा हिस्सा था। यूं समझ लीजिए कि जिस जगह की ये कहानी है पाइकविल, केंटकी की, आधे से ज्यादा यही ओन करता था। तो अब आप समझ लीजिए कि वो कितना बड़ा आदमी होगा। मगर पैसा और रिसोर्सेस, बड़ा सा मेंशन, इन सबसे ज्यादा खुशी उसे अपनी जिंदगी में अपनी बीवी से थी। उसकी बहुत कामयाब शादी थी। इट वॉज अ लव स्टोरी टू बी रिटन इन पोएट्री, वेरी वेरी लव स्टोरी। तो जेम्स की शादी हुई थी ऑक्टेविया से, और एक साल पहले 1890 में शी वॉज प्रेग्नेंट। जब लाइफ एकदम परफेक्ट लग रही थी, एवरीथिंग वॉज गोइंग जस्ट परफेक्ट, उस वक्त एक चीज हो गई। 4 महीने पहले ही उसका बच्चा जो था वो पैदाइश के बाद ही चल बसा। एंड जब चीजें खराब हुई तो खराब होती ही चली गई। जेम्स और ऑक्टेविया इतने ज्यादा ट्रॉमा में थे कि ये संभालना मुश्किल था। एकदम से द वर्ल्ड केम क्रशिंग डाउन। लेकिन अपने आप को संभालते संभालते जेम्स ने फिर से हिम्मत बांधी, लेकिन फिर से उसकी हिम्मत टूटी। मई के इस महीने में, पिछले ही हफ्ते, मतलब चंद महीनों के बाद, जेम्स की बीवी ऑक्टेविया भी चल बसी। शी डाइड। एंड जेम्स को समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा, देखो तुम्हारी वाइफ जो है वो दिल टूटने की वजह से शी डाइड बिकॉज ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। उसने अपना बच्चा खोया, तो वो एक केओस हो गया था और इसीलिए वो चल बसी। अब जेम्स के हालात इतने बुरे हो चुके थे कि जेम्स की जिंदगी संभाले नहीं संभल रही थी। जैसे मैंने आपको बताया, वो 31 साल का बिजनेसमैन था, उसके पास दुनिया जहां की दौलत थी, कोई कमी नहीं थी। जेम्स जिस मेंशन में रहता था वहां 14 नौकर चाकर थे उसके इर्द गिर्द। जेम्स पूरी तरह से टूट चुका था। वो जेम्स जो चार्मिंग हुआ करता था, उसके बाल उलझे हुए रहते थे, बाल तक नहीं काटता था, वो सूट में ही सो जाता था, काम पे जाना बंद कर दिया था, खाना पीना बंद कर दिया था, उसके बुरे हाल हो चुके थे, कोई भी रात सो नहीं पाता था। पूरे के पूरे मेंशन में ही वॉज अलोन, और दुनिया की कोई भी दौलत उसके इस गम को दूर नहीं कर सकती थी। मगर जेम्स के जहन में एक ख्याल था कि आखिर उसकी बीवी को हुआ क्या। न जाने क्यों ये सवाल उसको बार बार बार बार बार बार परेशान किया जा रहा था। जब से उसने अपनी वाइफ को दफनाया, उसका फ्यूनरल करने के बाद जब अपने आलिशान मेंशन में पहुंचा, तब से ही जेम्स एकदम बौखला गया था। पूरी की पूरी फैमिली उसकी खत्म हो चुकी थी, दिमाग फंक्शन नहीं कर पा रहा था। मगर एक सवाल उसे ऑब्सेस कर रहा था। वो जानना चाहता था कि उसकी वाइफ की जान आखिर कैसे गई, क्योंकि वो सोच रहा था कि डॉक्टर ने तो बोला है कि दिल टूटने की

इसे गई, पर उसके दिल में आया कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। माना कि उसकी वाइफ ऑक्टेविया, उसका दिल टूटा, लेकिन लोग उदास होने की वजह से नहीं मरते। हाँ, हेल्थ डिक्लाइन होती है, तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन जान नहीं जा सकती। तो ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। तो इसीलिए उसका जो मोड था दिल का, मतलब ग्रीविंग का, कि वो ग्रीव कर दे अपनी वाइफ को लेके, उससे ज्यादा उसे जानना था हुआ क्या। तो उसने सब चीजों को दूर रखा। उसने कहा बस एक ही तरीका है, किसी डॉक्टर के पास जाके वापस नहीं पूछूंगा मैं, मुझे कोई मेडिकल लिटरेचर नहीं पढ़ने की जरूरत है। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल किया और जेम्स सबसे पहले जो है पहुंचा वहां के लोकल जज के पास, पाइकविल के लोकल जज के पास, और उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे इमरजेंसी एग्जुमेशन करवाना है, मतलब कि उसे अपनी बीवी जहां पे उसकी कब्र है खुदवा के वापस निकालना है और वापस चेक कराना है कि आखिर वो मरी कैसे। जज साहब जो थे उनके सामने एक बड़ा आदमी सूबदार बहुत रईस खड़ा हुआ था और उसकी रिक्वेस्ट कैसे ना माने। तो उन्होंने भी एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया और वो लीगल डॉक्यूमेंट जो था वो एग्ज्यूम करने का था कि कब्र वापस खोद दी जाए, और ये उन्होंने जेम्स को पकड़ा दिया। अब जेम्स जो था उसके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट था और वो ये लेकर जा रहा था टाउन के डॉक्टर के पास। जेम्स जब जा रहा था तो लोग उसकी तरफ देख रहे थे और जेम्स जानता था कि लोग उसकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि उसकी हालत बड़ी खराब थी, बाल इधर उधर हो गए, उसको कोई फिक्र नहीं थी। जिस सूट में वो बाहर घूम रहा था उसी सूट में सो गया था, वही पहन के सुबह निकल आया था, और इतने पैसे वाला आदमी लेकिन फिर भी सूट पे नीचे चप्पल पहनी हुई थी। इतने लोग उसे देख रहे थे कि क्या हालत हो गई है इसकी, कपड़ों पे सिलवटे हैं, मक्खियां भिन मना रही हैं, और इस हालत में वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था और वो कागज वो लेकर डॉक्यूमेंट अपने हाथों में लेके चल रहा था। कोई कह नहीं सकता था कि ये बंदा आधा पाइकविल ओन करता है, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो सीधा पहुंचा टाउन के लोकल डॉक्टर के पास। उसने दरवाजा खटखटाया और बहुत जोरों से खटखटाया। अंदर से डॉक्टर साहब आए, उन्होंने दरवाजा खोला। जब टाउन के डॉक्टर ने दरवाजा खोला, वो बहुत बहुत बहुत ज्यादा शॉक था सामने देख के, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदा। उसने बोला आप जेम्स हैचर है ना। उसने बोला यस डॉक्टर, आई नीड योर हेल्प। और जेम्स को इस हालत में देख के डॉक्टर तो पहले शॉक था कि अरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी मेरे दरवाजे पे खड़ा है और उसकी हालत इतनी खराब है। उन्होंने बोला जी मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। और जेम्स ने दूसरा कोई वर्ड नहीं बोला, उसने जो हाथ में लीगल डॉक्यूमेंट था वो डॉक्टर के हाथ में पकड़ाया और चुप हो गया। डॉक्टर ने वो लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू किया और लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते वो जेम्स को बार बार देख रहे थे, और जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे उन्हें समझ में आया कि जेम्स क्या चाहता है। वो चाहता है कि उसकी बीवी की जो कब्र है उसे वापस खोद आ जाए। डॉक्टर साहब के पूरे इमोशंस बदल गए, वो जेम्स को देख के बहुत सिंपथी फील कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यार बेचारा ये कैसा कैसा हो चुका है ये, एंड ही वाज फीलिंग बैड फॉर जेम्स, और उनके दिल में आया कि मुझे जेम्स की मदद करनी चाहिए। पर उन्होंने जेम्स को बोला कि देखिए सर, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट भी है, आई एम ओके विद इट, लेकिन आपको नहीं लगता इट इज नॉट अ गुड आइडिया, मतलब सर आप मेरे साथ चलेंगे, अब वापस हम एग्ज्यूम करेंगे, कबर खोदेंगे, आपको नहीं लगता कि आप ये देख नहीं पाएंगे। जेम्स बोला नहीं नहीं नहीं नहीं, और जेम्स वाज गोइंग क्रेजी, वो बातें भी ऐसे कर रहा था कि लग रहा था जैसे कोई अपना आपा खो चुका है, और दूर हटके गेट से बगैर था नहीं नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, आप नहीं समझ रहे, मुझे जानना है कि हुआ क्या है। डॉक्टर ने हार मान, डॉक्टर ने कहा ठीक है। अनचंद घंटों बाद इन द आफ्टरनून आवर्स वो जेम्स के साथ गए सेमेटरी। वहाँ पर जेम्स थे, वहाँ पे डॉक्टर थे, और वहाँ पे सेमेटरी के जो वर्कर्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे। बहुत तपिश हो रही थी, तेज गर्मी, तेज धूप, चारों तरफ मक्खियाँ मिनमिना रही थी, अब बुरा हाल था, पसीने में तर हो रहे थे, लेकिन जेम्स को कोई फर्क नहीं पड़ा था। अभी उसकी नजरें बिल्कुल शार्प नजरें वहां गड़ी हुई थी जहां पे ये लोग खुदाई कर रहे थे, कब्र खोद रहे थे। उसके दिल में ही वॉज रियलाइजिंग
कि अभी कुछ देर में ये कब्र खोद देंगे और ये फिर से अपनी वाइफ को फिजिकली अपने सामने देखेगा, भले वो जिंदा नहीं है। और अपने आप को रेडी कर रहा था इस चीज़ के लिए, बिकॉज इट वॉज सो टफ फॉर हिम। वो नहीं जानता था कि ये प्रोसेस कैसे करेगा, बस ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। इवेंचुअली वर्कर्स ने जब उनके हाथ में जब फावड़ा था वो मारा तो एक सॉलिड चीज से टकराया, मतलब कॉफिन से टकराया। वर्कर्स उसके साइड में खड़े हुए और फिर उन्होंने कॉफिन का, जिसमें वो जिस ताबूत में थी वो कॉफिन का उन्होंने खोलना शुरू किया। जब उन्होंने कॉफिन को खोला तो जेम्स पहले तो पीछे हटा, फिर जेम्स आगे आके झांकने लगा। जब उसने कॉफिन को देखा तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और डरा हुआ महसूस कर रहा था, बिकॉज जेम्स की वाइफ ऑक्टेविया जिस पोजीशन में कॉफिन में थी उस पोजीशन में अभी कॉफिन में नहीं थी। कॉफिन को जब खोला गया तो ऊपर का जो उसका कैबिनेट था उसमें स्क्रैच मार्क्स थे और ऑक्टेविया के जो नाखून थे वो बहुत टूटे हुए थे और कुछ नाखून जो थे वो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। एंड ही वॉज रियली रियली कंफ्यूज्ड। तो दरअसल दफनाने के बाद सब चले गए थे, वो भी चला गया था, लेकिन ये पीरियड जो था पाइकविल का, जैसे मैंने कहा एक मिस्टीरियस इलनेस फैली हुई थी, उसके बहुत सारे लोग शिकार हो रहे थे। ये जो बीमारी फैल रही थी, ये बीमारी फैल रही थी मक्खियों से। पाइकविल में स्प्रिंग सीजन में एक किस्म की मक्खी होती है, वो अगर डंक मार दे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको समझाता हूं, अगर स्प्रिंग सीजन में इस मक्खी ने काट लिया तो दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, और ये स्प्रिंग सीजन में वहां पे ज्यादा होती है। कभी कभी बुखार चढ़ जाता है, कभी कभी इंसान कोमा में जा सकता है, कभी कभी वो जाग सकता है कोमा से, और कभी कभी नहीं भी जाग सकता। होता दरअसल ये है कि हार्ट रेट जो है, दिल की धड़कन, वो इतनी स्लो हो जाती है कि सामने वाले को लगता है कि इंसान मर गया है। यही हुआ जेम्स के साथ, उसे लगा उसकी वाइफ ऑक्टेविया मर चुकी है, और ये सिकनेस डेथ को मिमिक करती है। और सिर्फ जेम्स ही नहीं, टाउन के कई सारे लोगों ने अपने घर वालों को, जो भी उनके सामने उन्हें लगा कि डेथ हो गई, सबने दफना दिया था। सिर्फ जेम्स था जिसने वापस कब्र को खुदवाया था चेक करने के लिए। जब ये खबर फैली तो एवरीबॉडी वाज इन शॉक, क्योंकि पूरे टाउन में यही बीमारी फैल रही थी, और लोगों को लगा कि जो उनके सामने शख्स है वो चल बसा, लेकिन वो जिंदा था। एंड इस चक्कर में कई सारी कब्रों को खोदा गया, और कई सारे लोग इसी धोखे में थे कि उन जो जिनसे प्यार करते हैं, उनका रिश्तेदार है, जो भी है, वो चला गया। एंड सेम हैपेंड विद जेम्स, ऑक्टेविया एक्चुअली में जिंदा थी जब उन्हें गाड़ दिया गया, शी वाज़न्ट इवन डेड। समवेयर इन द मिडल वो शायद जागी होगी एंड ट्राइड टू केम आउट एंड कुछ नहीं कर पाए। इस टाउन में जब ये खबर फैली तो सबके सब केओस में आ गए थे। एक पॉइंट ऐसा आ गया था इन 1891 के लोगों को इस टाउन को छोड़ना पड़ा, जब तक इसे पूरी तरह से रिसर्च नहीं हुई। एंड व्हेन इट केम आउट, तो आज की तारीख में इफ यू एवर गो टू पाइकविल केंटकी, आज भी वहां पे स्प्रिंग सीजन में स्पेशली एक अलग किस्म की एक मक्खी पाई जाती है, मक्खी कह लीजिए, कीड़ा कह लीजिए। अगर उससे आपका सामना हो गया, अभी तो उसका इलाज है, पर उससे बहुत अजीब चीजें पैदा होती हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। एंड उस दौर में किसी को यह मालूम नहीं था, मगर एक ट्रेजेडी की वजह से इस पर रिसर्च की गई और फिर पता लगा कि अच्छा ये हो रहा है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आधा टाउन, आधे से ज्यादा लोगों को जिंदा गाड़ चुका था। यस, दिस वॉज अ सैड स्टोरी, लेकिन इसका आउटकम आने वाली नस्लों के बहुत काम आया। इस डार्क टर्न के चक्कर में आने वाली तमाम नस्लों को फायदा हुआ, जो भी पाइकविल
केंटकी में पैदा हुए या बसने के लिए आए। दिस वॉज द स्टोरी एंड अभी आपके हवाले है। सो 666-22-107 666-22-107 जरूर जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी आखिर लगी तो लगी कैसे। आई रियली वॉन्ट टू नो, क्योंकि आई नो बड़ी अनयूजुअल है। आप इसको आप सैड स्टोरी की कैटेगरी में रखना चाहें या पता नहीं, आई अब मुझे भी नहीं पता मैं किस कैटेगरी में इसको रखूं, बट इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है, है? जरा मूड को ठीक कर लेते हैं। सुनो सुनो सुनो, आराम से आराम से बाकी मैसेज कर देना।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी, वैसे तो 6:03 हो गए हैं, लेकिन टाइम कैसा है ये तो आप बताएंगे, गाने को कैसे लगे ये भी आप बताएंगे। सो 666-22-107 नंबर है, 666-22-107।

0: आभासी तो बहुत मिलेगी। कुछ मैसेजेस हैं, पढ़ देते हैं। एक भाई इस पे क्यों कॉल कर रहे हैं, भाई इस पे व्हाट्सएप पे कॉल करने कोई फायदा नहीं है। हिजाम साहब वालेकुम अस्सलाम लिखते हैं सुपर, और जकी भाई लिखा है क्या लिखा है, ट्रेजिक स्टोरी ब्रो, सैड फॉर जेम्स। आगे लिखा है रीच्ड होम ब्रो, टेक केयर एंड हैव अ ब्लेस्ड इवनिंग। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जकी भाई। फलक भाई लिखते हैं नाइस स्टोरी कबीर भाई, थैंक यू भाई। क्या दिलशाद भाई लिखा है, भाई एक नंबर कहानी, लव यू, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई। फरद भाई लिख रहे हैं, भाई क्या बीती होगी उन पर जिन लोगों को जिंदा दफन कर दिया होगा। हाँ भाई वही तो, ट्रेजिक स्टोरी भाई, ट्रेजिक स्टोरी। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम
0: जी कमाल भाई,
1: भाई आज भी गलती से दफन कर दिया उसको। यार भाई उस दिन गलती से दफन किया तो उंगली काटे तो आदमी मरा।
0: हाँ
1: तो समझ लो कि जो है हाँ बच गया आदमी, आदमी नहीं जो है समझ लो कि जो चलो कि एक चीज था कि भाई बीमारी का इलाज मिला।
0: हाँ पर वही ना कि कितना अजीब तरीके से मिला। काफी डार्क हो गया। हाँ
1: डार्क हो गया, हो सकता है भाई अल्लाह ताला बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए उसके दिमाग में बात आई हो कहीं ना कहीं से, कुछ तो आगे इसीलिए चलता है ना भाई।
0: हाँ ये यही है तो
1: समाज, इसीलिए आज हम लोग जिंदा हैं, हम लोग चल रहे हैं कुछ ना कुछ, कुछ लोगों की वजह से ही ना।
0: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ये जो
1: तो इतनी सारी बीमारियां फैली, इतना वो हुआ है, रिसर्च हुआ है।
0: हाँ। कई सालों तक सोचिए टीबी का भी इलाज नहीं था, सब इतने सालों तक टीबी जैसी बीमारी का भी इलाज नहीं था, और कई सालों तक
1: टीबी का नहीं था, मलेरिया का नहीं था, डेंगू का नहीं था, बाद में धीरे धीरे।
0: तो ये सारी चीजें जिन लोगों ने ढूंढनी है करी है, अल्लाह ताला ने उनके जहन में डाली है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्हीं में से एक ये चीज थी, बहुत ट्रेजिक स्टोरी थी, मगर हाँ क्या करें, की कहानी तो मैंने कहा चलो
1: क्या कर सकते हैं भाई,
0: क्या कर सकते हैं। तो ये थी कमाल भाई, ओवरऑल अच्छी लगी आपकी
1: कहानी, बहुत अच्छी थी। हाँ कहानी अच्छी लगी, एक मैसेज था, रिसर्च करना और वो करना और उसके बाद ढूंढना है, एक सबूत मिलना। अभी देखिए चल रहा है, अभी कोरोना के टाइम पे भी देखिए कितना हुआ था शुरू शुरू में,
0: अरे
1: लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर उसका वैक्सीन निकली ना, हुआ
0: राइट राइट, इसीलिए। पर बहुत बहुत शुक्रिया कमल भाई, अच्छा लगा मुझे आपको, अच्छी लगी कहानी। अब लंबी कहानी लेके आएंगे बड़ी वाली, ठीक है।
1: नहीं शॉर्ट भी अच्छी है भाई, कहानी एक मकसद की होनी चाहिए,
0: मकसद की होगी इंशाल्लाह अगली बहुत बड़ी कहानी।
1: हाँ ये मकसद की भी है ना।
0: हाँ
1: आगे भी जो कल भी थी वो भी एक मतलब की कहानी, मकसद की कहानी थी।
0: यस
1: और कुछ हॉरर भी होनी चाहिए लास्ट में, ताकि दो दिन
0: वो तो भाई थर्सडे फिक्स है, भाई थर्सडे फिक्स है।
1: हाँ एक दो दिन जो है सर्वाइवर की होनी चाहिए,
0: डन डन डन भाई,
1: थर्सडे रहना चाहिए
0: इंशाल्लाह, जरूर मेरे भाई।
1: ओके कभी भाई,
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई,
1: चलिए रनिंग में देखा जाए,
0: डन मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और कमाल भाई के बाद अगली कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम जी।
0: अरे भाई साहब क्या हाल है
2: जी, सडनली उठा लिया फोन, मैं तो पार्किंग कर रहा था।
0: मैं तो पार्किंग कर, तो पार्किंग कर लो भाजी, क्या हो गया?
2: पार्किंग हो गई, पार्किंग हो गई। कबीर भाई बहुत अच्छी स्टोरी थी, आप कैसे हैं पहले ये बताइए।
0: बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम शानदार
2: शानदार, बहुत बढ़िया स्टोरी भी शानदार थी।
0: हाँ तो कैसी लगी आपको ओवरऑल ये कहानी, पहले तो ये बताएं।
2: लेकिन मैं बताता हूँ आपको, जो आपने बताया ना कि नाखून टेढ़े हुए थे, कि कैसा वो निकलने की कोशिश कर रही होगी, अरे बाप रे मेरा तो दिल टूट गया सच्ची में कबीर भाई।
0: भाई भाई यही इसी बात के पैसे हैं भाई, ट्रेजिक स्टोरी सुनाओ तो प्रॉपर होनी चाहिए।
2: आप पैसे के चक्कर में बहुत दिल तोड़ते हैं सच में। सच में बहुत बुरा हाल होता है कि उसकी वाइफ थी और वो कितना उसने फील किया, वो नहाना धोना भी भूल गया। देखिए
0: हाँ बताइए, इसे इससे कितने सारे सबक मिलते हैं, लोग कहते हैं ना मोटिवेशन कहाँ है भाई, देखो पैसे से सब कुछ फिक्स नहीं कर पाया वो, ही कुड नॉट डू एनीथिंग। तो ये है चीज।
2: और दूसरी बात ये थी कि वो थोड़ा वेट कर लेता ना कि जिंदा है कि नहीं, सांस भी तो चलती होगी ना इस सिकनेस में।
0: नहीं होता क्या है कि कई मरतबा देखो, एक तो ये 1890 की बात है ना, तो आदमी पैनिक कर जाता है कि वो सबसे पहले जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है वो धड़कन चेक करने की होती है, सांसें स्लो हो जाती है क्योंकि आपके दिल की धड़कन एकदम स्लो है। तो उस बीमारी में लगता है ऐसा कि अरे ये तो बचा ही नहीं है, बट वैसा होता नहीं है। या तो इस वजह से।
2: और दूसरा ये भी सोच रहा था कि इतना अमीर आदमी है,
0: हाँ
2: उसको मतलब मैं उसकी जगह पे होता, मैं तो सजदा के जाता और दफना के आता और पीछे लाइन लगी होती।
0: वाह वाह वाह वाह, बेचारे जेम्स को भी जज कर लिया आपने, बहुत बढ़िया अमल भाई, बहुत बढ़िया।
2: अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मतलब फ्यूनरल तो फ्यूनरल है, अगर हो गया तो ठीक है, मतलब हमारे समाज में, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग सोचा कि अगर हम लोग होते इतने अमीर, यानी वो रिचनेस का लेवल जो उसका हाई था बहुत ज्यादा, कोट पैंट पहनते तो हमारे रिश्तेदार पहले ही बोलते, जब मम्मी पहले बेटा अब तुम ना अच्छी सी लड़की देख लो कोई ना कोई।
0: देसी माहौल में तो फिर कहानी दूसरी होती भाई।
2: देसी माहौल और अपना समाज ही ऐसा ना, अपना डिजाइन ही ऐसा हो गया हमारे समाज का।
0: यस यस, हमारा हमारा अलग ही स्ट्रक्चर है भाई, हमारी फंक्शनिंग ही अलग है।
2: बच्चा कमाता नहीं है और शादी के लिए लड़की पहले ढूंढना शुरू कर देते हैं हमारे वाले।
0: मुझे लग रहा है
2: 25 साल का हो गया था ना, हमारे इतने रिश्तेदार आए तो मैं इतना सेट भी नहीं होता, इतनी कमाई भी नहीं थी। ये देख लो, ये लड़की देख लो, और लड़के वाले भी कहीं शादी पे जाओ, अच्छा तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे लिए लड़की देख। ये क्या सिस्टम है भाई समाज का, मैं फिर भी 33वें साल में ही शादी करवाई।
0: अरे अरे, बहुत बहुत लड़ाई झगड़ा किया आपने, ये सारी खुंदस निकल रही है।
2: घरवालों के साथ बहुत झगड़ा किया मैंने, बहुत बहाने मारे मैंने।
0: पता लग रहा है भाई, वो पता लग रहा है, बातों में आ रहा है अभी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
2: लेकिन कहानी अच्छी थी कबीर भाई। और आज का क्वेश्चन क्या था?
0: आज का क्वेश्चन क्या था? मैं आज गांव के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा देखो, लोग अक्सर कहते हैं कि हम तो गांव चले जाते हैं, पर कुछ लोगों का सिस्टम ऐसा है कि वो गांव जाते नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो अगर आपको गांव जाने का मौका मिले तो कौन सी फैसिलिटीज हैं कि आपको गांव में रुकने पे मजबूर कर देंगे? चलो आप गांव में रहते हैं, छोड़ो शहर को।
2: फैसिलिटीज देखिए, हरियाली और जो एयर है ना वो प्योर रहती है हमेशा, ये तो गारंटीड है।
0: हाँ ये तो ठीक है, गारंटीड,
2: क्योंकि हम लोग गांव से उठ के शहर में गए हैं, हमें शहर इतना अच्छा नहीं लगा जितना हम गांव।
0: क्यों गए? तो क्यों गए, दैट इज द क्वेश्चन। क्या चीज आपको लगी?
2: मैं आपको बताता हूँ, मेरे पापा बोलते थे बच्चों को शहर में रखना है, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो उनको नहीं करना चाहिए था शिफ्ट हमें।
0: ओके
2: क्योंकि हमें किसी को भी वो वहां जाके अच्छा महसूस नहीं हुआ। छोटी छोटी बात पे जो भी रिश्तेदार आता था उसको पहले हम लोग स्कूटर पे लेने जाते थे बस स्टैंड पे घर तक।
0: भाई वो मजा ही हो रहा, मजा ही हो रहा है।
2: और वहां पे दूध, गांव में दूध मक्खन दही की कमी नहीं होती थी, वो फ्री में मिलता था।
0: बिल्कुल कमी नहीं, वो तो ऐसी भाई ऐसी ही साथ में
2: लस्सी फ्री में मिलती थी हमें। उधर लस्सी जो वो डेयरी वाले थे, डेयरी होती थी ना गाँव में, बोल दिया मैंने, वो फ्री में लस्सी रखते थे एक डोलू भर के। वो जब मक्खन निकाल देते थे ना, वो लस्सी फ्री में बांटते थे, नालियों में बहाते थे वो लोग।
0: हाँ, और क्या,
2: भैंसे होती थी उनके पास।
0: और क्या, तो
2: वो खुद पी पी के खुद भी ऐसे ही होते थे भैंसे जैसे।
0: तो आपके
2: और वो भैंसे भी बांटते रहते थे।
0: तो आपके मन में नहीं आया कभी गांव शिफ्ट होने का? इतना ही अच्छा गांव है तो क्यों नहीं गए वापस?
2: नहीं ऐसा आज तक ऐसा प्लान ही नहीं बना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि इधर से छुटकारा ही नहीं मिलता इधर से।
0: अच्छा ठीक है,
2: ये प्लान बना लिया कि हाँ सामने प्लॉट लेके छोटा सा घर बनाना है, बस वही प्लान है। और
0: बड़ा लो फिर तो भाई, बढ़िया सा घर बनाना, ठीक है।
2: शुक्रिया कबीर भाई, थैंक यू
0: मेरे भाई, थैंक यू,
2: थैंक यू, थैंक यू फॉर द वंडरफुल स्टोरी।
0: नो प्रॉब्लम मेरे भाई, थैंक यू सो मच,
2: टेक केयर, हैव अ नाइस डे,
0: यू टू मेरा भाई। और इनके बाद जो है एक और कॉल आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
0: अरे नदीम भाई, नदीम भाई कैसे चल रही है? बहुत बिजी जिंदगी चल रही है।
3: चल रही है, बिजी हो गए थोड़ा यार।
0: अच्छी बात है बिजी
3: शाम में। एक्चुअली बच्चों की स्कूल उसकी बंद हो गई ना, छोटे वाले की, तो वो शाम में निकलना भी कम हो गया अभी।
0: अच्छा ओके ओके, चलो अब ठीक है, घर पे हो, सुकून से हो, ये मैटर करता है मेनली।
3: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपन कहाँ जाएंगे।
0: कब से खुलने हैं स्कूल वैसे?
3: अभी तो आई थिंक 30 अगस्त को पहला दिन आएगा।
0: मेरे बर्थडे के दिन पहला दिन है स्कूल का, क्या बात है,
3: क्या बात है,
0: वेरी नाइस।
3: तो बताइए स्कूल,
0: बैक टू स्कूल, हमें ये अपने बर्थडे से इंटीग्रेट जरूर करूंगा, पता नहीं उस दिन छुट्टी है कि नहीं, आई डोंट नो। बहरहाल नदीम भाई क्या कहेंगे आप अपने, मुझे लगता है कहानी सुनी है, नहीं सुन पाए होंगे ना।
3: मैं एक्चुअली स्टार्ट सुना, फिर बीच में मैं थोड़ा बाहर।
0: चलो ये गांव बताइए नदीम भाई, आपको गांव है क्या ये बताइए, आप गांव है आपका कि नहीं?
3: मेरा है ना, मैं गुजरात से हूँ।
0: अच्छा गुजरात से हैं आप, गुजरात में कौन सा गाँव?
3: सूरत कठोर।
0: ओके, तो गांव में क्यों नहीं जाता भैया, अब क्या चीज ने आपको वहां से निकाल के मुंबई लिया, सिर्फ रोजी रोटी के चक्कर में?
3: मैं ना एक्चुअली पता है बचपन में बहुत गांव गया हूँ।

0: और मैं 2 साल गांव में रहा भी हूँ बचपन में। फिर अब क्या हो गया पता है, जितने भी हमारे बड़े थे ना गांव में, अब मेरे डैडी जब तक थे तब तक मेरे डैडी के साइड के सारे लोग वहीं है,
1: ठीक है।
0: तो तब तक हमारा आना जाना बहुत रेगुलर था। लेकिन जब डैडी के जाने के बाद फिर बहुत कम, और यहाँ से आप जाते ही 15 दिन के लिए, उसमें फिर गांव चले जाओ तो वो हो नहीं पाता है,
1: हाँ राइट, हाँ अभी
0: तो उसके
1: टाइम नहीं
0: अंदर
1: है।
0: कमी हो गई। लेकिन मेरे को लगता बहुत अच्छा है उधर।
1: ठीक है, वेल सेट। और मैं स्टोरी भेजूंगा वैसे नदीम भाई आपको,
0: हाँ मेरे
1: तो
0: को
1: उसमें
0: भेजना है
1: भेजूंगा।
0: वो, मैं मैसेज भी नहीं कर पा रहा हूँ आजकल, तो ऐसा हाल हो गया क्योंकि कभी
1: कोई
0: कोई
1: कोई
0: आ
1: बात
0: जाता
1: नहीं,
0: है कभी कुछ हो
1: नहीं
0: जाता
1: कोई कोई
0: है,
1: मसला
0: तो
1: नहीं,
0: थोड़े
1: कोई
0: दिन
1: मसला
0: से
1: नहीं।
0: बहुत
1: गेमिंग
0: बिजी रही
1: गेमिंग में
0: थी।
1: भी हॉल्ट आ गया होगा, गेमिंग चल रही है अभी? नहीं
0: हाँ शाम में हॉल्ट आ गया है वैसे, आजकल एक नया कुछ चालू किया है, बताऊंगा
1: अच्छा
0: आपको।
1: बताना, मुझे बताना।
0: हाँ
1: गॉसिपिंग
0: तो
1: करते हैं हम अपनी
0: आजकल थोड़ा वो,
1: अलग।
0: मैं थोड़ा टॉक्सिक माहौल में खेल रहा हूँ आजकल।
1: अच्छा ठीक है, ठीक है, अपनी गेम की गॉसिप करेंगे हम अलग से।
0: चलो चलो
1: ठीक है नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया
0: चलो,
1: भाई।
0: ओके करें
1: ओके
0: भाई,
1: भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कुछ मैसेजेस मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। मैसेज आया है एक, अरे भाई इस पे कॉल मत करो, अल्लाह के बंदो। हसन भाई लिख रहे हैं, कबीर भाई ये गांव है बहुत साफ और खूबसूरत, मैं तो गांव ही जाऊंगा। कब जा रही हैं आप गांव, मुझे बताइए। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई। लिखते हैं, यार क्यों डराते हो, अच्छी अच्छी गांव की लाइफ की बातें कर रहे थे। दिल तोड़ते हैं, जस्ट थिंकिंग नाउ हाउ द रिलेटिव्स फेल्ट आफ्टर दे न्यू दे बरीड देम अलाइव, कितना दिल दुखा होगा। सैयद अली हैदर शाह साहब कह रहे हैं, अभी तो गाँव की बातें कर रहा था, एकदम से गाँव की बातें करते करते कहाँ ले गया। और एक वैसे ऐसा क्या, हुसैन खालिद साहब एक जरा मैं कॉल उठा लेता हूँ। अस्सलाम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या हाल है भाई के?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं भाई, आप बताइए।
1: बस भाई
2: बहुत
1: एकदम
2: अच्छी थी
1: शानदार।
2: आपकी।
1: जय जजाकल्ला, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो लोग लिख रहे थे कि यार गांव की बात करते करते कहाँ ले गए।
2: नहीं, वो एक और नदीम भाई के पहले कॉल आया था ना, वो भाई
1: जी
2: साहब बोल रहे थे गांव में दूध दही लस्सी मिलती है। भाई
1: हाँ
2: हम भी गांव में रहने वाले लोग हैं
1: हाँ
2: और हमें भी बहुत पसंद है। अभी तक तो मैं गांव में ही रहता हूँ, अब
1: अच्छा
2: मैं तरह जब घर जाता हूँ तो मैं गांव में ही जाता हूँ।
1: कौन सा गांव है
2: बिहार
1: आपका?
2: से हूँ, बिहार इंडिया।
1: अरे क्या बात है, फिर तो अच्छा खासा डेवलप्ड गांव है होगा आपका, आई एम प्रीटी श्योर। बिहार की तरफ और यूपी की तरफ के गांव तो अभी ठीक ठाक हालत में है, मतलब मॉडर्नाइजेशन तो उधर भी आ ही गया है।
2: आप कह सकते हैं कि हमारे देश के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे
1: हाँ
2: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी
1: यस
2: वहीं से थे, सीवान
1: यस,
2: डिस्ट्रिक्ट से,
1: अच्छा
2: गांव
1: सीवर
2: से बिलोंग
1: डिस्ट्रिक्ट से।
2: करते हैं।
1: अरे बहुत कहानियां हैं सीवर डिस्ट्रिक्ट की तो, बहुत कहानियों किस्से हैं आपके गांव के तो, माशाल्लाह।
2: अच्छा जी,
1: तो आपने घर बनाया वहां पे या फिर आप रिश्तेदार में जाते हैं, क्या सीन रहता?
2: नहीं, मेरा घर है भाई, मैं वहीं पे हूँ।
1: अरे
2: मैं
1: क्या बात है, मतलब वहीं पे जाते हैं सीधा?
2: हाँ वहीं
1: अरे
2: जाते हैं भाई,
1: भाई
2: वही घर है अपना।
1: भाई जलन हो रही है भाई, खुशनसीब है आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो कभी शहर की तरफ आने का दिल क्यों नहीं किया आपका कि चलो थोड़ा सा बिहार मेन सिटी है, पटना वटना में चले जाएं?
2: अभी तक तो नहीं, इन फ्यूचर देखिए इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक मेरा प्लान वही है। मेरा घर सुकून है, हर चीज अच्छा है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस।
2: सारी चीजें अवेलेबल है।
1: तो क्या फैसिलिटीज आपने कुछ गांव में, आपके कोई खास चीज, क्योंकि लोग अक्सर बिजली पानी मच्छर इन सब की बातें करते हैं, तो आपके गांव क्या माहौल है?
2: नहीं, हर चीज है, बिजली पानी मच्छर तो होंगे वही गाँव में, प्रेस ऑक्सीजन है तो मच्छर भी होंगे ना।
1: हाँ उनको भी तो सांस लेनी है बेचारों को।
2: डॉक्टर्स भी है।
1: हाँ
2: लेकिन ये चीज नहीं है, दूध दही कोई फ्री में नहीं देता भाई। आज के जमाने में पैसा है तो लोग पूछेगा कैसा है, कोई फ्री में नहीं देता भाई। वो जमाना और था वो भाई साहब का, अभी कोई नहीं देता फ्री में।
1: वो एक्चुअली अलग जमाना था, अब कोई नहीं देता, ये फैक्ट है, अब कोई नहीं देता,
2: कोई फ्री नहीं देता।
1: लेकिन कमाल है यार, मतलब अभी भी आपका, आप सीधा गांव जाते तो खुश नसीब है भाई, एकदम आदमी रिफ्रेश होके आए अगर सीधा गांव जाने को मिल जाए बैटरी पूरी फुल करके। वेरी नाइस भाई, भाई थैंक यू सो मच। और कहानी आपको अच्छी लगी, बढ़िया लगी आपको?
2: कहानी अच्छी लगी और मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया,
1: कोई मसला नहीं, मैं मिस दूंगा,
2: लेकिन मैंने कहानी का कॉन्टेक्स्ट समझ आया मुझे।
1: चलो हाँ।
2: दूसरी ये कह सकते हैं कि वो बंदे का लव इतना था अपने वाइफ के लिए कि उसने उस हद तक जाके किया।
1: हाँ।
2: तो होते हैं कुछ कुछ जुनून जुनून वाले लोग होते हैं,
1: होते हैं कुछ, या हुआ करते थे।
2: नहीं अभी भी होते हैं कबीर भाई,
1: अभी भी होते हैं।
2: जो कोई हट के बंदा है सोचता है वही कुछ अलग कर पाता है, वरना एवरेज में तो हम सब जी रहे हैं। एवरेज वाले तो हम सब है ही है।
1: ओके, हाँ बात तो सही है भाई, ये कुछ जो हटके हैं एक के दुख के, देखो आपके लिए मैसेज भी आ गया, वो कह रहे हैं हाँ मैं कह रहा था किसी जमाने में मिला करता था, आप सच में कोई नहीं देता है।
2: बिल्कुल
1: भाई,
2: भाई मैं आपके बात से एग्री करता हूँ दोस्त।
1: हाँ।
2: लेकिन अब नहीं मिलता, आप जाके देखें, अब नहीं मिलेगा वो।
1: फ्री में कोई अपना नाखून ना दे आज की तारीख में।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: थैंक यू सो मच।

0: मेरे भाई, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच, और अमन भाई के 1999 की बात बता रहे हैं और दिल टूट गया ये स्टोरी से, थैंक यू सो मच, ये दिल टूटने वाली ही स्टोरी थी भाई, सुनानी ही थी तो मैंने सुना दी है। बाकी जो है मैसेज जल्दी से पढ़ दूँ, क्या मैसेज आया है, एक तो अब्दुल करीम साहब का, और प्रिंस भाई लिखते हैं ब्रो इट्स अ शॉर्ट एंड ट्रेजिक स्टोरी बट योर वॉइस एक्सप्रेशन आर अनमैच्ड, तबसुम मैं लिखती हैं एट सम पॉइंट आई फेल्ट ये हॉरर है, मुझे लगा सस्पेंस सरप्राइज हॉरर स्टोरी है, आज भी ये बंदी नहीं बचेगी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, थैंक यू सो मच। एक भाई ने दिल टूटता हुआ लगाया, दानिश भाई का दिल टूट गया आ गया। इनके बाद हमजा भाई लिखते हैं थैंक यू सो मच, और इनके बाद वालेकुम सलाम, शेयर द स्टोरी, ओके आई विल बी शेयरिंग द स्टोरी। एक लास्ट कॉल चलो ले लेते हैं यार, क्या जाता है, अस्सलाम वालेकुम। पार्टी एकदम बढ़िया चल रहा है, आप सुनाइए क्या हाल है
1: भाई? मेरा हाल मत पूछो यार, आज मैं आज स्टोरी नहीं सुन पाया यार।
0: ये तो भाई साहब आपने मुखालफे वाली हरकत करी है, तो मुखालफा लगना चाहिए आप पे।
1: नहीं एक इमरजेंसी काम आ गया इसकी वजह से, फिर मैं जैसे गाड़ी में बैठा हूँ ना, है 6 बज गए, मैं बोला लो सत्यानाश हो गया
0: भाई साहब, चलो भेज देंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई, अकेले एकांत में सुनना एकदम, मतलब सुकून में एकदम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैसेज कर दूंगा, आप मुझे स्टोरी भेज देना।
0: बिल्कुल भाई भेज रहा हूँ, उसमें कुछ देर में आ रही है भाई के पास स्टोरी, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई।
1: ये क्या टॉपिक थी आज की
0: भाई? टॉपिक ऐसा था, हम बात कर रहे थे, देखो लोग अक्सर कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें भाई, गांव की लाइफ, ये तो गांव जाते क्यों नहीं हो, तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि अगर गांव में जाने को मिल जाए तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए जो आपको गांव में रहने पे मजबूर कर देंगे। चलो यार गांव में रहते हैं, बढ़िया है गांव, क्या आपका गांव है वैसे, सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए।
1: मेरा गांव भी है, शहर भी है।
0: कौन सा गांव है आपका?
1: भाई का दोनों है, अल्लाह के रहमो करम से
0: अल्हम्दुलिल्लाह। पर गांव कौन सा है
1: जी? मैं गांव अभी जैसे भाई ने अभी कॉल किया था, अभी जस्ट वो सिवान से थे।
0: हाँ हाँ।
1: और सिवान के जस्ट बस उससे कुछ दूर मेरा एक है पटना से हाजीपुर।
0: अच्छा ओके,
1: हाजीपुर। हाँ। तो वो तो गंगा नदी है हम लोग इधर पटना में, गांधी अच्छा। सेतु के नाम।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो मतलब उस पार वो है सिवान और इस पार मैं हूँ हाजीपुर।
0: ओके
1: okay. हम दोनों किनारे में पड़ते, तो गांव है मेरा, मैं यहाँ से डायरेक्ट गांव ही जाता हूँ पहले।
0: अरे
1: वहाँ मैं रहता हूँ। हाँ। वहाँ मैं रहता हूँ कुछ दिन आराम से, एकदम मनोज वाजपेयी के स्टाइल में वहाँ गए, वहाँ का फेस
0: गमछा डाल के है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गमछा डाल के दातुन लगा के बाहर निकलता
0: हूँ। अरे मेरा भाई यही तो फील है भाई, यही तो फील है।
1: वाह, एकदम फील लेता हूँ, उसके बाद जैसी कुछ दिन बसते हैं तो फिर मैं दिल्ली भागता हूँ उत्तम नगर अपने।
0: अच्छा उत्तम नगर में रहते हैं आप?
1: जी जी।
0: अरे मेरा भाई क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गमछे वाली जो फील है ना भाई, गमछे वाली फील बहुत जरूरी है।
1: हाँ बड़े वाले भाई मेरे वहीं सेटल्ड है, तो इस वजह से हम लोग मतलब दिल्ली में भी और बिहार में भी।
0: अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका बिहार और दिल्ली दोनों से ताल्लुक है, बड़ा अच्छा लगा।
1: गाँव में क्या है ना भाई, गाँव में बस इनकम ऑफ सोर्स जो है ना उसके वजह से लोग बाहर।
0: अगर वो जनरेट हो जाए तो मुझे लगता नहीं गांव छोड़ेगा। हाँ अभी तो सब कुछ आई थिंक, अगर ये रोजगार थोड़ा और पैदा हो जाए बढ़िया वाला, तो मुझे नहीं लगता गांव छोड़ना चाहेगा।
1: हमारे बिहार में भी क्या है ना कि बिजनेसेस है, लेकिन उस टाइप का नहीं है ना, जैसे फैक्ट्रीज हो या बड़ी बड़ी कोई कंपनियां आए, अगर वो आती है तो फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा कि हाँ।
0: बड़ा अच्छा लगा जान के भाई, किस दिन हो सकता है दिल्ली में ही टकरा जाए उत्तम नगर में आप रहते, तो फिर तो सही है भाई, हम भी दिल्ली
1: भाई, भाई भाई जरूर उत्तम नगर 40 फुट भाई, भाई। और आपके लिए तो एक और सरप्राइज बन रहा है भाई,
0: क्या
1: वो
0: भाई?
1: तो मैं बाद में बताऊंगा जब मैं उसमें सक्सेस हो जाऊंगा तब।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, इंतजार करूंगा भाई, मैं इंतजार करूंगा
1: भाई। बिल्कुल, मैं इतना इंस्पायर हुआ उस चीज को लेके, मैं एक दिन अकेले कॉर्निश पे बैठा था तो मैं सोचा इस बारे में, और माशाल्लाह मुझे मतलब उसकी फीडबैक जो है ना बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी
0: भाई। फिर तो मैं जानना चाहूंगा, जल्दी बताना मुझे, मैं जरूर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, फिर आप बोलोगे हैं मैंने ये क्या कर दिया मतलब मुझसे भी लोग इन्फ्लुएंस हो गए।
0: अरे क्या बात है यार, ये तो फिर बता रहा भाई, मैं दुआ करता हूँ कामयाब हो मेरे भाई, दिल से दुआ।
1: बिल्कुल भाई, ये बस आपके मतलब एक समझ लीजिए ना कि हर किसी का कोई जरिया बनता है, तो मेरे जरिया आप हो भाई।
0: अरे भाई भाई थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह ताला बस जरिया बनाता रहे हम एक दूसरे का, बहुत प्यार।
1: मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे आपकी तारीफ करने के, लेकिन मेरा जरिया आप हो ये मैं बता।
0: बहुत प्यार भाई भाई, दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट भाई, मैं क्या बोलूं, मैं चुप करा दिया आपने, बहुत प्यार भाई को, और दिल से चाहता हूं बस आप कामयाब रहे मेरे प्यार।
1: अरे आप कुछ बोली तो सुनने रह जाओगे, सुनोगे तब।
0: अच्छा वेट करूंगा भाई, मैं जरूर बता रहा हूं मुझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी चीज है भाई।
0: थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, जजाकल्ला।

0: कामयाब रहे बस।
1: चलो भाई,
0: ओके भाई, वालेकुम।
1: मैं मैसेज करता हूँ प्लीज, करो, स्टोरी करो,
0: करो। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ देर में भेजता हूँ कहानी में।
1: ओके भाई,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। तो भाई के लिए दुआ करें, जो भी सोच रहे हैं उसमें कामयाब रहे। एक और कॉल लेते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाए, क्या हाल है भाई के?
2: अल्लाह का शुक्र है। आप बस आपने टॉपिक छेड़ दिया, गांव की याद दिला दी आपने।
0: कौन सा गांव है भाई का?
2: भाई मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, प्रयागराज से।
0: ओए होए होए होए होए, बहुत कर्री जगह है भाई, बहुत कर्री जगह है।
2: बस बस भाई, याद दिला दिया आपने। शहर में क्या रखा है भाई, जो गाँव में है अपनी अपनी च्वाइसेस है भाई, लेकिन शहर में क्या है, सुकून है गाँव में भाई।
0: भाई वैसे आप जहाँ से हैं ना, वहाँ पे भी बहुत चूपा मुपा है, लेकिन बढ़िया है वहाँ का चूचा भी बढ़िया लगता है, कोई वाला सीन
2: वहाँ क्या है मालूम है? मैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट वही है, जिला वही है, लेकिन मैं गाँव में रहता हूँ। मेरा फूलपुर स्टेशन पड़ता है, मैं वहाँ का हूँ।
0: अरे
2: वहाँ पे सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: वहाँ तो भाई, तो वो जगह तो मैंने पूरी देखी है। मैं बता दूं आपको फन फैक्ट, इससे पहले कतर से पहले मैं लखनऊ से शो करता था, प्रयागराज के लिए भी शो करता था, और कानपुर के लिए करता था, और इन तमाम जगहों के लिए शो करता था। तो मैं बहुत घुमाऊँ भाई यूपी, बढ़िया तरीके से घुमाऊँ यूपी। तो
2: भाई इलाहाबाद जो आ जाता है ना, वो कभी भूल नहीं पाता है भाई।
0: अरे ठंड भी बहुत बढ़िया है इलाहाबाद की, क्या कहने
2: वही का इंतजार रहता है कि ठंड जब होगी तभी घर जाएंगे।
0: आए है, तो क्या कब छुट्टी है फिर? दिसंबर में मारी होगी छुट्टी फिर? तो कब की कभी छुट्टी?
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह भी है दिसंबर में, इंशाल्लाह तैयारी है।
0: बढ़िया भाई,
2: इंशाल्लाह
0: हम भी दिसंबर में जाएंगे भाई, इंशाल्लाह।
2: रही बात गांव की, बात जो भाई बोल रहे थे दूध दही, लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन फ्री में कोई नहीं देता, लेकिन मिलता फ्रेश है, ये चीज है।
0: मिलता
2: पैकेट वाला, ये वाला वो वाला नहीं इस्तेमाल करना पड़ता।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: पैसे तो देने पड़ते हैं, लेकिन फ्रेश होता है,
0: फ्रेश मिलता है,
2: ये चीज है,
0: ये चीज तो है।
2: अच्छा आप हमको पहचाने कि नहीं पहचाने कबीर भाई, ये बताइए।
0: भाई देखिए, ऐसे तो नहीं पहचाना हूँ, बता दीजिएगा। अब आवाज तो बहुत जानी पहचानी और लग रही है, लेकिन ऐसे तो बात कॉल करिए।
2: हाँ? नहीं बस क्या माजरत चाहता हूँ यार कबीर भाई, बस बहुत ना बिजी होता हूँ काम में कि कॉल नहीं कर पाता हूँ। कभी आधी कहानी सुन पाता हूँ। हाँ? कभी जो है वो भी नहीं सुन पाता हूँ मैं आपकी।
0: कोई नहीं, बता दो ना।
2: सुनता हूँ आपकी आवाज को, मैं जरूर सुनता हूँ, क्योंकि यार जब तक आपकी आवाज नहीं सुनता हूँ ना, मन नहीं हल्का होता। सुबह से टेंशन टेंशन, काम का टेंशन, काम का टेंशन, लेकिन आपका शो सुन लिया, चाहे आधे घंटे ही सुन लिया, बस
0: थैंक यू। बहुत बहुत प्यार भाई को। तो भाई नाम तो बता दो, अब तो बता दो।
2: अरे वो आपको बताया था ना, आरडीएक्स राजन एके
0: 47। अरे राजन भैया कॉल किए हैं।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरा नाम राजन नहीं है, वो बताया था ना आपने, बोला था कि मैं अपना नाम कबीर बारूद रखूंगा।
0: हाँ, हाँ, अच्छा, ओ हो हो हो हो हो,
2: सरफराज आलम नाम है मेरा,
0: सरफराज आलम भाई, सरफराज आलम भाई। वैसे है तो आपका नाम बिल्कुल यूपी वाला ही, आलम भाई है हमारे, तो ठीक है आलम भाई, ठीक है आलम भाई।
2: गाँव में जो जिंदगी जी ली है ना कबीर भाई,
0: जी भाई,
2: शादी में किया मुंबई में हूँ।
0: हाँ।
2: लेकिन मेरी पहली शर्त थी वहाँ पे कि मैं शादी के बाद भी गांव में ही रहूंगा, ऐसा नहीं कि बाद में शिफ्टिंग वाला काम मुझे नहीं चाहिए, मुझे गांव छोड़ के सिटी में नहीं जाना है। सिस्टर लोग भी मुंबई में रहती है।
0: हाँ।
2: तो बोला आ जा सकता हूँ, लेकिन जो है कि मैं प्रॉपर रहूंगा गाँव में।
0: हाँ ये भी सही, ये भी सही है। अरे क्यों क्यों रहोगे यार शहरों में, वो बात कहाँ भाई। मैं तो ये कहता हूँ, ये सीमेंट का जंगल है भाई, शहर जो है वो सीमेंट का जंगल है भाई, साफ
2: सही है भाई। गांव भी पिछड़ा कोई नहीं, हर चीज है भाई, क्या चीज की कमी है गांव में अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह उठो, चिड़ियों की आवाज सुनो। अब आदमी यहाँ से जाता है तो पूरा गांव मिलने के लिए आता है, जाने आदमी यहाँ आने लगता है तो पूरे गांव की औरतें आदमी सब मिलने के लिए आते हैं। 10 किलो खजूर तो इस तरह लेके जाना पड़ता है कि जाके देना है वहां जाके।
0: आलम भाई चलो भाई, टिकट बुक करो यार, चलो यार अभी गांव चलेगा भाई,
2: भाई आ जाओ यार, साथ में चलेंगे।
0: मिलते इंशाल्लाह, क्योंकि मैं लखनऊ आऊंगा, प्लान है मेरा दिसंबर में नवंबर में प्लान है इंशाल्लाह, तो बता दो मैं उस तरफ होंगे तो मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है
2: इंशाल्लाह,
0: ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखे मेरे जान, बहुत बहुत सारा प्यार।
2: ओके कबीर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और अफजल उस्मानी भाई ने मैसेज किया भाई की बात, वो लिखते हैं कि छोटे शहर का सुकून अनमैच्ड है, लखनऊ टू बाराबंकी जितनी आसानी से गांव छोटे शहरों में वो बड़े शहरों में नहीं है। गांव में तहमत पहन के घूमने का मजा ही अलग है भाई, एकदम सेट बात की है भाई ने, तहमत पहन के घूमने अलग मजा। अरबाज में लिख रहे हैं आज टॉपिक के बारे में, तो हमारा खुद का अपना एक गांव है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा खुद का अपना गांव है, खुद का अपना गांव है, और अगर पैसे होते तो वो गांव ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए, जॉब बस, काम कमाई होनी चाहिए। नसीम लिखते क्या अलग हो जी भाई, बढ़िया। और सुमी भाई ने मैसेज किया, अच्छा एक मैसेज आया मेरे पास, ये सैयद अरसलान बुखारी साहब कह रहे हैं, सुबह के प्रोग्राम में दो कॉलर्स ने बोला कि उन्हें कबीर भाई की तरह बनना है। हैं

0: क्या बात कर रहे हो यार, रुलाओगे क्या? बिल्कुल रुला ही दोगे मतलब बिल्कुल रुला ही, ऐसा बोला मेरे बारे में, क्या बात कर रहे हो यार। ओके खैर अभी अजान का वक्त है तो मैं कॉल्स नहीं उठा पाऊंगा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। आपके मन में आया कि सबकी कल तो ढाली है, हमारी कल तो ढाली ना, गुरु चढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी टाइम नहीं है तो इसलिए कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ। इंशाल्लाह छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे, फिर आपसे बातचीत होगी। मीनवाइल आप मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर। एक मैसेज आया है, नवंबर में ऑल्सो प्लान पाकिस्तान माई विलेज। क्या बात है भाई, कौन सा गांव है आपका पाकिस्तान में? सब अपने गांव की तस्वीरें और फोटोज़ भेज रहे हैं या वीडियोस भेज रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। सुम्मी बहन ने भी कुछ भेजा है, क्या भेजा है सुम्बल बहन आपने? एक सेकंड देख तो ले। अच्छा ये मौज कर रही हैं बीच वगैरह पे, एक मैसेज आया है, सर मुझे लगता है क्या अगर इसकी वजह से आपका जिगर शो में बार बार, क्या ऐसा लगता है कि राशिया को, मैं समझा नहीं अरबाज भाई। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत सुबह आपका दो लोगों ने नाम लिया था और वो लोग कह रहे थे कि आपकी तरह बनना चाहते हैं, मैंने भी सुना था। किसने बोल दिया भाई ये हो क्या रहा है? अच्छा थैंक यू, अगर बोला तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुआ कुल मिला के। बाकी आवारापन की एक अपडेट आई है भाई, कल एक गाना लॉन्च हो रहा है सवेरे फवेरे, तो कल आवारापन 2 का गाना आ रहा है भाई साहब, इतना चलाएंगे घिस देंगे भाई उसको, इतना तो खुद पिक्चर बनाने वालों ने नहीं सुना हुआ, इतना हम सुनेंगे। खैर उसके बाद कुछ देर में करते हैं, अभी जाना आपने है नहीं, बढ़िया जगह पर हैं आप, इंशाल्लाह आपसे कुछ देर में मुलाकात होगी। बाकी 666-22107 नंबर है, प्लीज़ किधर भी आपने छाने का नहीं आई, मेरे साथ रहने का, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं इवनिंग 974 विद दो हवाला कबीर, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: कुछ मैसेज जरा पढ़ दूं मैं. मैसेज किया है अरबाज भाई ने, सुबह आपका जिक्र हो रहा है तो पता नहीं भाई सुबह पता नहीं कैसे जिक्र हो रहा है मेरा, आई हैव नो क्लू. और कल हमारा पंडू का बाय द वे गाना आ रहा है वे जुनून, अभी मैंने देखा जाके भाई क्या रोंगटे खड़े हो गए भाई, क्या होगा ये गाना. सुबह 11:11 पे लॉन्च हो रहा है, 11:11 मतलब दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा. लेकिन सवेरे सवेरे क्या बात है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. और जनाब खैरियत से हैं?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या हाल है.
1: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, दुआएं आप सबकी भाई.
0: और भाई कैसे जग गए सुबह सुबह, ये तो आपको गुड मॉर्निंग बोले थे. गुड मॉर्निंग मेरा भाई, कैसी खींची नींद.
1: मतलब आज नहीं सोया यार इतना.
0: अच्छा आज नहीं सोया इतना, क्यों भाई, किसने जगा के रखा आपको, किसने नींद उड़ा रखी है भाई की.
1: नहीं अभी जरा थोड़ा सब लोग ट्रैवलिंग के चक्कर में लगे पड़े हैं ना, तो थोड़ा भागना दौड़ना लग रहा है. तो आफ्टर टू डेज मैं भाई साहब एक महीने के लिए गायब होने वाला हूँ. बिल्कुल
0: गायब होने वाला हूँ. बिल्कुल मतलब क्या जादू वादू से कांटेक्ट कर लिया कि क्या करने वाले हो
1: भाई. मैं रूम में से बाहर ही नहीं निकलूंगा, मैं सोता ही रहूंगा. खाने का टाइम पढ़ूंगा, नाश्ते का टाइम पढ़ूंगा, खाऊंगा पीऊंगा फिर सो जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा फिर सो जाऊंगा.
0: ठीक है भाई, करो भाई जो दिल को अच्छा लगे वो करना चाहिए आदमी को. बस नहाना धोना मत छोड़ना, ठीक है, बाकी सब बढ़िया.
1: ना ना भाई सुबह को उठेंगे,
0: क्योंकि आजकल मैं ऐसी कहानी सुना रहा हूँ ना जहाँ पे लगता है कि आदमी गया और लोग गाड़ दे रहे हैं. बाकी सब ठीक है.
1: सुबह तो मैं अभी मैंने जब ट्यून इन किया था ना तो उस टाइम पर स्टोरी स्टार्ट हुई थी भाई साहब, बड़ी थ्रिल वाली लग रही थी.
0: बाकी भाई बहुत थ्रिल वाली थी कहानी, आपने नहीं सुनी ना तभी तो आपको.
1: स्टार्टिंग सुना मैं बता रहा हूँ, थ्रिल वाली लग रही थी. और भाई साहब जब थोड़े कुछ लाइनें सुनी थी स्टार्टिंग की तो यार थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे यार. ऐसे कैसे हुआ उस चीज से ना मुझे एक यूपी का वाकया याद आ गया था.
0: हाँ क्या
1: भाई, ऐसे ही उनका एक जवान लड़का बेचारा फौत हुआ. माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, दो दिन बाद में माँ भी बेचारी फौत हो गई. उसके बाद में वो अकेले बेचारे घर में बचे, वो भी इतने टूट गए, वो जाके कब्रिस्तान में पहुंचे, वो बैठे वहां जाके. अब वो इतने बैठे रहे बेचारे, वो वहीं पे निकल लिए. मतलब कि उनका पूरा परिवार जो है ना दो दिन में.
0: पर आपने एंडिंग तक सुनी थी आज की कहानी, नहीं सुन पाए थे.
1: अरे बस स्टार्टिंग की लाइनें सुनी थी मुझे उस चीज से, वो एकदम से मेरे माइंड में आगे.
0: मैं भेजूंगा क्योंकि आज की कहानी का एंड बहुत जरूरी है, तो वो बड़ा सुनना जरूरी है, तो मैं भेजूंगा आपको, जरूर सुनिएगा. ठीक है,
1: हाँ बता रहा हूँ. थ्रिल यार, मतलब ये बड़ी थ्रिल वाली स्टोरी जो आज चलाई है. तो ज्यादातर तो ऐसी स्टोरी जो है ना भाई की, तो या तो सच डे में रहती है. आज कैसे बरसाती
0: भाई, आज बरसाती भाई बिल्कुल. बस कुछ देर भेजता हूँ मैं कहानी, डन हो गया भाई.
1: भाई और बाकी सब ठीक,
0: सब बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार.
1: इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, टेंशन मत लो. मैं 5 बजे उठ जा करूंगा, आ जा करूंगा भाई. मैं इतना भी बड़ा आलसी नहीं हूंगा भाई. आने वाला है पता नहीं कौन सा दिन आएगा.
0: आएगा जरूर जरूर जरूर, थैंक यू सो मच.
1: आएगा. दूसरों की चीज है कि 11 बजे आ रही है, 12 बजे आ रही है, मगर खुद की अपडेट कहाँ है.
0: भाई एडिटिंग टेबल पर है, डोंट वरी, इट्स ऑलरेडी डन.
1: कौन सी टेबल भाई, मुझे बता दो वो टेबल कहाँ पर है, मैं उठा के लेऊंगा तुम्हारे पास में भाई.
0: अरे बहुत कुछ करना पड़ा भाई, मैंने कितने पापड़ मिले मुझे पता है, मिलेगा डोंट वरी. एक बार बस गाड़ी स्टार्ट होने की देर होती है, बस इग्निशन में चाबी डाल दी, इग्निशन देना बाकी है, डोंट वरी.
1: अरे भाई अगर स्टार्ट चाबी से नहीं हो रही बता दो, हम धक्का लगा देंगे यार.
0: नहीं, हो जाएगा अभी हो जाएगा, अभी कोई लेजीनेस नहीं है, डोंट वरी.
1: अरे चलो बड़ी बेसब्री से भाई साहब, बड़ी बेसब्री.
0: बस लॉन्च भाई,
1: लॉन्च
0: भाई, लॉन्च भाई.
1: भाई गरीबों में लड्डू बंटवा दूंगा.
0: डन, मैं साथ दूंगा आपका. ठीक है, मुझे भी खिला देना लड्डू, कोई टेंशन नहीं.
1: व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है.
0: डन
1: भाई,
0: ठीक है मेरी जान, बहुत बहुत
1: शुक्रिया.
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. जैस भाई के बाद एक मैसेज पढ़ देता हूँ. उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने सुबह मैसेज किया था, आई वांट टू बी आरजे कबीर बिकॉज आई वांट टू सी आरजे'स लाइफ. आपको मेरी लाइफ देखनी है या आरजे की लाइफ देखनी है सलमान भाई, ये मुझे ज़रा कन्फ्यूजन दूर करिए. अस्सलाम वालेकुम. क्या मेरा भाई, एकदम फ्लो में. बताओ भाई क्या हाल है. अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही होना चाहिए सब कुछ.
2: कौन सा स्टेशन है
0: जो कल था, अभी तक हमने ट्रेन नहीं पकड़ी क्या. दो गई यार.
2: नहीं, आज भी बस इसी को छोड़ गई ना.
0: अरे फिर से छोड़ दी ट्रेन,
2: क्या करें, सही मालूम नहीं है ना.
0: अरे जानबूझ के कर रहे हो, ये जानबूझ के कर रहे हो मुझे लग रहा है।
2: प्लेटफॉर्म नंबर कितना है?
0: ये प्लेटफॉर्म नंबर 107 है। आपने कौन सी छुप छुप पकड़नी है?
2: ये तो स्टेशन नंबर है।
0: सब पता है तो क्यों छोड़ रहे हो ट्रेन? ही बताओ कैसे हैं आप, पहले तो ही बताएं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बता रहा था कि ये 974 प्लेटफॉर्म नंबर है।
0: प्लेटफॉर्म नहीं, वो ट्रेन का नंबर है, प्लेटफॉर्म नंबर 107 ही है।
2: अच्छा
0: हाँ जी, तो सवार होना है या भेज दूं ट्रेन को?
2: नहीं नहीं नहीं, आ जाऊंगा।
0: आ जाएंगे? ठीक है, चलिए ठीक है, आ जाइए। वो मुझे लग रहा है इंतजार कर रहे हैं कि जा सिमरन जा, तब चढ़ेंगे आप जब शाहरुख खान हाथ देगा आगे बढ़ाएगा। नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने कहानी वानी सुनी नहीं? सुनी
2: सुनी है।
0: कैसी लगी, कैसी लगी भाई को?
2: बहुत अच्छी
0: लगी। थोड़ा सा
2: तो सोच में डूब गया भाई।
0: कौन सी सोच? अरे मुझे लग रहा बहुत आराम है।

0: momento.
1: अरे मोबाइल में कटेगी
0: भाई, ऐसा लग रहा है कि चाय में इंजन ऑयल मिला दिया किसी ने, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है अभी। पर थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत प्यार आपको, अगली बार ट्रेन जरूर पकड़ेगा, मैं खुद आऊंगा आपके लिए देखने, ठीक है, थैंक यू मेरा भाई, ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। भाई की लाइफ चल रही है सेट एकदम। एक और कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी मेरा भाई, आपका नाम? अबो मैसन साहब, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है भाई। अच्छा अब बोलो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं सब, कैसे चल रही है जिंदगी, क्या
2: अभी अभी आ रही है
0: तगड़ी आ रही है भाई, एकदम अभी तगड़ी आ रही है, बताओ
2: तगड़ी आवाज है।
0: हाँ बताओ,
2: टॉपिक क्या चल रही है, अभी रेडियो चालू किया भाई,
0: टॉपिक खत्म हो गया भाई, ये तो कहानी की बात चल रही थी, कहानी भी होली भाई, आप बिल्कुल पुलिस की तरह लास्ट में आए भाई,
2: बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई,
0: तो यही बता दो सेट चल रही है लाइफ,
2: टाइम खत्म होने के बाद।
0: हाँ तो आपकी गलती है ना भाई, आप बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तो टाइम पे आइए भाई, हमको भी अच्छा लगेगा कि अबू मैसन साहब ने याद रखा हमें
2: भाई, हम आना चाहते हैं भाई टाइम पे, लेकिन देर हो जाती भाई,
0: भाई क्या कुछ कीजिए फिर, इसका कुछ जुगाड़ निकालिए, जल्दी आने की कोशिश कीजिए,
2: कोशिश करिए, जबकि भी सोचता है जल्दी आने के लिए, टाइम पे हो जाती है।
0: चलो उम्मीद करता हूँ बाकी जगहों पे आप टाइम पे पहुँचते होंगे। ये मेरी उम्मीद है,
2: अभी तक लाइफ में तो कभी भी टाइम पे कहीं भी ना पहुँचे।
0: अच्छा कहीं भी नहीं पहुँचे, फिर तो फिर मुझे कोई उम्मीद नहीं है आपसे। क्यों, मुझे कोई उम्मीद नहीं है भाई से, बहुत तालियां, वेरी प्राउड मोमेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस अबू मैसन साहब। पर भाई इंशाल्लाह जब टॉपिक होगा इंशाल्लाह तब आपसे और भी गुफ्तगू करेंगे, पर बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत प्यार कि आपने कॉल करी, अच्छा लगा अबू मैसन साहब, कोशिश कीजिएगा टाइम,
2: मेरा भाई की आवाज सुने बगैर जरा दिन गुजरता नहीं,
0: बहुत प्यार भाई को, थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू सो मच।
2: फिलहाल कतर में सिर्फ एक ही एक बंदा है, वो है कबीर।
0: अरे मेरा भाई क्या बात है, कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, हैदराबादी ये, हैदराबाद मैं भेज रहा हूँ, हैदराबादी क्वालिटी है आपकी, ठीक है, डन हो गया, भेजता हूँ भाई मैं कहानी, भेजता हूँ कहानी कुछ देर में,
2: पहचान कौन बोलना पड़ेगा,
0: नहीं नहीं नहीं बस आप मैसेज कर दो, भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखिए, वालेकुम अस्सलाम। और अबू मैसन साहब के बाद मैसेज किया है, एक दिन के लिए आपकी लाइफ देखनी है कब्बू भाई, भाई मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है भाई, मेरी लाइफ सलमान भाई एक दिन के लिए अगर आप देखना भी चाहेंगे इट्स क्वाइट बोरिंग, ज़्यादा हलचल नहीं है, आपको लगता होगा बहुत हलचल होगी इसकी ज़िंदगी में, ऐसा है नहीं। लगता है स्टोरी आउट क्लास, थैंक यू सो मच इकरम भाई। फरहत भाई कह रहे हैं लेट के बाद, मुझे लग रहा है लेट की बात कर रहे हो, सो 666-221-07 नंबर है, विवेक भाई आपको भी गानी मिल जाएगी, बाय द वे अगला गाना बहुत ही सॉलिड है भाई, बिफोर आवर अपन कम्स, कल तो आवर अपन का गाना आ रहा है, वो तो छा ही जाएगा, बट वी गॉट दिस बिफोर आवर अपन, तो इसको भी थोड़ा चला लेना चाहिए। सैयार का रिमिक्स मुझे ओरिजिनल से भी ज्यादा पसंद है, फहीम अब्दुल्ला की आवाज, सुना है कि फहीम अब्दुल्ला शायद आवारापन 2 में भी कोई गाना गा रहे हैं, आई एम जस्ट वेटिंग ब्रो, डी जनू ने गाई गाना, लेट्स गो।

10 orei. One of the best remixes, yaar. Kya remix kya hai? Sayyara ka remix title track. कल तो भाई साहब आरा पंटू के गाने आ रहे हैं, मतलब पहला गाना आ रहा है एटलीस्ट 90s वाले 80s वाले, जिन्होंने यहाँ पर आरापन पहले देखी है वो जानते हैं।

0: कल कोशिश करेंगे सबसे पहले वो गाना ब्रेक किया जाए FM 107 पर ही, सो वी विल ट्राई टू गेट दैट ट्रैक सबसे पहले कल हम चलाएंगे इंशाल्लाह। बाकी वक्त देखते हुए मुझे पता लग गया कि वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मैं आपसे जरूर चाहूंगा इंशाल्लाह कल मिलेंगे 5 बजे फिर एक नए किस्से के साथ और बहुत सारी बातों के साथ। तब तक याद करते रहिएगा और सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं duhawalakabir.fm107। एंड दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मास्सलाम।
1: आ गया मैं, हाँ जल्दी से कर दो अब लाइट्स कैमरा एक्शन, जहाँ भी जाऊँ मैं गर्दी

0: देखो
1: जिंदगी पिक्चर है, हर जगह लगे अब लाइट्स कैमरा एक्शन, जहां भी जाऊं मैं गर्दी जमा कर दूं जैसे मैं माइकल जैक्सन।

स्क्रीनिंग है, समझ रहे हैं, एंड स्टोरी टेलिंग है जो मुझे बहुत पसंद है, एंड एक यूनिक फैमिली गैदरिंग के लिए बीच भी एक नंबर है, नंबर है 974 बीच। तो 974 बीच एक तो मुझे लगता है आधे लोगों ने अभी भी विजिट नहीं किया, जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया है प्लीज प्लीज विजिट करें, दिस इज अ फेनोमिनल बीच बाय द वे, यानी बहुत टाइम से फेमस है और हुए जा रहा है, इसमें इवेंट्स होते ही रहते हैं। मैं यहाँ पे कुछ साल पहले गया था जब ये बिल्कुल नया नया फ्रेश इसका नाम वाम रख के इसे लॉन्च किया गया था, बड़ा मजा आया था तब भी, और अब तो ये बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। तो सारी अमेनिटीज के साथ, बहुत सारे इवेंट्स के साथ ये तैयार रहता है हर महीने, और इस बार समर वेकेशन में इवन इफ इट्स नॉट वेकेशन फॉर यू टेक्निकली, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, स्पेंड टाइम विद योर नियर एंड डियर वंस। सो 974 बीच पे अंडर द स्टार्स, यू कैन कॉल इट एन इवेंट, यू कैन कॉल व्हाटएवर यू वांट, पर 974 बीच पहुंचिए। 3 जुलाई से ये इवेंट है, अभी तो चलेगा एक दिन जरूर है, लेकिन आप यहां पर होकर आए, और जब आप सुन रहे हैं अगर ये हो चुका है सो डोंट वरी, 974 बीच के जो इवेंट्स हैं वो कतर कैलेंडर पे जाके देखते रहिए, बहुत सारे और भी इवेंट्स आते रहेंगे। बाय द वे 3 जुलाई को रखा गया एंड शाम के 7 से रात के 12 बजे, सो इन केस यू मिस्ड आउट ऑन दिस वन और आप मुझे सुन रहे हैं और ये तारीख जा चुकी है, डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स 974 बीच पे होते रहते हैं, दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू टू विजिट द बीच इमीडिएटली, अभी कभी विजिट कीजिए और मजे कीजिए। जया जी दूसरा इवेंट बताइए भाई, दूसरे इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो इवेंट है ये आप देख ही रहे होंगे, इन्फ्लुएंसर्स ने भर दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका, हर रील में यही नजर आ रहा है, तो मैं भी क्यों ना पीछे हटूं, नहीं क्यों ना पीछे हटूं, मैं क्यों पीछे हटूं मेरी तो ग्रामर कैसे हो गई। चलो तो 13th एडिशन ऑफ तीब अल हज्म ऊद एंड परफ्यूम्स एग्जीबिशन इज ऑन, और अल हज्म गैलरी में है ये कतर में। अगर अल हज्म मॉल अभी तक आप नहीं गए हैं, आई नो आपको लगता होगा सिर्फ यहाँ पे तो रईस लोग, ऐसे कुछ नहीं, आप जाके देखिए, मैं भी इसी चक्कर में नहीं गया था बहुत सालों तक, एक मरतबा गया हूँ, बट आई फेल इन लव विद दिस मॉल, बहुत बहुत प्यारी एग्जीबिशन है, कमाल के ऑफर्स हैं परफ्यूम्स पे, एंड आप मतलब खुश होके आएंगे इस बात की गारंटी है, यहाँ पे प्रीमियम ऊद फ्रेग्रेंसेस परफ्यूम्स सब मिलेगा आपको, अलग अलग ब्रांड्स और प्रीमियम ब्रांड्स ने ऑफर्स रखे हैं। ये 25 जून से 4 जुलाई तक रखा गया है, और इस बीच अगर आप नहीं गए हैं तो भैया फिर तो आप वेट ही कर सकते हैं, और आप जा चुके हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। ये एग्जीबिशन गेस्ट्स को वेलकम करने के लिए तैयार रही हर शाम, काफी एलिगेंट सेटिंग रही, एंड साथ साथ वो जो टाइमलेस ब्लेंड्स होते हैं ना अलग अलग किस्म के सेंट्स के, जो आपको समझ में नहीं आते लेकिन खुशबू बढ़िया लग रही होती है, वो वाला फील आपको यहाँ में मिलेगा। दिस इज दोहाज वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश डेस्टिनेशंस इन एग्जीबिशंस के लिए, एंड आप अगर डिवोटेड हैं फ्रेग्रेंसेस के, आप एंथूजियस्ट हैं तब भी सही है, या फिर आप सिंपली बस देखने के लिए जाना चाहते हैं तब भी आपको जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लग रहा है जब मैं बता रहा हूँ तो आपको ये इवेंट थोड़ा आगे पीछे हो चुका होगा, बट नॉनदलेस इफ यू हैव विजिटेड दिस तो हमें जरूर टैग कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अरेबियन परफ्यूमरी का पूरा खजाना है, खजाना, एंड दिस इज द परफेक्ट ओकेजन ऑल्सो, गर्मियों में क्या कहीं जाना भी पसंद होता है, कहीं ना कहीं एसी वूसी लगाओ, बढ़िया एग्जीबिशन मिल जाए, तो ये वो जगह रही। सो 25 जून से 4 जुलाई इसकी तारीख, एंड टाइम शाम के 6:30 से रात के 11 अल हज्म गैलरी एग्जीबिशन। यहाँ पे अगर आप नहीं हो के आए हैं, सो दिस इज अ रिमाइंडर कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा हो तो पहुंच जाना है विदाउट फेल, भाई इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, चीजें बार बार लौट के नहीं आती। बाकी अगर आपसे छूट भी गया सो डोंट वरी, बिकॉज इनके जो ऑप्शन है परफ्यूम्स के वो अभी ऑफर्स चलते रहेंगे इनके इंडिविजुअल स्टोर्स पे, सो यू कैन गेट देयर एंड स्टिल गेट द ऑफर्स, सो प्लीज गो देयर एंड हैव फन। बाकी एक और चीज, जितने भी लोग छुट्टी पे जाने वाले हैं अपने बच्चों के साथ वेकेशंस पे, उनको मैं कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट फॉर द ओकेजंस, फॉर द वेकेशन, आई एम सॉरी, एंड ऑल्सो फॉर द ओकेजन एज वेल, क्योंकि इस वक्त जो लोग नहीं जा पाएंगे उनके लिए कतर में अलग अलग जगहों पे समर कैंप्स लगाए गए हैं, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली इंडल्ज योरसेल्फ इन एक्टिविटीज। क्योंकि देखो मैं ये ज्ञान आपको जरूर दे रहा हूँ, हालांकि मेरा ज्ञान देना बनता नहीं, मेरे बच्चे भी हैं नहीं, इंशाल्लाह जब होंगे तो मैं उनके साथ इस ज्ञान को शेयर कर लूंगा, बट फॉर नाउ आई हैव सीन वन ब्यूटीफुल थिंग इन कतर, जहां पर लोग अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। एक ही होता है ले मैंने पैसे भर दिए भाई, अब जाओ स्विमिंग सीखो जो करना करो, एक होता है कि आपने बच्चे को किसी समर कैंप में इंडल्ज किया या किसी और एक्टिविटी में और आप खुद भी उसका हिस्सा बने, सो डू दैट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट, आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स डूइंग इट, हमारे पड़ोस में है और मैं किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उनका किस्सा मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगता है, उन्होंने अपने बच्चों को स्विमिंग क्लासेस में

0: स्विमिंग कराया। एक दिन बच्चे ने कह दिया मम्मी आपको आती है स्विमिंग, पापा जी आपको आती है स्विमिंग, उन्होंने कहा ना जी हमें तो नहीं आती, तो बोले आप भी ज्वाइन कीजिए। सो दे ज्वाइंड एज अ फैमिली एंड नाउ दे वर जस्ट शेयरिंग दिस विद मी, बता रहे थे कि किस तरीके से ये वक्त उनके लिए बहुत खूबसूरत रहा। बच्चों के साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना और महज फीस भर देना, ये दो अलग अलग चीजें। सो आपका एक ही कहना होगा कि टाइम कहाँ होता है यार, टाइम निकालिए क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप टाइम निकाल भी सकते हैं और आप इनकी एक्टिविटीज में इनके साथ इंडल्ज भी हो सकते हैं। बिकॉज देयर आर मेनी मेनी समर कैंप्स जो कतर में लगे हुए हैं एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ देम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे एक और बढ़िया एक्टिविटी की तरफ।
1: कतर 2026।
0: अब दोहा में सबसे बड़ा एक शॉपिंग एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं या कर सकते थे इफ यू हैव मिस्ड ऑन इट। सो दोहा समर ट्रेड फेयर ये वापस लौट कर आया था और आके चला गया। बहुत बहुत बड़ा इवेंट रहा, 23 जून से 4 जुलाई। आपने क्या लिया क्या नहीं लिया मुझे बताया, डीसी में इवेंट हुआ एंड फ्री एंट्री थी, अंदर जाके आप देख सकते थे वाइड वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डील्स और फैमिली फ्रेंडली सब कुछ चीजें एक ही रूफ के नीचे। जो यहाँ पे भाई साहब ने लूट मचाई है ना, बता नहीं सकता मैं आपको, मौज आ गई। एंड यहाँ पर सुबह से लेकर पूरा ये मिडनाइट तक का सामान लगा था और क्या क्या नहीं था वहां पे, घर का सामान, कपड़े, पौधे और भाई एक और चीज जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हो गया था, यहाँ पे वो डेकोरेटिव आइटम्स जिन्हें हम डेकोर कहते हैं, डेकोर, वो भी बड़े मौजूद थे, बड़े अच्छे तरीके से अच्छे प्राइसेस पे मौजूद थे। एंड जो ब्राउज करने का ऑप्शन होता है जैसे कि ऑनलाइन शॉप्स में होता है, वैसी वाली फीलिंग आई होगी अगर आप इस इवेंट में गए होंगे, बिकॉज आई नो बाय द टाइम आई एम टेलिंग यू इट इज ओवर फॉर नाउ। ये एग्जीबिशन फैमिलीज के लिए, दोस्तों के लिए एक बहुत बहुत मेजर अट्रैक्शन बना। मैं खुद यहाँ से घड़ी लेके आया भाई, मजे आ गए, बैटमैन की घड़ी लाया आपका भाई यहाँ से, मजे आ गए। तो दोहा समर ट्रेड फेयर जो है इस बार भी बहुत कामयाब रहा है माशाल्लाह, कतर ने काफी काफी सूदिंगली स्मूथिंगली इसको निपटाया है और बहुत अच्छे से निपटाया है। एंड अगेन एक बेंचमार्क सेट कर दिया है अगले आने वाले ऐसे ही फेस्ट्स के लिए, जहां पर शॉपिंग के दौरान आपको फीलिंग आती है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस किस से प्यार करूं, तो वाली फीलिंग है कि आप क्या क्या क्या क्या चीज खरीदेंगे, किस किस चीज से प्यार करेंगे, वो वाली फीलिंग इस इवेंट ने मुझे दी है डेफिनेटली। हाँ ये भूल भुलैया है, पर ये ऐसी भूल भुलैया रही जहां पर लोगों को खो जाने में मजा आ गया। और ये इवेंट दोहा समर ट्रेड फेयर दोहा एग्जीबिशन सेंटर में एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ एंड दिस हैपेंड बिटवीन 23rd ऑफ जून टिल 4th ऑफ जुलाई 2026, 8 बजे से सुबह के रात के 12 बजे तक हुआ ये। एंड सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात, एक सिंपल रजिस्ट्रेशन जो आप वहां जाके भी कर सकते हैं, उस सिंपल रजिस्ट्रेशन के बलबूते पे एंट्री मिल रही थी, फ्री एंट्री, कोई रोक टोक नहीं, कुछ मसला नहीं, आप सीधा जाएं और अपने रियाल जो है वो सही जगह खर्च करें। इफ यू वांटेड टू सेव मनी यू आर देयर। अगर आपने मिस कर दिया है तो आपके लिए एक साउंड इफेक्ट है जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, नहीं कर सकते, अगले डेट फिर इंतजार कीजिए। मैं इंशाल्लाह अगली बार भी आपको याद दिलाऊंगा और जब याद दिलाऊंगा तो उम्मीद है कि आप तब तक जा चुके होंगे। दैट्स व्हाट आई वांट, पहले भी याद दिलाऊंगा बाद में भी याद दिलाऊंगा, पहले याद दिलाऊंगा ताकि आप पहुंचे और बाद में याद दिलाऊंगा क्यों नहीं गए ना, आ गया स्वाद, तो वो वाली फीलिंग आपको आएगी जैसे अभी आ रही होगी, आई नो। एंड इसका रिग्रेट बनता है बिकॉज बहुत बहुत बढ़िया इवेंट था, आई हैव बीन देयर मायसेल्फ। ओके, आगे बढ़ो।
2: आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: देखिए अगला इवेंट जिसके बारे में मैं बहुत देर से बात कर रहा था, ये एक्टिविटीज जो कतर में हो रही हैं बच्चों के लिए स्पेशली व्हेन देयर स्कूल इज ऑफ, वो उस लेवल की हैं जहां पे बाहर के भी लोग छू भी नहीं पाते, मतलब बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी इस किस्म के चीजें नहीं होती, वो भी लगातार तो बिल्कुल नहीं होती। सो जैसे जैसे सूरज जो है डूबना शुरू होता है वैसे समर स्प्लैश शुरू होते हैं कतर में, वो भी इनडोर थ्रिल्स के साथ, जहां पर बीच साइड फन है, मैजिकल मोमेंट्स है, स्पंजबॉब स्क्वायर पैंट्स एंड पॉ पेट्रोल, एंड इसमें लाइव शोज भी रखे गए हैं, इसमें कैरेक्टर मीटअप्स भी हैं, इसमें बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे एडवेंचर्स हैं पूरी पूरी फैमिली के लिए। मगर ये क्या है, ये है रिक्सोस प्रीमियम अताइफन आइलैंड में और ये है मैरियल वाटर पार्क में। टिकट होल्डर्स जो टिकट लेकर वहां पर पहुंचेंगे वो एक्सेस कर सकते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में उन्हें सबसे ऊपर रखा जाएगा एंड 4 बजे से एंट्री मिल जाएगी और जो जनरल पब्लिक

0: है उनके लिए जो अटेंड करेंगे इसे फ्री में, उनको एंट्री मिलेगी शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक। तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा बिकॉज ये वाटर पार्क बहुत ब्यूटीफुल है। तो अगर आप टिकट्स वगैरह लेके जा रहे हैं तो आपको 2 घंटा पहले एंट्री मिलेगी प्रायोरिटी पे। और अगर आप ऐसे भी जाना चाहते हो जा सकते हैं, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है। एंड इफ यू डोंट पे दैट्स फाइन, बट आपको 2 घंटे के बाद एंट्री मिलेगी। ये सुनने में आपको लग रहा होगा और ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं बस समझने की कोशिश कीजिए। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए पंचुअलिटी भी बड़ी जरूरी होती है। ये वैसा वाला इवेंट है जहाँ पे पंचुअल होना जरूरी है, और बच्चों के साथ तो आपको पंचुअल होना चाहिए, आप ही से सीखेंगे ना वो, तो इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। एंड दिस इज एट मैरियल वाटर पार्क। जैसे मैंने कहा टिकट होल्डर्स 4 बजे, और अगर टिकट आप नहीं भी लेते तब भी एंट्री है, एंड यू विल गेट टू एंटर एट 6 PM to 7 PM। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू अनदर इवेंट।
1: कतर 2026।
0: अगर आप आज तक कतर नेशनल लाइब्रेरी नहीं गए, पहली बात तो वहां जाइए। आपको किताब पढ़ने का नहीं भी शौक होगा तो आप एक किताब लेके 4 पन्ने तो पढ़ ही देंगे, और वो शौक आपके अंदर डेवलप होगा बिकॉज द एनवायरनमेंट इज सच। इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट है कतर नेशनल लाइब्रेरी का। इफ यू हैवंट बीन देयर, प्लीज खुद भी जाइए, बच्चों को भी लेके जाइए, एंड अगर आपके साथ कोई एविड रीडर है तो उसे लेके तो जरूर जरूर जरूर जरूर जाइए। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट गल्फ। तो ये नेक्स्ट लेवल की चीज है। अब लाइब्रेरी का जिक्र हो गया है और मैंने कल्चरल बुक डिस्कशन की बात करी, तो एक और लाइब्रेरी है जो कि बहुत बहुत मेन है कतर के लिए, दैट इज MIA लाइब्रेरी, जहां पर चल रहा है मजलिस बुक क्लब। इट इज ओपन टू रीडर्स जो कि इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि अपनी कॉन्वर्सेशंस और अपने आइडियाज आगे रखना चाहते हैं। देखो मैं खुद किताब नहीं पढ़ता हूं, तो मेरा बनता भी नहीं है आपको ये ज्ञान देना कि किताब पढ़ो कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। आई नो दैट हम सबको पता है, लेकिन किसी किसी का शौक नहीं होता है, मगर कुछ लोगों का शौक ये होता है कि वो डिस्कशन का हिस्सा बन सके। आई वुड लव टू, अगर 2 avid readers आपस में बात करते हैं तो मुझे तीसरे को एज अ थर्ड व्हील मुझे कुछ चीजें सीखने को मिल जाती हैं, एंड आई गेट टू लर्न लॉट ऑफ स्टफ। सो अगर आप लाइब्रेरीज का हिस्सा नहीं बने, आई नो इट साउंड्स लेक्चरी एंड प्रीची कि अरे देखो प्रीच कर रहा है लाइब्रेरी जाने के लिए, बट ट्रस्ट मी व्हेन यू गो देयर। अच्छा खाने का लालच दे दूं क्या भाई, पास्ता बहुत बढ़िया है, कतर नेशनल लाइब्रेरी का पास्ता बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं गए तो पास्ता जरूर ट्राई कीजिएगा। इस बहाने बुक के सेक्शन में जाएगा, और जब आप बुक के सेक्शन में जाएंगे आई कैन गारंटी कि आप एक बुक तो पढ़ ही लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बुक पढ़ी थी स्पीशीज होमो सेपियंस, एंड वो जो स्पीशीज वाली जो बुक थी मेरे बड़ी काम आई है, और मेरी लाइफ में वो पहली और आखिरी बुक है अभी तक की, आखिरी नहीं कहूंगा पहली बुक थी वो दैट आई रेड रिलीजियसली एंड आई लव्ड इट। तो इसके अलावा वहाँ पे कल्चरल किताबें भी हैं, इसके अलावा वहाँ पे आपको अगर रीजनल या फिर रिलीजन बेस्ड किताबें पढ़नी वो भी मौजूद हैं। एंड वो जो एनवायरनमेंट है पूरा लाइब्रेरी का, दैट इज जस्ट अमेजिंग। एंड MIA लाइब्रेरी इज नो लेस देन एनी अदर लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। सो MIA लाइब्रेरी में तो मजलिस डिस्कशन हो रहा है, सो इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इवन इफ यू नॉट रीडर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड सी वॉट कम्स आउट। हो सकता है कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसी चीजें हो जो आपके दिमाग को खोले, बिकॉज ये चीजें अचानक से होती, दीज आर नॉट प्लान्ड स्टफ। किसी की कोई बात ऐसी दिल पे लग जाती है, कोई बात ऐसी हो जाती है जो आपको रिसर्च करने के लिए पुश करती है, एंड दैट इज व्हेन एवरीथिंग चेंजेस, एंड दैट इज व्हेन यू लर्न। हर मुकाम पे अपनी जिंदगी के सीखते रहना इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। आई नो इट इज अगेन साउंडिंग प्रीची, बट इट इज नॉट। आज भी हम सीख रहे हैं और आज भी सीख और कल भी सीख रहे हैं, सीखना है। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर Amazing event.
1: Qatar 2026.
0: अगला जी कतई जबरदस्त, एकदम कहते ना झंडा गाड़ने वाला इवेंट है। ये है PSA समर कैंप 2026, जहां पे बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट में एक एक्टिव समर प्रोग्राम के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश है, और ये है एट पर्लिंग सीजन इंटरनेशनल स्कूल। मेरे घर के सामने एक घर बना हुआ, तो मेरे घर के सामने है, बहुत ही शानदार जगह है। एंड इस कैंप में स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, फिटनेस एक्टिविटीज हैं, एंड काफी सारे फन गेम्स हैं जो कि प्रोफेशनल्स और सर्टिफाइड कोचेस की तरफ से हैं। सो अगर कोई इस तरफ है या पर्लिंग में आप कभी स्विमिंग वगैरह सीखने के लिए गए हैं तो जाइए, और नहीं गए तो जाना चाहिए आपको। अब मेरे तो घर के बिल्कुल सामने, तब भी मैं नहीं गया हूँ, बट आई एम नाउ थिंकिंग वेरी सीरियसली कि कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, और आप ये कीजिए। इसमें वीकली डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 week, 1 day, 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, 7 weeks, उस हिसाब से देख लीजिएगा, वॉट एवर सूट्स यू, वॉट एवर टाइमिंग सूट्स यू, प्लीज गो देयर एंड एंजॉय। नाउ इन बिटवीन अ रिमाइंडर जो मैं आपको देना चाह रहा था, रिमाइंडर मेरा इतना है कि आप अभी तक अगर स्टेकेशंस का हिस्सा नहीं बने तो प्लीज बन जाइए, बिकॉज

0: ये एक्टिविटीज जो समर एक्टिविटीज हैं इन्हीं का हिस्सा समझिए इसको. दिस विल एंड वेरी सून एंड देन द प्राइसेस विल गो हायर एंड जो स्टेकेशन के ऑफर्स होते हैं वो खत्म हो जाएंगे. फिर आपको वो वाला मजा नहीं आएगा, वो चेरिश नहीं कर पाएंगे जो आप इस समर में कर सकते हैं. एंड चूंकि वीकेंड्स पर ये एक्टिविटीज रहती हैं और इवेंट्स पे, सॉरी वीकेंड्स पे कई सारी चीजें आती रहती हैं, तो आई बिलीव आपको जाना चाहिए एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. मैं तो कहूंगा कि चूज कीजिएगा ऐसे होटल्स जो कि हेरिटेज और कल्चर को कतर की आपकी नजरों के सामने रखते हैं. मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ वकरा में है, कुछ कतारा की तरफ है और कुछ मिडल में है, एंड फ्यू ऑफ देम हैव पर्सनैलिटीज. सो बहुत सारे होटल्स कतर में हैं जो एवे ही नहीं है कि भाई ये राजी आपका कमरा, ये लो चाबी जाओ. नहीं, यहाँ पे होटल्स की एक पर्सनैलिटी है. एंड दैट्स वाई आई कीप ऑन पुशिंग यू गाइस टू हैव स्टेकेशन एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ. जब आप कतर में हो, कोई नया आए तो भाई उसको कतर में जरूर जरूर लेके जाओ. इट्स वेरी वेरी हेल्दी एंड वन शुड एक्चुअली गो. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन. ये कागज लेने का आधार है, देखो ये इसलिए क्योंकि बहुत बहुत सारे इवेंट्स हैं आपके लिए.
1: Qatar 2026.
0: The next one is the Qatar Sports for All Federation. इनकी तरफ से इनविटेशन आया है माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए कि वो समर फॉर ऑल स्पोर्ट्स कैंप में, समर कैंप में हिस्सा लें. अभी जो समर कैंप है ये बस समझ लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ तो शायद खत्म होने वाला होगा या हो चुका होगा. ये लुसेल स्पोर्ट्स हॉल में रखा गया एंड इसका जो पहला फेज था वो शुरू हो गया था. इनफैक्ट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक दिन बाद यानी 29 जून को ये सब शुरू हुआ है. तो 29 जून से ये फेज शुरू हुआ है, मंडे टू थर्सडे सुबह के 9 से दोपहर के 1 बजे तक. और ये दोनों के लिए है, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी. एज इसमें लिमिट रखी गई है, तो जो एज ग्रुप है वो है 7 to 11. और जो कैंप है इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. अब वापस बच्चा बनने का मन कर जाएगा आपको बता रहा हूँ, तो अपने रिस्क पे देखिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशनल वर्कशॉप्स हैं, स्किल बिल्डिंग सेशंस हैं और काफी सेफ एंड एंगेजिंग एनवायरनमेंट है. जब बच्चों को कहानियों के जरिए, एंगेजमेंट के जरिए कुछ चीज सिखाई जाती है, यकीन जानिए ताउम्र वो उनके दिलो जहन में घर कर जाती है. एंड दैट्स व्हाई ऐसे इवेंट्स, ऐसे समर कैंप्स बहुत जरूरी होते हैं. सो इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ एनी कैंप लेटली या बचपन में, तो अपने बच्चों को ये मौका दें एंड लेट देम बी अ पार्ट ऑफ सच इवेंट, सच कैंप्स. इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है, QSFA की वेबसाइट पे जाके अपनी फुल डिटेल्स भर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसकी ऐप भी है QSFA की, यानी द कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशंस. और यहाँ पे जाके आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी थ्रू द ऐप. सो ट्राई डाउन एंड डू लेट मी नो. एंड इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कुछ आप भी कहना चाहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होंगे जहाँ आप गए होंगे या जाने वाले होंगे, तो जरूर बताइएगा 6622107 पर, 6622107 पर. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर इवेंट जो कि बहुत बहुत मेजर है. इसमें अभी टाइम है लेकिन ये मान के चलिए कि अभी से शुरू हो चुका है, आपके जहन में शुरू हो जाना चाहिए. बाकी तारीख के हिसाब से फिजिकली प्रेजेंट ये आपको इवेंट दिख जाएगा. सो कतर सस्टेनेबिलिटी वीक जो है, जो कि कतर का नेशनल कैंपेन भी है, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. और इसका मकसद है एंगेजमेंट लेके आना कम्युनिटी में, ताकि सारे लोग जो भी कतर में आने वाले हैं, आ चुके हैं, कोई रिसर्च करा, सबको ये एक ही चीज पता होनी चाहिए, सब एक सेम पेज पर होने चाहिए कि कतर का मकसद आगे बढ़ने का सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ दौलत ही दौलत हो, शौहरत ही शौहरत, पैसे ही पैसा होगा सिर्फ, वो नहीं, मगर एक यूनिक अप्रोच है ताकि फ्यूचर सिक्योर हो सके. और ये है बाय टैपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी. और जो पहला हफ्ता होगा ये जो शुरू होने वाला है, ये 31 अक्टूबर से शुरू होगा, 7 नवंबर को खत्म हो जाएगा. अभी टाइम है, बट आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग योर माइंड विद दिस आइडिया कि सस्टेनेबल विजन आखिर किस चिड़िया का नाम है. तो ये नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोगों तक पहुंचाता है. एंड अर्थना सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर आर रियली रियली प्राउड टू अनाउंस द 11th एडिशन ऑफ कतर सस्टेनेबिलिटी वीक. बहुत वक्त हो चुका है एंड काफी सारे लोग इससे जुड़ चुके हैं. नाउ डबल डाउन करते हुए बताना चाहूंगा कि इस साल भी बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल एंड डेलीगेट्स विल जॉइन हैंड्स टुगेदर ताकि ये मुमकिन हो सके. और इसमें एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे इवेंट्स जो कतर में अलग अलग जगहों पर रखे जाएंगे. हफ्ते भर लंबा ये नेशनल कैंपेन होगा जो कि 31 से 7 नवंबर के बीच में लोगों को दिखा जाएगा. और इसमें ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, बिजनेसेस, कम्युनिटी ग्रुप, ये सब के सब अक्रॉस कतर नेशन वाइड एफर्ट एक साथ दिखाएंगे, बिकॉज हम सब जब सेम पेज पर नहीं होंगे तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी. सो वी हैव टू टेक इट एज सीरियसली एज कतर इज टेकिंग, एंड यही फ्यूचर है. तो अपना आगे वाला कल, आने वाला कल थोड़ा सा भी अगर सिक्योर कर सकते हैं तो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना. तो इसमें क्या है, इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं किसी एक्टिविटी में, इनिशिएटिव में, या फिर इवेंट पार्टनर बनना चाहते हैं, तो सिंपल आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इनकी वेबसाइट पर जाके सारे की सारी डिटेल्स भरिएगा और बताइएगा कि आपको क्या करना है, किस चीज़ से हिस्सा बनना है. एंड एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू होंगी और उसके बाद उन्हें पब्लिश किया जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर. अलग अलग लोकेशन पे होगा, जैसे मैंने कहा एक लोकेशन पे नहीं किया जाएगा. सो मल्टीपल लोकेशंस पे ये सस्टेनेबल वीक जो है वो सेलिब्रेट भी किया जाएगा. बट जो उसका मेन मोटिव है कि लोगों तक आवाज पहुंचे, लोग इसके बारे में अवेयर रहें कि कतर 2030 तक क्या क्या अचीव करने वाला है, वो मजा आ जाएगा. तो इस इवेंट का मैं तो हिस्सा बनूंगा, ऑफ कोर्स वी विल बी कवरिंग दिस एज वेल. बट मीनवाइल मेरी यही सलाह है कि आप जो है कतर की विजन के बारे में पढ़ें, क्योंकि वंस यू विल रीड इट एंड देन जब आप उतरेंगे इस मैदान में इस चीज़ को समझने के लिए, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा. एंड सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो है इलेक्ट्रिक कार्स लेना शुरू कर दी या फिर पूरी तरह से आगे, नहीं. सस्टेनेबिलिटी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, मगर ये क्योंकि कतर रिप्रेजेंट कर रहा है सस्टेनेबिलिटी को इस कदर, तो इसकी रफ्तार थोड़ी तेज होगी. एंड इंशाल्लाह विल हैव अ वेरी वेरी सिक्योर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर. सो कुडोस टू कतर फॉर टेकिंग सच इनिशिएटिव. तो ये रात के 12 बजे से इवेंट होगा. इनफैक्ट कुछ दिनों पर अलग अलग टाइमिंग हो सकती है अलग अलग जगहों के लिए, तो उस बात की अपडेट जब ये इवेंट आएगा तो आपको जरूर जरूर दी जाएगी. All right, now moving on to another event. Qatar 2026. अब देखिए कतर ओलंपिक डे जो है वो 27 जून को सेलिब्रेट हो चुका है, ठीक है. अब इस दिन क्या हुआ, प्लेस वेंडोम में ना 5 किलोमीटर इंडोर वॉक हुई, जॉग हुई, जो कि IOC का एक बहुत बड़ा कैंपेन है जिसका नाम है लेट्स मूव कैंपेन. And this was in collaboration with Education Above All Foundation. और इसके जो main features थे वो ये थे कि 3 laps लेने थे around place Vendome. Registration रहा सुबह के 8:30 से रात के 9 बजे तक kick start हुआ. So बहुत बहुत brilliant events रहे हैं इसमें भी. And अगर आप यहाँ पे गए हैं तो आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. So all the best to you on that. अगर आप इसमें भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप पहुंच सकते हैं ग्राउंड फ्लोर Gate 1 प्लेस वेंडोम में. और ये खत्म हो चुका है जब आप इसे सुन रहे हैं. सो बट डोंट वरी, आई एम देयर टू जस्ट कीप एन आई ऑन एवरीथिंग. और कुछ छूटेगा तो मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा. एंड आप भी मुझे जरूर जरूर बताएं इफ एनीथिंग इज लेफ्ट और आपको लगता है कि वो भी इसी इवेंट में शामिल होना चाहिए. पर जैसे मैंने कहा, बच्चों के लिए समर कैंप और आपके लिए सबसे पहले जो चीज बड़ी जरूरी है वो है स्टेकेशन. सो स्टेकेशन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जाइए या अपने पार्टनर के साथ जाइए, या आप गर्ल गैंग बना के जाइए या बॉयज गैंग बना के जाइए, एंड यू विल बी मच मच मच मोर हैप्पियर एंड इन अ वेरी गुड स्पेस ऑफ माइंड. तो ये बहुत जरूरी है. इसके अलावा फुटबॉल की जो स्क्रीनिंग्स हैं, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड कप बाकी है, ये अलग अलग जगहों पे हैं. टीम कतर के जो इवेंट्स थे वो भी सारे निपट चुके हैं. अभी जो आने वाला वक्त है, जैसे ये अपना 19 जुलाई तक क्योंकि होगा फाइनल तक, तो मीनवाइल ये भी बता दीजिएगा कि आप कौन से मैच पे आपकी नज़र है, प्लीज़ लेट मी नो. बाकी अगर आप देखना चाहते हैं मैचेस को अप एंड क्लोज, तो मॉल ऑफ कतर भी आ सकते हैं आप. ये 19 जुलाई तक यहाँ पे फ्री व्यूइंग है. ओएसिस जो स्क्रीन्स हैं वहाँ पे आप आराम से बैठे बैठे देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप यहाँ बैठे बैठे भी, क्योंकि देखो कतर जैसा वर्ल्ड कप तो कहीं होगा नहीं. अभी यहाँ नहीं हो रहा तो तब तक फील ही ले लें, है ना, फुल फील लीजिए. आप यहाँ पर रहिए एंड जितने सारे मैचेस हैं अभी उन सब पे हमारी नजर बनी रहेगी. एंड आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू. सो वॉइस स्क्रीन्स मॉल ऑफ कतर अल रयान. एंड आप जो है कभी भी बाहर बैठ के आराम से बड़ी स्क्रीन पर फॉर फ्री मैच देख सकते हैं. कोई रोकटोक नहीं है एंड इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंगली ब्यूटिफुल. ओके जी, आगे बढ़ो. ओके, अब अगले इवेंट की तरफ बढ़ूं तो ये एक ऐसा इवेंट है जो कि नॉर्थ फूड कोर्ट की तरफ है, दोहा फेस्टिवल सिटी में. ये जो मॉल है ये वो रहेगा जहां पर आप मैचेस भी देख सकते हैं मॉल के ऑपरेटिंग आवर्स के साथ साथ, और साथ में जो मैचेस हैं वो स्ट्रीम किए जाएंगे 1 to 6 AM. एंड अगर टीम जो है आपकी पूरी थोड़ी थक जाएगी, तो उसके लिए भी प्रबंध किया गया है और स्पेशल आपको मील्स दी जाएंगी, सब कुछ है यहाँ पर। कुछ मील्स आपको खरीद लीजिएगा, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स लवली टू हैव।

0: तो उनके कहने से पहले उन्हें एनरोल कीजिए एंड दिस इज द बेस्ट टाइम जब वो छुट्टी पर है सो दे कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम पीपल अराउंड देम एंड दैट्स व्हाट मैटर्स सो ट्राई एंड डू दैट बाकी 666-22107 है 666-22107 अगर मैं आपके काम आ सका तो मुझे बहुत बहुत बहुत बहुत खुशी होगी आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा इवेंट है जो आपने एक्सपीरियंस किया है एंड यू वॉन्ट टू शेयर मोर अबाउट दैट इज वॉट मैटर्स सो 666-22107 नंबर है आप मुझे मैसेज भी करते रहिएगा शो के दौरान अगर कुछ कहना चाहें तो भी मैसेज कीजिएगा बाकी जैसे मैंने कहा कि स्टेकेशन हो गया इसके बाद ग्रुप बना के कहीं जाने का सीन हो गया ये सब ऑन रखिए समर्स के बाद मैं यकीन दिला रहा हूँ एक अजीब सा आलस होगा कहीं जाने का मन नहीं होगा कुछ करने का एहसास नहीं आएगा एंड यू बी लाइक काश कहीं चला ही जाता मैं सो प्लीज पहुंचिए इन तमाम जगहों पे बाकी 666-22107 एंड सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar आप मुझसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं दोहा वाला कबीर के नाम से dohawalakabir.fm107 एंड यू कैन कैच मी देयर एज वेल एंड यकीन दे रहा हूँ आपको सच में ही मजा आ जाएगा इन तमाम जगहों पे जाके स्पेशली इफ यू वांट टू एक्सप्लोर सोलो तब भी बढ़िया है जो सोलो ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो कतर इज सो ब्यूटिफुल बिकॉज यहाँ पर इवेंट्स में कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ सिर्फ फैमिली हाँ फैमिली वाले इवेंट्स बिल्कुल अलग है मगर बाकी चीज़ों में कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते आप नहीं जा सकते एवरीबडी इज अलाउड एंड देर इज नो सच थिंग जो बाहर वर्ल्ड कप में हो सकती है भाई हम जिसको प्राउड जिस चीज़ को लेके प्राउड है उसके बारे में जिक्र तो करेंगे बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली सेफ हेयर सो ये था कतर 2026 का एक एपिसोड अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं 666-22107 पर 666-22107 पर एंड आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है सो दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
2: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

अगर इसको आप ऊपर से लेकर आके यानी फायर ब्लैंकेट को लेकर ऊपर से ऐसे कढ़ाई पर रख दें तो ये हरकत सही नहीं, चूँकि उन्होंने कहा कि मुसलसल से ट्रायंगल बताया है, ये ट्रायंगल काफ़ी

0: वहाँ कढ़ाई में, कढ़ाई को ऑक्सीजन मिल रही, वहाँ जो आग लगी है आग को ऑक्सीजन मिल रही है, तो आग बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से हम अगर फायर ब्लैंकेट को इसका सही इस्तेमाल करें, और इसका मकसद ये है फायर ब्लैंकेट के इस्तेमाल से कि ऑक्सीजन को बंद करना, तो अगर हम इसको ऊपर से डालते हैं तो वो ऑक्सीजन को आप जमा कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बंद नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर से नहीं डालना है, बल्कि इसको बाजू से, दाएं जानिब से, आप बाएं जानिब या सामने की तरफ से पीछे की तरफ, यानी आपको यानी ऊपर से नहीं इसको इस कढ़ाई पर डालना है, बल्कि आप दाएं तरफ से या बाएं तरफ से इसको ऐसे खींच कर लाइए कढ़ाई के ऊपर। तो ये है तरीका फायर ब्लैंकेट के इस्तेमाल का। तो ये मुसलस इससे ऑक्सीजन को हम रोक देते हैं, तो साथ साथ आग को वो एनर्जी और तवानाई नहीं मिलती। तो मज़ीद बाज़ोकात ये फायर ब्लैंकेट मौजूद हो या ना हो, आप इसी जगह में दूसरी किसी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तरीका वो होना चाहिए जैसे कि हमने कहा, दाएँ जानब से आप खींच कर ऊपर लाइए उस कढ़ाई के ऊपर, या बाएँ जानब से खींच कर लाइए। ये है तरीका। किसी दूसरी चीज़ से, यानी कोई आपके पास वहाँ लोहे की कोई चीज़ है या कोई ढक्कन है, इसको आप जलता हुआ तेल के ऊपर ऐसे दाएं जानिब से आप ऊपर रख दें कढ़ाई के ऊपर, तो चूँकि आग की चिंगारी, वो आग ऊपर उड़ रही होगी, लेकिन साथ जब आप उसको दाएं जानिब से ऐसे ऊपर रख देंगे ना, तो अपने आप बुझ जाएगी। तो ये है आग को बुझाने का, ओवरऑल वहाँ हंगामी हालत में इस सिचुएशन को हैंडल करने का। बाज़ औक़ात लोग ये सोचते रहते हैं कि पानी छिड़क दें, ये कर दें, वो कर दें, अब पानी छिड़कने से वो और भी आग उछलेगी और मामला संगीन होगा। तो वहाँ अपना कढ़ाई की आग, तेल की आग है, तेल की आग से निपटने के अपना तरीका है, वो पानी से छिड़कने से वो तेल की आग नहीं बुझेगी। और आग के मुख्तलिफ अनवा हैं, सिलसिले में हमारे मेहमान बेदिल्लाह ताला वो बताएंगे कि हमें कैसे मुख्तलिफ आग के जो वाक़ात पेश आते हैं तो उनसे हमें कैसे निमटना है। मज़ीद हम बढ़ेंगे अगले महवर की तरफ, टाइम बाकी नहीं है ज़्यादा, मुख्तसर वक्त है तकरीबन हमारे पास, अब 12 से 13 मिनट तक है। तो हम वही जो सवाल करेंगे जिस मौजू पर हमारी अभी गुफ्तगु हो रही थी कि मुख्तलिफ आग के अनवा होते हैं, तो इसको इन अनवा से हम कैसे निमटें, जैसे कि हमने बताया कि हर एक नौ की आग से निमटने का तरीका अलग है। गलत फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे तो आग बुझने के बजाय मज़ीद बढ़ सकती है, या यहाँ तक कि इस्तेमाल करने वाला शख्स भी मज़ीद ख़तरे में पड़ सकता है। तो चलें मेहमान से हम इस सिलसिले में वजाहत तलब करते हैं, देखें वो हमें क्या सिलसिले में रहनुमाई करते हैं। ساعه الملازمه اول خليل راشد النعيمي من الاداره العامه للدفاع المدني التابع لوزاره الداخليه بدوله قطر. ساعه الملازمه اول يلاحظ ان كثيرا من الناس يعتقدون جميع طفايات الحريق تؤدي الغرض نفسه، يعني فكره ممكن يعني تكون عند الكل يعني موجوده هيك، لكن طبعا هناك انواع طفايات الحريق ومتى يستخدم كل نوع منها.
1: نعم،
0: يعني حبذا لو توضح لنا الفكره.
1: الطفايات أنواع، 4 أنواع عندنا من الطفايات، وكل طفاية لها استخدامها الخاص فيها، ما عدا طفاية واحدة اللي هي طفاية البودرة.
0: أوكي.
1: طفاية البودرة نستخدمها في جميع أنواع الحرائق.
0: حلو.
1: وما نستخدمها، يعني يفضل أن احنا نستخدمها في الأماكن المكشوفة، لكن إذا احنا اضطرينا أن احنا نستخدمها في الأماكن المغلقة، نكبس كبسة واحدة من الطفاية على قاعدة الحريق، مكان ما بدأ الحريق في الاشتعال.
0: تمام.
1: ليش احنا نكبس كبسة واحدة ونفتح أقرب منفذ لنا، الباب أو النافذة؟ لأنها مادة كيميائية خطرة سريعة الانتشار.
0: أوكي.
1: إذا استخدمناها في المكان المغلق أو الأماكن المغلقة محتمل أن ترجع علينا.
0: أوكي.
1: وتخنقنا ولا قدر الله تذبح مع الأشخاص اللي معاهم حساسية في الصدر أو الربو. فإحنا نضطر إذا اضطرينا نستخدمها في الأماكن المغلقة نكبس كبسة واحدة مكان ما بدأ الحريق في الاشتعال على طول، ونفتح أقرب منفذ، الباب أو النافذة. النوع الثاني من الطفايات هي طفاية الماء، ونستخدمها في حرائق المواد الصلبة مثل الخشب، القماش، الورق، أي مادة صلبة ما تدخل فيها الكهرباء، لأن الماء موصل جيد للكهرباء.

0: countdown for liftoff.
1: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और हमारे आज के इस सफर का टॉपिक है एक ऐसा राज जो सुना भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है, लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं है। किसके बारे में बात कर रही हूँ, चलें बताती हूँ। सोचिए जरा, आप एक सूने सूने से रेगिस्तान में हैं। धूप इतनी तेज है कि उसकी झिलमिलाहट आंखों के अंदर तक जा रही है। हवा के झोंके रेत के जर्रात को तेजी से यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं, और जब ये जर्रात एक साथ मिलकर यहाँ वहाँ सिरकते हैं तो अचानक एक आवाज उभर कर आती है। ना ये आवाज किसी रेडियो की है और ना ही किसी मशीन की। असल में ये है एक कुदरती राज, जैसे दूर से कोई बजती हुई घंटी, या कभी लगता है कि जैसे गहरा ढोल बज रहा हो, और कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि जमीन अपने ही कोई गीत गा रही है। इस राज को कहते हैं सिंगिंग ड्यून्स, यानी गाने वाले रेगिस्तानी टीले। और सबसे हैरत की बात ये है कि ये आवाज सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग रेगिस्तानों में सुनाई देती है, सहारा से लेकर अलग अलग मुख्तलिफ रेगिस्तानों तक, और यहाँ तक कि कतर के रेगिस्तानों से लेकर चिली के अटाकमा तक। साथियों, आज का हमारा ये सफर एक ऐसी नेचुरल ऑर्केस्ट्रा का है जो इंसान ने नहीं बनाया, मगर जिसका सुरों भरा गीत साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम जानेंगे कि ये सिंगिंग ड्यून्स कैसे बनते हैं, कैसे आवाज निकालते हैं, और आखिर क्यों इनके सुर कभी नगमे की तरह लगते हैं और कभी जायंट ढोल की तरह सुनाई देते हैं। तो चलिए इस ऑडियो एडवेंचर का पहला कदम उठाते हैं और रेगिस्तान की गहराइयों में चलते हैं, जहां रेत खुद एक सुरीला सा गीत बन जाती है। साथियों, सिंगिंग ड्यून्स यानी गाती हुई रेत का जिक्र कोई नया नहीं है। इसका हवाला हमें बहुत से पुराने सफरनामों में मिलता है, जैसे दुनिया के मशहूर तरीन ट्रैवलर मार्को पोलो ने अपनी एक किताब में लिखा था कि जब वो चाइना के मशहूर तकलामाकन डेजर्ट से गुजरे तो उन्हें वहाँ रेत के टीलों से अजीब और गरीब आवाजें महसूस हुई। उन्होंने ऐसी आवाजों को महसूस किया जो इंसानी आवाजों की तरह लग रही थी। कभी ढोल बजे तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गहरी हमिंग की साउंड हो। सिर्फ मार्को पोलो ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं और कैरेवान्स जिन्होंने ये इवेंट्स रिकॉर्ड किए। उनका कहना था कि जब

बड़े बड़े रेत के टीले एक साथ मूव करते हैं या हवा चलती है तो रेत ऐसे गुनगुनाती है जैसे कोई गीत गा रही हो। कभी वो आवाज किसी घंटी जैसी होती है और कभी एकदम से आती गहरी गूंज जो दिल को दहला कर रख दे। मंगोलिया, चाइना और अरेबिया के डेसर्ट्स में लोगों के लिए ये आवाजें एक अजीब और हैरत अंगेज तजुर्बा होती हैं। उनका कहना था कि इन रेगिस्तानों में आवाजें ऐसी महसूस होती हैं जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। अक्सर कैरवान्स तो रात के वक्त इन टीलों के करीब रुकने से घबराया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये आवाजें इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं और जो रुक जाए वो रेगिस्तान में खो भी सकता है। पुरानी अरबिक पोइट्री और पर्शियन टेल्स में भी इसका जिक्र बहुत ही मिस्टीरियस अंदाज में होता था। शायरों ने लिखा कि रेगिस्तान इंसान से बात करते हैं, कभी उसके दुख को समझते हैं, कभी उसकी तन्हाई के साथी बन जाते हैं। जरा सोचिए, उस वक्त के लोगों के लिए ये आवाज एक नई दुनिया का एहसास होती होगी। पहले जमाने में तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये रेत में छुपी मखलूकों की आवाजें हैं और कोई तो इसे दोस्ती का पैगाम भी समझता था। ये इमेजिनेशन और मिस्ट्री आज भी डेजर्ट कल्चर का हिस्सा है। अब भी जो लोग सहरा या रेगिस्तानों में सफर करते हैं वो कहते हैं कि जब आवाज तेज चलती है और रेत हिलती है तो दिल को हिलाने वाली गूंज सुनाई देती है। साथियों, अब हम चलते हैं सिंगिंग ड्यून्स के साइंटिफिक रास की तरफ, मतलब असल में ये आवाजें बनती कैसे हैं। भाई, सोचने वाली बात ये है कि क्या ये सिर्फ हवा के खेल हैं या रेगिस्तानों का कोई छुपा हुआ मैजिक ट्रिक। साइंस ने इस पर बहुत रिसर्च की है और आज हम उसकी कहानी आपको मजीद तफसील से सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि आवाज तब निकलती है जब रेत के पार्टिकल्स एक साथ नीचे की तरफ गिरते हैं या स्लाइड करते हैं। अच्छा, इसे कुछ ऐसे समझने की कोशिश करें कि जब आप रेत की एक बड़ी स्लोप पर चल रहे होते हैं या उस पर स्लाइड करते हैं या हवा के प्रेशर से रेत नीचे की तरफ सिरकती आ रही होती है तो रेत के छोटे छोटे जर्रात यानी रेत के छोटे छोटे ग्रेन्स एक दूसरे के साथ रब होते हैं। इस रबिंग और फ्रिक्शन की वजह से हवा के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशन कन्वर्ट होती है एक बूमिंग साउंड में जो आपको लगता है कि जैसे रेगिस्तान गा रहा हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस साउंड की फ्रीक्वेंसी भी साइंटिस्ट्स ने मेजर की है। वो ये कहते हैं कि ये आवाज 70 हर्ट्ज से 110 हर्ट्ज तक होती है। अब अगर आपको फिजिक्स थोड़ा याद हो तो समझ जाइएगा कि ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उसी रेंज में आ जाती है जहां म्यूजिकल नोट्स बनते हैं। भाई, मतलब सिंपल जबान में समझें तो रेगिस्तान की आवाज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है, जैसे एक जायंट ढोल बज रहा हो जो हवा में गूंज रहा हो। अच्छा साथियों, ये आवाज दुनिया के हर रेगिस्तान से नहीं आती, सिर्फ कुछ खास जगहें होती हैं जो आपको ये कॉन्सर्ट सुनाएंगी। सबसे मशहूर सिंगिंग ड्यून्स आपको मोरक्को, चिली, चाइना और ओमान के डेजर्ट्स में मिलते हैं। इनके अलावा सेंट्रल एशिया के कुछ और रेगिस्तान भी इसी लिस्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोरक्को के अर्क जबी ड्यून्स, इनमें आपको ऐसा लगता है जैसे कोई जायंट सा तबला बजा रहा है। और चाइना के बेदियान जरान डेजर्ट में, वहां पर तो आवाज इतनी जोर से आती है कि सुनने वाले को लगता है कि जैसे पूरा का पूरा पहाड़ गरज रहा हो। और भाई, अगर ओमान के बारे में बात करें तो ओमान के रुब अल खाली में तो लोकल लोग कहते हैं कि उनके ड्यून्स में अजीबोगरीब मखलूकों की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन साइंस के मुताबिक ये सब कुछ सिर्फ फ्रिक्शन का खेल है। अच्छा साथियों, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हर रेगिस्तान की रेत क्यों ऐसे गीत नहीं गाती। भाई, साइंटिस्ट ने इसका जवाब भी दिया है। वो कहते हैं असल में ये डिपेंड करता है रेत की शेप और साइज पर। जिन ड्यून्स से गाने की आवाजें आती हैं उनकी रेत के ग्रेन्स बहुत ही राउंड और यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, मतलब सब जर्रात एक जैसे गोल और छोटे मोती की तरह होते हैं। अगर ग्रेन्स का साइज अनइवन हो या रेत बहुत गीली हो जाए तो आवाज प्रोड्यूस नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब रेत बहुत हैवी या मिक्स टेक्सचर वाली हो तो वाइब्रेशन आपस में कैंसिल हो जाती है, और जब वाइब्रेशन कैंसिल हो जाए तो भाई आवाज भी खत्म ही हो जाएगी ना। मतलब रेगिस्तान का ये ऑर्केस्ट्रा चलने के लिए
भाई रेत की परफेक्ट ट्यूनिंग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा साथियों, अब रुख करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरफ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के रिसर्चर्स ने ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने रेत का एक आर्टिफिशियल एवलेंज बनाया, मतलब ये कि जानबूझकर रेत को एक बड़े स्लोप से नीचे गिराया। जब रेत नीचे गिरी तो थाउजेंड्स ऑफ ग्रेन्स एक साथ एक रिदम में वाइब्रेट करने लगे। हर ग्रेन अपनी माइक्रो वाइब्रेशन करता रहा, लेकिन जब ये वाइब्रेशंस एक साथ सिंक हो जाती हैं, तो वो एक सिंगल पावरफुल बूम साउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। MIT के साइंटिस्ट्स ने इसको कंपेयर किया एक नेचुरल ऑर्केस्ट्रा के साथ, लेकिन फर्क ये था कि इस ऑर्केस्ट्रा का कोई कंडक्टर नहीं था भाई। सब रेत के ग्रेन्स अपनी ही मर्जी से एक ही रिदम पकड़ लेते हैं और आवाज बनाते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी म्यूजिशियन के एक पूरा डेजर्ट अपने कॉन्सर्ट दे रहा हो, कोई सितार, कोई गिटार, कोई तबला नहीं, सिर्फ रेत के जर्रात और हवा, और आवाज ऐसी कि सुनने वाले की रूह गूंज उठे। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का, जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। साथियों, एक और अमेजिंग चीज जो साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर की वो ये थी कि ये आवाज छोटी सी जगह तक लिमिटेड नहीं होती। कभी कभी ये बूमिंग साउंड किलोमीटर्स दूर तक सुनाई देती है। इसकी इंटेंसिटी ऐसी होती है जैसे दूर कहीं थंडर हो रहा हो। साउंड्स की ये पावर डिपेंड करती है कि एवलेंच कितनी बड़ी है और रेत के ग्रेन्स का सिंक्रोनाइजेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। छोटी सी स्लोप पर आवाज हल्की सी होगी, लेकिन अगर एक पूरा बड़ा ड्यून एक साथ स्लाइड कर जाए तो आवाज लिटरली एक जायंट स्पीकर की तरह पूरे रेगिस्तान में फैल जाती है। साथियों, यहाँ पर एक और फन फैक्ट भी मौजूद है, और पता है वो क्या है? ये आवाज हमेशा एक ही पिच पर नहीं होती। कभी ये डीप बेस होती है, कभी थोड़ा हाई नोट, मतलब रेगिस्तान कभी कभी डीजे भी बन जाता है और अपने हिसाब से बीट्स चेंज करता रहता है। साथियों, साइंटिस्ट्स ने ये देखा है कि पिच का फर्क रेत के ग्रेन्स के साइज और उनके गिरने की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो साथियों, सिंपल लफ्जों में अगर आपको समझाया जाए तो भाई, सिंगिंग ड्यून्स की आवाजों का रीजन है रेत के ग्रेन्स एक स्पेसिफिक साइज और शेप के होते हैं। जब ये ग्रेन्स एक साथ स्लाइड करते हैं तो फ्रिक्शन और वाइब्रेशन बनती है। जब वाइब्रेशन सिंक्रोनाइज होती है तो वो एक लाउड म्यूजिकल साउंड बनाती है। ये आवाज 72-110 हर्ट्ज की होती है, जो बिल्कुल म्यूजिकल नोट्स के बराबर है। मतलब रेगिस्तान असल में एक नेचुरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंसान ने डिजाइन नहीं किया बल्कि नेचर ने खुद बनाया है, और दुनिया के कुछ खास रेगिस्तान ये लाइव कॉन्सर्ट हमें गिफ्ट करते हैं। साथियों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर रेत के टीले की अपनी एक अलग आवाज निकलती है। कोई ऐसी आवाज निकालता है जो बिल्कुल डीप बेस जैसी होती है, जैसे दूर कहीं ढोल बज रहा हो, और कोई टीला फ्लूट जैसी हल्की फुल्की सुरीली सी आवाज निकालता है। मतलब ये कि डेजर्ट का हर ड्यून एक अलग ही म्यूजिशियन है। आपको सुनकर ये हैरत होगी कि अगर आप खुद अपने हाथ या पांव से रेत को स्लाइड करें तो आपको महसूस होगा कि छोटी सी सिंगिंग शुरू हो जाती है। मतलब डेजर्ट में किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं, बस थोड़ी रेत हिलाइए और कॉन्सर्ट शुरू। साथियों, पुराने दिनों में लोग जब ये आवाजें सुना करते थे तो उनको लगता था कि शायद कोई UFO या एलियन सिग्नल आ रहा है। जरा सोचिए, एक शख्स रात के अंधेरे में डेजर्ट से गुजर रहा हो और अचानक ये आवाज सुन ले, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसे लगता होगा कि कोई खलाई मखलूक उसे कॉन्टेक्ट कर रही है। अच्छा साथियों, रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां उन्होंने लोगों को एक साथ ड्यून्स पे दौड़ाया और फिर जो आवाज निकली, भाई वो आवाज तो और भी ज्यादा पावरफुल थी, जैसे कि पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो। मतलब ये कि एक बंदा चले तो गाना हल्की सी आवाज में होगा, और अगर पूरी टीम चले तो भाई फुल वॉल्यूम कॉन्सर्ट हो जाता है। अच्छा साथियों, ओमान के डेजर्ट के लोग कहते हैं कि कभी कभी इन ड्यून्स की आवाजें शादी के वक्त बजने वाले ढोल की याद दिलाती हैं। मतलब ये कि डेजर्ट भी मूड समझता है, भाई कहीं आसपास शादी हो रही हो तो आवाज भी ढोलक वाली प्रोड्यूस करेगा। साथियों, अब थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं उस हिस्से की जहां साइंस ने थोड़ा समझा दिया लेकिन बहुत से राज अभी भी हवा में तैर रहे हैं। मतलब ये कि सिंगिंग ड्यून्स के कुछ सीक्रेट्स अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुए। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि हर ड्यून क्यों नहीं गाता। जरा सोचिए, आप एक रेगिस्तान के बीच खड़े हैं, एक टीला ऐसे गूंज रहा है जैसे पूरा डेजर्ट म्यूजिक का कॉन्सर्ट दे रहा हो, और साथ वाला टीला बिल्कुल खामोश। ऐसा क्यों भाई? रेत की सरफेस बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, हवा भी चल रही है, लेकिन इसकी आवाज अभी तक नहीं निकली। साइंटिस्ट ने ये देखा है कि इसके पीछे बहुत सटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेत के ग्रेन्स की माइक्रोशेप, उनका मॉइस्चर कंटेंट और ग्रैनुलर अलाइनमेंट। दूसरी मिस्ट्री ये है कि आवाज का पैटर्न कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी एक ड्यून पूरे जोर से बजती है और अगले दिन वही ड्यून बिल्कुल खामोश हो जाती है। भाई मतलब ये कि नेचर के इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रिदम कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि शायद हवा का डायरेक्शन और तेजी इसकी वजह होगी, या भाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी इस पर असर डाल सकती है। अगर हवा का प्रेशर ज्यादा हो तो वाइब्रेशन और लाउड हो जाती है, अगर हवा थोड़ी सी धीमी हो तो आवाज भी हल्की ही होगी ना। लेकिन इन फैक्टर्स का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन अभी तक साइंस के लिए भी एक चैलेंज है भाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेजर्ट के अंदर ये आवाज कभी कभी इतनी परफेक्ट लगती है कि लोग पुराने जमाने में इसे रूहानी या मैजिकल फिनोमेना समझते थे। कुछ कल्चर्स के लोग कहते हैं कि शायद ये आवाजें डेजर्ट के अंदर छुपी हुई किसी मखलूक की हैं, जो इंसान से बात कर रही होती हैं। साइंस ने इसको पार्शली एक्सप्लेन किया, लेकिन इमेजिनेशन के एलिमेंट्स अभी भी अलाइव हैं। और साथियों, इसी वजह से सिंगिंग ड्यून्स एक हाफ साइंस हाफ मिस्ट्री टॉपिक बन गया है। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन और वाइब्रेशन काम करते हैं, लेकिन कभी कभी नेचर अपनी मर्जी से सरप्राइजेस देती है। एक नेचुरल ऑर्केस्ट्रा जहां कंडक्टर सिर्फ हवा और रेत के जर्रात हैं। और हाँ, यहाँ की परफॉर्मेंस कभी रिपीट नहीं होती। सोचिए साथियों, एक ऐसी चीज जहाँ साइंस का फॉर्मूला पार्शली काम करता है, लेकिन कुछ सीक्रेट्स अभी भी ऐसे हैं जो सिर्फ डेजर्ट खुद जानता है। शायद यही मैजिक है जो हम ह्यूमंस को नेचर के राजों की तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये क्यूरियोसिटी ही हमें अगले एडवेंचर की तरफ ले जाती है। तो साथियों, ये था हमारा आज का सफर रेत के टीलों की इंटरेस्टिंग सिंफनी के साथ। एक ऐसी आवाज जो कभी रूहानी लगती है, कभी साइंटिफिक, और कभी बस एक डेजर्ट का राज होती है। साथियों, जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी सोच के साथ छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए, अगर नेचर खुद आपसे अपनी कहानी कहती हो तो क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? हर ड्यून अपना गीत गाता है, हर टीला एक राज छुपाए रखता है, और हर गूंज हमें एक पैगाम देती है कि अभी भी दुनिया में ऐसे राज हैं जो हम सिर्फ महसूस करके समझ सकते हैं, उन्हें देखकर नहीं। तो साथियों, अगले सफर में भी अपने दिल और कानों को खुला रखिएगा, क्योंकि शायद आपको एक ऐसी आवाज सुनाई दे जो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। साथियों, याद रखिएगा कि ये सिंगिंग ड्यून्स यानी गाती हुई रेत असल में एक ऐसी कुदरती पहेली है जो साइंस, कल्चर और इमेजिनेशन तीनों को मिलाकर हमारी सोच को हिला कर रख देती है। आप जरा सोचिए, एक सहरा जहाँ इंसान सोचता है कि सब कुछ सूखा, सूना और सुनसान होगा, वहाँ से अचानक ऐसी आवाजें उठती हैं कि जैसे जमीन अपनी कहानी सुना रही हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हवा तेज चलती है या इंसान रेत पर चलकर उसे हिलाता है तो रेत के जर्रात आपस में टकरा कर एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं। ये वाइब्रेशन ही वो सुर बन जाती है जो कभी गुनगुनाती हुई लगती है, तो कभी ढोल बजाती हुई महसूस होती है, और कभी ऐसी लगती है जैसे जमीन की गहराइयों से कोई अपने राज कहना चाह रहा हो। लेकिन साथियों, मानने वाली बात है कि इसकी असली खूबसूरती सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं है। कई लोकल लोगों और मुख्तलिफ कल्चर्स की मुख्तलिफ रिवायतें तो ये भी कहती हैं कि ये ड्यून्स डेजर्ट की रूह हैं जो इंसान से राब्ता करती हैं, उन्हें याद दिलाती हैं कि सहरा खामोश नहीं, जिंदा है। ये भी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, कि हर डेजर्ट की ड्यून एक अलग ही सुर में गाती है। कहीं वो आवाज आपको लगता है जैसे कोई घंटी बजा रहा हो, तो कभी ऐसा लगता है कि गहरी बेस वाली हमिंग चल रही हो। इसीलिए इन्हें लोगों ने सिंगिंग ड्यून्स, बूमिंग ड्यून्स और विस्परिंग सैंड्स तक कहा है। ये नाम ही इसकी रूह को समझाते हैं। डेजर्ट में वो राज छुपे हैं जो आवाजों के जरिए दुनिया को छूते हैं। भाई, आज के इस एपिसोड का सबसे बड़ा पैगाम आप लोगों के लिए ये था कि ये मत भूलिएगा कि नेचर हमेशा अपने तरीके से हमसे बात करती है। कभी फूल की खुशबू में, कभी समंदर की लहरों के शोर में, और कभी रेत के इन मिस्टीरियस सुरों में। मामला सिर्फ ये है कि हम अपने दिल और कानों को कितना खोल कर सुनते हैं। सोचने वाली बात ये है, अगर एक सूखा सुनसान डेजर्ट भी गा सकता है तो जिंदगी के हर मोड़ पर हमें भी अपने सुर ढूंढना चाहिए, क्योंकि इंसान और कुदरत दोनों एक ही रंग के हिस्से हैं। बस जरूरत है तो उस रंग को समझने की और शायद इसीलिए सिंगिंग ड्यून्स हमें कहती हैं, सुनो जिंदगी खामोश नहीं है, हर जगह एक गीत छुपा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई जगह एक नए टॉपिक पर इन एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तब तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत, ना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज और सुनते रहिए FM 107।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: Absolute cinema.
3: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं. पर reviews वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry, मैं हूँ ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है. फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है. आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें. तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 से 11 तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे अब्दुल अजीज अल उबैदली। कतर के नुमाया स्विमर्स में शुमार किए जाते हैं अब्दुल अजीज अल उबैदली, और उन्होंने कई बैनुल अक्वामी कॉम्पिटिशन्स में मुल्क की नुमाइंदगी की है। उन्होंने कम उम्र से ही स्विमिंग की ट्रेनिंग शुरू की और लगातार प्रैक्टिस के जरिए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया। अब्दुल अजीज खास तौर पर फ्री स्टाइल और डिस्टेंस इवेंट्स में अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर चुके हैं। उनकी मेहनत, फिटनेस और पानी में बेहतरीन कंट्रोल ने उन्हें दूसरे स्विमर्स से अलग पहचान दी। कतर के स्पोर्ट्स इदारों और कोचेस की रहनुमाई में उन्होंने रीजनल और एशियन सतह के टूर्नामेंट्स में कीमती तजुर्बा हासिल किया। अब्दुल अजीज का मकसद सिर्फ फर्दी रिकॉर्ड्स बनाना नहीं बल्कि मुल्क के लिए मेडल्स हासिल करना और नए स्विमर्स को इंस्पायर करना भी है। वो हर ट्रेनिंग सेशन में टेक्निक, ब्रीदिंग और एंड्योरेंस को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एनी स्विमर। उनकी डेडिकेशन और प्रोफेशनल रवैया दिखाता है कि कामयाबी मुसलसल मेहनत का नतीजा होता है। दोस्तों, कतर में स्विमिंग की मकबूलियत बढ़ाने में भी उनका अहम हिस्सा रहा है, और उनकी मिसाल देखकर कई नौजवान इस खेल को अपना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले, चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान, इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
4: द रिक्वेस्ट शो
3: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी,
4: दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: FM 107,
0: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम मुफीद इंतखाब और स्नैक्स के बारे में चंद अहम आदात के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि सब्जियां हैं वो हल्की भी होती हैं और गजाइत से भरपूर भी। गाजर, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च जैसी ताज़ा सब्जियां बेहतरीन स्नैक्स हैं। ये कम कैलोरीज के साथ विटामिंस और मादनियात फराहम करती हैं। बॉयल्ड एग जो हैं वो मायारी प्रोटीन रखते हैं और उनका एक बेहतरीन जरिया है। एक या दो उबले हुए अंडे दिन भर की मसरूफियात के लिए अच्छी तवानाई फराहम कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड में ताज़ा सब्जियां, कम चिकनाई वाले चीज़ या उबला हुआ चिकन शामिल करके एक मतवाजन और मज़ेदार स्नैक आप तैयार कर सकते हैं। अब ये कि किन चीज़ों से हम दूर रहें, चिप्स, नमको है या ज़्यादा नमक वाली अशिया हैं, मीठे मशरूबात हैं, चॉकलेट्स और कैंडीज हैं, क्रीम वाले बिस्किट हैं और केक, ये गजाएँ आर्जी तस्कीन तो देती हैं लेकिन उसके साथ साथ वजन ज्यादा करती हैं और सेहत के मसाइल पैदा करने का सबब बन सकती हैं। हेल्दी स्नैक्स के जो सुनहरे उसूल हैं वो ये कि स्नैक्स की मकदार मुनासिब रखिए, कुदरती और गजाई जो चीज़ें हैं उनको तरजीह दीजिए, पैकशुदा और प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए, स्नैक के साथ पानी पीना मामूल बना लीजिए, खाने को आहिस्ता आहिस्ता बड़े ही सुकून और तहमुल से खाइए। और अगर आप डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या वजन के मसाइल का शिकार हैं तो अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे के मुताबिक स्नैक्स का इंतखाब कीजिए। सेहतमंद या हेल्दी स्नैक्स का इंतखाब एक छोटी सी आदत है जो आपकी मजमूई सेहत पर बहुत ही पॉजिटिव असर डालती है। आज ही अपनी खुराक में मुस्बत तब्दीलियाँ लाइए और सेहतमंद ज़िंदगी की जानिब कदम बढ़ा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, मतवाजन गिजा खाइए और सेहतमंद रहिए।
3: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल के उन चॉइसेस की जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट भी करती हैं और आपको भी अफेक्ट करती हैं। तो भाई आज का टॉपिक है सस्टेनेबल फैशन, यानी ऐसा फैशन या ऐसी फैशन चॉइसेस जो एनवायरनमेंट को नुकसान कम और फायदा ज्यादा देती हैं। साथियों फैशन सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं होता, बल्कि एक इंडस्ट्री है जो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में से एक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ग्लोबल कार्बन इमिशंस का ऑलमोस्ट 10% फैशन इंडस्ट्री से आता है। भाई देखिए भाई, ये एविएशन और शिपिंग कंबाइंड से भी ज्यादा बनता है। साथियों जरा सोचिए, आप अपनी वार्डरोब खोलते हैं और क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास कपड़े तो बहुत हैं, लेकिन पहनने को कुछ नहीं है। ये मेरे साथ भी होता है, अक्सर औकात होता है। ये मॉडर्न फैशन का कॉमन सिनेरियो है। हम अक्सर नए क्लोथ्स यानी कि नए कपड़े खरीद लेते हैं, और क्यों खरीदते हैं? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ट्रेंड के लिए थे, और पुराने कपड़े या तो यूज ही नहीं होते या डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब इको स्विच पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक सिंपल टी शर्ट बनने में लगभग 2700 लीटर पानी लगता है। भाई इतना पानी एक इंसान आप कह लें कि अराउंड 2.5 साल में इतना पानी इंसान पीता है सिर्फ एक टी शर्ट के लिए। इतना पानी मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। अब जरा सोचिए, जब आप 10 से 15 फास्ट फैशन

0: आइटम्स खरीदते हैं तो हम कितने रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं, कभी सोचा है आपने? अच्छा, अब कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स बताती हूँ आपको. देखिए, हर साल दुनिया में लगभग 92 मिलियन टन्स टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट होता है. एक एवरेज गारमेंट सिर्फ 7 से 10 दफा पहनने के बाद डिस्कार्ड कर दी जाती है. आपको पता है, फास्ट फैशन की वजह से ही हर लिटरल सेकंड एक ट्रक भर के कपड़े या तो फिर लैंडफिल में जा रहे होते हैं या बर्न हो रहे होते हैं ग्लोबली. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉलिस्टर, जो सबसे कॉमन फैब्रिक है, वो प्लास्टिक से बनता है भाई, और उसे डिग्रेड होने में कितने साल लगते हैं? 200 साल से भी ज्यादा लगते हैं भाई. देखें, अब मामला ये है कि हाउ इको स्विच हेल्प्स, यानी कि बात कर लेते हैं स्मार्ट फैशन चॉइसेस की. देखिए भाई, इको स्विच का आइडिया यहाँ बड़ा सिंपल सा है. फैशन को बंद मत करें. नहीं, आपने ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपने कोई फैशन करना बंद कर देना है, बल्कि उसे रिस्पॉन्सिबल बनाए ना. देखिए, सस्टेनेबल फैशन का मतलब ये है कि कम लेकिन क्वालिटी क्लोथ्स लें, रीयूज करना सीखें चीजों को और रिसाइकल करें. अगर हम फास्ट फैशन कंजम्पशन 30% तक कम कर देना तो ग्लोबल टेक्सटाइल वेस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है. इसी तरह आप कह लें कि थ्रिफ्ट शॉपिंग या सेकेंड हैंड क्लोथ्स यूज करना रिसोर्सेज को सेव करता है और वेस्ट को रिड्यूस करता है. साथ ही जरा सोचिए कि एक ह्यूज सेल चल रही है, ठीक है, और आप इम्पल्स में आकर, आप जज्बात में आकर 5 से 6 शर्ट तो खरीद ही लेते हैं, सिर्फ क्या देखकर कि डिस्काउंट है, सेल है, सेल है. घर आकर आप रियलाइज करते हैं कि भाई, इसमें से तो 2 सेम आपके पास ऐसे ही पड़ी हुई है, तकरीबन सेम है, और एक शर्ट शायद कभी आप ऐसी ले लेते हैं जज्बात में आकर, जो आपने कभी पहनी नहीं हो, पहनी नहीं जानी. अब इको स्विच माइंडसेट कहता है कि भाई, डू आई नीड इट और डू आई जस्ट वॉन्ट इट बिकॉज इट्स चीप. देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन आपको अननेसेसरी वेस्ट और ओवर कंजम्पशन से बचाता है. इसी से रिलेटेड ना मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ. अब कुछ इजी इको टिप्स पे बात कर लेते हैं, फैशन टिप्स. देखिए, पहला तो ये कि बाय लेस चूज वेल, रूल फॉलो करें ये वाला, और क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर तरजीह दें. दूसरी चीज ये कि कपड़ों को रिपेयर करें इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली रिप्लेसिंग देम. तीसरी चीज ये, थ्रिफ्ट स्टोर्स या सेकंड हैंड मार्केट्स एक्सप्लोर करें, वहां पे भी कभी कभी अच्छा माल मिल जाता है भाई. चौथी चीज ये है कि जो हमारे कपड़े हैं उनको रिसाइकल या डोनेट करें इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग देम अवे. और पांचवा, सिंथेटिक फैब्रिक्स के बजाय कॉटन, लिनन या नेचुरल फाइबर्स चूज करें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं. साथियों, सस्टेनेबल फैशन का सबसे बड़ा माइंड शिफ्ट ये है कि कपड़े सिर्फ ट्रेंड के लिए नहीं होते बल्कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी होते हैं. जब हम एक आइटम को ज्यादा दफा यूज कर लेते हैं ना, तो उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट पर वेयर ड्रामेटिकली कम हो जाता है. एक स्टडी के मुताबिक, अगर हम अपने क्लोथ्स को, अपने कपड़ों को डबल दफा ज्यादा पहनते ना, मतलब ज्यादा पहन लें, तो भाई फैशन रिलेटेड कार्बन फुटप्रिंट को 40% तक रिड्यूस किया जा सकता है. तो आखिर में भाई, इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है कि फैशन और सस्टेनेबिलिटी साथ चल सकते हैं. स्टाइलिश रहना जरूरी है इस मार्केट में भाई, लेकिन रिस्पॉन्सिबल रहना भी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना. हर बार जब आप कोई कपड़ा खरीदते हैं तो 1 से 2 दफा से खरीदने से पहले सोच लिया करें, एक छोटा सा इको स्विच ऑन कर लिया करें अपने दिमाग में, विल आई वेयर इट 10 times और नॉट. अगर जवाब है यस, तो हाँ भाई, वो सस्टेनेबल चॉइस है. तो भाई याद रखिए, फैशन का असली स्टाइल वही है जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए. इसी के साथ मैं हूं सफा, आपके साथ इको स्विच पर. इंशाल्लाह मुलाकात होती है इको स्विच के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, जहां हर आउटफिट सिर्फ फैशन नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट होता है.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर। मैं हूँ आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे ईमानदारी से काम करने की अहमियत के बारे में। ईमानदारी एक ऐसी खूबी है जो इंसान की शख्सियत को मजबूत बनाती है और सोसाइटी में उसकी पहचान बन जाती है। जब कोई शख्स अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी इख्तियार करता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर जिम्मेदारी को पूरी सच्चाई के साथ अदा किया जाए, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या घर की जिम्मेदारियाँ। ईमानदारी हर जगह ज़रूरी है। अक्सर आसान रास्ता लेने के लिए लोग ईमानदारी छोड़ देते हैं, लेकिन असल कामयाबी वही होती है जो हलाल और सच्चाई के रास्ते से मिले। आज का अमल ये है कि अपने काम का जायजा लें और कोशिश करें कि हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से अदा करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: और दोस्तों आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ उसे सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ, ये काफी फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है और आज बात होगी लाइफ विदाउट फोन्स की। आप सोच रहे होंगे ये फ्यूचरिस्टिक है या काफी और ज्यादा हमको पास्ट में लेके जाने वाली बात है। देखिए, आने वाले दिनों में जिस तरह से इनविजिबल टेक्नोलॉजी जो है ना वो बढ़ेगी, तेजी से इवॉल्व हो रही है और ग्रो करेगी, ऐसे में एक और तरीके का डिवाइस आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। देखिए, आज के जमाने में स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में होता है फोन, उठाते हैं अपना मोबाइल, चेक करते हैं। लेकिन सोचिए अगर 2030 तक फोन्स जो है वो खत्म हो जाए तो क्या उठाएंगे हाथ में चेक करने के लिए। देखिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ट्रेंड ये कह रहा है कि मोबाइल फोन्स धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे, उनकी जगह आएंगे स्मार्ट ग्लासेस, वेयरेबल डिवाइसेस और इनविजिबल टेक्नोलॉजीज जो हमारे आसपास होंगी लेकिन शायद नजर नहीं आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि आप एक चश्मा पहनते हैं जिसमें स्क्रीन नजर आती है, आप व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहे हैं उसे पहनकर, कॉल्स आप रिसीव कर रहे हैं और शायद नेविगेशन भी बिना फोन निकाले यूज कर रहे हैं। ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए या उसके जरिए होगा। AR ये भी आ रहा है तेजी से। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप हैंड फ्री लाइफ जिएंगे, मतलब हाथ आपके यूं खाली घूम रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है। जी हाँ, ड्राइविंग के दौरान या फिर जब आप वॉक कर रहे हैं उस वक्त आपको फोन यूज करने की जरूरत ही नहीं होगी। सेफ्टी और ज्यादा इम्प्रूव होगी जैसे कि कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। प्रिवेसी, जी हाँ, प्रिवेसी एक बड़ा मसला बन सकती है। अगर हर वक्त डिवाइसेस आपका डेटा कलेक्ट करे तो सिक्योरिटी का क्या होगा।

0: इकट्ठे उन्हें देख लेंगे. ये सब उनके तसव्वुर में ही नहीं था. जैसे आज वो चीजें हम लोग सोचते हैं तो हमारे इमेजिनेशन के जस्ट बाहर हो जाती है. लेकिन ये है हमारी और आपकी तैयारी. ये तैयारी आज से शुरू हमें करनी है, जो कहीं ना कहीं हमारा और आपका मतलब हमें और आपको अपनी सोच को थोड़ा सा ओपन रखना है. इस तरह से रखना है कि जो नए चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम सीखें, उन्हें हम अडॉप्ट करें और कोशिश करें कि आसपास वो लोग जो जिनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है उनके लिए भी हम आसानी पैदा करें. शायद तभी हम मिल के इन सारी चीज़ों का सामना भी कर पाएंगे और शायद बेहतर तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: Maximum music, maximum fun. On FM 107 दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। हाँ जी हबीब, इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हम हर हफ्ते आपको बताते हैं एक नए स्कैम के बारे में। ये स्कैम्स ऐसे होते हैं जो शायद आपको भी पता ना हो कब आपके साथ हो जाए। जिनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस है उनके साथ भी इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। वेल, हर हफ्ते एक नए स्कैम आ रहे हैं। लोग कोशिश करते हैं, स्कैमर्स फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह आपको स्कैम कर लिया जाए, लेकिन अगर आप FM 107 सुनते रहेंगे तो हो सकता है कि आप बच जाएं। वेल, आज हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जो सीजनल स्कैम है। ये कैसे हो सकता है यार? सच बताऊं तो मुझे भी मजा आने लगा जिस तरह का, यू नो, मैं स्कैम पढ़ता हूं यहां पर, जो स्कैम मुझे पता चलता है मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये जब स्कैम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि है ये भी एक स्कैम है। तो आज हम बात करेंगे सीजनल स्कैम के बारे में। वेल, ये स्कैम क्या है? ये स्कैम है ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो सीजन में आते हैं, जैसे कि आम। वेल, ये एक स्कैम मेरे दोस्त के साथ होते होते रह गया, क्योंकि उसको शक हो गया कि ये तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफी वाला है। वेल, हुआ ये कि आपके पास कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया में एक स्पॉन्सर किया हुआ या एक बूस्ट किया हुआ पोस्ट आता है जिसमें लिखा होता है आपके लिए आम रेडी है, क्या आपको चाहिए? या फिर ऐसा कि सिंदरी आम या रत्नागिरी आम, दशहरी आम, फला आम, ये आम, वो इस तरह के ऐड आएंगे, या कोई ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ही कम या सीजनल आपको दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, चाहे वो मार्केट में हो या कहीं पर। तो मार्केट में अगर हैं तो ये बहुत तेजी से बिक जाते हैं, ये स्कैमर्स को पता है। लेकिन जब आपके सामने ये किसी सोशल मीडिया पेज पे आता है तो आपको लगता है कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, इसलिए इसे जल्दी खरीदो। और यहां पर एंट्री होती है स्कैमर्स की। वो आपको कहते हैं व्हाट्सएप नंबर देने को, आप व्हाट्सएप नंबर देते हैं, फिर वो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करते हैं और कहते हैं कि ये इस रेट में है, आप फला जगह आ जाएं। लेकिन अगर आप नहीं आते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो आपको एक हैवी डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही ये आज के आज आपको डिलीवर हो जाएगा। अब आपको लगता है यार मैं तो ऑफिस वाला आदमी हूं, अच्छा है कि यहां डिलीवर हो जाए, तो आप पेमेंट इनिशिएट करना शुरू करते हैं। वेल, यहां पर होता है आपके साथ सबसे बड़ा स्कैम, जहां आप नंबर देते हैं, एक तो नंबर उनके पास ऑलरेडी है, जैसे ही आपको वो लिंक देते हैं पेमेंट के लिए, आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये एग्जैक्ट वैसे ही गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे होता है, जैसे कि आमतौर पे आप कहीं और किसी और प्रोफेशनल वेबसाइट पर या ऐसे वेबसाइट पर देखते हैं जहां से पेमेंट होती है। लेकिन यहां है एक जबरदस्त ट्रिक। ट्रिक ये है कि वो पेमेंट गेटवे कहीं और से जानबूझ के फेक क्रिएट की जाती है, फिर आपको लिंक दिया जाता है, आप अपने सारे कार्ड के नंबर भरते हैं या कार्ड के नंबर ना भी भरें, आमतौर पे लोग कोई और तरीका या UPI के पेमेंट से कर रहे हैं या कोई और फॉरेन पे के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी ये एक स्कैम ही है, चाहे वो किसी और मुल्क में ही क्यों ना हो। वेल, यहाँ ट्रिक ये होती है कि उस शख्स को आपका फोन नंबर मिला होता है, जब आप डिटेल डालते हैं ये डिटेल उसको पता चलती है, पेमेंट नहीं होती है, फेल हो जाती है। ये बात कि पेमेंट फेल हो गई है, ये आप अपडेट देते हैं उस शख्स को जिसने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, और वो कहता है कि सर कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूं। आपको एक OTP आएगा, आप वो OTP शेयर कर दीजिए, ये OTP व्हाट्सएप पे आएगा और फिर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगेन, ये कोई सीजनल प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये एक स्कैम है जहां आपसे कोई OTP मांगे आपको शक जरूर करना चाहिए। ऐसे में जैसे ही आप OTP शेयर करते हैं, धड़ल्ले से आपके अकाउंट से कई लाख रुपए कट जाते हैं और आपके साथ होता है फ्रॉड। सो दोस्तों, इस तरीके की मार्केटिंग से, इस तरीके के बूस्ट या स्पॉन्सर किए गए प्रोडक्ट से आपको बचना है, इस तरह के सीजनल प्रोडक्ट से आपको बचना है। ऐसी चीज जो बहुत तेजी से खत्म होती है, अगर वो आसानी से ऑनलाइन मिल रही है तो इस पर शक करने की वजह तो बनती है। इसलिए बी सेफ, बी अलर्ट। FM 107 हमेशा आपको अलग अलग और नए तरह के स्कैम से अलर्ट करता रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। सुनते रहे FM 107। मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्रॉड अवेयरनेस के शो में, जहां पर हम इसी तरह के स्कैम या फ्रॉड के बारे में बात करेंगे जिनसे आप बच सकते हैं। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट।
0: कतर का का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पे ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुए और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं कहानी, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशन, इंसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। दोस्तों, आज हम एक नॉस्टैल्जिक सफर का रुख करेंगे कतर की मीडिया हिस्ट्री के एक डिफाइनिंग चैप्टर की तरफ और बात करेंगे कतर के सबसे पहले टेलीविजन स्टेशन कतर टेलीविजन या कतर टीवी की और इसके इफ्तिताह की। ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट से लेकर एक वाइब्रेंट मीडिया पावर हाउस तक का ये सफर सिर्फ कल्चर और इनोवेशन की कहानी नहीं बल्कि इस बात का सबूत भी है कि टेलीविजन ने कतर को पूरी दुनिया से कैसे कनेक्ट किया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस अनोखे सफर में, जहां आज के एपिसोड में हम आपको पूरी मालूमात देने वाले हैं कतर टेलीविजन की शुरुआत से लेकर आज तक के सफर की। दोस्तों, कतर टीवी की पहली ब्रॉडकास्ट 15 अगस्त 1970 को हुई थी। वो दिन हमेशा कतरी और अरब व्यूअर्स की यादों में महफूज रहेगा, जब उन्होंने एक नए अरब टेलीविजन चैनल का आगाज देखा जो अपने व्यूअर्स तक कतर की एक कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रुथफुल तस्वीर पेश करता था। ये चैनल कतर के बच्चों की ख्वाहिशात, उनका माजी, हाल और मुस्तकबिल, उनकी एम्बिशंस, ट्रेडिशंस और अपने अबाव अजदाद की हेरिटेज को भी कन्वे करता था। उन दिनों अरब व्यूवर्स एक नए अरबिक स्क्रीन के साथ वक्त गुजारा करते थे, जो अरबिक और इंटरनेशनल चैनल्स की लिस्ट में शामिल होकर अपने व्यूवर्स तक कतर की एक इंटीग्रेटेड और ऑनेस्ट इमेज पहुंचाता था। ये तारीख हर कतरी सिटीजन और मीडिया पर्सन के लिए फख्र का लम्हा है। ये उन सब के दिलों में एक अजीज और कीमती यादगार भी है जो कतर में रहते हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने कतरी स्क्रीन का लॉन्च और इसकी पहली ब्रॉडकास्ट अरब व्यूवर्स के लिए देखी थी। अब ये सफर 5 दहाइयों से ज्यादा का है जहां कतर टीवी ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, गिविंग, लॉयलिटी, ब्रिलियंस और सक्सेस के साथ। कतर टीवी का लॉन्च उस वक्त हुआ जब मीडिया की अहमियत बढ़ रही थी और ये एक अहम जरिया पैगाम और कंटेंट के तौर पर सामने आ रहा था। मीडिया का किरदार सोसाइटीज को प्रमोट करने में भी वाज़े हुआ, जहां आवाज, तस्वीर और लफ्ज के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले इवेंट्स और डेवलपमेंट्स को जोड़ा गया। दोस्तों, कतर टीवी ने अपनी हिस्ट्री के दौरान 3 मुख्तलिफ लोगोज यूज किए। पहला लोगो फाल्कन था, जो उस वक्त के कतर टीवी डिजाइनर ने डिजाइन किया था और यही डिजाइनर इजिप्ट के फाउद मोहम्मद अहमद अल शिबीनी थे, जो रियासत कतर के कोर्ट ऑफ आर्म्स के डिजाइनर भी थे। पहला लोगो टीवी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर साल 2000 के आखिर तक यूज होता रहा। इस डिजाइन की खास बात इसका कंपाउंड स्टाइल था, जिसमें एक फाल्कन शामिल था जो अरब हेरिटेज का सबसे नुमाया एक्सप्रेशन है। लोगो के सेंटर में ट्रांसमिशन टावर था जो आज भी मौजूद है, जबकि नीचे पुराने जमाने के विंटेज फिल्म रील्स बनाई गई थी जो डिजिटल टेप्स आने से पहले टेलीविजन्स में यूज होती थी।

सामईन दूसरा लोगो अल्दाना पर्ल का था जो कतरी विजुअल आर्टिस्ट मोहम्मद अली अब्दुल्ला ने डिजाइन किया था। ये लोगो 2001 के आगाज से लेकर 16 दिसंबर 2012 तक इस्तेमाल होता रहा। इस लोगो का डिजाइन अपनी क्रिएटिविटी की वजह से मशहूर था, जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिलाकर एक यूनिक शक्ल बनाई गई थी। इसमें एक सर्कुलर आर्क्ड शेप शामिल थी जो ट्रेडिशनल मोटिव से इंस्पायर थी, जो दरवाजों और खिड़कियों की डेकोरेशन में शामिल होती थी, और सेंटर में अल्दाना पर्ल था जो मोती की सबसे बड़ी और कीमती किस्म है। सर्कुलर आर्क्ड शेप की ग्रिड और अल्दाना पर्ल के आसपास 9 ट्राइंगल्स शामिल किए गए थे जो कतरी फ्लैग से इंस्पायर थे। इसी डिजाइन के अंदर अरेबिक लेटर काफ भी नजर आता था जो कतर का पहला हर्फ है अरेबिक में। ये लेटर सर्कुलर आर्क, अल्दाना और 9 ट्राइंगल्स में से 2 के दरमियान बनने वाली खाली जगह से सामने आता था। पूरा डिजाइन कतर और गल्फ के अबाव अजदाद की वो पुरानी प्रोफेशन सिंबलाइज करता था जो पर्ल डाइविंग की थी। ख्वातीनो हजरात, जहां तक तीसरा और मौजूदा कतर टीवी लोगो का ताल्लुक है, ये 16 दिसंबर 2012 को टीवी चैनल के नए लॉन्च के साथ अडॉप्ट किया गया। इसका सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश फैक्टर इसका बहुत ही सिंपल डिजाइन है, जिसमें सिर्फ अरेबिक में बोल्ड शक्ल में कतर लिखा हुआ है और इसके ठीक नीचे छोटी फॉन्ट में इंग्लिश में कतर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। दोस्तों, उस दिन से यानी 55 साल पहले से कतर टीवी मुल्क के हर घर का एक दायमी मेहमान बन गया है। अपनी न्यूज बुलेटिन और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक और मेडिकल प्रोग्राम के जरिए इसने हर एज ग्रुप को इंगेज किया है। साथ ही अरब और फॉरेन सीरीज और फिल्म्स ने कतर टीवी को रीजन की स्क्रीन्स पर एक लीडिंग और डिस्टिंग्विश्ड चैनल के तौर पर पहचान दी है। सामईन, अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और इवेंट्स के जरिए कतर टीवी ने सिर्फ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं किया बल्कि लॉयल्टी और बिलोंगिंग्स के प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया है। साथ ही इसने अरब और इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ साथ कतरी सोसाइटी की सोशल और कल्चरल वैल्यूज को भी प्रिजर्व किया है। कतर टीवी ने एक और बहुत अहम किरदार अदा किया, ये मीडिया और जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग स्टेशन बना। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड्स में आना था, उनके लिए कतर टीवी ने एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जो उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाती रही। इसके अलावा कतर टीवी एक एक्टिव मीडिया अरेना के तौर पर भी सामने आया जहां नेशनल कैडर्स को एनकरेज किया गया। साथ ही यहां से ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वर्क्स और मुख्तलिफ मीडिया प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए गए जो आज भी कतर की कल्चरल और मीडिया लैंडस्केप में अपना एक अहम मकाम रखता है। तो खादिनो हजरात, 55 साल का ये सफर कतर टीवी के लिए सिर्फ एक चैनल की ग्रोथ नहीं बल्कि एक पूरी मीडिया इकोसिस्टम का डेवलपमेंट है जहां से टैलेंट, क्रिएटिविटी और नेशनल आइडेंटिटी दोनों को एक साथ बढ़ावा मिला है। कतर टीवी का आगाज 1970 में हुआ जब कतर स्टेट टीवी ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया। इस वक्त ट्रांसमिशन ब्लैक एंड व्हाइट में होती थी जबकि पहला कलर ब्रॉडकास्ट 1974 में शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने कतर टीवी को नए दौर के ब्रॉडकास्टिंग के करीब ला दिया। अपने सफर के दौरान कतर टीवी ने कई डेवलपमेंट फेसेस गुजारे। पहला बड़ा डेवलपमेंट 2001 में आया जब टेलीविजन लोगो का डिजाइन, प्रोग्राम पैटर्न, ब्रेक्स और एडवर्टाइजमेंट्स बदली गईं ताकि ये सेटल

लाइट ब्रॉडकास्ट की पेस के साथ चल सके। इसी दौर में कतर टीवी ने रमादान के महीने में हर साल हिस्टोरिकल ड्रामास प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिसमें एक मशहूर मिसाल सीरीज उमर की है। कतर टीवी उन पहले अरब चैनल्स में से था जिन्होंने फुल्ली मॉडर्न डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स अपने सिस्टम में शामिल किए। इसके अलावा एक नई बिल्डिंग भी तैयार हुई जिसमें एक डेडिकेटेड स्टूडियो बनाया गया जो खास तौर पर न्यूज बुलेटिन की ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता था। तो दोस्तों, ये तमाम अपडेट्स और मॉडर्नाइजेशन कतर टीवी को एक ऑर्डिनरी चैनल से निकालकर एक प्रोफेशनल और रीजनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क बनने का सबब बनी। दोस्तों, कतर मीडिया कॉरपोरेशन के अंडर कतर टीवी ने अपनी पहचान को सिर्फ एक न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनल तक महदूद नहीं रखा। इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां कल्चर, एजुकेशन, हेरिटेज और मॉडर्न जर्नलिज्म का परफेक्ट ब्लेंड नजर आता है। चैनल का फोकस हमेशा ये रहा कि व्यूअर्स तक सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचाई जाए बल्कि उन्हें इंगेज, इंस्पायर और

0: और ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया। नई टेक्नोलॉजीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया इंटीग्रेशन ने चैनल को एक मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया इंस्टीट्यूशन बनाया, जो अरब और ग्लोबल ऑडियंसेस तक अपनी रीच बढ़ाता रहा। कदर टीवी का मिशन सिर्फ न्यूज और एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया इंस्टीट्यूशन के तौर पर अरब सोसाइटी में पॉजिटिव वैल्यूज को प्रमोट करता है, यूथ को मोटिवेट करता है और कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है। हर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा के जरिए ये चैनल नेशनल प्राइड, लॉयल्टी और बिलोंगिंग की प्रिंसिपल्स को प्रमोट करता है। तो दोस्तों, इस तरह और इस सफर के साथ कतर टीवी न सिर्फ एक चैनल है, बल्कि एक मीडिया लेगेसी भी है, जो 55 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुका है और आज भी अपने व्यूअर्स के लिए एक ट्रस्टेड और इंस्पिरिंग सोर्स बना हुआ है। ये लेगेसी आने वाले दौर में भी कंटिन्यू रहेगी, नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करते हुए और अरब और इंटरनेशनल मीडिया के लैंडस्केप में अपनी अहमियत को बरकरार रखेगी। तो दोस्तों, आज जब हम कतर टेलीविजन के 55 साल से ज्यादा के सफर का जश्न मना रहे हैं, इसकी लेगेसी अब भी जिंदा है। इसने कतर के मेजर ब्रॉडकास्टर के लिए रास्ता तैयार किया और कुछ टॉप जर्नलिस्ट और प्रोड्यूसर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड का किरदार अदा किया। वो पहला ब्लैक एंड व्हाइट फ्लिकर से लेकर आज की सैटेलाइट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक, कतर टीवी अब भी नेशनल प्राइड का एक पावरफुल सिंबल बना हुआ है। ये चैनल सिर्फ मीडिया का हिस्सा नहीं, बल्कि कतर की कल्चर, हेरिटेज और इनोवेशन का एक रोशन निशान है, जो हर जनरेशन के व्यूअर्स को इंस्पायर करता रहा है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी चीज होनी चाहिए जो आप कतर में पहली बार देखना चाहते हैं, या आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो को एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, नया टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे, जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज। तो जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट से साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉन

0: एवरी संडे और ट्यूजडे दोपहर 1 बजे से
1: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजूल
0: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दिल से देसी। दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM,
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
1: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
3: FM 107 दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए.
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है. और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं. इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो.
4: द रिक्वेस्ट शो
3: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ.
4: फजील के साथ
3: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
4: दिल से देसी.
5: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें. सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों. लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है. वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है. ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं. अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं. आपके घर और ऑफिसेस की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें. FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की

एक झूठ घड़ रहे हो। दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई रिस्क भी देने का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह से रिस्क मांगो और उसी की बंदगी करो और उसका शुक्र अदा करो और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें झुटला चुकी हैं और रसूल पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है।

और ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा। असल जिंदगी का घर तो दारे आखिरत है, काश ये लोग जानते। जब ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उससे दुआ मांगते हैं। फिर जब उन्हें बचाकर खुशकी पर ले आता है तो यकायक ये शिर्क करने लगते हैं, ताकि अल्लाह की दी हुई नजात पर उसका कुफरान नेमत करें और हयात दुनिया के मजे लूटें। अच्छा, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। क्या ये देखते नहीं हैं कि हमने एक पुरअमन हरम बना दिया है, हालांकि इनके गिर्दोपेश लोग